एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। आज गुरुवार है। शक संवत सन 1948 के आश्विन मास की दूसरी तिथि तदनुसार 24 सितंबर सन 2026 है। इस समय सुबह के 5:56 और 30 सेकंड हो रहे हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

एफएम एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। कुछ क्षणों में सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह L69 की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर ग्लोबल साउथ के देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता की में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता बनी रहती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि L69 और C10 के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार

0: के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत MV कैप डाओ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और भारतीय नाविकों की जल्द स्वदेश वापसी के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने ओमान के अधिकारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि भारत बांग्लादेश सीमा पर से होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। यह फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 1,300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के अंतर्गत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपये तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फीडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें दौर में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। अन्य मुकाबले में अर्जुन इरेगेसी का माइकल एडम्स के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। निहाल सरीन को ल्यूक मैक्शेन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला वर्ग में बी सविता श्री ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार 7वीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने 7वें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविता श्री इस ओलंपियाड में अपने सभी 7ों मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में आज से 26 सितंबर तक 7वें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। इस समय सुबह के 6:05 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदन वार।

आज का चिंतन। हार केवल तब होती है जब कोशिश करना हम छोड़ देते हैं। गिरकर फिर उठना ही असली जीत की शुरुआत है। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

लीजिए प्रस्तुत है झरोखा। आपको सुनवाते हैं आज प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की जानकारी झरोखा के अंतर्गत। 6:35 पर आप सुनेंगे श्रीराम चरितमानस गान में लंका कांड, आज भाग 321 प्रसारित होगा। 6:45 पर और पुनः 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं, आज भाग 9 प्रसारित होगा। कलाकार गायक डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली की। सुबह 7 सुनिएगा भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8 आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर और पुनः दिन में 2 त्रिवेणी का प्रसारण किया जाएगा, आलेख एवं स्वर सविता सिंह के, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। नए गानों का कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनते हैं 8:30 पर और रात में 8:15 पर। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा फिल्मकार फिरोज खान पर। आलेख एवं स्वर अशोक सोनावने का है, प्रस्तुति रमेश गोखले की और ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर। सुबह 10 पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान में संगीतकार संगीत संयोजक अप्पा बड़ावकर से यूनुस खान की बातचीत आप सुनेंगे, संपादन सहयोग काजल भदरगी का, प्रस्तुतकर्ता जुबीर खान। सुबह 11 रंग तरंग कार्यक्रम, 12 हिंदी में समाचार, 12:05 पर सुनिएगा यादों की महफिल। 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार, 2:30 पर सदा बहार नगमे। 3:00 सखी सहेली के अंतर्गत आप सुनेंगे समुद्र यात्राओं का रोचक संसार, कहानी पद्मश्री की उषा बारले पंडवानी लोक गायिका के बारे में बात, मुझे कुछ कहना है कब किससे रूठे, उपयोगी टिप्स फ्रिज में सामान कैसे रखें, मंजरी वर्मा और आरती श्रीवास्तव संवादक रहेंगी, प्रस्तुति अनुश्री।

शाम 5 बजे सुनिएगा छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम। शाम 6 बजे हिंदी में समाचार आप सुनेंगे और 6:05 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम जारी रहेगा। 6:30 पर आप सुनेंगे झरोखा, 6:35 पर संध्या रंजन। शाम 7 बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए मैं आप टेलीविजन और फिल्म लेखक पुनर्वसु मालवीय से ममता सिंह की बातचीत सुनेंगे, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी की। रात्रि 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा प्रहसन टपकते सितारे, लेखन है सोमनाथ नागर का, निर्देशन कुमुद नागर का। 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या, 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 10 बजे छाया गीत सुनिएगा, आलेख एवं स्वर संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी की। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे से रंग तरंग का पुनः प्रसारण आप सुन पाएंगे। ये था झरोखा आज के कार्यक्रमों का। आप सुन रहे हैं विविध भारती, लीजिए अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान। आज आप सुनेंगे लंकाकांड में 321 भाग।

नल, नील, द्विज, सुग्रीव, अंगद, हनुमान तथा राम लक्ष्मण को खोजता ललकारता रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद युद्ध भूमि में आन उतरा है। उसके वाणों से वानर सेना की टुकड़ियां कट कट कर गिरने लगी हैं। मेघनाद का उद्घोष है कि आज वो भाई से द्रोह करने वाले विभीषण का वध अवश्य करेगा। क्रोध में कांपता धनुष की प्रत्यंचा को कानों तक खींच वो कठिन से कठिनतम वाण छोड़ने लगता है। उन्हें देख ऐसा लगता है जैसे पंखों वाले सर्पों का समूह उड़ता चला जा रहा हो। मेघनाद के प्रहार से त्रस्त वानर और रीछ जहां तहां भागने लगते हैं। ऐसा दृश्य आ उपस्थित होता है जैसे युद्ध भूमि में एक भी वानर या रीछ जीवित नहीं बचेगा। चारों ओर मेघनाद का सिंह गर्जन सुनाई देने लगता है। ये देख हनुमान ने एक पर्वत खंड उठाकर मेघनाद पर दे मारा। पर्वत को अपनी ओर आता देख मेघनाद उछलकर आकाश में उड़ जाता है और हनुमान के बार बार ललकारने पर भी नीचे नहीं आता। वो श्री राम के ऊपर तरह तरह के अस्त्रों के साथ गालियों की बौछार करने लगता है। श्री राम उसके अस्त्रों को बड़ी सहजता से काट कर गिरा देते हैं। मेघनाद लज्जित होता है किंतु फिर माया रचाकर आसमान से अंगारों की वर्षा करने लगता है। साथ ही रक्त, पीप, हड्डियां तथा अन्य दुर्गंधमय पदार्थ बरसने लगते हैं। युद्ध भूमि में ऐसा अंधकार छा जाता है कि हाथों को हाथ नहीं सूझता। वानरों को भयभीत देख श्री राम एक ही वाण से इस माया दृश्य को छिन्न भिन्न कर देते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान का भाग 321वां।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता में आजकल आप प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला सुन रहे हैं, ख्याल और तराने की विशेषताएं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज प्रस्तुत कर रहे हैं इसकी नवी कड़ी।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। तराना एक रहस्य विद्या है जिसमें अनेक महत्वपूर्ण मंत्र की बीजाक्षरों का प्रयोग हुआ है। तराने पर यह मेरी अपनी ही खोज है। तराना हमारी शास्त्रीय संगीत की एक ऐसी प्राचीन गायकी है जिसमें रहस्यमय प्राच्य विद्याओं का सार छिपा हुआ है। जिस समय धर्म पर आपत्ति के बादल मंडरा रहे थे, मंत्रोच्चारण सुनकर दुष्ट लोग साधना को भंग कर देते थे, उस समय सुनने में तो अर्थहीन स्तोभाक्षरों के माध्यम से नाद ब्रह्म द्वारा परम ब्रह्म की आराधना की जाती थी। यह सांकेतिक भाषा है। तंत्रशास्त्र, मंत्रशास्त्र, भक्तिशास्त्र, छंदशास्त्र, वेद वेदांत का सार तराने में छिपा हुआ है। प्रत्येक वेद मंत्र के पूर्व प्रणव ओंकार का प्रयोग करते हैं। ओम इत्येक अक्षरम ब्रह्मा, यह ओम एक अक्षर ब्रह्म स्वरूप है जिसमें अ उ म के साथ साथ तीनों व्याहृतियों की व्यापकता विशाल दृष्टिकोण की द्योतक हैं। वह ओंकार कितनी बड़ी विशालता देने वाला है, अर्थात ओदानी है। इसी प्रकार हे परमात्मन तू दानी है, यानी तो दानी है। यदि स्वर के द्वारा ईश्वर की उपासना प्रभु की प्रसन्नता में हेतु बनती है तो स्वर ही ईश्वर की स्नेह साधना का सेतु बन जाता है। तदीम का मतलब है उस समृद्धि को देने वाला। ईम बीज जो क्लीम में काम बीज के रूप में प्रयुक्त हुआ है, सभी में ईम काम बीज लगा है, यह तो प्राण बीज है। यदि प्राण ही नहीं रहेगा तो शरीर मृत कहलाएगा। शिव में से ई निकाल दिया जाए तो शिव का शव हो जाएगा। दीम द यानी देने वाला, उसमें ईम लगा है तो दीम बना है, यानी प्रत्येक कामना के अनुसार फल देने वाला, यह काम बीज है। दिर दिर अर्थात दिव्यता को देने वाला परमात्मा, दी अर्थात दिव्यता, र जो है दिर का वो र अग्नि बीज है।

अर्थात राती ददाती, दिव्यता का दान देने वाला। दानी दानी का अर्थ है तू दाता है, तू कृपालु है। दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युतिस्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिशु। इसके अनुसार देर तदेरे का मतलब है स्वर से ईश्वर के साथ सखा भाव से क्रीड़ा करना अर्थात लीला करना, उसके साथ रहना अथवा कांत भाव स्थापित करना। यलम में य का मतलब है गति, लम अर्थात जीवन में गति देने वाला, गति लाने वाला यलम है। गति देने वाली शक्ति का संचार यलली में ई काम बीज से होता है। यललोम, लोम जड़ता को कहते हैं। उसे निष्कासित करना अर्थात जाड्य यानी जड़ता को दूर करना है। द्री द्रेम आदर सूचक है, यह शुक्र मंत्र भी है। इसका विवरण वेदोक्त सबीज नवग्रह स्तोत्र व भाष्य में उपलब्ध होता है। दरतन का तात्पर्य तनु यानी शरीर, तन शरीर रूपी हृदय की गुफा को दर यानी दरा संस्कृत में कहा जाता है, जिसमें परमात्मा का वास हो, हृदय गुहा का अंधकार दूर हो और उस प्रियतम का सदा मिलन बना रहे। यह एक प्रामाणिक खोज मैंने की है। तो आइए सुनिए मेरी संस्कृत में तराने की रचना, प्रस्तुत है राग भैरव में।

0: तराने में बहुत कुछ छिपा हुआ है। तराना केवल तरन्नुम नहीं है, तरन्नुम का अर्थ तो है केवल गुनगुनाना, और तराने का मतलब है पूरा गाना, जिसमें एक ऐसे इम्प्लिकेशंस छिपे हुए हैं, ऐसे संकेत छिपे हुए हैं कि अगर हम वेद शास्त्र और हमारी संस्कृति की धरोहर से हम खोजें तो पता लगता है। यह गायकी अपने आप में बड़ा अहम रखती है और बहुत सी विशेषताएं लिए हुए हैं, किंतु हम अपनी समझ से नहीं, शास्त्रों की समझ से इसे समझें तो पता लगेगा कि तराना अर्थ ही नहीं है, वह सार्थक है जिसमें बड़ी गहराई, रानाई और गंभीरता छिपी हुई है। तो मैं तराने के रहस्य को इस क्रम में आगे बढ़ाते हुए और कुछ विशेष बातें कहूँगा, जो अगले कार्यक्रम में आप सुनेंगे। नमस्कार।
1: ख्याल और तराने की विशेषताएं, इस विषय पर श्रृंखला का नवा भाग अभी आपने सुना। प्रस्तुतकर्ता थे प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज, हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर और तबले पर ओमकार गुलवाड़ी ने संगति की थी। इस श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर हम कल फिर उपस्थित होंगे। संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे

हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदा बहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों
0: दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदा बहार नगमे।

0: आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में लेकर आ
1: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का सरस का चैनल है। इस समय सुबह के ठीक 7 बजे हैं। आइए अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम नमस्कार अलवर। तो हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? और देखिए श्रोताओं, एक बार फिर से जैसा कि हमने किया था वादा कि एक बार फिर से आप सभी के सामने होंगे हाजिर, तो देखिए आज फिर से हाजिर हो गए हैं आप सभी के सामने, आप सभी का अपना ही प्रिय कार्यक्रम नमस्कार अलवर लेकर। अब साथियों, अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं हूं बहुत ही अच्छे से, और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि आप सब लोग भी होंगे बहुत ही अच्छे से। और एक बार फिर से आज आप सभी का अपना दोस्त सावन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं कार्यक्रम नमस्कार अलवर में। साथियों, अब कार्यक्रम नमस्कार अलवर के अंदर आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग इस कार्यक्रम में हर रोज एक विषय के बारे में बात करते हैं। तो आज किस विषय के बारे में बात करने वाले हैं ये आपको बताते हैं। देखिए साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उपभोक्ता अधिकारों और उनके संरक्षण के विषय में। उपभोक्ता अधिकार क्या होते हैं, उनका संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, आज के प्रोग्राम में इसी चीजों को लेकर के हम बात करेंगे। अब इन चीजों के बारे में बात करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि देखिए साथियों, जब भी हम बात करते हैं उपभोक्ता की तो हम अपने आसपास ले, हम स्वयं ले, सभी व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से एक तरीके से किसी न किसी सेवा का उपयोग कर रहे हैं, एक तरीके से उपभोक्ता है। जब हम बाजार जाते हैं, किसी प्रकार की सर्विस का उपयोग करते हैं, किसी प्रकार के सामान को खरीदते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि हम उपभोक्ता हो जाते हैं। ऐसे में हमारे साथ में किसी भी प्रकार की कोई चीटिंग ना हो, किसी भी प्रकार का कोई अनुचित व्यवहार या व्यापार ना हो, तो इन सब चीजों से बचाव के लिए उपभोक्ता को अपने अधिकारों को जानना बहुत आवश्यक है। और इनके संरक्षण के लिए क्या क्या जो उपाय हैं वो एक सामान्य जन के द्वारा किए जाते हैं, और क्या क्या उपाय सरकारों के द्वारा किए जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में भी हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। तो आइए इसी चीज के बारे में हम अधिक जानने की कोशिश करते हैं। जब हम जानने की कोशिश करेंगे तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि उपभोक्ता कौन है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें तो कानूनी भाषा से परे हटते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे तो उपभोक्ता वो व्यक्ति है जो अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए कोई भी वस्तु खरीदता है या फिर किसी भी प्रकार की सर्विस को यानी कि सेवा को किराए पर लेता है। अब यहां पर दो बातें ध्यान रखने के लिए योग्य हैं। यदि कोई व्यक्ति सामान को आगे बेचने या व्यापार करने के लिए खरीदता है तो वो उपभोक्ता के कानून के तहत ग्राहक नहीं माना जाता है, यानी कि व्यापारिक उद्देश्य के लिए। अब दूसरे नंबर पर जो बात आती है वो आती है कि वर्ष 2019 में बने हुए नए कानून के अनुसार अब ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है, टेली शॉपिंग होती है, और डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जो सामान या सेवाएं खरीदने वाले लोग जो हैं वो भी पूरी तरह से उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। अब साथियों, उपभोक्ता जो होता है वो किसी भी बाजार की रीढ़ होता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, लेकिन आज के आधुनिक डिजिटल और वैश्वीकरण के दौर में बाजार का ढांचा इतना ज्यादा जटिल हो गया है कि वही ग्राहक अक्सर ठगी, मिलावट, अनुचित व्यापार प्रथाओं और गुमराह करने वाले विज्ञापनों का शिकार भी बन जाता है। इसी असंतुलन को समाप्त करने और आम नागरिक को बाजार की चालबाजियों से बचाने के लिए उपभोक्ता अधिकार और संरक्षणों की संकल्पनाओं का जन्म हुआ। भारत में उपभोक्ता संरक्षण केवल एक कानूनी व्यवस्था नहीं है बल्कि एक सामाजिक क्रांति है जो आम आदमी को बाजार का राजा बनाने का अधिकार देती है। अगर हम उपभोक्ता अधिकारों के इतिहास के बारे में बात करें तो देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अधिकारों की नींव 15 मार्च 1962 को

अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने रखी थी। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए चार मूलभूत उपभोक्ता अधिकारों का खाका पेश किया। इसकी याद में हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में इस दिशा में ऐतिहासिक कदम 1986 में उठाया गया, जब राजीव गांधी की सरकार में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ। इसके तहत देश में त्रिस्तरीय उपभोक्ता अदालतों की स्थापना हुई। समय के साथ साथ जब ई कॉमर्स, डिजिटल भुगतान और भ्रामक विज्ञापनों का दौर आया तो 86 का कानून पुराना पड़ने लगा। इसके जवाब में भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया, जिसने पुराने कानूनों को बदलते हुए ग्राहकों को नए दौर के डिजिटल हथियारों से लैस किया। भारत में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब साथियों बात आती है कि भारत में उपभोक्ताओं के मौलिक अधिकार कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं ये गीत।

तो श्रोताओं, हम लोग बात कर रहे थे उपभोक्ता अधिकार और उनके संरक्षण के विषय में। अब हम लोगों ने बात की उसके उपभोक्ता अधिकार जो हैं उनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विषय में। अब बात करते हैं भारत में उपभोक्ताओं के मौलिक अधिकार जो हैं वो क्या क्या हैं और कितने हैं। तो साथियों, देखिए, भारत का जो उपभोक्ता संरक्षण कानून है वो देश के हर नागरिक को 6 प्रकार के मुख्य अधिकार प्रदान करता है। बाजार में किसी भी प्रकार की ठगी से बचने के लिए इन अधिकारों को आपको जानना बेहद ही आवश्यक है। इसमें सबसे पहले नंबर का जो आता है वो आता है सुरक्षा का अधिकार। यह अधिकार उपभोक्ता को ऐसे सामानों और सेवाओं से बचाता है जो जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक हो, जैसे कि बिना ISI मार्क वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गए, घटिया गुणवत्ता वाले प्रेशर कुकर हो गए या फिर मिलावटी दवाइयां हो गई। उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वो बाजार से केवल प्रमाणित और सुरक्षित उत्पाद ही प्राप्त करे। इसके बाद दूसरा आता है सूचना का अधिकार। उत्पाद या सेवा खरीदने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी पाने का अधिकार ग्राहक के पास होता है। सामान की मात्रा, गुणवत्ता, शुद्धता, स्तर, निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट और मूल्य जैसे सभी जानकारी पैकेट पर स्पष्टतया लिखी होनी चाहिए ताकि ग्राहक सोच समझकर इस चीज का निर्णय ले सके। तीसरे नंबर पर आता है चयन का अधिकार। कोई भी दुकानदार या कंपनी आपको किसी विशेष ब्रांड का सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। बाजार में प्रतिस्पर्धा के बीच में उपभोक्ता को अपनी पसंद और बजट के अनुसार कई विकल्पों में से चुनने का पूरा अधिकार होता है। यदि कोई दुकानदार किसी सामान के साथ में दूसरा सामान जबरन बेचने की कोशिश करे तो ये इस अधिकार का उल्लंघन है। इसी प्रकार से चौथे नंबर पर आता है सुनवाई का अधिकार। यदि किसी उपभोक्ता को किसी उत्पाद या सेवा से कोई प्रकार की शिकायत हो तो उसकी बात को सुने जाने का अधिकार है। इसलिए आज लगभग सभी बड़ी कंपनियों में कस्टमर केयर और ग्रीवांस सेल जो होती है उसका होना अनिवार्य है। इसके अलावा उपभोक्ता अदालतों में भी ग्राहक अपनी आवाज उठा सकता है। निवारण का अधिकार, ये 5वें नंबर का अधिकार है। केवल शिकायत को सुनना काफी नहीं है, उपभोक्ता को अनुचित व्यापार प्रथाओं या शोषण के खिलाफ मुआवजा और राहत पाने का अधिकार है। यदि सामान खराब निकले तो उसे बदलने या फिर पैसे वापस करने या फिर नुकसान की भरपाई करने का कानूनी अधिकार ग्राहक के पास होता है। और 6वें नंबर पर जो आता है वो आता है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। एक जागरूक ग्राहक ही सशक्त ग्राहक होता है। देश के हर नागरिक को अपने अधिकारों, कानूनों और राहत के तरीकों के बारे में जानने का अधिकार है। सरकार की जागो ग्राहक जागो जैसी मुहिम इसी अधिकार को धरातल पर उतारने का प्रयास है। साथियों, अब बात करते हैं कि नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है उसने क्या क्या चीजें बदली। इस संशोधित कानून ने भारत में उपभोक्ता संरक्षण की पूरी तरीके से दिशा को ही बदल दिया। इसमें उपभोक्ताओं को अधिक अधिकार दिए, त्वरित न्याय पाने की सुविधा दी। इसके प्रमुख चीजों के बारे में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले नंबर पर आता है CCPA की स्थापना, यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। पुराने कानून में शिकायत दर्ज कराने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उपभोक्ता पर होती थी, जबकि इस कानून में CCPA का गठन किया गया है जिसके पास पुलिस जैसी शक्तियां हैं। यह प्राधिकरण अनुचित व्यापार प्रथाओं, झूठे विज्ञापनों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन पर खुद संज्ञान लेकर जांच को शुरू कर सकता है और सामान वापस मंगवा सकता है। उत्पाद का दायित्व, यदि किसी खराब उत्पाद या सेवा में कमी के कारण किसी उपभोक्ता को शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचे तो उत्पाद निर्माता, सेवा प्रदाता और विक्रेता तीनों को हर्जाना देना पड़ेगा। इसी प्रकार से तीसरे नंबर पर ई कॉमर्स को दायरे में लाना, जैसे Amazon, Flipkart, Zomato, Meesho जैसी ई कॉमर्स कंपनियां जो हैं वो इनको अब उपभोक्ता नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले सामान के देश का नाम यानी कि कंट्री ऑफ ओरिजिन, रिटर्न पॉलिसी और शिकायत अधिकारी का संपर्क देना अनिवार्य कर दिया गया है। भ्रामक विज्ञापनों और मशहूर हस्तियों पर नकेल कसना, अक्सर देखा जाता है कि मशहूर फिल्मी सितारे या खिलाड़ी किसी

टेन स्क्रीन में हेल्थ ड्रिंक का प्रचार करते हैं जो दावों पर खरे नहीं उतर पाते। नए कानून के तहत भ्रामक विज्ञापन बनाने वाली कंपनियों पर 10 लाख रूपये तक का जुर्माना और 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। इसके साथ ही ऐसे विज्ञापनों का प्रचार करने वाली मशहूर हस्तियों पर भी बैन लगाया जा सकता है। ई फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जब ग्राहक को शिकायत दर्ज कराने के लिए अदालत के चक्कर काटने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। नए नियमों के तहत आप ई दाखिल पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं और सुनवाई की वीडियो जो है वो सुनवाई जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है। इसके अलावा उपभोक्ता अदालतों का त्रिस्तरीय ढांचा जो है वो भी अब किया गया है। भारत में

उसमें 50 लाख तक के मामले जाते हैं। राज्य उपभोक्ता आयोग होता है उसमें 50 लाख से 2 करोड़ तक के मामले जो है वो निपटान किए जाते हैं। वहीं राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग जो होता है उसके अंदर 2 करोड़ से अधिक के मामलों का निपटान किया जाता है। यदि कोई पक्ष जिला आयोग के फैसले से संतुष्ट न हो तो वो 45 दिनों के भीतर राज्य आयोग में अपील कर दे। इसी प्रकार से राज्य आयोग के फैसले से भी के खिलाफ आप राष्ट्रीय आयोग और फिर उच्चतम न्यायालय तक भी जा सकते हैं। चलिए इन सब चीजों के बारे में और भी अधिक जानकारी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए ये की

अधिकारियों को भी समझना होगा। सबसे पहले कानूनी लड़ाई में जो पक्की रसीद होती है वो आपका सबसे बड़ा सबूत होती है, तो बिना बिल के सामान खरीदने पर अदालती कार्रवाई करना बेहद कठिन हो जाता है, इसलिए बिल लेने की आदत डालें। दूसरे नंबर पर आता है कि मानकीकरण जो चिन्ह होते हैं उनकी जांच आप अवश्य रूप से करें। सामान खरीदते समय इनकी जांच तो अवश्य की जानी ही चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक और औद्योगिक सामान खरीद रहे हैं तो ISI मार्क का देखें, कृषि और खाद्य उत्पाद अगर खरीद रहे हैं तो एग मार्क को देखें, और खाद्य पदार्थ और उनकी सुरक्षा की गुणवत्ता के लिए आप FSSAI के लोगो को जो है उसको ध्यान से देखिए। इसी प्रकार से सोने चांदी के आभूषण खरीद रहे हैं तो हॉलमार्क को देखें। इसके बाद लेबल को ध्यान से पढ़ना, ये एक ऐसी चीज है कि आपको इस चीज को विशेष तरह ध्यान पर रखना चाहिए, यानी कि एक्सपायरी डेट, सामग्री, बैच नंबर, MRP, ये सारी चीजें आपको इसी चीज पर लेबल पर दिखाई देती हैं, तो कभी भी MRP से अधिक कीमत ना चुकाएं, देखकर ही खरीदें। सस्ते के लालच से बचें, अत्यधिक छूट या बिना बिल के मिलने वाले नकली और घटिया सामान के लालच में कभी भी मत आएं। छोटी ठगी को अनदेखा न करें, यदि हर ग्राहक 10 रुपए की ठगी पर भी आवाज उठाएगा तो बाजार में अवश्य ही सुधार आएगा। साथियों आगे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनवा देते हैं आपको ये गीत।

साथियों, अब हम बात कर लेते हैं उपभोक्ता के कर्तव्य और जिम्मेदारियों के विषय में। देखिए, अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहते हैं तो एक जिम्मेदार उपभोक्ता के रूप में हमें अपने

साथियों, अब बात आ जाती है कि यदि इन सब चीजों को अपनाने के बाद भी आपके साथ में किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी या किसी प्रकार की ऐसी चीज हो जाती है कि जो आप मानते हैं कि आप अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, तो उपभोक्ता को शिकायत दर्ज करने की क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में आपको बताते हैं। किसी भी प्रकार की ठगी या खराब सेवा के अगर आप शिकार हुए हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला तो काम यह करना है, उसके बाद शिकायत

दर्ज करने की प्रक्रिया जो है वो बेहद आसान होती है। आपको उन चीजों का पालन करना है। सबसे पहले नंबर पर आप संबंधित कंपनी या दुकानदार को अपनी समस्या की लिखित जानकारी दें और उन्हें समाधान के लिए उचित समय दें, जैसे कि 7 दिन हो सकते हैं, 15 दिन हो सकते हैं। इसके बाद में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन जो होती है उसका उपयोग करें। यदि कंपनी सुनवाई ना करे तो आप भारत सरकार की इस हेल्पलाइन का सहारा ले सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1915 पर कॉल करें, एसएमएस भी भेज सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल consumerhelpline.gov.in पर आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। मोबाइल ऐप NCHO ऐप या फिर उमंग ऐप के माध्यम से भी आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा ई दाखिल पोर्टल के माध्यम से भी आप अपने मामले को दर्ज करवा सकते हैं। यदि हेल्पलाइन से आपको समाधान नहीं मिलता है तो आप edakhil.nic.in पर जाकर बिना किसी वकील की मदद के उपभोक्ता आयोग में इस चीज की शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए कुछ साधारण चरणों का पालन करना होगा। सबसे पहले अपनी आईडी बनाइए, फॉर्म भरिए, उसके बाद में बिल, रसीद, ईमेल या फिर बातचीत के प्रमाण की प्रति को अपलोड कर दीजिए। उसके बाद में नाम मात्र का शुल्क जो होता है उसका ऑनलाइन भुगतान कीजिए और आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। तो साथियों सबसे पहले और ये एक गीत और सुनते हैं, उसके बाद में कुछ और भी बातें करेंगे।

साथियों, अब सबसे अंत में जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं आधुनिक व्यवस्था में उपभोक्ता की स्थिति केवल एक ग्राहक ही नहीं बल्कि बाजार के नियंत्रक की है। जब तक ग्राहक चुप रहेगा तब तक मिलावटखोरी, भ्रामक विज्ञापन और सेवाओं में कमी जैसी कुरीतियां बाजार में फलती फूलती रहेंगी। भारत सरकार ने कानूनों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया है, लेकिन इसकी असली ताकत नागरिक को अपनी जागरूकता में निहित है। सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। जब देश का हर नागरिक अपने अधिकारों को पहचानेगा, पक्की रसीद मांगेगा और गलत के खिलाफ आवाज उठाएगा, तभी सही अर्थों में उपभोक्ता संरक्षण की पहचान बनेगी। तो अगली बार जब भी आप बाजार जाएं या ऑनलाइन खरीदारी करें तो हमेशा याद रखें, जागो ग्राहक जागो। आप साथियों देखिए, बातें तो आपसे करने का बहुत मन है, लेकिन अब घड़ी की सुइयां जो है वो इशारा कर रही हैं कि आप सभी से विदा ले लें। तो जा रहे हैं इसी वादे के साथ कि एक बार फिर से आप सभी से होगी मुलाकात इसी कार्यक्रम में, फिर किसी और दिन इसी समय पर। तब तक के लिए अपने दोस्त सावन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अलवर।

आपने सुना कार्यक्रम नमस्कार अलवर। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के 7:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनवाते हैं आपको फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आज का ये पहला नगमा आपको सुनवा रहे हैं शान कैलाश खेर और साथियों की आवाज में फिल्म फना से। शब्द रचना है प्रसून जोशी की और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अमृत नारायण और साथियों की आवाज में ये गीत तो आपने सुना फिल्म तेरे नाम से। शब्द रचना रही समीर की और संगीत से सवारने का काम किया हिमेश रेशमिया ने। और लीजिए फिल्म संगीत का ये अगला नगमा आपको सुना रहे हैं अलका याग्निक की लारून और साथियों की आवाज में फिल्म खलनायक से। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आनंद राज आनंद और देव कोहली द्वारा लिखित ये गीत आपने सुना अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और साथियों की आवाज में फिल्म मेजर साहब से। संगीत से सवारने का काम किया आनंद राज आनंद ने।

रोहित चौहान और साथियों की आवाज में यह गीत आपने सुना फिल्म जब वी मेट से। शब्द रचना रही इरशाद कलमी की और संगीत से संवारने का काम किया प्रीतम ने। और लीजिए फिल्म संगीत का यह अगला और आखिरी नगमा आपको सुना रहे हैं फिल्म ये जवानी है दीवानी से। आवाजें हैं रेखा भारद्वाज, तोशी रैना और साथियों की। शब्द रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की और संगीत दिया है प्रीतम ने।

आपने सुना फिल्म संगीत एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। कुछ क्षणों में सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार प्रभात। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशू में रजत पदक जीता। रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने समरकंद में आयोजित फिडे शतरंज ओलंपियाड के सातवें दौर में इंग्लैंड को मात दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: सेवा यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। सेवा यात्री विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गाँवों से गुजरते हुए जन सेवा और जन भागीदारी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इनमें स्वच्छता अभियान, स्थानीय लोगों और लाभार्थियों से संवाद तथा स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सामुदायिक स्थानों पर सेवा गतिविधियां शामिल हैं। यात्रा का उद्देश्य सेवा, संवाद, युवाओं की भागीदारी, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। वडनगर से वाराणसी के बीच 10 समूह मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को वडनगर से गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे जल जीवन मिशन के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया।
2: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में देश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन का हिमाचल प्रदेश में लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 17,09,000 ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा चुका है और जल जीवन मिशन के प्रावधानों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिमला जिला के बढ़ई गाँव की निवासी ममता ने बताया कि जल जीवन मिशन से उनके गाँव में हर घर नल से जल की सुविधा मिल रही है, जिससे विशेष तौर पर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।
3: हमारे गांव में पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी। जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिला और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
2: वहीं आकांक्षी जिला चंबा के रहने वाले अजय शर्मा ने भी जल जीवन मिशन के तहत दुर्गम क्षेत्रों तक नल से जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
4: बहुत अच्छी बात, जो वर्षा जल संग्रहण है, हमने भी इस प्रकार का टैंक बनाया। जब भी बारिश होती है टैंक के माध्यम से स्टोर हो जाता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं।
2: भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन

0: को लगातार प्रोत्साहित किया है और जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के लिए प्रदेश को 258 करोड़ 7 लाख रुपए की राशि का अस्थायी आवंटन किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
2: नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना के पहले चरण में 1300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को अधिक सुरक्षित, हरित और समावेशी शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दो पहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
3: भारत टैक्सी का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में शुरू हो गया है। लखनऊ हवाई अड्डे, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस सहित विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे लाखों युवाओं ने रैपिडो के माध्यम से श्रद्धालुओं को संगम, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचाने में मदद की थी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर को 11% से घटाकर मात्र 6% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती और मशीनरी के लिए फंड की कमी ना हो, इसके लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले समय में 5 लाख लघु और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत में कमी करना है। इस बीच राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का एक मुश्त भुगतान करने का फैसला भी किया है। वित्त विभाग ने बताया है कि अप्रैल 2008 से दिसंबर 2015 तक 7 साल की अवधि का महंगाई भत्ता बकाया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पूरा दिया जाएगा। इसका भुगतान इस महीने के अंत तक किए जाने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपील की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्प विकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर

0: राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत एमवी केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया है कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
1: खेल खबरों की शुरुआत एशियाई खेलों से, जहां भारत की रोशिबिना देवी नाओरेम ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक, वहीं सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शिया ओ से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। ये एशियाई खेलों में रोशिबिना का तीसरा पदक है। उधर सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर थी, लेकिन अंतिम 500 मीटर में तीसरे स्थान पर आ गई। इससे पहले सतनाम सिंह ने हांगझू एशियाई खेलों में पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स में भी कांस्य पदक जीता था। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सातवें दौर में इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंकों से हरा दिया। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में सविताश्री ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार सातवीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने सातवें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविताश्री इस ओलंपियाड में अपने सभी सातों मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई हैं। प्रतियोगिता में अब केवल 2 दौर बाकी हैं और इस धमाकेदार जीत ने भारत की पदक की उम्मीदों को मजबूती से बनाए रखा है।
0: बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट को पार कर अब आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में लगातार बारिश से कई जिलों, खासकर दक्षिणी जिलों में आम जनजीवन पर असर पड़ा है। संवेदनशील इलाकों में पानी भरने, जमीन खिसकने और सड़कों के संपर्क टूटने की खबर है। आईएमडी ने आज नवरंगपुर के लिए बहुत भारी बारिश की रेड वार्निंग जारी की है, जबकि 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 8 अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्सपर एट AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद प्रियंका। दुनिया कर रही तारीफ, 4 बड़ी एजेंसियों ने बढ़ाया भारत का वृद्धि दर अनुमान। नव भारत टाइम्स ने लिखा है S&P, फिच, ADB और OECD ने भारत की 2026-27 की GDP का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रकाशित किया है। मंत्रियों को मोदी का मंत्र, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। निर्वाचन आयोग में मतभेद को लेकर उठे सवालों पर दैनिक भास्कर ने आयोग का स्पष्टीकरण प्रकाशित किया है। असहमति होना सामान्य बात है, हमारे बीच दरार नहीं। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण की खबर है बैंकों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 25 सितंबर को ही वेतन और पेंशन देने का फैसला किया। राजस्थान पत्रिका ने बताया है रेल मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम में आने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियमों की घोषणा की है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित

साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। और जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान ने रोइंग पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के 8:15 हो रहे हैं। ये जो अब सुनवाते हैं आपको सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं मेहंदी हसन की गाई हुई गजल।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

अभी आपने सुना सुगम संगीत एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के 8:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनवाते हैं आपको एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं आपकी मित्र विमलेश उमंग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं।
0: और मैं आपका मित्र अजीत, आप सबों को उमंग कार्यक्रम की ओर से जोहार। आर्य नगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। विचार शिक्षा के बारे में है, लिखते हैं,
2: शिक्षा ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास कर सकती है।
0: जी, इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
0: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
2: राजानगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद।
0: तो श्रोताओ, हम कहना चाहते हैं कि आपके संदेश हमारे लिए हमेशा प्रोत्साहन का कारण होते हैं। पुनः धन्यवाद। निवेदन है कि इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: जी,
0: आइए अब चलते हैं आविष्कार की एक और बेहद रोचक और मजेदार कहानी में।
2: श्रोताओ, अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारी जिंदगी में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम ये सोचते भी नहीं है कि कभी उनका भी आविष्कार हुआ होगा। नजर दौड़ाइए ना अपने चारों ओर, आप पाएंगे कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो चलिए अब बढ़ाते हैं चर्चा को आगे।
0: तो आज हम बात करेंगे बॉल पेन के बारे में।
2: जी।
0: वही बॉल पेन जो अक्सर हमारे हाथों में मिलता है।
2: आप
0: सोच रहे होंगे, भला बॉल पेन में ऐसी क्या कहानी हो सकती है, छोटी सी कलम ही तो है बस।
2: लेकिन श्रोताओ, कई बार हम महसूस ही नहीं कर पाते कि जिस चीज को हम मामूली समझते हैं उसके पीछे कभी कभी पूरी दुनिया की मेहनत छिपी होती है। जरा सोचिए, अगर आज हमारी जेब में बॉल पेन न हो तो कितनी मुश्किल हो जाए।
0: आपको याद होगा कि पहले लिखने के लिए फाउंटेन पेन हुआ करते थे, जिन्हें हम कलम भी कहते थे। उन दिनों समस्या ये थी कि पुराने समय की कलमें अक्सर आसानी से नहीं चलती थी।
2: जी।
0: फाउंटेन पेन में स्याही भरनी पड़ती थी, स्याही फैल सकती थी, वो रिस भी सकती थी, कपड़ों में भी लग सकती थी। एक बड़ी समस्या ये भी थी कि फाउंटेन पेन की लिखाई जल्दी सूखती भी नहीं थी। लिखते समय निब को भी संभालना पड़ता था।
2: बिल्कुल।
0: और तो और, गिर जाने पर निब के टूट जाने का भी डर लगा रहता था। यानी समस्या पर समस्या।
2: तो श्रोताओ, वैज्ञानिकों और आविष्कारों के मन में सवाल था, क्या ऐसी कलम बनाई जा सकती है जिसमें स्याही अपने आप नीचे आए लेकिन रिसे नहीं, साथ ही साथ निब भी न टूटे। और यहीं से शुरू होती है हमारे बॉल पेन के आविष्कार की रोचक यात्रा।
0: तो श्रोताओ, हुआ ये कि 20वीं सदी के आरंभ में कई लोगों ने ऐसी कलम बनाने के प्रयोग किए।
2: जी।
0: लेकिन सफलता आसान नहीं थी। यहीं से इस कहानी में प्रवेश होता है हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लाज़लो बायरो का। उन्होंने ध्यान दिया कि अखबार छापने वाली मशीन की स्याही जल्दी सूख जाती है। एक विचार उनके मन में कौंधा।
2: जी।
0: अगर यही जल्दी सूखने वाली स्याही कलम में इस्तेमाल की जाए तो, विचार तो अच्छा था लेकिन।
2: लेकिन एक नई समस्या सामने आई, वो ये थी कि स्याही फाउंटेन पेन की पतली निब से आसानी से नहीं निकलती थी। फिर लाज़लो बायरो ने सोचा, स्याही को निब से निकालने के बजाय क्यों न एक छोटी सी गेंद के सहारे कागज पर पहुंचाएं। और उन्होंने एक बहुत ही छोटी गेंद बनाई।
0: जी, कल्पना कीजिए श्रोताओ, जब गेंद कागज पर घूमती तो वह स्याही को अपने साथ लेकर आती और कागज पर छोड़ देती।
2: जी।
0: यानी गेंद घूमती जाती और उसके आगे आगे शब्द बनते जाते।
2: जी।
0: यही तो है नवाचार।
2: कलम की अगली नोक या पॉइंट पर एक बेहद छोटी गेंद। इस छोटी गेंद यानी बॉल के कारण नाम पड़ा बॉल पॉइंट पेन।

0: बायरो और उनके भाई जॉर्ज बायरो ने सन 1938 में अपने बॉल पॉइंट पेन का पेटेंट कराया।
1: और श्रोता मित्रों, उसके बाद जो हुआ ना वो इतिहास है। स्कूल के बच्चों से लेकर बड़े अधिकारी तक सबके हाथ में अब बॉल पेन दिखने लगी।
0: जी,
1: इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान था। ढक्कन खोलिए, कागज पर रखिए और लिखना शुरू कर दी।
0: बिल्कुल,
1: न स्याही की दवा चाहिए और न निब को बार बार स्याही में डुबोने की झंझट।
0: जी, आज बॉल पेन के अंदर एक पतली सी स्याही की एक ट्यूब होती है और सबसे आगे एक बहुत छोटी गेंद। जब हम लिखते हैं तो नन्ही गेंद घूमती है और स्याही को नियंत्रित मात्रा में कागज पर पहुंचा देती है। वाह, एक नन्ही सी गेंद ने लिखने की दुनिया ही बदल दी।
1: जी, एक नन्ही सी गेंद ने लिखने की दुनिया ही बदल दी। तो साथियों, याद रखिएगा, आज जब हम परीक्षा देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, नोट्स लिखते हैं और फॉर्म भरते हैं, उस समय हमारी उंगलियों के बीच चुपचाप चलती है वही तकनीक जिसे बायरो ने लगभग एक सदी पहले विकसित किया था।
0: तो ये थी हमारी आज की जानकारी, आशा है आपको अच्छी लगी होगी। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है कि बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था और वे किस देश के थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था और वो किस देश के थे। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि समझदारी इसी में है कि यदि हम एक दूसरे के साथ सहयोग और भाईचारे की भावना से रहें तो इसी में सबकी भलाई है।
1: समझदारी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
1: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या

0: आखिर में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं। यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
1: मश्क।
2: होशियार,
1: समझदार।
2: पेंसिल तराश,
1: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
1: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी।
3: आओ खेलें झटपट झटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाएं हम अक्षर।

0: और अब आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम। शीर्षक है, असफलताएं भी शिक्षक होती हैं।
1: प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में बताया गया है, किस प्रकार उन्होंने बिजली के बल्ब के आविष्कार के क्रम में कई बार असफलताओं का सामना किया और उनसे हतोत्साहित नहीं हुए, लेकिन उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार किया।
2: नमस्कार साथियों,
3: प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक प्रसंग।
2: तो आइए सबसे पहले पूछते हैं एक पहेली, जरा बताइए तो वो कौन है?
3: उन्हें दुनिया में सबसे अधिक आविष्कार करने और उनका पेटेंट लेने का श्रेय प्राप्त है।
2: उन्होंने लगभग 1300 आविष्कार किए, जरा सोचिए, सोचिए सोचिए।
3: साथियों, यदि आपके मन में थॉमस एडिसन का नाम आ रहा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है।
2: जी हाँ, वो महान आविष्कारक और वैज्ञानिक हैं, थॉमस एल्वा एडिसन। उन्हें मुख्य रूप से बिजली के बल्ब, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर और चलचित्र के आविष्कार के लिए जाना जाता है।
3: महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान नगर में 11 फरवरी 1847 को हुआ था। वे अपनी माता नैन्सी एलियट और पिता सैमुअल एडिसन की 7वीं संतान थे।
2: बचपन से ही वो बहुत ही जिज्ञासु थे। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वो शिक्षकों से अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना कठिन होता था। शिक्षक और सहपाठी उन्हें शरारती और मूर्ख समझते थे।
3: एक दिन की बात है, शिक्षक ने बालक एडिसन को बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा कर कहा, अपनी माँ को ये चिट्ठी दे देना। भोले भाले बच्चे ने वो चिट्ठी ली और घर पहुंचकर अपनी माँ को दे दी।
4: माँ, ये चिट्ठी।
3: माँ ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो चिट्ठी अलमारी में रख दी।
2: दूसरे दिन से एडिसन

0: फिर कभी स्कूल नहीं गए। वो घर पर ही पढ़ाई करने लगे। एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा,
1: माँ आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? क्या अध्यापक ने चिट्ठी में कुछ लिखा है?
0: बेटा एडिसन, उन्होंने ये कहा कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है।
1: अच्छा,
0: इसलिए वो हमारे विद्यालय के लायक नहीं है। क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो ना।
1: अच्छा,
0: उनको लगता है कि उनके विद्यालय में तुम्हारी प्रतिभा वैसी नहीं निखर पाएगी जैसी कि आशा की जाती है।
1: हाँ?
0: ठीक है, बहुत अच्छे। साथियों, उनकी माँ स्वयं एक शिक्षिका थी और वो जानती थी कि ये बच्चा मानसिक रूप से कमजोर नहीं है। उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाया। वो एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर यथासंभव देने की कोशिश करती और प्रारंभ में उन्हें बुनियादी साक्षरता के साथ साथ अंक गणित पढ़ाया। उन्हें विशेषकर विज्ञान में बहुत रुचि थी।
2: उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़े होने पर काम करना शुरू किया और परिवार की सहायता भी करने लगे। अमेरिका के डेट्रॉइट शहर के रेलवे स्टेशन पर उन्होंने अखबार और चॉकलेट बेचने का काम किया।
0: रेल के डिब्बे में ही उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली थी। एक बार की बात है, वो रेल के डिब्बे में ही कुछ रासायनिक प्रयोग कर रहे थे कि फास्फोरस के गिर जाने के कारण वहां आग लग गई, भगदड़ मच गई।
2: इतने में रेल अधीक्षक वहां भागा भागा आया और जब उसने सारा माजरा देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने एडिसन को एक जोरदार थप्पड़ मारा जिसके कारण वे हमेशा के लिए आंशिक रूप से बहरे हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ना व प्रयोग करना जारी रखा। उनकी माँ उन्हें पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें देती और प्रोत्साहित करती कि वे जितना अधिक हो सकता है अवश्य पढ़ें। थॉमस एडिसन के मन में पढ़ने की अदम्य इच्छा उनकी माँ के कारण ही उत्पन्न हुई।
0: एक बार उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था,
2: ओह, मैंने यथासंभव लगभग सब कुछ पढ़ा है जो कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। मुझे पुस्तकों से अगाध प्रेम है।
0: साथियों, उनकी स्मृति में थॉमस एडिसन नेशनल हिस्टोरिकल म्यूजियम बनाया गया है। इस विशाल म्यूजियम की तीसरी मंजिल में उन किताबों का विशाल संग्रह है जो किताबें थॉमस एडिसन ने अपने जीवन काल में पढ़ी थी। थॉमस एडिसन ने एक बार अपनी माँ के बारे में कहा था,
2: मेरी माँ ने ही मेरा निर्माण किया। वे बहुत सच्ची थी और मुझ पर विश्वास करती थी।
0: थॉमस एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला अपने घर पर ही उस समय बनाई थी जब वो मात्र 10 वर्ष के थे। कहते हैं कि वो बेहद परिश्रमी थे और अक्सर अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करते करते वो लेबोरेटरी की कुर्सी या टेबल पर ही सो जाया करते थे। समय बीता, इस बीच उनकी माँ का देहांत हो गया था। बहुत वर्ष बीते और एडिसन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सफलता की बुलंदियों को लांघते हुए विश्व प्रसिद्ध आविष्कारक बन चुके थे।
2: उनके द्वारा किए गए आविष्कारों में मुख्य रूप से कार्बन माइक्रोफोन, फोनोग्राफ, चलचित्र, ग्रामोफोन, विद्युत वोट रिकॉर्डर, विद्युत वितरण प्रणाली और बिजली का बल्ब है। बिजली के बल्ब के आविष्कार की कहानी अत्यंत रोचक है।
0: इसका आविष्कार करने के लिए थॉमस एडिसन को सैकड़ों बार असफलता का सामना करना पड़ा। शुरू में कई बल्ब चले लेकिन कुछ ही सेकंड्स या मिनट में टूट गए।

0: लेकिन एडिसन ने जैसे हार मानना सीखा ही नहीं था।
1: अथक परिश्रम और सतत प्रयोगों के बाद अंत में 1889 में उन्हें बिजली का बल्ब बनाने में सफलता हाथ लगी। पहला बिजली का सफल बल्ब लगभग 40 घंटों तक जला। 1880 में उन्होंने इसमें और अधिक सुधार किया और अब ये महीनों तक लगातार जल सकता था।
0: जब बिजली के बल्ब का आविष्कार हुआ तो सारे अमेरिका में तहलका मच गया। लोगों के लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं था। दूर दूर से लोग इस बल्ब को देखने के लिए आते थे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन ने इस महान आविष्कार के लिए उनका विशेष रूप से अभिनंदन किया और उनसे निवेदन किया कि वो अमरीकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस को बिजली के बल्बों से जगमगा दे।
1: एक बार की बात है, उनके सम्मान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बहुत से पत्रकार जमा थे। एक पत्रकार ने पूछा,
0: मिस्टर एडिसन, बिजली के बल्ब के आविष्कार की प्रक्रिया में आप कितनी बार असफल हुए?
1: लगभग 10,000 बार।
0: 10,000 बार?
1: लेकिन मैं उन्हें असफलता नहीं कहूंगा।
0: अच्छा?
1: मैं कहूंगा कि मैंने 10,000 उन तरीकों को खोजने में सफलता पाई जिनसे बिजली का बल्ब बनाया नहीं जा सकता था।
0: अरे वाह।
1: वे दरअसल 10,000 स्टेप्स थे जिन्हें तय करके मैं सफलता तक पहुंचा।
0: क्या बात है। तो साथियों, ये था असफलताओं के प्रति थॉमस एडिसन का दृष्टिकोण। उन्होंने अपनी असफलताओं को भी बहुत सकारात्मक ढंग से देखा। अपने बहरेपन के बारे में एक बार उन्होंने विनोदपूर्ण ढंग से कहा था,
1: मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूँ, इसके मुझे 2 लाभ मिलते हैं। पहली बात, लोग मेरे पास आकर व्यर्थ की बात नहीं करते, और दूसरी बात, इसके कारण मैं पुस्तकों और वैज्ञानिक सोच को अधिक समय दे पाता हूँ।
0: एक दिन एडिसन ने पुरानी अलमारी को खोला और यूं ही कुछ देखने लगे कि तभी एक लिफाफा नीचे गिरा। एडिसन ने उसे उठाया। अरे, ये तो वही पत्र था जो उनके स्कूल के अध्यापक ने भेजा था। उन्होंने उसे पढ़ा। लिखा था,
1: डियर मिसेस एडिसन, आपका बच्चा बेहद मंद बुद्धि का है और वो कुछ सीख नहीं सकता। उसके स्कूल में होने से दूसरे बच्चों पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए अच्छा होगा उसके लिए कोई दूसरा स्कूल देख ले या उसे स्वयं ही पढ़ा ले।
0: थॉमस एडिसन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये है किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास में एक माता की सकारात्मक भूमिका। उन्होंने हमेशा ये बोल बोल कर कि तुम जीनियस हो, अपने बेटे का मनोबल बढ़ाया और यहां तक बढ़ाया कि थॉमस एडिसन इतिहास का स्वर्णिम हस्ताक्षर बन गए। जीवन के संघर्षों के प्रति उनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है,
1: हम तब नहीं हारते जब हम गिर जाते या हार जाते हैं। दरअसल हम तब हारते हैं जब हम गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं। 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में 84 वर्ष की आयु में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। विश्व उनके अमूल्य योगदान को सर्वदा याद रखेगा।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम असफलताएं भी शिक्षक होती हैं।

0: और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ मुझे यानी अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आपने सुना NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। कुछ क्षणों में सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा संकल्प अभियान के तहत आज प्रदेश के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे। विकसित भारत जनसेवा अभियान से अब तक प्रदेश भर के 1,37,00,000 से अधिक लोग जुड़े। प्रदेश में ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए आज आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी और सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा संकल्प अभियान के तहत आज प्रदेश के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे। बीकानेर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में करीब 500 लाभार्थी शामिल होंगे। टू वे संवाद प्रणाली के जरिए लाभार्थियों को प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में वडनगर से वाराणसी जल जन और सेवा संकल्प यात्रा में शामिल लोग भी शामिल होंगे। ये यात्रा कल बीकानेर पहुंची थी। उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का कल जयपुर दौरा प्रस्तावित है। प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि वे सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित स्वच्छता सेवा कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम अल्बर्ट हॉल पर आयोजित किया जाएगा। इसके बाद श्री नबीन बगरू के दादिया गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे दादिया से ही पंचायत चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे और 90 प्रचार रथों को रवाना करेंगे। इसके बाद उनका जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में युवाओं से संवाद का कार्यक्रम है। उपमुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कल जयपुर के धानक्या स्थित राष्ट्रीय स्मारक परिसर में 3 दिन के दीनदयाल मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने परिसर में लगी विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। डॉक्टर बैरवा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन राष्ट्र सेवा, सामाजिक समरसता और समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के प्रति समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि उनके विचार राष्ट्रहित के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहेंगे। विकसित भारत जनसेवा अभियान में अब तक प्रदेश भर में 1,37,00,000 से अधिक लोग भाग ले चुके हैं। ये जानकारी मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जयपुर में अभियान की समीक्षा बैठक में दी। उन्होंने अधिकारियों को पात्र और वंचित लाभार्थियों तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण सेवा शिविरों में लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने और प्राप्त आवेदनों का तुरंत निस्तारण करने को कहा। बैठक में बताया गया कि अभियान के तहत प्रदेश भर में 12 प्रमुख गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मुख्य सचिव ने अभियान की नियमित निगरानी और विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया। सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक से जुड़े। देश में छोटे कारोबारियों को आर्थिक संबल देकर आत्मनिर्भरता की राह आसान बनाने वाली महत्वपूर्ण पहल है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। आइए जानते हैं इसके बारे में।
1: अप्रैल 2015 को शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY का उद्देश्य गैर कॉरपोरेट और गैर कृषि क्षेत्र के छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को बिना गारंटी आसान ऋण उपलब्ध करवाकर उद्यमिता को बढ़ावा देना है। पहले इस योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध था। केंद्रीय बजट 2024-25 में इसकी सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई, जो अक्टूबर 2024 से प्रभावी हुई। साथ ही तरुण प्लस नाम की नई श्रेणी शुरू की गई। इसके तहत तरुण श्रेणी का ऋण सफलतापूर्वक चुकाने वाले उद्यमी 10 से 20 लाख रुपए तक के ऋण के लिए पात्र हो सकते हैं। इन बढ़े हुए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो यूनिट्स के माध्यम

0: गारंटी कवरेज भी उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे उद्यमियों को पूंजी के साथ साथ अपने सपनों को आकार देने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान कर रही है। न्यूज डेस्क से सलेहा गाजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के लिए आज सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी संबंधित उपखंड अधिकारी मुख्यालय पर होगी। इसके बाद ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अनुसार आरक्षण की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार पदों का आवंटन किया जाएगा। इससे पहले कल जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बढ़ाया जाएगा। ये जानकारी जयपुर में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में दी गई। विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण आजीविका, बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। योजना के तहत अमृत पोषण वाटिका और अमृत ग्रामीण हाट बाजार विकसित किए जा रहे हैं। इनके जरिए विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों को फल और सब्जियों की आपूर्ति तथा स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत उदयपुर के राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन से वरिष्ठ नागरिकों का जत्था असम की कामाख्या देवी की यात्रा के लिए रवाना हुआ। यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में उत्साह देखा गया। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त जतिन कुमार गांधी ने बताया कि यात्रा के लिए वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
2: इसमें उदयपुर संभाग के 570 यात्री यहां से सवार हो रहे एवं 400 यात्री अजमेर रेलवे स्टेशन से अजमेर संभाग के सवार होंगे। इस तरह से इस ट्रेन में कुल 970 वरिष्ठ नागरिक होंगे एवं 30 का पूरा स्टाफ रहेगा जो इनके सहयोग में रहेगा और एक राजपत्रित अधिकारी को ट्रेन प्रभारी बनाया गया। यह माता कामाख्या देवी के लिए दर्शन के लिए जाने वाली विशेष ट्रेन है और इसका समस्त भार जो है राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
1: जोधपुर में एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में केमिकल से भरे ड्रम में धमाका होने से 14 फायर कर्मी झुलस गए। इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों के लिए एम्स अस्पताल में अलग से आईसीयू की व्यवस्था की गई है। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी। आग बुझाने के दौरान फायर कर्मी झुलस गए। इधर जयपुर के कुकस क्षेत्र में कल 90 फीट गहरे सूखे कुएं में फंसे 4 लोगों को सिविल डिफेंस की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। नागरिक सुरक्षा विभाग के उपनियंत्रक अमित शर्मा ने बताया कि कुएं में एक पुरुष और एक महिला गिर गए थे। उन्हें बचाने के लिए उतरे 2 अन्य लोग भी कुएं में फंस गए। सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से बचाव कार्य शुरू किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की ओर से इस महीने की 28 से 30 तारीख तक बुलाई गई 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और करेंसी चेस्ट को पूरी तरह से चालू रखने को मंजूरी दे दी है। आवश्यक बैंकिंग सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं। सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल नहीं करने की अपील की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे। विकसित भारत जनसेवा अभियान से अब तक प्रदेश भर के 1,37,00,000 से अधिक लोग जुड़े। प्रदेश में ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए आज आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी और सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले।

0: रहेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 103.1 MHz पूरी आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। इस समय सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला।

0: सेवा के सातवें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा स्वच्छता से सम्मान तक। इसमें भाग ले रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता फरतनाज।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। सेवा संकल्प अभियान के इस विशेष अंक में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों का विश्लेषण करेंगे और इस विशेष कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आज का विषय है स्वच्छता से सम्मान तक। गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है और इस एक वाक्य ने भारत में जन आंदोलन का रूप ले लिया। कहानी शुरू हुई निर्मल गुजरात से और बन गई स्वच्छ भारत मिशन। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान हैं स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक श्री अक्षय राउत जी। अक्षय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
2: नमस्कार।
1: और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री रोशन गौड़ जी। रोशन जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्मल गुजरात के बारे में। तो अक्षय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2007-08 में गुजरात ने स्वच्छता को सिर्फ योजना नहीं एक अभियान बनाया। इस निर्मल गुजरात में ऐसा क्या था जो बाद में स्वच्छ भारत का आधार बना?
2: आप जिस बात का जिक्र यहाँ कर रहे हैं वो दुनिया की सामने, भारत से तो शुरुआत हुआ ही, गुजरात से बल्कि शुरुआत हुआ। ये एक नए गवर्नेंस मॉडल का एक देखने लायक चीज है, क्योंकि सरकारें जब बनती हैं तरह तरह तरीके से सरकार चलाती हैं। मंत्रियां आते हैं, मुख्यमंत्रियां आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और सबका पॉलिसी होता है, प्रोग्राम्स होता है। लेकिन ये एक अनोखा तरीके की काम करने की तरीका जो कि गुजरात से शुरू हुआ 25 साल पहले और उसमें पूरा स्केल अप जिसको बोलते हैं, पैन इंडिया बोलते हैं, एक मौका मिला जो कि यहाँ भी 12 साल से उस तरह का जो प्रक्रिया है वो जो एक्सपेरिमेंट गुजरात में हुआ था उसको लाया गया। और आपने स्वच्छता की जिक्र किया, वहां जो मेन कैरेक्टर उसका था निर्मल गुजरात का वो था कि कम्युनिटी को मिलाया जाए। ये जो स्वच्छता कार्यक्रम है या सरकार के कार्यक्रम है नहीं, ठीक है सरकार अगुवाई करेगा, पॉलिसी बनाएगा, मिशन बनाएगा, पैसा कुछ हो सकता है लगाएगा, लेकिन लोग इसको सम्मान के हिसाब से लें। विलेज कम्युनिटी हो, अर्बन कम्युनिटी हो, पंचायत हो, ब्लॉक हो, ग्राम सभा हो, ये सब ऐसे मिलकर जुड़े कि ये उनका कार्यक्रम है, क्योंकि उनकी बच्चों की हेल्थ के सवाल है, उनकी महिलाओं की इज्जत के सवाल है, सिक्योरिटी के सवाल है, पूरा समुदाय की हेल्थ के सवाल है। और स्वच्छता जो सामने आ जाकर जान नहीं लेता है उसका बहुत दूरगामी जो परिणति होते हैं। और वो पता लगा है जब ये स्वच्छ भारत मिशन निर्मल गुजरात से शुरू होके, स्वच्छ भारत मिशन का स्केल ही कुछ अलग था, क्योंकि हम लोग 6.5 लाख, गुजरात तो एक स्टेट हुआ, वहां एक प्रयोग हुआ, लेकिन उसको जब देश की जमीन पर लाया गया पूरा 6.5 लाख, उसमें गांव है, करीब 5,000 शहर है और 2.5 लाख ग्राम पंचायत है, वो एक कुछ अलग से था। लेकिन ये गवर्नेंस मॉडल के एक और भी एक रूप है कि ये स्केल में बिलीव करता है। ऐसे नहीं कि छोटे छोटे पायलट में करेंगे, फिर 15 साल में करेंगे, फिर 25 साल में करेंगे, ऐसे नहीं है। यहाँ एक सनसेट क्लस डाला गया। 2014 में जो शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन, चाहे निर्मल गुजरात के प्रयोग से हो, सीकर और भी बहुत सारे प्रयोग है, निर्मल गुजरात उसमें जरूर मुख्य है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री बाद में प्रधानमंत्री बने मोदी साहब, तो वो इस मिजाज को लेकर आए कि हमें स्केल पर करना है, पूरे शहर में करना है, पूरे गांव में करना है, पूरे देश को स्वच्छ करना है, तो 12 करोड़ टॉयलेट बने।

में, उसमें एक्सेस और यूसेज ये दोनों मूल मुद्दे थे और गांव के मुद्दे ज्यादातर थे। ऐसे नहीं कि शहर में समस्या नहीं था, शहर की समस्या में अभी जूझ रहे हैं सेकेंड फेज में, वेस्ट मैनेजमेंट में, कचरा का प्रबंधन में। लेकिन जो पहला फेज था जिसमें स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुआ, कुछ गुजरात की न्यू बना था उसमें जो पहली बिल्डिंग ब्लॉक्स आए और स्वच्छ भारत मिशन का अभियान का शुरुआत हुआ 2014 में लाल किला की प्राचीर से लेकर, वहां एक पॉइंट रखा गया था, एक लक्ष्य कि 2019 तक खुले शौच से मुक्त कराना है देश को। उस टाइम आपको अगर सुनकर अभी भी लोगों को

0: को मुक्त कर दिया गया। सारे गांव, सारे जिले, 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी अपने को डिक्लेयर किए अक्टूबर 2019 में कि हम खुले शौच से मुक्त है, लेकिन अभी भी रास्ता सफर बाकी है।
1: बिल्कुल। और अब रोशन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले स्वच्छता को सिर्फ सरकार या सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी माना जाता था, लेकिन अब लोग खुद कचरा फैलाने से बचते हैं और आसपास सफाई भी रखते हैं। तो अगर हम बात करें गुजरात में स्वच्छता की, तो जमीनी स्तर पर आपको किस तरह का बदलाव वहां पर देखने को मिला है?
2: देखिये, जो 2007 में निर्मल गुजरात योजना शुरू हुई थी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस समय मुख्यमंत्री थे, तो पहला उनका ये अनुभव था कि लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए। और उन्होंने जो निर्मल गुजरात की शुरुआत की, तो उन्होंने कहा केवल सफाई नहीं, इसमें कचरा प्रबंधन भी होना चाहिए, स्वच्छ पानी भी होना चाहिए और लोगों के पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पूरे राज्य को उन्होंने एक साथ जोड़ा, लोगों को उन्होंने इसमें भागीदार बनाया। और वो इसलिए बनाया कि जैसे आपने कहा कि इसमें केवल सरकारी कर्मचारी और सरकारी सफाई कर्मचारी अगर केवल इसमें भाग लेंगे तो नहीं हो पा रहा था। लोगों की मानसिकता बदली कि ये आपका है, आपको स्वच्छ रहना है, अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, जो खर्चा आपका बीमारी में खर्च होता है वो आपका बच जाएगा। और हमने देखा कि जब वो अभियान चला, पूरी हिंदुस्तान में उसकी चर्चा हुई और कुछ राज्यों ने उसको एडॉप्ट किया, और उसके बाद भारत सरकार ने भी निर्मल भारत अभियान के नाम से उसको एडॉप्ट किया। और जब प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी जी 2014 में, तो वहां उन्होंने फिर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। तो बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट था कि लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे हो, जन भागीदारी कैसे हो, इसकी शुरुआत 2007 से निर्मल गुजरात से हुई थी। और उसमें जनता की भागीदारी और वो किस बड़े स्तर पर हो सकता है, वहां से शुरुआत हुई।
1: जी, तो हम चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले सुन लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
3: श्रोताओं, स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। साफ घर, साफ गली, साफ गांव और साफ शहर का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन से है। इसी सोच के साथ 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य देश में स्वच्छता को बढ़ावा देना और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करना था। इसकी शुरुआत सबसे पहले लोगों के घरों में शौचालय की सुविधा पहुंचाने और खुले में शौच की समस्या को खत्म करने पर था। वर्ष 2014 में ग्रामीण स्वच्छता लगभग 39% थी। वर्ष 2019 तक ग्रामीण भारत में 100% स्वच्छता हासिल की गई और 2014 से 2019 के बीच 10 करोड़ 28 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ। लेकिन श्रोताओं, स्वच्छता का मतलब केवल शौचालय बनाना नहीं है, अब ध्यान इस बात पर भी है कि गांव और शहर कचरे से मुक्त और साफ सुथरे रहें। इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन के अगले चरण में ठोस कचरा और गंदे पानी के प्रबंधन पर भी जोर दिया जा रहा है। 17 सितंबर 2026 तक देश में 5.69 लाख से अधिक गांव ODF प्लस हो चुके थे। इनमें 5.25 लाख से ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल की श्रेणी में है। वहीं 5.38 लाख से अधिक गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन और 5.65 लाख से अधिक गांवों में तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था स्थापित की जा चुकी है। अब सवाल है कि ODF प्लस का मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब सिर्फ खुले में शौच से मुक्ति नहीं है, गांव में शौचालयों का इस्तेमाल जारी रहे, कचरे का सही प्रबंधन हो, गंदा पानी सही तरीके से संभाला जाए और गांव साफ दिखाई दे, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। इसी दिशा में स्वच्छता ही सेवा अभियान भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2026 में ये अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है और इसकी थीम है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इसका जोर लोगों की भागीदारी, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, कचरा प्रबंधन, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा तथा सम्मान पर है। श्रोताओं, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, स्वच्छता के काम में लगे सफाई कर्मचारियों का सम्मान। सफाई कर्मचारी हमारे गांव और शहरों को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए स्वच्छता के साथ उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा 2026 में सफाई मित्र, सुरक्षा एवं सम्मान शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य जांच, सुरक्षा उपकरण और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया है। श्रोताओं, स्वच्छता की ये यात्रा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हर नागरिक की भूमिका है। घर का कचरा अलग रखना, सड़क पर कचरा नहीं फेंकना, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना और दूसरे लोगों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, ये छोटे छोटे कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ भारत मिशन अब केवल शौचालय निर्माण का

0: अभियान नहीं रहा बल्कि स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, लोगों के व्यवहार में बदलाव और जन भागीदारी से जुड़ा एक व्यापक प्रयास बन चुका है। क्योंकि जब हमारा घर साफ होता है तो परिवार स्वस्थ रहता है, जब गांव और शहर साफ होते हैं तो जीवन बेहतर होता है, और जब सफाई करने वाले व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा मिलती है तब स्वच्छता वास्तव में सम्मान से जुड़ती है। यही है स्वच्छता से सम्मान तक की यात्रा। उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं मनोज।
1: अक्षय जी, आपसे इंदौर की अगर बात की जाए तो 7 बार नंबर 1 ये बना, कैसे बना?
2: देखिए, उसका एक मिसाल छोटे से बताता हूँ। मैं इंदौर बार बार गया हूँ। बोलते हैं झोलाधारी इंदौरी बोलते हैं वहाँ लोगों को।
1: अच्छा।
2: मतलब कोई अगर घर से निकलेगा अपने पास एक झोला लेके जाएगा, क्योंकि रास्ते में कोई कचरा अपना जो अपने जरिए से हो या कहाँ से कचरा दिखा या अपने कोई खरीदा कुछ छिलके निकले तो उसको झोला में लेके घर में आएगा, उसको डिब्बे जो है उसका निपटान करेगा। जबकि भारत अभी तक भी हारा नीला में जूझ रहा है और स्वच्छ भारत मिशन की जितना काम करते हैं लोग, अर्बन लोकल बॉडीज हो, पंचायत हो, वो लोगों को समझा के थक गए कि भाई हारा नीला, एक सूखा और गीला कचड़े अलग अलग रखो, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो, वेट या ड्राई हो। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने और आने वाले जो कचरा प्रबंधन के 26 के रूल्स के मुताबिक 4 अनिवार्य कर लिया, 2 से नहीं चलेगा, 4 करना पड़ेगा। जो स्पेशल कचड़े हैं और सैनिटरी कचड़े हैं उसको अलग अलग रखना पड़ेगा। लेकिन इंदौर में आप जाएंगे बहुत पहले 6 कचड़ों के डिब्बा होता है लोगों के घर, माने हर कचड़े का अलग अलग तरीके से निकाल कर उसको रोज डालना, उसके लिए समय लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, रिसोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन करते हैं लोग। और क्योंकि जो कचड़ा सेग्रीगेट होता है या जो कचड़ा को भाग भाग अपना तरीके से किया जाता है वो सोना बनता है, वो बोलते हैं ना कचड़ा से कांचन बनता है, लेकिन जो सेग्रीगेटेड नहीं होता है वो बीमारी का जड़ बनता है। क्योंकि वो जाके फिर लैंडफिल में डालता है या रास्ते की साइड में छोटे हिप्स बनते हैं, फिर बड़ा लैंडफिल शहर के बाहर बनते हैं और दुनिया भर का उससे प्रॉब्लम निकलता है। जब तक हम लोग चाहे जो सोर्स है, जो कचरे का सोर्स है, चाहे घर हो, फैक्ट्री हो, कॉलेज हो, मॉल हो या इंस्टीट्यूशनल एरिया हो, जहां अगर जहां से निकलता है कचरा वहां से अगर डिवाइड होकर नहीं रहता है तो प्रॉब्लम है। तो इंदौर में वो होता है। इंदौर के लोगों ने अपने सम्मान के साथ, अपना शहर के सम्मान के साथ सफाई को जोड़ा है। यहाँ तक वहाँ सफाई टूरिज्म होता है, लोग आके देखते हैं कि भाई सफाई यहाँ कैसे हुआ। वहाँ पार्क बने हैं सफाई की, जो कचड़े की जो बहुत बड़ा बड़ा होता है जमावड़ा, उसको निकाल कर एकर्स जमीन निकाल के वहाँ पार्क बना जाता है, और सबसे बड़ा बायोफ्यूल का वहाँ प्लांट भी बना है, क्योंकि उसी से शहर का ट्रांसपोर्ट भी चलता है। और ये एक देखने की जगह है। एक जगह में तो वहाँ एक फूड मॉल्स उन्होंने बनाया है जो की कचरा की जगह को साफ करके तो वो बना है, और वहाँ की जो सैनिटेशन वर्कर्स की जो डिग्निटी है, लाइफ कंडीशन है, उनको जो फैसिलिटी है, उनका जो तरीके है, वो देखने के लिए बाहर के लोग जब आते हैं, जो तीर्थ में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, उज्जैन वो इंदौर में एक स्टॉप ओवर लेते हैं कि हाँ देखें। लेकिन मैं आपको एक चीज पर क्वेश्चन करता हूँ, एक इंदौर से देश का काम नहीं चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन के जो मैनेजर्स हैं और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी इसको समझते हैं, इसीलिए अभी एक नया बनाया गया है कि इनको गोल्ड लेवल डाल के इनको कॉम्पिटिशन से अलग कर दिया जाए और दूसरों को भी मौका दिया जाए, जैसे सूरत, नवी मुंबई, दूसरे शहर भी आ रहे हैं उसके साथ शामिल होने के लिए। और ये सारे चीज के लिए जो गवर्नेंस मॉडल को मैं फिर एम्फसाइज करता हूँ, जो गुजरात से गवर्नेंस, और वो स्वच्छता में खाली कंसंट्रेट नहीं है, पानी के पर भी है, और पंचायती सिस्टम पर भी है, वो जीएसटी सिस्टम पर भी है, वुमेन्स एम्पावरमेंट पर भी है, हेल्थ डिलीवरी पर है, बहुत सारी चीज जो कि पब्लिक सर्विसेस होते हैं उसका एक तरीका है काम करने का, उसको मैं पॉलिसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बोलूंगा। भाई आपका पॉलिसी, सब लोग सोचते हैं कि पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन दो है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ ये गवर्नेंस मॉडल जो 25 साल से जारी है, ये भाई खाली पॉलिसी नहीं, पूरा देश में होगा, सब जगह होगा और इम्प्लीमेंट बढ़िया से होगा, इस तरह से चल रहा है, इसलिए स्वच्छता में काम हो पाया है, स्वच्छ भारत मिशन का सक्सेस के राज है।
1: बिल्कुल, आपने नागरिकों की बात बताई वहां पर, तो एक बहुत ही जरूरी चीज हो जाती है सरकार और आम नागरिकों के बीच में तालमेल बिठाना, तो जिसे हम सिविक सेंस के तौर पर भी कह सकते हैं, तो वहां के लोगों में सिविक सेंस कैसे जागा?
2: सिविक सेंस ना, ये जो लोगों ने अगर शहर की, या मेरा शहर की बात छोड़ दीजिए, मेरा घर की, मेरा टोली की, मेरा कॉलोनी की, मेरा RWA की, सम्मान के साथ इसको जोड़ूंगा, ये इंदौर वाले जो हैं अपना इज्जत के साथ इसको जोड़ दिए हैं इसे, और वहां जो नेचुरल सिटीजन का रिस्पांस जो है ना बहुत अच्छा रहा है। लेकिन बात है कि ये जो चीज है, ये जो इज्जत की जो अपना जो चस्का, ये बाकी शहरों में भी लगना शुरू हुआ है, लेकिन जितना जल्दी होके लगे तो ये जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन और ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन दो अलग अलग इकाई है, और एक महुआ के अंदर है और दूसरा है जल शक्ति के अंदर, मंत्रालय के अंदर, ये काम तो जारी है, लेकिन एक दो

0: साल में मुझे लग रहा है कि अगर लोगों का निरंतर प्रयास रहा तो हमारे शहर भी आगे आगे ठीक हो जाएंगे।
1: बिल्कुल रोशन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वच्छता सर्वेक्षण को आपने कैसे जाना और क्या इससे नगर पालिकाओं में वाकई काम करने का डर और सम्मान दोनों आया है?
2: जो सर ने भी बात कही है, इंदौर से मैं इसकी शुरुआत करूंगा, क्योंकि जब ये स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो 2016 में कहा गया कि आप स्वच्छ सर्वेक्षण कीजिए और शहरों के बीच में एक कंपटीशन कराया गया कि जो नंबर एक पे आएगा नंबर दो पर आएगा तो वो जो है हर शहर ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो शुरुआत में 73 शहर थे उसमें, यही इंदौर जो 25वें नंबर पर था 2016 में और 2017 में नंबर एक पर आ गया। और वो सिर्फ इसलिए आया कि उन्होंने जो मानसिकता बदली कि जो हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर से कूड़ा उठा के किसी एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और वो एक जगह फिर धीरे धीरे धीरे वो पहाड़ बनता चला जाता है। तो इंदौर में लोगों ने जो घर घर से कूड़ा उठाना शुरू किया और उसमें उन्होंने, जैसे सर ने कहा कि उन्होंने अलग अलग डिब्बे बनाए, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, सैनिटेशन का अलग, हैजार्डियस अलग, तो उनको ठिकाने लगाना का भी इंतजाम फिर ठीक हो गया। तो यहाँ से कंपटीशन शुरू हुआ। तो ये सर्वेक्षण का फायदा हुआ कि अब इसमें सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने दिल्ली में देखा कि जो नई दिल्ली नगर पालिका है ये तो साफ रहता है, लेकिन जो हमारा दिल्ली नगर निगम का क्षेत्र है वहां हमने देखा कि अभी भी वहां समस्याएं हैं। तो कंपटीशन में आने से क्या हुआ कि लोगों की पार्टिसिपेशन तो रहा ही, उनके साथ साथ जो इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मंत्रालय हैं, इसमें बहुत सारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इसमें सरकार के बहुत सारे जो विंग हैं, वो सबने मिलकर काम किया। तो उसका सर्वेक्षण का फायदा ये हुआ कि सभी शहर इसमें कंपटीशन में आ गए और कंपटीशन में एक दूसरे से अच्छा कैसा करें, इसलिए शहरों में अच्छा काम हो रहा है।
1: अक्षय जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, इंदौर के बाद हम सूरत की बात कर लेते हैं। तो 1994 में सूरत को प्लेग सिटी कहते थे, लोग शहर छोड़कर भाग रहे थे। फिर 2006 में तापी में भयानक बाढ़ आई, सूरत ने इस तबाही को मौके में कैसे बदला?
0: आप दूसरी बात पर अभी चले गए हैं लेकिन रिलेटेड है, एक पानी की बात पर चले गए हैं। जो फ्लड था वो तापी रिवर के साथ कनेक्टेड था और उसका गेट खुलने नहीं खुलने पर था, कभी कभी उसका होता है कि वो नेचुरल डिजास्टर था, एक एस्टिमेट किया गया है। हो सकता है कि कोई लोगों का मैनेजमेंट में भी कुछ दिक्कत हो, लेकिन उसके बाद वो 6 है, जैसे भूज का अर्थक्वेक भी हुआ था, मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा बाढ़ था, करीब करीब सूरत शहर के काफी एरिया डूब गए थे उसमें। और उससे एक तो एक रिलीफ और रिहेबिलिटेशन क्विक रिस्पॉन्स कैसे हुआ वो एक देखने की बात है। हम अभी स्वच्छ भारत से थोड़ी एक बाहर जा रहे हैं क्योंकि हम फ्लड मैनेजमेंट वाटर गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितना गुजरात से स्वच्छ भारत की निर्मल गुजरात के जरिए से सीख आया है जिसे स्वच्छ भारत बनना है, ऐसे ही नर्मदा का वाटर को लाके पहुंचाना डिफिकल्ट एरिया में, ड्रॉट प्रोन एरिया में, और पानी को रोकना जहां रोकना है, फ्लड मैनेजमेंट करना और जहां सूखा है वहां पानी देना और घर घर में टैप पहुंचाने का प्रबंधन करना, इसमें भी उसी टाइम में सरकार जो हम लोग बात कर रहे हैं 2000 से 2012 सरकार की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम में गवर्नेंस में ये प्रयोग बहुत हुए थे और उसकी नतीजा आगे बढ़ाकर अभी जल जीवन मिशन मान लीजिए, जो कि अभी 80% घरों में टैप वाटर कनेक्शन दिया हुआ है रूरल एरियाज में, माने क्योंकि वो पानी की, घर में पानी की फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन देना बहुत बड़ी बात है। वो भी गुजरात की ये सारे प्रयोग जो आपने जिक्र किया सूरत वगैरह सा, वो क्योंकि पानी बहुत होता है तो लोगों का विनाश होता है, पानी का कम होता है लोगों का प्यास बढ़ता है, विनाश होता है। तो दोनों की चीज को इससे संतुलन करने का, नर्मदा की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को गुजरात के लिए उपलब्ध कराना और जो स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनमें सहमत लाना, इसमें उस टाइम का गुजरात सरकार जिसमें कि श्री नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर के हिसाब से अगुवाई कर रहे थे, बहुत बड़ा भूमिका रहा है, उससे ये सीख मिला है। सूरत प्लेग सिटी के नाम में मैंने कष्ट लोगों को बहुत मिला था, और वो प्लेग क्यों हुआ था, सफाई नहीं होने के कारण, उसका मूल कारण सफाई, इसीलिए बहुत अचंभा की बात है। और लगता है कि भारत कितना आगे बढ़ा है कि जहां प्लेग हुआ था शहर लोग छोड़ दिए थे, शहर का लोग जाना बॉयकट कर दिया था कि भाई गंदगी इतना है कि यहाँ प्लेग होकर लोग मरते हैं, तो वो हुआ भारत की सबसे स्वच्छ शहर, वही इंदौर के साथ कंपटीशन करके आया, क्योंकि काम ऐसे हुआ है। और वो स्वच्छ भारत मिशन की टाइम में हुआ ज्यादातर वहां न्यू पड़ गया था, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के टाइम में हुआ, वो स्वच्छ सर्वेक्षण के रिजल्ट के हिसाब से सूरत 2 साल पहले पहली बार आया वो पैदान पर, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और नवी मुंबई भी आया है, बहुत कुछ शहर और भी कुछ शहर हैं जो आगे बढ़कर आए हैं, इंदौर पहले आया लेकिन इन्होंने सब क्लब अभी अलग अलग कर दिया है, इनको गोल्ड क्लब अलग कर दिया है, क्योंकि सो दैट कि ऐसे नहीं होगी कुछ शहर बार बार और पॉपुलेशन के हिसाब से करते हैं, छोटे छोटे शहरों को मौका मिलता है। मुझे लेकिन लग रहा है कि फिर भी मान लीजिए 4,800-5,000 शहरों में आज की तारीख में जो 3-स्टार रेटिंग बुलाया जाता है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि हाँ पूरी तरह स्वच्छ माना जाएगा, मुझे लग जाए कई 100 हैं, 1,000 तक भी नहीं है। तो इसीलिए हमें कुछ

0: सफर और भी बाकी है, रास्ता सही है लेकिन मंजिल थोड़ी और दूर है, लेकिन इतना दूर नहीं है कि हो नहीं पाए, क्योंकि इसका संभावना गुजरात में बना, देश में प्रमाणित हुआ, देश खुले शौच से मुक्त हुआ 2019 में, अभी ये कचरे से भी मुक्त होगा क्योंकि नियत और जो मेहनत वो दोनों चल रहा है। लोगों को थोड़ी सी और जोड़ना है, और जैसे अब देखिए गांव के लोग जितना बढ़िया से जुड़ गए फेज वन में, शहर के लोग इतना बढ़िया से अभी जुड़ नहीं पाए हैं, तो इसीलिए फेज वन की जो आग है लोगों की, जो इग्नाइट फायर था, वो फायर को वापस लाना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, और महात्मा गांधी जी का मानना भी था कि अपने अंदर की स्वच्छता एक पहली चीज है जिसे पढ़ाया जाना चाहिए, बाकी बातें इसके बाद होनी चाहिए, और वैसे भी हर घर में स्वच्छता पहले ही पढ़ाई जाती है कि स्वच्छ रहना है।
0: क्योंकि एक चीज आप देखिए, जैसे भूख हुआ, नींद हुआ, ये कंजेनिटल है, ये जो बच्चा जन्म होता है उसको जरूर भूख होगा, सोएगा, लेकिन सफाई नहीं करता है, सफाई शिक्षा से आता है। घर के बड़े जो हैं, चाहे बड़े भाई हो, पिताजी हो, माँ बहन हो, तो छोटे बच्चों को सिखाएंगे कि भाई सफाई तुम्हारा काम है, तुम साफ रहो और साफ करते रहो चारों तरफ। ये विदेशों में, सारे ईस्ट एशियन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में ये इनबिल्ट है, इनबिल्ट है। तो हमारे परिवार, ये जो, क्योंकि ये अपने आप बायोलॉजिकली नहीं आता है, ये सोशियली आता है, एजुकेशनली आता है। इसीलिए जो कैंपेन है, इसलिए प्रधानमंत्री बार बार, कभी ऑफिशियली इसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन वो बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान, वो हमेशा बोलते हैं, क्योंकि ये कैंपेन है, निरंतर चलता रहेगा, लोगों को उसकी तरफ पुश करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में भी, जिसको स्वच्छ भारत मिशन के लिए सक्सेस का न्यू माना गया है, चार पी, फर्स्ट पी है पॉलिटिकल लीडरशिप, वो प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है, वो हमेशा आगे रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन में, सबको, वो सबसे टॉप कम्युनिकेटर, टॉप लीडर्स, वो स्वच्छ भारत मिशन उनका दिल की स्पंदन है, ऐसे मुझे लग रहा है। दूसरा है पब्लिक फाइनेंस, कभी सैनिटेशन के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर देश में इतना पैसा नहीं लगा था जितना पैसा इन्होंने दिया है और फाइनेंस मिनिस्टर्स ने भी दिया है। तीसरा है पार्टनरशिप, क्योंकि ये कोई छोटा मंत्रालय का काम नहीं है, सारे मंत्रालय, सारे कॉर्पोरेट, सारे मीडिया, सारे सिविल सोसाइटी लोग और सारे इंटरनेशनल एजेंसी मिलकर करेंगे पार्टनरशिप। चौथा सबसे बड़ा स्तंभ है पीपुल्स पार्टिसिपेशन, और लोग, ये लोगों का मूवमेंट है, लोगों को संभालना पड़ेगा, लोगों को साफ होना पड़ेगा, लोगों को साफ करना पड़ेगा, साफ नहीं तो माफ नहीं।
1: बिल्कुल। अब रोशन जी, अब आपसे हम सवाल करना चाहेंगे कि जब हम सफाई मित्र की बात करते हैं, सुरक्षा, वेस्ट मैनेजमेंट, महिलाओं की गरिमा की बात करते हैं, तो स्वच्छता का अर्थ कैसे बदला?
2: देखिए, इसमें दो तीन बातें समझनी जरूरी है
1: जी।
2: पहले, हम चूंकि मैं गांव से आता हूं, तो हम लोग खुले में ही शौच जाते थे
1: जी।
2: और गांव में तो इतनी समस्या नहीं थी, लेकिन शहरों में मैंने देखा कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते थे इसके कारण होते थे, इसलिए महिलाएं अंधेरा का इंतजार करती थी। और प्रधानमंत्री ने जब 2014 में लाल किले की प्राचीर से भी यही कहा था कि महिलाओं को जब इंतजार करना पड़ता है, या तो सुबह उनको जाना पड़ता है और या फिर उनको शाम को इंतजार करना पड़ता है, इसके कारण उनके कई बीमारियों से जूझती हैं। तो अभी मैं आंकड़े पढ़ रहा था WHO के, तो WHO ये कहता है कि कम से कम 3 लाख मौतें हैं जो स्वच्छ भारत अभियान से बची हैं, उनकी बीमारियां दूर हुई हैं। और प्रति घर से अगर हम अनुमान लगाएं तो 50,000 रुपए की दवाइयां जो लोग खाते थे वो बची हैं। और इसके अलावा जो सर्कुलर इकोनॉमी
1: जी,
2: जो भी सर बात कर रहे थे कि कचरा है, कचरे का ढेर लग रहे हैं, तो अभी केवल हम उसको कचरा नहीं मान रहे, यानी जो वेस्ट टू वेल्थ, जो हमारा कचरा है उसको हम कैसे उसकी उपयोगिता करें, तो अभी हम उसे बिजली बना सकते हैं, हम उसे सड़कें बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सर्कुलर इकोनॉमी पे भी फोकस जा रहा है। तो जब ये अभी स्वच्छ भारत अभियान 2 जब शुरू हुआ था, तो उसका जो स्वच्छ भारत अभियान प्लस जो चल रहा है, तो उसमें यही है कि जो ठोस कचरा है और जो गीला कचरा है, जो आपका तरल कचरा है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए कि ताकि उसका वेल्थ हम बना सके। और चूंकि अभी अर्बनाइजेशन हो रहा है और इतनी बड़े पैमाने पर है, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में तो 90% शहरीकरण हो गया है और ये सब जगह होने वाला है, तो उसमें जो कचरा प्रबंधन है वो सबसे बड़ी चुनौती, जैसे सर अभी कह रहे थे। तो अगर कचरा प्रबंधन, जो अभी हमारे पास आंकड़े हैं कि 1,58,000 टन प्रतिदिन हमारे यहाँ ये कचरा पैदा होता है, जिसमें से हम 1,31,000 टन हम इसको ठिकाने लगाते हैं, लेकिन अभी भी करीबन 27,000 टन प्रतिदिन है जो अभी बच जाता है, तो उसको ठिकाने लगाने की चुनौती है। तो अभी जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है कि हम उसका बिजली बना सकते हैं, हम उसका दूसरे उपयोग कर सकते हैं, तो अगर हम उस टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, तो आप सोचिए कि हम फिर जो हमारा कचरा है, जिसको हम कचरा कहते हैं, वो हो सकता है कि फिर हमारे वो सोना बन जाए।
1: बिल्कुल। तो अगर हमने अभी पहले शौचालय की बात करी और अब कचरा प्रबंधन की आपने उसके बारे में हमें बताया, तो अब हम हाइजीन पर आ जाते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, हाथ धोना हो चाहे सैनिटरी नैपकिन का सही निपटारा हो, तो ये अभी भी शर्म की बात समझी जाती है, तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे?
2: अभी तो जो स्वच्छ भारत अभियान प्लस है, उसमें ये अलग है कि आप सैनिटेशन जो पैड वगैरह है, इनके लिए इनका प्रबंधन अलग से होना चाहिए। और स्वच्छता के साथ अगर वो सफाई केवल ऐसा नहीं कि आपको जो है शौचालय आपके घर में

0: बना दिए, घर में बना दिए उसकी स्वच्छता, क्योंकि स्वच्छता सीधे सीधे आपके स्वास्थ्य से है। और जैसे मैंने कहा कि अभी WHO के जो आंकड़े हैं कि लोगों की जो बीमारियां होती थी उन बीमारियों से जो हमारी मृत्यु दर है
1: जी।
0: जो बच्चों की जो इन्फेंट्री जो डायरिया है, हैजा है, आंत्रशोध होता था, वो सालों में बचत हो रही है। और हम मोटा मोटा तौर पर लगाएं, अगर आप हॉस्पिटलों में चले जाते थे उस वक्त, आज नहीं, आज से 10 साल पहले, तो मोस्टली जो केसेस होते थे वो डायरिया के होते थे, हैजा के होते थे। अभी तो मुझे नहीं लगता कि 10 साल के अंदर हमने हैजा के केस सुने, पहले कितने केसेस होते थे। तो कम से कम ये स्वच्छ भारत अभियान की बहुत बड़ी सफलता है कि लोगों को हैजा नहीं हो रहा है, डायरिया नहीं हो रहा है।
2: ये सारे जो स्टडीज हैं ये कहता है कि इंडिया को कितना इससे फायदा हुआ है, बच्चों को काफी फायदा हुआ है, और एम्प्लॉयमेंट का जो बचत की बात हुआ उन्होंने कहा है, और ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन उसमें बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि जो खुले में सोच होता है वो ग्राउंड वाटर का अफेक्ट करता है, फिर वो कुछ चीज के जरिए से, पानी के जरिए से इंसान के अंदर जाता है, उससे बहुत हेल्थ से फर्क पड़ा है। खाली इंडियन एजेंसीज नहीं, बाहर की एजेंसीज, बाहर की जो बड़े बड़े हेल्थ के मैगजीन्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, स्टडीज हैं, वो भी इसको एस्टैब्लिश किए हैं, तो बहुत तरह तरह के फायदा मिला है। गंदगी रहने की या हाइजीन का बात आपने कहा, अगर हैंड वॉश नहीं करें तो हैंड वॉश नहीं करने का इसका सारा जो इम्पैक्ट है कुछ टाइम के बाद होता है और इमीडिएटली नहीं दिखता है, तो वही तो खराब बात है।
1: हाथ जो है मुंह में लगाना, ये सब चीजें
2: हाइजीन का कॉन्सेप्ट है, इसको इसलिए वॉश बोलते हैं। वॉश को एक सेक्टर माना जाता है, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, वो साथ में देखा जाता है, तीनों चीज इंटरनेशनली नेशनली जहां प्रोग्राम होता है ये तीनों चीज एक साथ रहते हैं, क्योंकि तीनों चीज का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ है। तो हाइजीन का एक बड़ा कॉन्सेप्ट आपने जैसे कहा कोविड के समय में आया, बिकॉज हाइजीन के बिना आप मर जाएंगे, आपको लगा। और लोगों को उस टाइम में यही तो विडंबना है कि लोग जो अच्छी चीज है वो डर कर ही जानते हैं, भाई ये नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, हाथ धोना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इसी तरह का अगर इनको लोगों को इस तरह का, इसको ट्रिगर्स बोलते हैं, बिहेवियर चेंज के बाद आपने कहा लोगों का, उसमें ट्रिगर्स क्या है, माने कभी आपका जागरूकता किस ट्रिगर से, कभी डर कर करते हैं, कभी बोलते हैं कि नहीं प्यार से, जो भाई बहन का, भाई जो आप जानते हैं शौचालय, शौचालय का जो मूवमेंट चला था पहला 5 साल 14 से 19 तक, उसमें बहुत सारे रक्षाबंधन में भाई बहनों को टॉयलेट्स दिए हैं गिफ्ट में, और शादियों में जैसे गिफ्ट देते हैं तो उसमें भी टॉयलेट्स दिया गया है। तो माँ की बेटे के लिए जो प्यार है, बच्चों को रखने के लिए, बच्चे के आदर करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, तो उसका एक निशान है कि उसका उसका जो सैनिटेशन एस्पेक्ट है उसको ठीक से ख्याल रखा जाए। ये सब चीजों को मानना पड़े, तो बिहेवियर जो चीज है बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि सस्टेन करना है अगर आगे, इसमें बिहेवियर को तो मजबूत करना पड़ेगा, खाली एक्सेस से इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से नहीं होगा। इसलिए स्वच्छ भारत मूवमेंट को लार्जेस्ट सैनिटेशन मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लार्जेस्ट इन बिहेवियर चेंज मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है।
1: तो सर 2047 तक विकसित भारत के लिए स्वच्छता का अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए?
2: कंप्लीट, मतलब मुझे लग रहा है कि स्पॉटलेस कंट्री होना चाहिए, स्पॉटलेस। जैसे आप जाते हैं ना, आप विदेश में क्या जाते हैं, जब कोई आइकॉनिक प्लेस जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस जाते हैं, बड़े बड़े, अरे क्या साफ सफाई है बोलते हैं ना, ऐसे भी इंडिया में हर शहर, हर जगह जहां फुटफॉल है, टूरिस्ट सेंटर हो, पिलग्रिमेज सेंटर हो, ऑफिस हो, दफ्तर हो, जहां पब्लिक एरिया हो, पार्क हो, रेलवे स्टेशन हो, लोग जिससे उनको लगे कि ये सबसे साफ साफ जगह है, इंसान कहां भी बैठ सकता है, कहां भी खड़ा हो सकता है, कहां भी बदबू नहीं आ रहा है। जो बोलते हैं अर्थ, एयर, वाटर, तीनों चीज जो है हमारा साथ जुड़ा हुआ है, ये तीनों चीज ही कंप्लीटली साफ रहे, ये मेरा 2047 को मैं जो विकसित भारत देखूंगा, मैं जानूंगा कि मेरा देश की हर मिट्टी, हर हवा, हर पानी साफ हो, हर शहर साफ हो, संपूर्ण तरह से, एक है ना कंप्लीट क्लीनलीनेस, एक है स्वच्छ, एक है कंप्लीट क्लीनलीनेस, और पूरा संपूर्ण तरह से स्वच्छ हो हर गांव, हर शहर।
1: और रोशन जी, स्वच्छता की हम बात कर रहे हैं तो इसमें सफाई जो कर्मी हैं उनकी भूमिका बहुत अहम होती है, उनको यूनिफॉर्म मिलती है, पीपीई किट मिलती है, उनके बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसे लगता है कि देश उसे देख रहा है, तो क्या स्वच्छता से सम्मान तक का सफर यही है?
0: असल में जो सफाई कर्मचारी हमने अपनी आंखों से देखे हैं, और चूंकि जब हम कवर करने जाते हैं तो हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं कि सफाई कर्मचारी सीवर में जाते हैं तो उनके गैस के कारण उनकी मौत हो जाती
1: है। ये सबसे बड़ी चुनौती थी, बहुत लोगों की मौतें हो जाती,
0: बहुत मौतें हुई, और उसमें फिर सुधार हुआ कि उनको पीपीई किट मिलना चाहिए, और वहां अभी तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है उसमें, गवर्नमेंट ने भी उसमें नोटिफिकेशन कर दिया है कि कोई भी इंसान गटर के अंदर नहीं जाएगा, मशीन से सफाई होगी। और देखिए मेंटेलिटी बदलने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने उनको सफाई मित्र कहा कि आप उनको सफाई कर्मचारी मत कहिए, क्योंकि असल में वो आपका कचरा उठा रहे हैं, वो आपके जो काम आपको करना चाहिए आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो आपका बदले आपका काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी तो बहुत बड़ी भूमिका है, तो उनको तो जितना सम्मान मिलना चाहिए, जितनी उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जितनी उनके बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, तो उतना मुझे लगता है कमी कम होगा। एक बात और जो अभी आपने कही कि भय जरूरी है, जैसे अभी कोविड में भय था तो लोगों ने अपने हाथ पांव धोना और सैनिटाइज करना जरूरी था, एक भय और दिखाना जरूरी है

0: कि अभी जैसे हमारी सरकार ने कर रखा है कि अगर कोई सार्वजनिक जगहों पर अगर थूकता है तो उस पर 200 रुपए का जुर्माना है, लेकिन असल में हो नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पान खाने वाले लोग बहुत हैं, और जितना सरकार साफ करे, लोग साफ करें, कोई ना कोई पान की पीक मारकर उसे गंदा कर देता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि सरकार को यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। यहाँ दंड और डर दोनों, भय भी जरूरी है और दंड भी जरूरी है। तो मुझे लगता है कि जो हम बात कर रहे हैं, जो 2047 तक पूरा हमारा भारत बहुत सुंदर दिखे और हमारे गांव बहुत खूबसूरत दिखे, जितने हमारे जो मॉन्यूमेंट है, हमारे जो टूरिस्ट स्थल है, उसमें जो सरकार ने भी पीपीपी मॉडल शुरू कर दिया है कि वो कोई भी कंपनी आकर सीएसआर मॉडल के तहत किसी भी, जैसे लाल किला को, ताजमहल को, किसी को भी वो एडॉप्ट कर ले, उसकी साफ सफाई का अपने हाथ में ले ले।
1: काम तो बहुत हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी और ज्यादा होने की जरूरत है। और लेकिन ये हमेशा डिबेट रहेगा कि पनिशेबल क्या जाना चाहिए एजुकेशनली। जनरली हमारे डेमोक्रेटिक इथर्स के साथ ये सारी चीज, क्योंकि इतना 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है और इसमें कौन कितना करता है, तो इस तरह का जो लोकल गवर्नमेंट का जो अधिकार के अंदर कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली तो ये फिर अपने आप में रेस्पॉन्ड करने वाले जो है ना, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है। हम तो कुछ सोचे ना भाई, खाली कंप्लेन करने से थोड़ी होगा। हम कुछ सोचे, प्रदूषण के बारे में कंप्लेन करेंगे, कचरा के बारे में कंप्लेन करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल क्या कर रहा है, हम सोसाइटी के लिए क्या कर, वो है एक जिम्मेवारी की बात है, वो बहुत जरूरी है स्वच्छ भारत मिशन के कॉन्टेक्स्ट में।
2: बिल्कुल अक्षय जी, आपने बहुत अच्छी चीज बताई है। तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि भारत को जीरो वेस्ट नेशन बनाने के लिए क्या मंत्र होना चाहिए।
1: जीरो वेस्ट नेशन एक तो है कि बहुत एक गांधीयन फिलोसफी था, वो बहुत अभी भी सरकार की पॉलिसी के तहत है, RRR, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। रिड्यूस जो है गांधीवादी है, भाई आप कंजम्पशन को कम करिए ना, लोगों का कंजम्पशन का माहौल बढ़ रहा है, लेकिन रीयूज रिसाइकल जो है, ये दोनों, खासकर रिसाइकल, रीयूज का भी एक लिमिटेशन है, लेकिन रिसाइकल जो है सोने, कुछ भी चीजें, सर्कुलर इकोनॉमी का बात हुआ, सारी चीज को रिसाइकल करने का मैं देख रहा हूँ। वेस्ट कम से कम जनरेट करें, आपने जीरो वेस्ट कंट्री के बारे में बताया, कम से कम जनरेट करें। हमारा घर, हमारा दफ्तर, हमारा जगह से वेस्ट कम निकले, और जो निकले उसका निपटान होने का प्रिंसिपल लेके, स्ट्रैटेजी लेके, टेक्नोलॉजी लेके, रिसोर्स लेके, क्यों इसका निपटान तो जरूरी होगा। जितना निकले कम निकले, और जब निकले निपटान हो, यही होने से जीरो वेस्ट होगा।
2: तो अंत में हम आप दोनों मेहमानों से चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे आम नागरिकों के लिए कुछ संदेश अगर देना चाहें तो।
0: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अभी ई कॉमर्स के जमाने में इतना ज्यादा वेस्ट घर पर आ रहा है, चाहे वो थैली के जरिए आ रहा है, चाहे प्लास्टिक के जरिए आ रहा है, उसका कम से कम इस्तेमाल हो। और जितने हमारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उनको भी निर्देश दिया जाए कि आप जो अत्यधिक प्लास्टिक भेज रहे हैं, पैकेजिंग भेज रहे हैं, उसको कम से कम किया जाए।
2: बिल्कुल, क्योंकि बेहतर साफ सफाई से ही भारत के सिर्फ गाँव के लिए नहीं, मुझे लगता है अक्षय जी, बल्कि शहरों को भी आदर्श बनाया जा सकता है।
1: मेरा इतना ही मैसेज रहेगा कि आप घर के अंदर साफ सफाई का काम अपने आप करें, और अपना घर के आसपास की साफ सफाई अपने आप करें, और दूसरी बात है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल कम से कम करें या नहीं करें, और घर के कूड़े का जरूर सेग्रीगेट करें खुद।
2: तो श्रोताओं, निर्मल गुजरात ने कैसे राह दिखाई आज हमने जाना, स्वच्छ भारत ने उसे कैसे जन आंदोलन बनाया, और सूरत जैसे शहरों ने साबित किया कि अगर जन सेवा की नियत हो तो कचरे से भी कंचन बनता है। स्वच्छ भारत सिर्फ सड़कों की सफाई नहीं, हर नागरिक के सम्मान की कहानी है। इसी के साथ जन सेवा से देश सेवा की आज की कड़ी यहीं समाप्त होती है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आप स्टूडियो में रहे।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो फरहत नाज को भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 7वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, स्वच्छता से सम्मान तक। इसमें भाग ले रहे थे स्वच्छ भारत अभियान के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता फरहत नाज। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: FM बैंड 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का सरस का चैनल है। इस समय सुबह के 9:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले प्रसारण।
5: 1971 में आई थी फिल्म उपासना। संजय खान अर्थात अब्बास अली खान, जो कि उनके भाई हैं, और मुमताज की इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थी। इस फिल्म का मुकेश का गाया उन्हीं पर फिल्माया गया।

0: दोस्तों, फिल्मी दुनिया का एक अलिखित नियम है, जिस रोल में शुरुआती फिल्म में आप नजर आते हैं वैसे ही रोल आपको मिलते चले जाते हैं। फिरोज खान के साथ भी ऐसा ही हुआ, पर फिरोज खान ने अपने को लीड रोल में लाने के लिए कड़ी मशक्कत मेहनत की और एक दिन उनकी ये मेहनत रंग लाई। सफर, शंकर शंभू, प्यासी शाम, गीता मेरा नाम और खूटे सिक्के जैसी छोटी बड़ी फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी के रंग भरे और अपनी किस्मत का सिक्का चमकाया। इस दौरान अपने छोटे भाई संजय खान के साथ भी उन्होंने 3 फिल्में की, उपासना, मेला और नागिन। 1972 में फिरोज खान ने अपना एक बैनर बनवाया, FK इंटरनेशनल। इसी के बैनर तले फिल्म बनाई अपराध। अपनी मन मर्जी से इस फिल्म की कहानी, लोकेशन का चुनाव उन्होंने किया और बड़ी ही उम्दा फिल्म बनाई जिसके गाने आज भी हिट।
1: हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने हैं,
2: हमारे

0: इस दौरान वो और बैनरों में भी नजर आए। रविकांत नगाइस द्वारा निर्देशित फिल्म काला सोना में भी उन्होंने बड़ा ही उम्दा रोल निभाया है। 1975 में फिरोज खान ने एक जबरदस्त शाहकार दिया धर्मात्मा। ये पहली ऐसी फिल्म है जो अफगानिस्तान में शूट हुई। इस शानदार फिल्म ने उन्हें बतौर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, अदाकार जबरदस्त सफलता दिलाई।
1: फिर

दोस्तों, फिरोज खान सही मायनों में एक अजीम फनकार थे। रोल चाहे कोई भी हो, उसमें वो जान फूंकते थे। वो एक स्टाइलिश अदाकार थे। काउबॉय वाले किरदार उन्होंने ही हिंदी सिनेमा को दिए हैं। कई फिल्मों का उन्होंने निर्माण किया, जैसे कि धर्मात्मा, जांबाज, यलगार, कुर्बानी, दयावान जैसी फिल्में उन्होंने अपने प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाई। प्रियमगन, जानशीन ऐसी भी कुछ फिल्में उन्होंने बनाई हैं। वो एक उच्च कोटि के निर्माता निर्देशक साबित हुए हैं। लगभग 5 दशकों तक का

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के स्टाइलिश अभिनेता फिरोज खान पर। आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आन मिलो शाम सवरे।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के ठीक 10 बजे हैं। लीजिए सुनते हैं ये आवश्यक संदेश।
1: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट

0: रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सर इसका चैनल है। रेडियो आप सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले प्रसारण।
5: अप्पा बढ़ावकर से यूनुस खान की बातचीत।
6: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूँ और आज हमारे साथ संगीत की दुनिया की एक बहुत बड़ी हस्ती मौजूद हैं। ये हैं मराठी फिल्मों के जाने माने म्यूजिशियन, अरेंजर और संगीतकार अप्पा वढ़ावकर। बहुत बहुत स्वागत अप्पा जी आपका।
7: नमस्कार। नमस्कार।
6: ये बताइए, विविध भारती के स्टूडियो में आके आपको क्या अनुभूति हुई?
7: बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, थैंक यू सो मच।
6: अच्छा मुझे ये बताइए कि रेडियो से तो आपका बड़ा पुराना नाता है, आप बचपन में रेडियो के कार्यक्रम करने जाते थे, उसकी क्या याद है आपकी?
7: मेरे ख्याल से 8-9 वर्ष का था।
6: किस साल की बात होगी?
7: 68-69 की होगी।
6: ओ
7: तो उस टाइम एक मराठी में एक छोटा प्रोग्राम रहता था छोटे बच्चों का,
6: जी
7: गम्मत जम्मत नाम।
6: अरे बहुत ही मशहूर प्रोग्राम।
7: कि उधर मैंने वायलिन बजाए, एक्चुअली
6: बाबा
7: ज्यादा से ज्यादा वायलिन बजाए, तो मैं वायलिन सीखता था। मेरे वायलिन के गुरु प्रभाकर पंडित जी, जो फिर बाद में रेडियो पर कंपोजर वगैरह थे
6: जी,
7: तो उनसे वायलिन सीख के मैं पहले थोड़े से प्रोग्राम वो गम्मत जम्मत में बजाए थे।
6: क्या बात है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आपके पिताजी भी एक बड़े संगीतकार रहे हैं, तो अपने पिताजी और अपनी माँ के बारे में हमें बताइए।
7: मेरा पिताजी वैसे अच्छे हारमोनियम बजा लेते थे
6: जी,
7: ऑर्गन बजा लेते थे,
6: राम वढ़ावकर जी,
7: और शायद पियानो भी बजाते थे।
6: अच्छा।
7: क्योंकि मेरी शुरुआत की जो ट्यूशन हुई उनके पास ही हुई
6: जी।
7: और जैसे हारमोनियम में हम बोलते हैं ना, जो सारे गम समझो कि एक टेक्निकल बात है ये
6: जी,
7: कि वो सफेद एक सुर से सारे गामा अगर हम बजाएंगे तो हमारी फिंगर होती 1-2-3-4, 1-2-3-4,
6: राइट।
7: लेकिन वो दो प्रकार की फिंगर्स मुझे बताते थे जो पियानो में यूज करते हैं, कि 1-2-3, 1-2-3-4-5। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है वो पियानो भी अच्छा बजाते होंगे।
6: वाह।
7: फिर वो पहले प्रभात कंपनी की थी
6: जी, शांताराम जी के।
7: हाँ, स्टाफ पे वो म्यूजिशियन करके थे, वसंत देसाई के वाद्य वृंद में थे वो, क्योंकि उस टाइम 3-4 म्यूजिक डायरेक्टर वहां रहते थे, वो तो सैलरी पे रहते थे, यानी कि गोविंद राव टेम्बे या तो मास्टर कृष्ण राव, ये वसंत देसाई
6: जी,
7: तो वो वसंत देसाई के वाद्य वृंद में थे।
6: अच्छा।
7: और उनके साथ बहुत सारा काम किया उन्होंने।
6: वसंत देसाई तो महाराष्ट्र के राज्य संगीतकार का दर्जा उन्हें प्राप्त था।
7: बिल्कुल, बिल्कुल।
6: और आगे हम बात करेंगे कि कैसे आपका और उनका साथ जो बना है। अप्पा जी, पिताजी ने कई बड़े बड़े कलाकारों के गाने रिकॉर्ड किए हैं और कई प्रभात कंपनी में उनके साथ जो अनुभव हुए हैं, कुछ कुछ उन्होंने आपको बताया?
7: उन्होंने बाद में एक आह्लाद चित्र नाम की एक संस्था थी
6: जी,
7: दत्ता धर्माधिकारी
6: जी
7: नाम के प्रोड्यूसर थे, जिनको हम दत्ता मामा कहते थे। तो उनके जो बहुत सारे पिक्चर का म्यूजिक डायरेक्शन मेरे पिताजी ने वसंत पवार के साथ किया था।
6: अच्छा, अच्छा।
7: वसंत पवार राम वड़ावकर, ऐसा वो जोड़ी आती थी।
6: जोड़ी।
7: जैसे कि पुराना चिमनी पाखर है, अबोली है।
6: हाँ।
7: और कुछ 2-3 हिंदी भी थे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मराठी 9-10 पिक्चर्स किए हैं
6: जी, जी।
7: फिर बाद में मेरे याद में जो है, जो रिकॉर्डिंग में गया था मैं।
6: अच्छा अच्छा।
7: आशा भाई के 2-3 गाने थे, फकीरा नाम का चित्रपट था
6: जी,
7: में वो 62-63 में आया था।
6: ये हिंदी फकीरा की बात नहीं हो रही है,
7: मराठी फकीरा वो 62-63 का आया। और बाद में एक 64 में आया चित्रपट आया था मराठी, शोधा म्हणजे सापडेल, जिसमें सुमन कल्याणपुर ने 2-3 गाने गाए थे।
6: आपने आशा भाई और सुमन जी को देखा?
7: देखा है, बिल्कुल देखा है। उस टाइम मुझे इतना मालूम नहीं था इतने बड़े कलाकार है।

0: मुझे नहीं मालूम था,
1: आप तो छोटे थे,
0: 12 साल का 14 साल का था
1: जी।
0: तो उनके साथ मैंने बजाया भी है, सुमन ताई के साथ।
1: हाँ,
0: उनके जो रिहर्सल चलती थी
1: जी,
0: तो रिहर्सल्स में मुझे बजाने को बोलते थे। जिस चित्रपट में सुमन ताई गाई थी वो चित्रपट का संगीत संयोजन अनिल मोहिले जी ने किया, तो अनिल जी मुझे बोलते थे रिहर्सल में तुम बजाओ, तो उस हिसाब से मैंने उनसे साथ बजाया।
1: अच्छा, आपके हाथ में वायलिन किस बरस की उम्र में दे दिया गया?
0: मैं शायद 12-13 बरस का था
1: तब से बजा रहे हैं।
0: हाँ, क्योंकि जो मेरे मास्टर जी थे वायलिन के, वो मेरे पिताजी के असिस्टेंट थे,
1: ओ
0: प्रभाकर
1: जी।
0: तो मेरे पिताजी ने उनको बोला, अरे इसको हारमोनियम में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा वायलिन भी सीखना चाहिए उसने, और कुछ सीखना चाहिए। तो उनके साथ मैंने वायलिन उनके पास मैंने सिखा।
1: कितने साल तक सीखते रहे?
0: 7-8 बरस तक मैंने सीखा, 70-71 तक मैंने वायलिन का रियाज चालू रखा था।
1: और पिताजी हारमोनियम सिखा रहे थे?
0: हाँ, तो ये पहले गुरु जी मेरे पिताजी।
1: कितने सख्त थे वो?
0: नहीं, बहुत प्यारे थे
1: जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये तो हो गया हारमोनियम का जिक्र, वायलिन का जिक्र, पर आप तो अकॉर्डियन भी बजाते हैं, ये कहां से शुरू हुआ?
0: ये एक्चुअली क्या हो गया, मैं 72 में बीए जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया।
1: ओ।
0: और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए, तो फिर पूछा घर में कि ये क्या करते है। तो मेरे मास्टर जी थे, वो बोले हारमोनियम बजा लेता है, मेरे पास वायलिन सीखता है। तो फिर वसंत देसाई बोले कि हाँ हारमोनियम बजा लेता है, तो उसको फलाना फलाना डेट को मेरे पास भेजो। और फिर उधर गया, मैं पास हो गया, उनके हिसाब से पास हो गया। फिर 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: गजब।
0: हाँ, तो उधर क्या हुआ कि लोग आते थे, यानी जयवल कुलकर्णी है या तो शरद जांबेकर, प्रमिला दातार, फैया जी, वाणी जयराम, तो जयवल कुलकर्णी उनके साथ, जयवल जी के साथ मैंने हारमोनियम बजाना शुरू किया। और उनके साथ जो अकॉर्डियन बजाता था सूरज साठे नाम का,
1: सूरज साठे बहुत
0: बढ़िया बजाने वाला
1: जी जी।
0: तो जब मैंने उसको देखा तो बोली ये साज बढ़िया है, उसमें क्या इफेक्ट मिलता है प्रोग्राम में ये वो, तो मन में कुछ ले लिया। तो फिर मैं 74 को अकॉर्डियन खरीद लिया।
1: अरे बाबा।
0: तो फिर 78 से मैं बार बजाने लगा सीख के।
1: अच्छा,
0: पहले मैंने ऑडिशन भी दी थी रेडियो की।
1: अरे बाबा।
0: 78 में मैं ऑडिशन पास हो गया रेडियो की।
1: जी जी।
0: हाँ, तो वहां से फिर अकॉर्डियन शुरू किया। तो शायद 80-82 तक, जब तक मैं कीबोर्ड नहीं मेरे पास आया तब तक अकॉर्डियन बजा रहा था।
1: मैंने एक और चीज जो पढ़ी आपके बारे में कि कॉलेज रुइया में पढ़े आप, और पढ़ाई करने तक आपके मन में ये तय नहीं था कि जीवन में आगे क्या करना है।
0: बिल्कुल, जब मैं 72 में वसंत देसाई के आ गया,
1: हाँ,
0: तो मेरा फाइनल हो गया कि मैं करियर करूंगा तो इसमें करूंगा।
1: और ये बैंक वाला मामला क्या था?
0: बैंक की परीक्षा देनी पड़ती थी ना।
1: हाँ, तो आपने बहुत मेहनत की, तैयारी की उसकी?
0: तैयारी की थी, लेकिन बिकॉज मेडिकली अनफिट हो गया मैं।
1: जी जी।
0: मेडिकली तो 2-3 बैंक में ट्राई किया, तो बोले ये तो गड़बड़ है, कुछ होने वाला नहीं इधर। और ये मौका मिल गया वसंत देसाई जी के उधर जाने का, तो वहां से फिर हो गया कि मैं म्यूजिक करूंगा।
1: वाह, वसंत देसाई का जिक्र हो रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ 2 आंखें 12 हाथ फिल्म का एक गाना अपने सुनने वालों को सुनवा दिया जाए।
0: बिल्कुल,
1: वसंत देसाई की याद के नाम।
0: बिल्कुल।
1: ए मालिक तेरे बंदे हम।
0: ठीक है।

0: अप्पा वढ़ावकर जी से बातें हो रही हैं और अप्पा आप बता रहे हैं कि वसंत देसाई जी ने आपको अपनी निगहबानी में ले लिया और आप कुछ साल तक वहां बजाते रहे। वसंत देसाई से जुड़ी कुछ यादें हमें बताइए, क्योंकि आपकी उम्र तो कम थी उस वक्त और वो बहुत बड़े संगीतकार थे।
1: तो मैं एक कैंपेन था गवर्नमेंट का, एक सुर एक ताल नाम।
0: हाँ,
1: ये उसका ये तो मोटो ऐसा था कि समझो कि पाठ्य पुस्तक के जो मराठी पाठ्य पुस्तक है, ये तो समझो एक कविता है, देवा तुझे कितनी सुंदर आकाश। तो ये जो कविता है, तो उस टाइम क्या होता था कि समझो कि बालमोहन स्कूल का म्यूजिक टीचर है, वो अपने हिसाब से उसकी ट्यून बनाता था। पार्ला का एक आधा स्कूल है तो उसके हिसाब से वो मास्टर ट्यून बनाएगा। ठाणा पूना ऐसा जो अलग अलग ट्यून बनते थे, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी कुछ। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए वो गाने में गवर्नमेंट ने ये स्कीम चालू की, कैंपेन चालू किया कि एक सुर एक ताल, यानी कि किधर का बच्चा भी एक साथ आए और एक कविता गाने को बोले, तो एक ही ट्यून में गाए एक ही ताल में गाए।
0: क्या बात है।
1: तो ये कैंपेन में मैंने 8 बरस काम किया उसमें।
0: और वसंत देसाई के साथ फिर महाराष्ट्र के गांव गांव
1: जिले जिले में गांव गांव में हम लोग घूमते थे
0: जी।
1: और उधर क्या होता था कि वो क्या बोलते हैं शिविर कैंप जो होता था, वो समझो कि सोलापुर में गए हम लोग, तो उस एरिया के म्यूजिक टीचर्स उधर बुलाते थे
0: जी।
1: समझो 200-250 लोग होंगे, वो गाने सीखेंगे 3 दिन में, जो कुछ होगा 3-4-5 गाने जो होगा वो आप अपने स्कूल में जाके सिखाएंगे अपने बच्चे को, और फिर एक बड़ा सेमिनार लेके वो गाने डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और कैसा क्या हो रहा है। और ये बहुत अच्छा कैंपेन था एक्चुअली, मास सिंगिंग बोलते हैं उसको।
0: वाह वाह। और
1: समूह गान
0: पूरे देश में, सिर्फ महाराष्ट्र में ये एक
1: मेरे ख्याल से मेरे इसमें वही मालूम है कि महाराष्ट्र में ये हुआ था।
0: उसी दौरान क्या वसंत देसाई ने महात्मा गांधी का एक भजन कंपोज किया था, हे नम्रता के सागर, आपको कुछ याद है?
1: वो एक्चुअली भजन नहीं है
0: जी,
1: वो एक्चुअली कहावत है ऐसे कि वो गांधी जी ने जेल में एक पत्र लिखा था।
0: यस।
1: और पत्र को वसंत देसाई जी ने वो ट्यून बना के जैसा लगता है गाना ही है,
0: मन्नाडे ने गाया
1: था। बहुत अच्छा तर्ज उसका हुआ था।
0: तो आप उस वक्त वसंत देसाई के साथ थे?
1: नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग में नहीं था
0: जी।
1: मैं जाने के पहले वो रिकॉर्ड हुआ था।
0: अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि वसंत देसाई के साथ इतना ज्यादा अनुभव आपका है और वो एक बहुत ही अप्रतिम संगीतकारों में से रहे हैं, उनसे जुड़ी कुछ घटनाएं याद आती हैं जिनका जिक्र आप करना चाहें?
1: एक्चुअली एक बात मेरे बारे में, इतना मैं लकी हूं
0: जी
1: कि मेरे जो चित्रपट के जो पहला गाना, यानी समझो कि हिंदी का पहला गाना जो मैंने बजाया
0: जी
1: एज अ म्यूजिशियन
0: जी,
1: वो वसंत देसाई का म्यूजिक।
0: वाह।
1: शक नाम का चित्रपट था।
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: शबाना आजमी विनोद खन्ना वगैरह काम।
0: हाँ, हाँ, हाँ। गाना कौन सा?

0: वो अभी ना पर्दा गिराओ करके,
1: वाह वाह वाह, जेके बैनर्जी ने गाया था।
0: यस काका जी, हम लोग उसके बोलते थे
1: जी।
0: तो वो गाना बजाने का मुझे मौका मिल गया, वो वसंत देसाई का था।
1: गुलजार साहब के बोलते अभी ना पर्दा गिराओ ठहरो की दास्तां अभी और भी है।
0: क्या बात है, मराठी का पहला चित्रपट गाना मैंने वसंत देसाई साहब का बजाया।
1: क्या बात है,
0: और वो गायक कौन था तो पंडित भीमसेन जोशी जी।
1: ओ
0: भारत रत्न,
1: वाह वाह वाह,
0: इतना अभी ये आते कांटा रोंचे आते मुझे
1: जी। तो जब ये रिकॉर्डिंग हो रही थी तनाव था?
0: तनाव तो था, क्योंकि इधर का भी पहला रिकॉर्डिंग उधर। अच्छा पहले हिंदी का इतना तनाव ना था, क्योंकि हमें रिहर्सल बहुत किए थे वो काका जी के साथ
1: जी।
0: कम से कम 15 रिहर्सल किए थे।
1: वाह,
0: लेकिन और क्या, वो रिकॉर्डिंग ऐसा हेडफोन लगा के मैंने बजाया था
1: जी
0: काका जी का, पर लेकिन पंडित जी का जो गाना बजाया मराठी का, वो ऐसा सामने पंडित जी बैठे मैं इधर बैठा हूँ,
1: अरे बाप रे,
0: वो गा रहे और क्या उनका आवाज,
1: कंठ क्या गजब,
0: बढ़िया बढ़िया
1: है ना। गाना याद है कौन सा था वो?
0: वो रात्रन दिन अम्मा युद्धाचा प्रसंग।

0: वो गायक कौन था? तो पंडित भीमसेन जोशी जी,
1: ओ
0: भारत रत्न।
1: वाह वाह वाह
0: इतना अभी ये आते कांटा रोंचे आते मुझे
1: जी।
0: कि
1: तो
0: वो
1: जब ये रिकॉर्डिंग हो रही थी तनाव था?
0: तनाव तो था क्योंकि इधर का भी पहला रिकॉर्डिंग उधर। अच्छा पहले वो हिंदी का इतना तनाव ना था क्योंकि हमें रिहर्सल बहुत किए थे वो काका जी के साथ,
1: जी
0: कम
1: जी
0: से कम 15 रिहर्सल किए थे।
1: वाह
0: लेकिन और क्या, वो रिकॉर्डिंग ऐसा हेडफोन लगा के मैंने बजाया था
1: जी
0: काका जी का, पर लेकिन पंडित जी का जो गाना बजाया मराठी का वो ऐसा, सामने पंडित जी बैठे मैं इधर बैठा हूँ
1: अरे बाप
0: वो
1: रे,
0: गा रहे हैं, और क्या उनका आवाज
1: कंठ क्या गजब
0: बढ़िया
1: था,
0: बढ़िया
1: है ना।
0: बढ़िया।
1: गाना याद है कौन सा था वो?
0: वो रात्रन दिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग,
1: आप गा के
0: ऐसा
1: बताइए।
0: रात्रन दिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रन दिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, आगे का वर्ड्स आता नहीं, ये
1: जी
0: चंद्रकोश में बांधी हुई चीज थी
1: वाह
0: और बढ़िया गाया था।
1: क्या बात है, सुंदर याद आपने हमारे साथ साझा की है। और चूंकि शक फिल्म के गाने का जिक्र किया है
0: हाँ
1: तो वो गाना सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: बहुत सुंदर बातें आपके साथ हो रही हैं अप्पा जी, और आप आगे चलकर म्यूजिशियन से म्यूजिक अरेंजर कैसे बने ये कहानी हमें बताइए।
1: पहला म्यूजिक अरेंजर ऐसे काम किया तो मैंने स्टेज पे किया था
0: जी।
1: तब क्या हुआ कि एक मैं एक ग्रुप कर रहा था, सब वैसा मैं थोड़ा सा इधर काम किया, वसंत देसाई के साथ, उसी रामचंद्र के साथ काम किया, तो थोड़ा सा मैं सीनियर था उनमें, और नोटेशन मुझे आती थी और उन लोगों को कुछ नोटेशन नहीं आता था। तो अचानक वो जिम्मेदारी मुझे पड़ गई
0: हाँ।
1: कि इनको सब संभालो एक साथ, तो अरेंजर उधर ऐसे ही बन गया
0: हाँ।
1: तो फिर बाद में क्या होगा कि मैं सोचता था कि अरे मतलब क्रेडिट्स में मेरा नाम नहीं आता था, और सिंगर्स के नाम आते, वो इधर इसका नाम आए उसका नाम है, म्यूजिक अरेंजर का नाम नहीं। तो मैंने सोचा कि चार सिंगर है वो पांच पांच छह छह गाने बिठाएंगे गाएंगे, लेकिन मेरे को 25 गाने बिठाने पड़ते हैं
0: जी,
1: और वो सब म्यूजिशियन से काम करना लेना, तो मेरा काम भी ज्यादा है ना
0: हाँ।
1: तो क्रेडिट्स में आना चाहिए नाम, तो मैं करते गया कि हमारा भी नाम आना चाहिए आना चाहिए, तो तब से वो नाम आने लगा। तो ये क्रेडिट मैं लेता हूँ कि ये मेरे से शुरू हुआ,
0: म्यूजिशियंस के नाम आने जो हाँ, हाँ, उसकी कोशिश
1: अरेंजर का
0: बहुत बड़ी बात।
1: वहां से फिर किसी ने सुना कि ये लड़का अच्छा काम करता है, तो किसी ने मेरे को, पहले तो दूरदर्शन मैंने बहुत बजाया
0: जी जी,
1: और वहां तो क्या कुछ नाम नहीं, लेकिन क्या समझो कि यूनुस भाई आए, तो समझो शब्दांचल पल्लीकड़ का

0: कार्यक्रम होता था, पांच गाने हैं, तो आपने दो गाने का किया है अरेंजमेंट और तीन गाने का फिर वो प्रोड्यूसर बोलेगा अरे अप्पा जरा ऐसे करून टकना अरेंजमेंट जरा, तो फोकट का अरेंजमेंट करते हो तो अलग का पैसा नहीं मिलता वो फोकट का, तो ऐसा अरेंजर बन गया था मैं 77 को।
1: अच्छा एकदम।
0: दूरदर्शन का पहला प्रोग्राम मैंने 74 में बजा है वसंत देसाई के साथ।
1: अच्छा वहां उन्होंने क्या परफॉर्म किया?
0: वो एक शिवराज्यभिषेक हुआ था, 300 शिवराज्यभिषेक 74 में, 6 जून 74
1: जी।
0: तो रायगढ़ पर वसंत देसाई जी ने एक गाना सादर किया था, उसका रिकॉर्डिंग उधर हुआ था
1: दूरदर्शन।
0: दूरदर्शन तो वो पहला उधर भैया है मैंने
1: जी। और उसके बाद आप धीरे धीरे अरेंजर बनते
0: हैं। हाँ, पहला कैसेट मैंने बजाया होगा जब कैसेट का जमाना आएगा 79-80 को
1: जी,
0: तब से मेरा वो चालू हो गया काम।
1: अच्छा अब मुझे ये बताइए कि सुधीर फड़के हो या स्नेहल भाटकर हो या फिर वसंत देसाई हो, यशवंत देव हो, इन सब के साथ आपने काम किया है, तो कुछ यादें हमारे साथ बांटिए।
0: एक तो वसंत देसाई के साथ मैंने अरेंजमेंट का काम कुछ नहीं किया, उनके पास सेबेस्टियन जी
1: वहां पर बजाते थे
0: लेकिन उनका मैं देख रहा कि उनका जो पेशेंस था ना
1: जी,
0: बढ़िया पेशेंस था, यानी कि समझो गाना सिखाया और अभी आशा जी और ये छोड़ दो, लेकिन जो स्कूल में हम लोग जाते थे ना सिखाने को, एक सुर एक ताल, एक गाना वो एक लाइन 10 बार 12 बार बोलते थे कि मैं सिखाने को तैयार हूं तुम सीखने को तैयार हो जाओ। वो कंटालते नहीं थे, वो बहुत पेशेंस था, वो पेशेंस जो चीज है, और वक्त पे जाना।
1: वाह।
0: 9 बजे का रिकॉर्डिंग होता था उस टाइम, वो 9:15 बजे वसंत देसाई जी स्टूडियो में हाजिर थे।
1: वाह।
0: वो एक अच्छा, मुझे ये लगा कि टाइम पे जाना चाहिए, ये दो चीजें वहां से अच्छी मिल गई मुझे। यशवंत देव के पास मैं जब गया, जो उनका पहला अरेंजमेंट का काम मैंने किया, तो उनका एक आदत था कि वो गाने का नोटेशन लिखते थे और वो ताल में 12 बार लिखते थे नोटेशन। तो सब गाने मैंने उस टाइम क्या करता था, मैं थोड़ा सा आग की वजह से मैं उधर लिखता नहीं था, वो कैसेट पे रिकॉर्ड करके लेता था सब गाने, तो उनके गाने मैंने रिकॉर्ड कर लिए, तो उन्होंने वो स्क्रिप्ट भी दे दी गाने की, अब तुम्हारे लिरिक्स की और उसके नीचे नोटेशन लिखा हुआ
1: जी।
0: तो मैं बोला कि मेरे पास अभी गाने हैं ना रिकॉर्ड किए, तो ये क्यों चाहिए मुझे। तो बोले नहीं, जब तुम समझो कि 4 अंतरे का गाना है, पहला तीसरा इसके ट्यून सेम है, 1-3 और 2-4 ट्यून सेम है, लेकिन ऐसा मत करना कि फर्स्ट अंतरे का जो म्यूजिक बजाएंगे आप वही थर्ड को बजाना, क्योंकि फर्स्ट अंतरे का कंटेंट और थर्ड का कंटेंट अलग हो सकता है। फर्स्ट में हैप्पी होगा तो थर्ड में दुखी भी हो सकता है।
1: लेकिन आमतौर पर लोग यही करते थे कि M1 जो है वो M3 में डालते थे, M2 M4 में डालते थे।
0: तो पहले ऐसा ही करता था, लेकिन उन्होंने ये बोला कि ऐसा मत करना, स्क्रिप्ट सामने रखो
1: जी,
0: उसका अर्थ मीनिंग समझा लो, अगर सेम जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर मीनिंग डिफरेंट है तो तुमको दूसरा अगला कुछ करना पड़ेगा।
1: वाह।
0: तो तब से जो मैंने मेरे में सुधारणा की जो एज फार एज पॉसिबल,
1: ये उनकी बदौलत हुआ।
0: हाँ यस, उनका जो एक शब्द प्रदान गायकी, यानी शब्दों के हिसाब से उच्चारण होना चाहिए, उनका एक खासियत है यशवंत देव साहब का, उस हिसाब से मेरा शब्द प्रदान म्यूजिक अरेंजमेंट ऐसा हो गया उस टाइम से।
1: क्या बात है। सुधीर फड़के की कोई याद बांटिए?
0: अरे सुधीर फड़के का तो बहुत है, उन्होंने एक ही पिक्चर का हम लोग अरेंजमेंट किया उनका, मैं और सुराज सठे। तो ये गाने के अरेंजमेंट हम लोग कर रहे थे, उनके घर में ही बैठे थे
1: जी,
0: मैं और उनका बेटा श्रीधर
1: जी।
0: तो गाने का हम लोग के हिसाब से अरेंजमेंट बहुत अच्छा हो गया ऐसा हम लोग का लगा। तो बाबूजी को बोला कि सुनिए उसको पास कर दीजिए, ओके कर दीजिए, या तो उसका फाइनल नोटेशन लिखने में जरा। तो उन्होंने आग बंद करके वो हमारे अरेंजमेंट जो कुछ है सुन ली, बोले बहुत बढ़िया किया है। हमको लगा कि यार क्या शाबाश की मिल गए हम लोग को। लेकिन बाद में बोले इसमें मेरा गाना किधर है।
1: अरे बाप रे,
0: तुम्हारी अरेंजमेंट ऊपर जा रही है मेरे गाने पे।
1: गाने के ऊपर चढ़ गई है।
0: चढ़ गई है ना, मेरा गाना गया किधर।
1: अरे अरे अरे,
0: तो मेरा गाना नहीं है, तो ये गाने के लिए ये नहीं चलेंगे, ये और किसी के गाने को लगाओ आप। इसके लिए अलग टाइप थोड़ा सा

0: उन्हें थोड़ा सा हिंट दिया, ये टाइप ये टाइप ये टाइप करो, तो फिर बाद में हम लोग
1: पूरा काम फिर से किया।
0: हाँ, तो ये मिल गया ना।
1: हाँ,
0: कि बाबा गाने पे चढ़ना नहीं चाहिए,
1: सपोर्टिंग होना चाहिए,
0: सपोर्टिंग चाहिए।
1: क्या बात,
0: तो इतने बड़े आदमी है वो क्या।
1: बल्कि आपने तो श्रीधर फड़के के साथ भी काम किया है।
0: हाँ, उनका ओंकार स्वरूप सुरेश वाडकर ने गाया हुआ, सुपर डुपर हिट
1: एकदम एकदम,
0: तो उसका पूरा अरेंजमेंट मेरी है।
1: क्या बात है, और वो तो बहुत आज भी घर घर में बजता है।
0: हाँ, और उनका श्रीधर जी का और एक बढ़िया एल्बम आशा जी ने गाया हुआ, ऋतु हिरवा नाम का।
1: जी जी,
0: तो एक्चुअली वो एल्बम का पूरा अरेंजमेंट श्यामराव कांबळे करने वाले थे।
1: हाँ हाँ,
0: बड़ा अरेंजर, तो लेकिन चार गाने को उन्होंने अरेंजमेंट करके हमको दिल लिख के दिया, उधर भी मैं और सूरज।
1: अरे वाह,
0: क्योंकि एक बार मैं भूल गया बोलना, पहला अरेंजमेंट हम लोग ने किया ना जो,
1: जी
0: तो एक साथ किया हम लोग ने उज्जवल सूरज नाम से।
1: अरे वाह वाह,
0: फिर बाद में अलग अलग करने लगे, पर
1: क्योंकि जो आपका मूल नाम है आपको
0: उज्जवल। हाँ, मेरा नाम उज्जवल है
1: जी,
0: और उसका सूरज।
1: वाह वाह,
0: तो उज्जवल सूरज नाम से हम लोग ने काफी काम किया।
1: लेकिन कितना सुंदर है उज्जवल सूरज।
0: और ये मौका हम लोग ने पहला अरेंजमेंट का मौका हमको दिया कवि शांताराम नांदगांवकर, मराठी के जाने माने कवि है
1: जी,
0: शांताराम नांदगांवकर जी।
1: अच्छा,
0: उनका एक कुछ टीवी का काम था जिसमें सुरेश वाडकर, कविता कृष्णमूर्ति ऐसे लोग गाने वाले थे, अनुराधा पौडवाल वगैरह।
1: हाँ हाँ,
0: उसमें ये गाना इन्होंने भी गाया था, यशोदास ने भी गाया था।
1: वाह,
0: तो वो पहला मौका उन्होंने दिया, तो ऐसा तो काम चलते रहा
1: जी। बल्कि मुझे ये पता है कि आपके नाम पर एक रिकॉर्ड है कि एक ही दिन में आपने चार बड़े आयोजन बजाए।
0: चार बड़े फुल प्रोग्राम, यानी कि
1: साढ़े तीन घंटे के,
0: साढ़े तीन घंटे के, यानी पहला में 11 बजे परेल का दामोदर हॉल है।
1: नहीं, लेकिन मुझे इसकी पूरी भूमिका बताइए, ये कैसे हुआ कि एक ही दिन में इतने सारे कार्यक्रम होने लगे।
0: मेरा एक साथी बजाने वाला जो सिर्फ ऑर्केस्ट्रा बजाता है, रिकॉर्डिंग नहीं बजाता है, अनिल गोसावी नाम, तो मुझे बोलता था आज भी तीन शो बाजू ले।
1: हाँ,
0: मैं बोला तीन शो कैसा बजा सकता है, रिदम वाला है उसका स्टेमिना क्या होता है, तो मुझे भी कभी मौका मिले
1: जी
0: तो मैं भी बजा लूं। तो एक दिन मौका आ गया कि 11 बजे परेल में, 3 बजे रविंद्र नाट्य मंदिर, अलग अलग प्रोग्राम।
1: हाँ,
0: यानी कि सप्तरंग नाम का प्रोग्राम 11 बजे बजाया।
1: हाँ,
0: 3:30 बजे अशोक हांडे का मंगल गाणी दंगल गाणी नाम का बड़ा
1: बहुत मशहूर। हाँ,
0: फिर 8:30 बजे अरुण दाते और अनुराधा पौंडवाल।
1: हाँ,
0: उनका शुक्र तारा बजाया, और रात को 1:30 बजे वो हमारे पास एक उत्सव होता है साई बाबा का, उधर हिंदोले स्वरांचे नाम का बड़ा प्रोग्राम बजाया
1: एक ही दिन में।
0: हाँ, हाँ, और सबके संगीत संयोजन, तीन प्रोग्राम के संगीत संयोजन मेरे थे।
1: टेंशन नहीं हो रही थी यहाँ से वहां भागना है, ट्रैफिक है ये सब,
0: तब इतनी, अभी ये 91-92 की बात है।
1: जी जी,
0: तब इतनी सारी भीड़ भी नहीं थी वैसे, और साथ में एक म्यूजिशियन की गाड़ी थी जो कॉमन था मेरे साथ। तो वो आसान हो गए। तो उस दिन एक दिन में मेरे ख्याल से मैंने 130 गाने बजाए।
1: अरे बाप रे, एक दिन में
0: 130 गाने बजाए, और वो विदाउट एनी नोटेशन, वो सब बाहर नोटेशन, क्योंकि मुझे नोटेशन पढ़ने को इतना लंबा का दिखता नहीं है।
1: जी जी,
0: तो वो सब मुझे मेमोराइज करना पड़ता है।
1: ये तो और कमाल की बात है कि इतना सारा अपने सब कुछ आपकी स्मृति में रह गया।
0: एक बार से मैंने हमारे मराठी में विसुभाव बापट नाम के है।
1: जी जी,
0: तो एक ही स्टेज पे मैंने एक दिन में 5 बजे फुल घंटे पर।
1: अरे,
0: रविंद्र नाट्य मंदिर में पहला शो सुबह 6:30 बजे।
1: हाँ,
0: दूसरा 9:30 बजे।
1: हाँ,
0: तीसरा 3:30 बजे, चौथा 6:30 बजे, और पांचवा रात्र 9:30 बजे।
1: अरे बाप रे,
0: स्टेज पे फुल।
1: स्टेमिना कहाँ से लाते हैं आप?
0: तब था ये भी 20-30 बरस पहले के बाद।
1: क्या बात,
0: अपने आप को मैं ये देखता था कि मैं बजा सकता हूँ क्या।
1: हाँ, आप चुनौती देते थे
0: मुझे ही देता तुम। हालांकि फिजिकली थोड़ा सा थकान होती है।
1: जी, हमने सुधीर फड़के जी को याद किया तो उनका एक गाना सुनते हैं,
0: ज्योति कलश। सुनिए,
1: बिल्कुल वही सुनेंगे, ज्योति कलश चलते।

0: पापा जी, इतनी सारी बातें हम कर रहे हैं और आपके काम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो शाहिद साबरे के साथ है।
1: बिल्कुल,
0: उसके बारे में बताएं जरा।
1: वो शाहिद साबरे का लड़का मेरा देवदत्त, वो मेरा फ्रेंड।
0: अच्छा,
1: तो उनके पहले तो कुछ काम मैंने किया था
0: जी।
1: और शाहिद साबरे मेरे पिताजी को अच्छा पहचानते थे।
0: हाँ हाँ,
1: क्योंकि पिताजी के पिक्चर का जो जो मैंने जिक्र किया ना फकीरा, उसका एक फोक का गाना था
0: जी,
1: देवी का गाना, वो शायर जी ने गाया था, साबरे जी ने
0: जी।
1: तो उस टाइम तो उनको मालूम था अप्पा ये लाव रामबाव का लड़का है। तो फिर और मेरी उनका एक बड़ा दूरदर्शन ने प्रोग्राम किया महाराष्ट्र की लोकधारा। तो एक तो प्रोड्यूसर जी थी किरण चित्रे, उसको हम लोग टाई बोलते थे, किरण टाई। तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया, साबरे साहब ने, हमने देवदत्त ने भी मेरा नाम सजेस्ट किया अपने पिताजी के पास कि आपका कोई काम देना हो जाएगा अच्छा
0: जी।
1: और तब से उनका बहुत काम किया मैंने और सीखने को खूब मेरा फोक म्यूजिक
0: जी,
1: एक एक जो समझाते थे वो, ये ऐसा है, ये क्यों है, तो ऐसा है, क्यों है, ऐसा है।
0: वाह,
1: तो बहुत सारा मिल गया उधर से।
0: जब फोक म्यूजिक की बात हो रही है तो कोड़ी गीत आपने किए, आनंद चिंदे मिलिंद चिंदे वाले।
1: हाँ, कोड़ी गीत किए, लेकिन वो जो वैसा होकर के जो कोड़ी गीत ज्यादा पॉपुलर हो गए
0: जी,
1: वो मैंने नहीं किए।
0: अच्छा,
1: वो ज्यादा पॉपुलर हो गए, आनंद शिंदे के वगैरह कोड़ी गीत इतने पॉपुलर नहीं हो गए।
0: हाँ,
1: उनके जो पॉपुलर हुए एक गणपति के गाने पॉपुलर हुए
0: जी, तो एक पूरा दौर था।
1: हाँ, क्या हो गया उस टाइम, मुझे कंपनी के 5 कैसेट्स मिलते थे कॉम्प्लीमेंट्री और बहुत कैसेट उससे सब लाया था मैंने, ओंकार स्वरूपा घर में लाया, बैणा भैया, XYZ।
0: मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप जंबो जेट गा रहे हैं।
1: हाँ,
0: वो क्या है?
1: अशुराज में एक गाना था
0: जी,
1: रेलगाड़ी नाम का।
0: हाँ,
1: अशोक
0: कुमार दादामुनि ने गाया,
1: दादामुनि ने गाया। तो वो सुन के, मेरा एक फ्रेंड है अभी बड़ा पत्रकार है मराठी में, उसका बहुत सारा फॉलोइंग है
0: जी,
1: भाऊ तोरसेकर नाम का।
0: हाँ,
1: यानी उसके अभी सब्सक्राइबर 9-10 लाख है।
0: हाँ,
1: हम लोग कॉलेज, वो रूपारेल का लड़का, मैं रोहिया का।
0: हाँ,
1: लेकिन दोस्ती हो गई।
0: हाँ,
1: वो गाना रेलगाड़ी

0: चुन के उसको, और तब जम्बो जेट आया था नया नया,
1: हाँ
0: 67 वो जमाने में, तो उसको वो ये हो गया कुछ लिखा तो अच्छा गाना हो गया वो, तो पहले वो गाता था, फिर वो जब पत्रकार हो गया तो गाना छोड़ दिया तू, और लास्ट नियरली 50-55 इयर्स वो मेरे प्रोग्राम में मैं गाना गाता हूँ।
1: अच्छा, तो वो तो हम सुनेंगे आपसे, जब बल्कि आप तो आशीर्वाद का गाना भी बड़े चाव से गाते हैं, आपको क्यों इस गाने से बहुत लगाव है?
0: इतना अलग टाइप का गाना है वो,
1: बसंत देसाई,
0: बसंत देसाई का एक अलग एक्सपेरिमेंट है वो, यानी कि उसके पहले मैंने कैसा जो रैप सुना नहीं था,
1: जी जी,
0: ये जो रैप आ गया तो बहुत मजा आएगा सुनने में।
1: अच्छा,
0: और बोलने में वो जो
1: इतना, और आपको पूरे याद भी है?
0: याद भी है, लेकिन क्या है एक ब्रीद में बहुत सारे शब्द बोलने पड़ते हैं,
1: हाँ,
0: ब्रीदिंग का जो उसको मास्टरी चाहिए।
1: जी सुनाइए ना प्लीज,
0: अब इतनी ब्रीदिंग मेरी रहेगी कि मालूम नहीं, ट्राई करता हूँ।
1: यस,
0: रेल गाड़ी को चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक, अरे धड़क भड़क लोहे की सड़क, धड़क भड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, पुलाए चाती पार कर जाती, बालू रेत आलू के खेत, बाजरा दान हरा मैदान, बूढ़ा किसान मंदिर मकान चाय की दुकान, अरे पिलपक दंडी केले पे झंडी, पानी का कुंड पंच का चूर्ण, झोपड़ी झाड़ी खेती वाड़ी, बादल धुआ मोटा कुआ, कुएं के पीछे बगीचे धोबी का घाट, मंगल के घाट, हर गांव में मेला भीड़ जमेला, टूटी दीवार तट सवार रेलगाड़ी। ये बहुत लंबा एक,
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। अब जम्बो जेट सुनाइए।
0: तो जम्बो जेट का थोड़ा सा मराठी होने से वो थोड़ा सा मेरे लिए आसान है। अरे जम्बो जेट सोई, जम्बो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट, जगलो वसलो पुन्हा भेट, जम्बो जेट सोई, अरे घराला धडक दाराला सडक, पकडली गाडीने निघालो तडक, विमानतळावर ठोकतोय तर आणि भारत सोडून काढतोय पळ, उंच आकाशामधले ढग चमकून पाही सारे जग, भेदून गेले एक विमान पंखावरती होऊन ताण, पंखाला त्या पंखे होते विमानाला शेपूट होते, वायुसागरी तरते बेट, जम्बो जेट और तीन दिन अलग आर्टिस्ट, एक दिन रविंद्र साठे था, दूसरे दिन उत्तरा केळकर, तीसरे दिन सुरेश वाडकर
1: जी,
0: और तीनों में मैं था।
1: हाँ, आप अरेंज कर रहे थे या बजा रहे थे?
0: नहीं बजा रहा, तो मैं तब कीबोर्ड बजाता था
1: जी।
0: तो उत्तरा केळकर के साथ बजाने को गया, तो वो जो पब्लिक है उन्होंने पहले कहीं सुना था वो गाना मैं गाया हुआ, तो फरमाइश आ गई, तो कॉम्पेयर बोला ये गाना है फरमाइश, मैं बोला और लोगों के प्रोग्राम में अच्छा नहीं है, एथिक्स के बारे में थोड़ा सा अच्छा नहीं था, तो मैं बोला नहीं कुछ भी बोल दो मैं नहीं गाऊंगा। दूसरे दिन रविंद्र साठी के प्रोग्राम में फिर फरमाइश आ गई,
1: अरे रे,
0: उस टाइम भी मैंने मना कर दिया। सुरेश वाडकर के प्रोग्राम में
1: हंगामा हो गया।
0: हाँ, 2, 5, 10, 15 चिट्ठी, तो सुरेश के पास चिट्ठी दिया वो कॉम्पेयर ने।
1: हाँ,
0: तो कैसा बोलते, अरे अप्या अप्या बोल,
1: बहुत मजाकिया भी है,
0: मजाकी बिल्कुल अप्या, अरे बाबा काय ते जम्बो जेट जम्बो केवड़ा चिट्ठी आल्या गा बाबा तू गा, वो खुद बोला। हाँ, तो मैंने उस टाइम वो गाया था उधर,
1: क्या नजारा होगा वो,
0: वो खुद खुश हो गया, अरे क्या बात है, बोल तो क्या तेरा दमछा क्या है, बोले याद तो भी अच्छी है बोला।
1: मुझे एक बात बताइए कि आपने वो स्वरलिपि वाली जो किताब लिखी है उसके पीछे क्या रीजन था?
0: वो मराठी ऑर्केस्ट्रा बहुत करता था मैंने ना
1: जी।
0: अच्छा, अप्पा वड़ावकर एक नाम हो गया उधर स्टेज पे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते थे, क्या कर रहे हैं, कुछ पूछते भी थे, वैसा मैं क्लासेस नहीं लेता हूँ, लेकिन जिसको कुछ समझो कि कुछ आया आपको कुछ आया कि क्या फलन है, तो उनको समझ लेना एज अ सीनियर। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा कि कुछ नोटेशंस कि हम लोग को मालूम नहीं है वो, तो अभी हर एक को मैं कहा लिख के दूं। तो एक प्रपोजल आएगा क्या पुस्तक ये करने का, और वो मेरे गुरुजी के पास गया, प्रभाकर पंडित जी के पास गया कि ऐसा ऐसा आपा को बोलो ना नोटेशन का बुक ये करते हैं, वो मना कर रहे हैं। तो पंडित जी ने अभी गुरु का ही बोला रे कर दो ना, मतलब मराठी में बोला मास्तर मला लिहायला त्रास होतो,

0: नहीं मैं हेल्प करूंगा, बोले तू लिख इनिशियल, मैं चेक करता हूँ पूरा। तो ऐसे हो गया, 30-35 गाने का कुछ किया था
1: जी।
0: उसमें मैंने एक किया था कि और कुछ गाने हो गए, समझो भक्ति गीत, भावगीत, XYZ, लेकिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होना चाहिए। उसका नोटेशन भी मैंने उसको ऐड किया था।
1: क्या बात है, सुंदर।
0: वंदे मातर और जनगणमन
1: जी। मुझे लगता है आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का।
0: बिल्कुल,
1: तो बताइए कौन सा गाना सुना जाए हिंदी।
0: आरडी बर्मन का।
1: हाँ,
0: तो मुझे ना उनके बहुत सारे गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन वो जो पड़ोसन का अपन बोलेंगे ना, वो
1: एक चतुर्नार,
0: हाँ, एक अलग टाइप का गाना, और दोनों गायक ने इतना अच्छा बढ़िया गाया है ना
1: जी,
0: तो वो सुनेंगे।
1: बिल्कुल सुन।

ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಚೋಡಗನ ಜಿ ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಪಕಡಗನ

0: अपा, मैं अब आपसे पूला देशपांडे की याद चाहता हूं। उनके साथ आपने काम किया और एक बड़ी अच्छी याद है आपकी।
1: उनका एक एनसीपीए का प्ले था
0: जी,
1: उन्होंने लिखा हुआ, वामन केंद्र का उसको डायरेक्शन था और उसका म्यूजिक डायरेक्शन था जाने माने हमारे मराठी के अशोक रानडे नाम के
0: जी,
1: बहुत ज्ञानी आदमी। और वो बैकग्राउंड म्यूजिक बजाने के लिए दो ही म्यूजिशियन थे, एक कीबोर्ड्स और इसमें मैं,
0: हाँ,
1: और रिदम में देवदत्त साबड़े, शायर साबड़े का लड़का
0: जी।
1: तो रिकॉर्डिंग में ऐसा हुआ, फ्लूटिस्ट भी एक्चुअली था,
0: हाँ,
1: लेकिन वो थोड़ा लेट आऊंगा ऐसा बोल के, कुछ रिकॉर्डिंग थी सुबह, तो बोले चलो हम लोग इनके पीसेस लेते हैं, ऐसे रिदम का और अप्पा को जो कुछ कुछ है वो लेते हैं। तो हम लोग ने 11 बजे शुरू किया रिकॉर्डिंग, वो एनसीपीए में, वो स्टूडियो में, और 1:30 बज गया, हम लोग कम से कम 12-13 पीस रिकॉर्ड हो गए। और वो अंदर से आवाज आई, चलो अभी थोड़ा लंच करते। अभी ये पहले मुझे मालूम नहीं था कि अंदर पूला देशपांडे बैठे हुए सुन रहे हैं रिकॉर्डिंग पूरा। और जो अंदर से आ गए तो अरे भोरे बाप रे, इतना बड़ा आदमी के साथ में, सामने मैंने 2.5 घंटा बजाया, कैसा क्या बजाया मालूम नहीं है। तो आए, वाह अप्पा खूब छान, ऊपर आए, इंस्ट्रूमेंट था मेरा, तो मराठी में बोले, तुमसे है यंत्र हाताड़ू का थोड़ा सा थोड़ा, तो बोला आपको क्या बोले,
0: हाँ।
1: थोड़ा सा उनका हाथ मेरे कीबोर्ड के लग गया।
0: वाह।
1: फिर बाद में क्या, लंच के टाइम उसके बाद फिर भी फ्लूटिस्ट आया नहीं
0: जी,
1: तो अशोक जी रानडे जी रुके थे कि फ्लूटिस्ट आएगा, तो पुल देशपांडे बोले रुके क्यों, बोले आया नहीं फ्लूटिस्ट, आपा बजा सकता है क्या इंस्ट्रूमेंट पे, हाँ आ सकता है, तो छोड़ दो उसको, छोड़ दो बजवा लो इससे अच्छा बजा रहे। तो पूरा वो नाटक का पूरा जो कुछ बैकग्राउंड का मेलेडी था वो मैंने बजाया था।
0: वाह वाह वाह, कितना अच्छा अनुभव ये।
1: तो और दूसरी एक अच्छी बात है कि उनका जो एक मराठी में, जैसे हम लोग पॉडकास्ट बोलते हैं ना, वो उनकी जो कथा ही है वो खुद बोलते हैं, उनका बहुत सारे वीडियो आए, तो उसके पहले कुछ टाइटल ट्यून चाहिए थी। तो हमारा मित्र है, अभी नहीं है वो, आनंद था मोड़क नाम का
0: जी जी,
1: उन्होंने वो ट्यून कंपोज की और वो पूरा म्यूजिक मैंने कीबोर्ड पे बजाया, वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियोज में रिकॉर्डिंग हुआ, रिहर्सल चालू हुई और पूरा देशपांडे अंदर आ गए और मेरे बाजू

0: कुर्सी में बैठ गए और मेरे को बहुत टेंशन आ गई। इतना बड़ा खुद अच्छा हारमोनियम बजाते थे ना
1: जी जी,
0: और बड़े हारमोनियम
1: जी।
0: तो बोले फिर भी हो गया, मेरा काम अच्छा हो गया, उनकी शाबाश की मिल गई, बड़ा आदमी है।
1: वाह वाह क्या बात है। अच्छा आप YouTube पर कुछ वीडियोस जारी करते हैं अब पंची गप्पा, ये आइडिया कहाँ से आया था और इसमें तो आप तकरीबन शतक बना चुके हैं।
0: हाँ अभी 100th एपिसोड मैंने अब भी डाला, एक 4-8 दिन हो गए अभी
1: जी। तो ये तो सेंचुरी हो गई भाई।
0: हो गई। वो एक्चुअली क्या कोरोना के टाइम क्या हो गया,
1: हाँ।
0: मेरे एक मित्र है प्रशांत ठाकरे नाम का
1: जी,
0: अच्छा म्यूजिशियन है, म्यूजिक कंपोजर है और टेक्नीशियन अच्छा है। तो वो बोला तेरे पास इतना बोलने के लिए, इतना काम किया है, तू ये कर लेना। मैं बोला इसमें से मेरे को 0% आते है, कुछ मालूम नहीं। तो बोला मैं हूँ नसीर, तू आ मेरे घर में आ, मेरा सेटअप है, तू बोलते जा, बाकी पूरा जो पोस्ट प्रोडक्शन जो कुछ होगा अपलोड करने का भी सब मैं करूंगा।
1: अरे गजब।
0: अरे पैसा कितना लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। बोला तेरे को आने जाने में जितना लगेगा, खाने में लगेगा उतना ही, और तेरा पैसा मेरा पैसा कुछ नहीं है।
1: अरे गजब।
0: तो वो चालू हो गया, फिर अभी 100 एपिसोड हो गए मेरे।
1: देखते,
0: और वो
1: देखते।
0: एक योगा योग की बात है कि मेरे माँ का जन्म शताब्दी वर्ष चालू है अभी,
1: हाँ हाँ।
0: तो उसका एक प्रोग्राम मैंने किया था सावरकर हॉल में
1: जी,
0: बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे, तो वो एपिसोड मैंने 100 एपिसोड है मेरा।
1: हाँ वो आपने YouTube पे डाला।
0: हाँ YouTube पे डाला
1: जी। 100 एपिसोड, लोगों का क्या रिस्पांस है?
0: रिस्पांस ऐसा अच्छा है, लेकिन व्यू टाइम मेरा बहुत कम है
1: जी जी,
0: यानी मेरा अभी चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है।
1: अच्छा अच्छा, हाँ। अभी उसका इंतजार है।
0: इंतजार अभी एक्चुअली मेरा क्या है, ये एज ए डॉक्यूमेंटेशन मैं उसको कर रहा हूँ
1: जी जी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण काम है। आप अलग अलग लोगों को उसमें याद कर रहे हैं,
0: जिसको फायदा हो जाए उसको फायदा हो जाए,
1: कहानियां सुना रहे हैं।
0: कई कई मैं बोलता हूँ कि बाबा ये गाना अरेंज किया, तो उसके वो अरेंजमेंट के लिए मेरी क्या सोच थी।
1: हाँ अच्छा, अभी मैं आपको एक गाना याद दिला रहा हूँ सुरेश वाडकर के एल्बम का, मन है खुड़े कसे।
0: हाँ वो देव साहब का एल्बम है, यशवंत देव का। पूरा सोलो है, सुरेश का 8 गाने का सोलो है वो
1: जी।
0: उसमें एक तो मुझे 3 गाने में वायलिंस, ग्रुप वायलिंस, क्योंकि मराठी के इसमें कैसेट के लिए ग्रुप वायलिंस मिलते नहीं
1: जी,
0: तो बजट बढ़ जाता है ना, 10-12 वायलिंस लगाने पड़ते हैं, नहीं तो इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन इसमें मिल गए, वो काम करने में बहुत मजा आ गया, कोरस का यूज करने को लिए मजा आ गया। एक तो ट्यून्स बहुत अच्छी है देव साहब की, लिरिक्स अच्छी है, जो जो कभी किया है वो, और सुरेश ने बहुत अच्छा गाया, बहुत
1: लोकप्रिय है।
0: वायलिंस के तीन गाने जो है वो मुझे, तीनों गाने उस पे, एक गाने पे मैंने वीडियो भी बनाया उस पे।
1: अच्छा अच्छा।
0: हाँ एक एपिसोड वो गाने पे है
1: जी। अब मुझे ये बताइए कि इतने सालों से आप संगीत की दुनिया में हैं और हारमोनियम पर आपकी उंगलियां बिजली की फुर्ती से चलती हैं।
0: बचती थी। अभी एज के हिसाब से थोड़ी सी फ्लुएंसी कम हो गई
1: जी,
0: फिर भी अभी मैं लाइव प्रोग्राम बहुत बजाता हूँ।
1: हाँ
0: लेकिन पहले क्या, मैं एज ए लीड बजाता था
1: जी जी,
0: तो अभी थोड़ा सा सपोर्टिव,
1: हाँ
0: वो हो जाता है थोड़ा सा, अभी फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं ना
1: जी,
0: कभी अटक जाता है थोड़ा सा।
1: संगीत की दुनिया में जो आधुनिक बदलाव है उनके बारे में आपका क्या विचार है? क्या सब कुछ बहुत कृत्रिम होता जा रहा है?
0: ये तो होना ही था क्योंकि सब आर्टिफिशियल है, अभी एनालॉग रिकॉर्डिंग और डिजिटल में वो फर्क आएगा। लेकिन जैसे प्लस है उसके माइनस भी है
1: जी।
0: अभी जैसे समझो पहले में जो कैसेट्स किया उस टाइम 10 गाने करने पड़ते थे, क्योंकि C60 का कैसेट होता था तब,
1: हाँ।
0: 60 मिनट का कैसेट, तो कम से कम ये साइड 5 गाना, वो साइड 5 गाना। लेकिन वो एक एक कैसेट हम लोग ने 4-4 दिन में मास्टर दिया है, मास्टर टेप, क्योंकि 2 ट्रैक, पहले तो 1 ट्रैक में रिकॉर्डिंग हुआ तो करता था फुल ट्रैक रिकॉर्ड, फिर 2 ट्रैक हो गए, फिर 4 ट्रैक हो गए, उसी टाइम जो रिकॉर्डिंग के टाइम में बैलेंस होते, 4 ट्रैक जब हो गए तो एक ट्रैक पे रिदम पूरा बैलेंस हो जाता था, एक ट्रैक पे मेलेडी बैलेंस हो जाती थी, तभी एक ट्रैक वॉइस हो जाता था, तो मिक्सिंग को बहुत कम टाइम लगता था
1: जी जी।
0: अभी ये डिजिटल के हिसाब से क्या करते हैं, एक लाइन है तो उसका ऑप्शन 10 ऑप्शंस हो,
1: बहुत सारा पंच करते हैं
0: हाँ, फिर बाद में उनको ही पता नहीं चलता कौन सा अच्छा। हाथ लगा।

0: कोई बात नहीं।
1: तो फिर बाद में म्यूजिक डायरेक्टर ही कंफ्यूज हो जाता है, बाबू इसमें से अच्छा कौन सा है। लेकिन मैंने एक म्यूजिक डायरेक्टर को बोला था, तुम्हें 10 ऑप्शंस लिए क्यों, एक लिया, दो लिया, तीन लिया
0: जी,
1: लेकिन उसमें से एक तो अच्छा है ना।
0: हाँ।
1: तो दूसरे दो हटा दो ना उसी टाइम।
0: हाँ।
1: तो 10 रखेगा फिर बाद में तेरे को याद नहीं रहेगा कि कौन सा अच्छा है, तू सब सुनते रहेगा। एक गाने के मिक्सिंग को 1.5-2 घंटा लगना चाहिए, तो 6-8 घंटा लगता है,
0: कई कई दिन लगाते हैं।
1: हाँ, फिर एक दिन में एक गाना हो जाता है और क्या।
0: अपा, अब बातचीत जो है वो लगभग आखिरी पड़ाव पर आ चुकी है, और मैं चाहता हूँ कि अपनी पसंद का कोई एक गाना हमारे सुनने वालों को समर्पित करें आप।
1: एक तो श्री रामचंद्र जी का, वो मेरे वतन के लोग, लता दीदी का।
0: वाह,
1: श्री रामचंद्र के साथ मैंने काम किया एक बरस, वो हमारे मुख्य थे जब वसंत देसाई गुजर गए
0: जी
1: 75 को। उसके बाद एक बरस अण्णा ने, जिनको अण्णा बोलते थे सब इंडस्ट्री में, अण्णा ने वो उनके जगह काम किया है। और ये गाना है ना, कुछ अलग लगते है गाना सुनने के बाद, वो इमोशंस अलग हो जाती है, तो वो गाना सुने
0: जरूर। कवि प्रदीप की रचना है, इसे लता जी ने गाया था।
1: बिल्कुल।
0: और नेशनल स्टेडियम में जब दिल्ली में ये गाना लाइव हुआ था तो वो एक इतिहास है। अपा, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने अपने जीवन की इतनी सारी यादें हमारे साथ बांटी, नई पीढ़ी को चलते चलते क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
1: 2-3 चीजें हैं। एक तो डेडिकेशन तो होना ही चाहिए, पैसा मिलता है इसलिए काम मत करना।
0: वाह।
1: और काम करते करते पेशेंस चाहिए, टाइम पे आना, जो मैं करते रहा हूँ। अरेंजर हो गए तो उस हिसाब से काम करो, सिंगर हो गए तो मेहनत करनी पड़ेगी अलग तरह से, अपने गुरु को याद करो अच्छी तरह से, और सबको मैं शुभकामना देता हूँ, और विविध भारती के सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया है आपने। जो कुछ मैंने बात की है, हिंदी तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है।
0: अरे, आपने बहुत अच्छे से बात की है,
1: कोशिश की है, और आपने सब करवा लिया मुझसे। यूनिवर्सिटी तो ग्रेट है।
0: बहुत शुक्रिया।
1: थैंक्स।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में, अभी आप सुन रहे थे मराठी फिल्म के जाने माने संगीतकार अप्पा बढ़ावकर से यूनुस खान की ये बातचीत। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मह

0: उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो बन सारे अपन नरब दस पड़ विचार।
1: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
0: भाई बानी कोप्पा भर के पानी लिया और बा में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
1: आ रहे हैं विविध भारती पर।
2: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला किस्म को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। इस समय सुबह के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं यह आवश्यक संदेश।
4: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
5: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
6: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
7: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
6: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
7: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।

0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। लीजिए अब सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले प्रसारण।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने मिर्जा गालिब का ये कलाम सुना। सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज ये
0: धार। मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। शोभा जोशी की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं मिर्जा गालिब की एक और रचना, संगीत शांतनु मोहित्रा का।

शोभा जोशी की आवाज में अभी आपने ये मिर्जा गालिब की रचना सुनी। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज, गीत गुलजार साहब का और धुन राहुल देव बर्मन की।

0: का सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटिले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: वाली।
1: आइए सुनते हैं सादिक निजामी का ये नातिया कलाम, आवाज़ें अजीज नाजा खवाल और उनकी हमनवा की, धुन मास्टर इब्राहिम की है।

محمد سنو اے محبان آل محمد جسے دیکھنا

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं नौशाद साहब का संगीत, गैफ भोपाली की रचना, गायिका है परवीन सुल्ताना और फिल्म का नाम पाकीज़ा। हम आपको सुनवा रहे हैं उनकी गाई ये ठुमरी।

0: साधक।
1: ओ रे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए संत सूरदास का ये भक्तिपद, स्वर घनश्याम वासवानी का है।

0: उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो भुनसारे अपन नरब दशा पड़ विचार।
1: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
0: दुबई बानी कोप्पा भर के पानी लिया और बाह में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
1: आ रहे हैं विविध भारती पर।
2: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सूरदास के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं संत मीराबाई का भक्ति पद। इसे आवाज दी है डॉक्टर मलिका बनर्जी ने।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
3: पैदा हुआ हूँ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: रंग तरंग कार्यक्रम की अगली पेशकश जगजीत सिंह की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं अख्तर नाजमी का ये कलाम।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। कुछ क्षणों में दोपहर के 12 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए। श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद के दौरान ये बात कही।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूद

0: चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बैठक में सहयोग मंच के शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा भी हुई। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी, इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकटतम परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों का इलाज और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जापान एशियाई खेलों में भारत की रोशिबिना देवी नाउरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले प्रसारण।
2: लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज यादों की महफिल में हम सुनेंगे उन्हीं गीतों को जिनमें हैं जिया यानी दिल न लगने की कसक, दिल की बेचैनी और किसी अपने की कमी का एक भरपूर एहसास। तो आइए यादों की इस महफिल में आज दिल की उस बेचैनी को गीतों के साथ महसूस करते हैं। ठीक है, यह इस कार्यक्रम का पहला गीत, स्वर लता मंगेशकर का। फिल्म का नाम है बुड्ढा मिल गया। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था बुढ़ा मिल गया। कार्यक्रम में अब सुनिए ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में कमर जलालाबादी की रचना, स्वर आशा भोंसले का और फिल्म का नाम फागुन।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज के द्वार।
0: मिलिए जाने माने गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। यादों की महफिल कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म घर का ये गीत। गीतकार गुलजार साहब और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

0: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय दोपहर के 12:15 हो रहे हैं। लीजिए सुनते हैं ये आवश्यक संदेश।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले प्रसारण।

पेइंग गेस्ट। इस फिल्म में अभी आप आशा भोसले और किशोर कुमार को सुन रहे थे। रश्मि देखो, पिछले हफ्ते किसी रिश्तेदार से बात हो रही थी मेरी जो मुंबई में रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि उनके घर की खिड़की से बंदरगाह पे लगे बड़े बड़े जहाज दिखते हैं। ये सुनकर मन में एक पुरानी बात ताजा हो गई कि हमारा देश तो सदियों से समुद्र से जुड़ा हुआ है। और आज यानी 24 सितंबर को

0: पेइंग गेस्ट। इस फिल्म में अभी आप आशा भोसले और किशोर कुमार को सुन रहे थे। रश्मि देखो, पिछले हफ्ते किसी रिश्तेदार से बात हो रही थी मेरी, जो मुंबई में रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि उनके घर की खिड़की से बंदरगाह पे लगे बड़े बड़े जहाज दिखते हैं। ये सुनकर मन में एक पुरानी बात ताजा हो गई कि हमारा देश तो सदियों से समुन्द्र से जुड़ा हुआ है, और आज यानी 24 सितंबर को हर साल विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने इस साल 26 और 27 दोनों के लिए एक साझा विषय दिया है, जिसका भाव है नीति को व्यवहार में बदलना और समुद्री उत्कृष्टता को शक्ति देना।
1: बिल्कुल, और भाई जो भारत है वो तो उसके व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्री रास्तों से होकर गुजरता है श्रुति, पर हमारे नाविक और मछुआरे परिवार इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ हैं। तो भाई उनकी मेहनत के बिना ना तो बंदरगाह चलेंगे, ना ही व्यापार आगे बढ़ेगा। और देखिए ना, संभावनाएं समुद्री पर्यटन की कितनी अपार संभावनाएं हैं। गोवा, केरल, उड़ीसा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तमिलनाडु, गुजरात के तट, और इसके अलावा जिसे कहते हैं जैव विविधता, मछुआरे समुदाय और जलवायु संतुलन का एक महत्वपूर्ण आधार है समुद्र। तो भाई इन तटीय परिवारों को हमारा प्रणाम, जिनकी वजह से हमारे घरों तक इतनी सारी चीजें पहुंच पाती हैं।
0: बिल्कुल।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म समुंदर में।
1: श्रुति, कल शाम को मुझे एक जगह ना ढोल बजने की आवाज आई, तो ना सच बताऊं कि मेरा जो मन है ना एकदम अपने गांव के मेले में पहुंच गया। वहां ना इतनी भीड़ और इतनी रौनक और इतने रंग एक साथ होते थे, और वहां ना एक हर साल एक मेला लगता था जिसमें झूले होते थे और मिट्टी के खिलौने होते थे, और सच बताऊं वो मशहूर जलेबी वाला जिसकी दुकान पर सबसे लंबी कतार लगती थी।
0: असल में गांव में लगने वाले मेले सिर्फ मनोरंजन की जगह नहीं होते, बल्कि हमारी गांव की संस्कृति की धड़कन हुआ करते हैं। फसल कटने के बाद पूरे साल की मेहनत का उत्सव इसी मेले में मनाया जाता है, और तभी लोकगीत गाए जाते हैं। कठपुतली, नौटंकी जैसी लोक कलाओं का मंचन तो पुराने समय में कितना हुआ करता था, और साथ ही जो गांव के कारीगरों को भी अपनी मेहनत को बेचने का ये मौका सबसे बढ़िया मिलता था।
1: बिल्कुल, और जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं और जो हमारे बुनकर हैं, लकड़ी के खिलौने गढ़ने वाले जो कारीगर हैं, भाई पूरे साल इन्हीं मेलों के इंतजार में तो रहते थे, क्योंकि उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता था। यानी ये छोटे छोटे मेले गाँव की अर्थव्यवस्था की एक अहम कड़ी हुआ करते थे।
0: देखो, भारत में तो कुछ मेलों का इतिहास सदियों नहीं बल्कि हजारों साल पुराना माना जाता है। जैसे राजस्थान का पुष्कर मेला सदियों पुराना ऊंट मेला है, जो हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है और आज भी दुनिया भर के लोग इसे देखने आते हैं। इसी तरह बिहार का सोनपुर मेला, जिसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है, एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़े पशु मेलों में गिना जाता है ये मेला।
1: जी, और जो अब देखो आपने कहा था ना, वही सवेरे थोड़ा थोड़ा ठंडक सी जो महसूस हो रही है, तो अब हमें मेलों के भी याद आने लग गई। और भाई हमारे जो हरियाणा का सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी आएगा, और बहुत खूबसूरत वो मेला होता है। कुशल कारीगरों को मंच देने के लिए वो शुरू किया गया था।
0: और आपको एक बात बताऊं कि इस मेले में देश के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के भी हजारों शिल्पकार और लाखों दर्शक पहुंचते हैं। और इसी तरह मेरठ का नौचंदी मेला तो आपको याद ही होगा, और अभी देखो नवरात्रे आने वाले हैं, नवरात्रों में नरी सैमरी का मेला लगता है, कैला देवी का मेला लगता है, और करौली का मेला भी बड़ा प्रसिद्ध मेला है।
1: वही श्रुति, वक्त के साथ इन मेलों को

0: रूप भी बदल गया है। पहले जहाँ ये छोटे कस्बों और गांवों का सामाजिक केंद्र हुआ करते थे, वहीं आज जो ये मेले है ना, बड़े संगठित आयोजन और प्रदर्शनी का रूप ले चुके हैं, जहाँ जो कारीगर हैं वो सीधे बड़े बाजार और खरीदारों तक पहुँचने का उन्हें मौका मिलता है।
1: देखो फिर भी उनकी आत्मा वही पुरानी है, आज भी अगर मौका मिले तो किसी नजदीकी मेले में जाकर वो पुराना अनुभव फिर से जिया जा सकता है कि नहीं।

0: अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे, फिल्म थी राजा रानी।
1: और मेलों से हम वापस आते हैं अपने घर की ओर। जो हाँ। मीठा आप पूछ रही थी ना श्रुति जी, तो जवाब आ चुका है हमेशा की तरह।
0: बल्कि मैं कहूंगी मेलों से मेलों पर आते हैं
1: जी, मेलों से मेल पर आते हैं। तो पहली मेल आ गई है नवीन भाटिया जी, मोती नगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कह रहे हैं कि हमें पसंद है भाई बेसन के लड्डू, बहुत बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं बेसन के लड्डू को नवीन भाटिया जी। आगे
0: देखो, मेरे पास भी एक मेल आई है, ये आई है डॉक्टर राजेश्वर राव जी की। ये लिखते हैं कि हम तो पायसम बनाने में बड़ा मजा आता है, और जिसे हिंदी में खीर कहते हैं, विद ड्राई फ्रूट्स। और पायसम में तो और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं और बड़ी स्वादिष्ट होती है पायसम खाने में।
1: और हमारे साथ जुड़ गए हैं उमेश कुमार ख्याला से, और लिख रहे हैं कि त्योहारों पर हलवा बनाते हैं और प्रोग्राम और गाने जो है वो साथ में होते हैं, तो भाई बहुत अच्छा लगता है हमें। भाई क्या बात है, मीठे मीठे गीत और मीठा मीठा हलवा, तो भाई ये तो जबरदस्त एक जोड़ी बन जाती
0: है। और देखिए हलवा किसी और के यहाँ भी बनाया जाता है। ये है सुदर्शन मुखी जी, अनिता मुखी और सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से।
1: अच्छा,
0: ये लिखते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो सूजी का हलवा और दूध की खीर बनती है।
1: भाई क्या बात है, भाई हम तो कहते हैं ना ये दिल है देसी। भाई जो देसी खाने में जो मजा है अपना, जो भारतीय खान पान है वो गजब है। और एक और मेल आया है शशि भूषण आदर्श नगर दिल्ली से, कह रहे हैं कि मीठे में खीर बनाते हैं, तो भाई देखिए दिल है देसी बिल्कुल, है ना।
0: और देसी अगर दिल है तो गाना भी देसी होना चाहिए ना।
1: तो ऐसे ही खत लिखते रहिए, मेल लिखते रहिए और जुड़े रहिए एफएम गोल्ड के साथ।

0: देखिए रश्मि जी, कितना प्यारा गीत अभी हमने श्रोताओं को सुनाया, और ये गीत था फिल्म आए दिन बहार के, इस फिल्म से हमने लिया था, और गायिका थी आशा भोसले। और क्या हुआ रश्मि जी, एक मैं आपसे एक वाकया वो करना चाहती थी साझा। पिछले हफ्ते मैं ना घर की सफाई कर रही थी और एक दराज खुली तो उसमें न जाने कितने पुराने चार्जर और दो खराब मोबाइल पड़े हुए थे। तभी ख्याल आया कि ऐसा तो शायद हर घर में होता होगा
1: जी। और ये जो पुराना जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना, इसको कहा जाता है ई कचरा, और भारत में इसके सुरक्षित निपटान के लिए ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए गए हैं। और इन नियमों के तहत हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है श्रुति, कि वो पुराना मोबाइल और पुरानी बैटरी या खराब उपकरण सामान्य कूड़े में ना फेंके जी।
0: और सबसे अच्छा तरीका यही है कि इन्हें अधिकृत ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर तक पहुंचाया जाए। कई मोबाइल कंपनियां और शोरूम भी आजकल तो पुराना फोन वापस लेने की सुविधा दे रहे हैं, और एक्चुअली इन जो उपकरणों में हानिकारक तत्व होते हैं जो अगर मिट्टी और पानी में मिल जाएं तो सेहत को बड़ा नुकसान साबित हो सकता है।
1: और देखिए जो पुराना सामान जो होता है ना, वो कबाड़ी वाले को दे दिया जाता है, वो भी हम कहेंगे तो वो सही नहीं होता, क्योंकि ये असंगठित जो बाजार में इन्हें बिना

0: किसी सुरक्षा के लिए अगर तोड़ा जाता है तो ये खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए जब अगली बार अपने घर से श्रुति कोई पुराना मोबाइल या बैटरी निकाले तो भाई थोड़ी सजगता जरूर रखें और उन्हें आप सही जगह पहुंचाएं। ये मेरी आपसे प्रार्थना है।
1: और मेरी प्रार्थना ये है कि अगला गीत सुने।
0: जी।

0: शर्मीली फिल्म में अभी आप किशोर कुमार और लता मंगेशकर को सुन रहे थे। रश्मि, आज सुबह जब चाय बनाते वक्त शहद की शीशी मेरे हाथ में आई ना, मैं शहद वाली चाय पीती हूँ, तो एक पुराना सवाल मेरे मन में कौंधा। आपको पता है कि मिस्र में हजारों साल पुराना शहद मिला है, वो आज भी खाने लायक है।
1: अच्छा अश्रुति, ये ना इस बड़ा दिलचस्प विज्ञान है इसके पीछे। दरअसल क्या होता है, शहद में ना पानी की मात्रा बहुत कम होती है और ये हवा से नमी खींचने का गुण रखता है, जिसमें बैक्टीरिया के लिए जीवित रहना बिल्कुल असंभव हो जाता है।
0: हाँ, तभी तो शहद का जो पीएच स्तर है ना वो काफी अम्लीय होता है और लगभग 3 से 4.5 के बीच, जैसे नींबू के रस में होता है वो भी तो अम्लीय माना जाता है। तो इस माहौल में ज्यादातर जो सूक्ष्म जीव है वो पनप ही नहीं पाते।
1: और इसके अलावा श्रुति, मधुमक्खियां जो है वो शहद बनाते समय एक एंजाइम भी छोड़ती है जिसमें हल्की मात्रा में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, और ये भी एक प्राकृतिक कीटाणुनाशक की तरह काम करता है।
0: यही तो वजह है कि हमारी नानी दादी हमेशा कहा करती थी कि शहद को कभी फ्रिज में मत रखो, बस उसे तो कस के बंद करके बर्तन में।
1: क्या बात है श्रुति, आज तुम मीठा मीठा बिल्कुल मीठे मीठे गीत सुना रहे हो, मीठा बनवा रही हो और शहद के बारे में बता रही हो।
0: एक काम करते हैं, मीठा नहीं, आपको थोड़ा खट्टा मीठा एहसास दिला देते हैं इस गीत से।
1: जी।

0: खट्टा मीठा फिल्म में अभी आप किशोर कुमार और उषा मंगेशकर को सुन रहे थे।
1: और श्रुति, घर की दहलीज पे जो है गणपति बप्पा जब अपने धाम लौटने की तैयारी करते हैं ना, तो सच बताऊं हर और एक खामोश सी उदासी और एक ना भीनी सी मुस्कान ना दोनों साथ साथ उतर आती हैं। तो बप्पा की विदाई का दिन बस आने ही वाला है और जो लोग दो दिन तीन दिन के गणपति रखते हैं वो लोग भी लगातार उनकी विदाई कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, इस विदाई को कैसे भव्य बनाया जाए, दिव्य बनाया जाए और साथ ही धरती के प्रति जिम्मेदारी भी हम अपनी निभाई जाए, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये विसर्जन नदी या तालाब में सीधे करने की जगह अब कई शहरों में नगर निगम ने कृत्रिम कुंड और मोबाइल टैंकों की व्यवस्था की है, जहां विसर्जन करने से नदी का जल जो है वो भी शुद्ध रहेगा और विधि विधान भी पूरा हो पाएगा
1: जी। और अगर जुलूस की बात करें श्रुति, तो भाई ढोल ताशे भजन और कीर्तन से माहौल को इतना ही उत्सवी बनाया जा सकता है। बस ध्यान देना ये है कि रात 10 बजे के बाद आप लाउडस्पीकर की आवाज थोड़ी सी धीमी कर दें ताकि किसी को तकलीफ ना हो।
0: जी,
1: और जो फूल माला हम बड़े प्रेम से चढ़ाते हैं, नारियल जैसी जो पूजा सामग्री हो उसको पानी में बहाने की जगह जो निर्माल्य है, निर्माल्य कलश में डाला जाए। और सच बताऊं बहुत सी जगह ना इसे खाद बनाने के लिए भी काम में लाया जाता है।
0: बिल्कुल ठीक कह रही हो, यानी बप्पा का प्रसाद धरती के लिए भी वरदान बन सकता है। जो कल बप्पा की विदाई करें तो दिल में धरती के लिए भी उतनी ही श्रद्धा रखें, उतनी ही सच्चाई और उतनी ही भव्यता और दिव्यता से गणपति को विदाई दें
1: जी, और ताकि वो अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

के साथ दो लोग और जुड़ गए हैं, राजू अग्रवाल, केशव प्रियांशी, विवेक चौधरी। वैसे कहते हैं जो भी खाना बना हो लेकिन जरूरी ये है कि वो बाजारी खान पान से जो है रसायनों से मुक्त हो। और साथ में गौरी शंकर जी जुड़ गए हैं रोहतक से, कह रहे हैं कि भाई खसखस का हलवा या पोस्का हलवा उसको रात को भिगो दें और सुबह सिलबट्टे पर पीस

0: बादाम मिला दें और दिमाग के लिए दवाई का काम करता है। और दूध भी डालना पड़ता है, पूरी सर्दी ये खाएं और रोजाना और सुबह शरीर के में ताकत का भी काम करता है। शुक्रिया गौरीशंकर जी।
1: और देखो रश्मि, इन सारी बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। हाँ, हम अपने श्रोताओं के जवाब भी हम भूले नहीं, हमने सभी श्रोताओं को जवाब दिए हैं। और लेकिन श्रोता हमें मेल करते रहे, हमें पूरी उत्सुकता से इंतजार रहेगा। तो अब इस घर आंगन में थोड़ा सा सुस्ताना चाहिए कि नहीं?
0: पर ये आंगन सूना नहीं होगा क्योंकि इसमें आपकी यादें हैं। और हम इसी के साथ इजाजत लेते हैं जाने की और साथ में कहते हैं
1: कि आप सभी को बहुत सारा स्नेह हमारी तरफ से, बहुत सारी शुभकामनाएं आने वाले त्योहारों की। और हम फिर से इस घर आंगन में आपको मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे श्रुति पुरी
0: और रश्मि कुकरेती को दीजिए आज्ञा। नमस्कार
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। श्री मोदी ने बीकानेर में आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे यात्रियों से संवाद किया। ये यात्रा कल बीकानेर पहुंची थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा ही सर्वोच्च कर्तव्य है और यही जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। ये पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और लाभार्थी भी।
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए और अभियान के दौरान पौधरोपण तथा स्वच्छता अभियान चलाए जाने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर से इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी भी मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वडनगर से वाराणसी जा रही बाइक रैली को रवाना किया। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए आज सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जा रही है। उपखंड स्तर पर हो रही इस लॉटरी के जरिए प्रदेश

0: 14,403 ग्राम पंचायतों में सरपंच और 1,30,000 से अधिक वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण तय किया जा रहा है। इनमें 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। सरपंच पदों में अनुसूचित जाति के लिए 2,493, अनुसूचित जनजाति के लिए 3,058 के लिए ग्राम पंचायतें निर्धारित की गई हैं। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1,961 ग्राम पंचायतें तय की गई हैं। जयपुर में एसडीएम प्रथम खुशबू शर्मा ने झोटवाड़ा पंचायत समिति की 19 ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली। जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों में से 597 सरपंच और 5,931 वार्ड पंच पदों के लिए चुनाव होंगे। शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स का आज जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। रेलवे स्टेशन पर लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ पर्यटकों का स्वागत किया। इसके बाद सैलानी जयपुर के ऐतिहासिक स्मारकों के भ्रमण के लिए रवाना हुए। ट्रेन में 8 देशों के 64 पर्यटक जयपुर पहुंचे हैं। इनमें भारत के 22, ब्रिटेन के 14, अमेरिका के 13 और ऑस्ट्रेलिया के 8 पर्यटक शामिल हैं। जर्मनी, स्विट्जरलैंड और स्पेन के 2-2 तथा पुर्तगाल से 1 पर्यटक दल भी शामिल है। हनुमानगढ़ के महात्मा गांधी राजकीय जिला अस्पताल में मदर लैब जल्द ही शुरू की जाएगी। अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर शंकर सोनी ने बताया कि नई लैब में करीब 150 तरह की जांच एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि ये लैब पीपीपी मॉडल पर आधारित होगी। लैब के लिए मशीनें अस्पताल पहुंच चुकी हैं और निजी कंपनी के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। झालावाड़ पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित आय से खरीदी गई 3,02,00,000 रुपए से अधिक की संपत्तियां स्थायी रूप से फ्रीज की हैं। ऑपरेशन दिव्य प्रहार 2.0 के तहत तस्कर सुगन चंद तंवर और उसके परिवार के लोगों के नाम दर्ज संपत्तियों पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार इनमें 3 मकान, कृषि भूमि और वाहन शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत यह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई से संबंधित लोग इन संपत्तियों का स्वतंत्र रूप से उपयोग या विक्रय नहीं कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस 138वीं कड़ी का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: Said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual.
2: और मैं तो बरसों से कहता आया हूँ ये है बॉम्बे मेरी जान, और तभी सब एक साथ बोल पड़ते हैं। तो फिर तय रहा, अगली बार जब कोई गीत बजे और उसमें किसी शहर या जगह का नाम सुनाई दे तो सिर्फ गीत मत सुनिएगा, उस शहर की उस जगह की आवाज भी सुनिएगा, क्योंकि इन गीतों ने हमारी गलियों, बाजारों, रंगों, खुशबू और यादों को भी सभी की जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा बना दिया है। तो समझ आई हमारी आज की
3: आभार।

जी तो हमने शुरुआत की है बीकानेर से। कभी गए आप इस शहर में? बताइएगा, अगर आप बीकानेर गए हैं तो आपको कैसी लगी वहाँ की आबो हवा, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन? और ये भी बताइएगा कि बीकानेर का नाम और किन किन गीतों में आया है, है ना? एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बीकानेर में पला बड़ा हूँ। 1991 के अगस्त माह में बीकानेर आया तो यहाँ के लोगों की सादगी और स्नेह व्यवहार देखकर कतई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अपने घर से 250 किलोमीटर दूर आ गया हूँ। सफर आगे बढ़ा मगर रेडियो का मेडिकल की पढ़ाई यानी MBBS पूरी हुई और PG भी हो गई, पता ही नहीं चला। आकाशवाणी बीकानेर पर सन 2000 में जब पहली बार अपनी मौलिक क्षणिकाएं पढ़ी तो मेरा मन कितना पुलकित हुआ था यहाँ बता पाना बेहद मुश्किल है। इस शहर की सेंट्रल लाइब्रेरी में टाउन हॉल में अक्सर जाना होता था। आज भी जब उधर से गुजरता हूँ तो गला रुंध सा जाता है। आज सफल हूँ, लोगों की सेवा चर्या में खूब व्यस्त रहता हूँ, गाड़ी बंगला सब कुछ है, मगर मन के किसी कोने में बीकानेर से दूर जाने की कसक आज भी है। आगे आप लिखते हैं कि यहाँ के रसगुल्लों, भुजिया, नमकीन के अलावा मेरी जिंदगी में बीकानेर का बहुत महत्व है। और आपने भी ये गाना सुनना पसंद किया है जो अभी अभी हमने आपको सुनवाया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बीकानेर में रहते हैं और आपने अपने शहर के बारे में हमें जानकारी दी है और ये बताया है कि अपना शहर कोई नहीं भूल पाता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम आपके साथ आपके शहर बीकानेर के साथ साथ शहरों की कई शहरों की सैर करने वाले हैं। बीकानेर की हवाओं में जहाँ राजस्थान की गर्मजोशी महसूस होती है, वहीं जयपुर के रंगों में राजसी विरासत झलकती है, बनारस की गलियां जीवन का दर्शन कराती हैं, तो लखनऊ की तहजीब मन मोह लेती है, आगरा का ताज मोहब्बत की कहानी कहता है, मुंबई तो सपनों की नगरी है ही, वहीं कश्मीर की वादियां हमें प्रकृति की सैर कराती हैं। यात्राओं से हम अपने घर लौट आते हैं, लेकिन जब कभी किसी गीत में उसी शहर का नाम सुनाई देता है तो हम फिर से उस शहर की यादों में खो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मी गीतों में शहरों के नाम सुन

सुनकर सबसे ज्यादा खुश उन शहरों के लोग होते हैं जैसे बरेली, बनारस, जयपुर, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, कश्मीर, आगरा, चेन्नई, जयपुर, भोपाल से लेकर लुधियाना तक का नाम हमने फिल्मी गीतों में सुना है। ज्यादातर कहानी के मुताबिक गीतकार अपने गीतों में शहरों के नाम इस्तेमाल करते हैं और देखने की बात यह है कि ये गीत बहुत हिट भी हुए हैं। एक श्रोता ने कहा है कि भारतीय सिनेमा यानी बॉलीवुड और संगीत का रिश्ता सदियों पुराना है। फिल्मों में गाने केवल कहानी को आगे बढ़ाने का माध्यम नहीं होते बल्कि वे दर्शकों की भावनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त जरिया भी हैं। हिंदी सिनेमा की एक बेहद दिलचस्प और लोकप्रिय परंपरा रही है गानों में शहरों के नामों का इस्तेमाल। कभी किसी शहर की संस्कृति को दर्शाने के लिए तो कभी वहाँ के बदलते स्वरूप या इश्क को बयां करने के लिए गीतकारों ने शहरों को अपने शब्दों में बड़ी खूबसूरती के साथ पिरोया है। बहुत सुंदर विचार हमारे श्रोता लिख रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद पक्षी का लिखा गीत सुना था। आवाज लता मंगेशकर की थी और फिल्म का नाम था राजा और रंग। हमारे दो सवाल तो आने ही वाले हैं लेकिन उससे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बीकानेर का नाम और किन किन गीतों में सुनाई देता है, बताइएगा फटाफट। तो चलिए थोड़ा सा आगे निकलते हैं, बीकानेर से थोड़ा आगे चलते हैं और वहां आता है क्या, जयपुर। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है गहरी चाल।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे भारत देश का हर शहर निराला और प्यारा है, किसका नाम ले किसका नहीं। वैसे तो हम अवध क्षेत्र के निवासी हैं, पर आत्मिक रूप से तो हम राजस्थान प्रांत से ही जुड़े हैं। राजस्थान के हर शहर की बात ही अलग है। केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश, क्या बात है। आपने तो बीकानेर की मांड गायकी याद दिलवा दी, जो मांड गायिका पद्मश्री प्राप्त अल्लाह जलाईबाई ने ये रचना गाई थी, केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश। कभी सुनिएगा इस रचना को और बताइएगा कैसा लगा आपको ये बहुत ही खूबसूरत लोकगीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भुजिया के लिए बेहद मशहूर है बीकानेर, और बीकानेर भुजिया शहर की वैश्विक पहचान बन गई है, मैं भी इसके स्वाद का दीवाना हूँ। वहीं श्रोता लिखते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो बीकानेर नहीं गया हूँ अभी तक। और एक श्रोता ने लिखा है

ने ये रचना गाई थी केसरिया वालम आवुनी पधारो मारे देश। कभी सुनिएगा इस रचना को और बताइएगा कैसा लगा आपको ये बहुत ही खूबसूरत लोकगीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भुजिया के लिए बेहद मशहूर है बीकानेर और बीकानेर भुजिया शहर की वैश्विक पहचान बन गई है, मैं भी इसके स्वाद का दीवाना हूँ। वहीं श्रोता लिखते हैं कि नहीं नहीं मैं तो बीकानेर नहीं गया हूँ अभी तक। और एक श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान का मुख्य शिक्षा निदेशालय बीकानेर में है, सर्विस के लिए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले 1990 में मैं बीकानेर पहली बार गई थी, क्या बात है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बीकानेर के रास्ते जैसलमेर गया हूँ और तनोट बॉर्डर भी घूमा हूँ, ऊँट की सवारी और जीप सवारी भी किया हूँ, क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं दुनिया एक श्रोता लिखते हैं कि वाह फिर से आज का ये कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत बन पड़ेगा जब हम बहुत सारे शहरों के रास्ते न जाने कहां कहां घूमने निकल पड़ेंगे, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो सुरीले सफर के गीतों के बाजार की रौनक खींच लाई हमें और हम आज इस खास कार्यक्रम का लुत्फ भी उठाने वाले हैं। तो भाई हमने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा था कि बीकानेर से जुड़ा और कौन सा गीत आपको याद आता है जहां पर बीकानेर का नाम लिया गया है। और वहीं अब हम आपसे एक दूसरा सवाल ये भी छोटा सा पूछेंगे कि ऐसा कौन सा गीत है जिसमें जयपुर का नाम और आया है इस गीत के अलावा भी। तो ये तो थे हमारे छोटे छोटे सवाल जो हम गीतों के बीच में आपसे पूछ लेते हैं, लेकिन हमारे दो सवाल जो हम हर बार आपसे पूछते हैं वो अब आपके सामने हम रख रहे हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है कि क्या आपके शहर का नाम किसी फिल्मी गीत में आता है, बताइएगा। अगर आता है तो कौन सा गीत है वो, उसका जिक्र भी कीजिएगा। और हमारा दूसरा सवाल यह है कि उस जगह के बारे में बताइए जो आपको बेहद पसंद है, या आप किसी खास जगह घूमने जाना चाहते हैं, आगे प्लान कर रहे हैं कि वहां जाएंगे और उस खास जगह को देखेंगे, या फिर कोई एक शहर जो आपको बेहद पसंद है उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ एक शहर, एक जगह का नाम, एक गीत, बस इतना ही, ताकि हम बहुत सारे श्रोताओं को शामिल कर सकें। आप कहें तो सवाल एक बार फिर से दोहरा दें, आप अपने उस शहर का नाम बताइए या गीत का जिक्र कीजिए जिसमें आपके शहर का नाम आता है, कौन सा है वो गीत। अगर नहीं आता है तो उदास मत होइए, बता दीजिएगा नहीं आता। और वहीं दूसरा सवाल यह है कि उस जगह के बारे में बताइए जो आपको बेहद पसंद है, या आप जाने वाले हैं या जाकर आ गए हैं, या कोई खास शहर जो आपको बेहद पसंद आता है या आप जिसे बहुत मिस करते हैं, या हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि बाकी का जीवन उस खास शहर में बिताएंगे। तो चलिए निकल पड़ते हैं किसी एक और जगह। इस गीत में संगीत है शंकर जयकिशन का, गीत हसरत जयपुरी का है, स्वर लता मंगेशकर का है और ये फिल्म है जंगली।

हमारे श्रोता ने बताया है कि आपने पूछा कि जयपुर जिस गाने में और आता हो कौन सा गाना है। बिल्कुल सही लिखा आपने, जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले।

एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे सपनों का शहर है मुंबई नगरिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपके साथ भारत दर्शन हो जाएंगे, हम कोलकाता में रहते हैं पर हावड़ा ब्रिज नामक मूवी बनी है। बिल्कुल बनी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि क्या बात है, दिल्ली की छलांग लगा के सीधे आप जयपुर से कश्मीर पहुंच गए। अरे दिल्ली वालों का दिल न तोड़े। हम किसी का भी दिल नहीं तोड़ते हुजूर, लेकिन हाँ अभी आपको थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा कि कब आपके शहर में हम आएंगे या कब कहाँ हम पहुंचेंगे, ये तो गीतों के माध्यम से ही पता चलेगा ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जयपुर वो शहर है जहां बार बार जाने का मन करता है और संजोग से हम वहां पहुंच भी जाते हैं। जयपुर के ऐतिहासिक स्थल हवा महल और आमेर का किला बार बार देखने जाती हूं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बम्बई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना, पूना हमारा शहर है। अच्छा क्या बात है। और एक श्रोता लिखते हैं कि आगामी 26 सितंबर से 28 नवंबर तक मैं प्रयागराज, वाराणसी और बोधगया की यात्रा पर जाऊंगा। बहुत सुंदर, आपकी यात्रा बहुत ही मंगलमय हो, ऐसा हम आपसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नहीं आता मेरे शहर ग्वालियर का नाम किसी भी गीत में, लेकिन फिल्मों की शूटिंग यहाँ बहुत होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप खंडवा और कोलकाता के नाम लीजिए, आप पूरे भारतवर्ष घूम लिए, जितना सस्ता कोलकाता जमशेदपुर में भोजन मिलता है किसी शहर में नहीं मिलता, मेरे जमशेदपुर में भारत के हर तरह का वहाँ पर भोजन मिलता है। तो हम आएंगे ना आपके शहर, बिल्कुल आएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं अपने बचपन के शहर मुंबई और मेरी कर्म भूमि अजमेर की खासियत बताना चाहूंगा। अजमेर धार्मिक, ऐतिहासिक और शिक्षा के प्रसिद्ध स्कूल और कॉलेज हैं, धार्मिक सौहार्द की नगरी है, पुष्कर के विश्व प्रसिद्ध, संसार का एकमात्र बहुत ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, तीर्थस्थल है, ख्वाजा साहब की दरगाह है, राजस्थान की सबसे बड़े संत की चर्च है और बहुत बड़ा ऐतिहासिक शहर है जहाँ खाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कढ़ी कचौड़ी मिलती है और कढ़ी का ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा, सोन हलवा मिलता है और मुंबई मेरी जान है। लाल बाग, चा राजा, गणपति बप्पा के दर्शन अद्भुत लगते हैं और मुंबई के लिए जितना कहा जाए बहुत कम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो बड़ा रोचक विषय है, हम कहीं भी रहें अपने नेटिव प्लेस को कभी नहीं भूलते। यूँ तो हिंदी फिल्मी गीतों में बिहार की राजधानी पटना का जिक्र शायद ही कहीं आया हो,

0: लेकिन एक गाना जरूर मेरे जहन में आता है जहां नायिका अपने सजना को ढूंढते ढूंढते पटना पहुंच जाती है। उम्मीद है आप समझ गई होंगी, जी हाँ, बम्बई से गई पूना। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि अक्सर महसूस होता है कि हम जिस शहर में रहते हैं कुछ समय बाद वो शहर हमें अपना सा लगता है। जितने शहर उतने शहर की खासियत, उतने ही उस शहर के स्वाद। यहाँ स्वाद का मतलब खाने से होकर भी खाने से नहीं है, दरअसल उस शहर की हवा में, मिट्टी में, लोगों में एक अलग ही स्वाद, एक अलग ही नज़रिया देखने को मिलता है। जीवन के सबसे गहरे सत्य हम कहीं और से नहीं, अपने शहर में रहने वाले लोगों से पाते हैं और वही सच मनुष्य को परिपक्व भी करते हैं। हम कहीं भी जाएँ, किसी भी शहर में अपने शहर को लिए ही जाते हैं और जब लौटते हैं तो हमारा अपना शहर बाहें पसारे हमारे स्वागत के लिए तत्पर खड़ा मिलता है। बहुत सुंदर। तो चलिए, बात चली थी स्वाद की, तो फिर आहा, ये स्वाद तो हम कभी नहीं भूलते हैं, यानी पान, है ना। तो चलिए, किशोर कुमार की आवाज में फिल्म डॉन का ये गीत सुनते हैं और पहुंच जाते हैं कहां, बनारस। गीतकार हैं अनजान, संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी, और हाँ, हमारे सवालों का जवाब भी देते जाइए।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म होई जा।

कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला। अरे कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला। जाने कौन घड़ी में पड़ गया पड़े

छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि जी हाँ, हमारे जबलपुर का शहर का नाम भी एक गीत में आता है, फिल्म जाने मन इलाहाबाद में पैदा हुई में जबलपुर में पली। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दिल्ली के लिए गीत आना भी बाकी है। अच्छा बताइए, दिल्ली के लिए कौन सा गीत हम लेकर आए हैं आपके लिए, जरा सोचिएगा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म है हम है राही प्यार के, बम्बई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर भी ना मिला सजना, ये गाना इन्हें पसंद है और इनके शहर का नाम इसमें आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान में घूमने का मन है मेरा। एक श्रोता लिखती है कि मैं लखनऊ की हूँ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है और ऐतिहासिक नवाबों का शहर है। यहाँ का चिकन वर्क देश विदेश में बहुत प्रसिद्ध है। भूल भुलैया बड़ा, इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाज़ा आदि बहुत प्रसिद्ध जगह हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि नहीं, मेरे शहर का नाम किसी भी गीत में नहीं आता। हाँ, एक श्रोता ने कहा है कि एक बात तो बताना भूल ही गई, मेरे शहर में भी मशहूर फिल्म बंदिनी मेरे भागलपुर में ही इसकी शूटिंग हुई थी। मैं तो लगभग सारे शहरों की सैर, हर एक जगह की कुछ ना कुछ खासियत करके लौटी हूँ। जैसे बनारस की चाट भी जो है, और लस्सी और पान बेहद पसंद आता है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बॉलीवुड में कई बार चीज़ें संयोग से हिट हो जाती हैं। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को फिल्में मिलने, फेमस होने और यहाँ तक कि फिल्म में होने वाली तमाम बातों से उनके किस्से जुड़े होते हैं। और ऐसा ही एक किस्सा अमिताभ बच्चन की सबसे फेमस फिल्म डॉन का है, जो अपने समय की बहुत ही क्लासिक फिल्म है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि न जाने आज आपका प्रवाह किन किन शहरों से गुजरते हुए समुद्र में मिलेगा। तो आप सुनिए ना कार्यक्रम, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से होते हुए हम अंततः मुंबई पहुंच जाएंगे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि कभी गांवों की भी चर्चा कीजिएगा, आपके तमाम श्रोता गांवों में बसते हैं और विविध भारती को बहुत समय से पसंद भी करते आए हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने, और हर बार हम एक नई थीम पर काम करने का विचार रखते हैं ताकि हमारे श्रोताओं को हर थीम पसंद आए, और ऐसा ही प्रयास आगे भी होगा। आप ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों सोचते हैं कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, आशा और विश्वास रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप में से किसी का झुमका तो नहीं गिरा था यहाँ?

0: झुमका घिरा रहे बरेली के बाजार में। तो चलिए, बरेली की सैर हो गई है। आशा भोसले की आवाज थी, फिल्म का नाम था मेरा साया, राजा मेहदी अली खां के बोल थी और मदन मोहन की धुन थी। तो हमारे सवालों के जवाब हमारे श्रोता लगातार हमें दे रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ साथ आप भी इस यात्रा पर निकल चुके हैं। तो एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम लग रहा है और मैं तो सबसे खतरनाक शहर से हूँ जहाँ से अजय देवगन अभिनीत प्रकाश झा निर्देशित फिल्म गंगा जल बनी थी, भागलपुर से, और अभी पुणे में हूँ, यानी मुंबई से गई पुणे, पुणे से गई दिल्ली। अच्छा, वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मैं और मेरी पत्नी छत्रपति नगर में से 600 किलोमीटर दूर तेलंगाना राज्य को हैदराबाद शहर में बेटी और जमाई सा के यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, हमारा सवाल था कि आप कहीं बाहर हैं शहर से तो बताइए। बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि आप अपने घर से कहीं बाहर बेटी के घर गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि हम पान नहीं कुछ और खिलाएंगे, पोहा जलेबी और समोसा खिलाएंगे और अपने घर का खाना भी, बस आपको आना होगा और अंत में हमें पान भी खिला दीजिएगा ना। आपके ये हाथ का बना खाना तो हम जरूर खाएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर में बजने वाले गीतों में देश के विभिन्न शहरों के नाम शामिल हैं। वैसे तो इस प्रोग्राम में प्रादेशिक फिल्मी गीत शामिल नहीं हुआ करते, फिर भी साल 1963 में आई गुजराती फिल्म अखंड सौभाग्यवती की एक कॉमेडी गीत का उल्लेख कर रहा हूँ जो आगा और अभिनेत्री शम्मी जी पर फिल्माया गया था और आवासी कमल बारोट और मन्ना डे जी की। इस गीत में गुजरात के कुछ शहर के नाम शामिल थे। गीत के शब्द में हीरोइन कहती है झट जाओ चंदन हार लावो घूंघट नहीं खोलू, हीरो कहते हैं नाना ना नखरा बदा, नाना नासो नाद तू मांगवानू नहीं मुके सुमने मुकविश अहमदाबाद। जवाब में हीरोइन कहती है वडोदरे लावो लऊ ने करूं सूरत मालेर हार चढ़ावी डाकमा। अरे वाह, क्या बात है। और इसके जवाब में हीरो बोलता है कि भावनगर भागी जईश रखड़ीश हूँ राजकोट पणतारी साथे नहीं रहूं मने मंगाविश तू लौट रे। और इस तरह से आप बताते हैं कि इस गीत में गुजरात शहर का नाम आता है। बहुत सुंदर, आपने बहुत गहराई से इस गीत को ढूंढा है और हमें अवगत कराया है इस नए गीत से। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब और रोचक विषय है, आज हम ऐसे शहरों का आनंद ले रहे हैं जहां कहीं उठकर जाने का मन ही नहीं कर रहा है घर में, और उस पर सभी श्रोताओं के दिलचस्प संदेशों से कार्यक्रम में चार चांद लग जा रहे हैं, हमारी जानकारी में भी इजाफा होता है। सच मानिए बहुत शानदार माहौल बनता है, मन खुश हो जाता है और बाकी का दिन बड़े अच्छे से बीतता है, बहुत बढ़िया, और जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम सुनने का बहुत मन करता है और आज भारत के उन कोनों की हम सैर कर रहे हैं जहां की हवाओं में ही रोमांस और खूबसूरती और यादों की मधुर धुनें घुली हुई हैं। सभी सहयात्री अच्छी तरह से तैयारी कर लें क्योंकि आज हमारा सफर भारत के सबसे बेहतरीन और रोमांटिक डेस्टिनेशन पर चल रहा है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही आपने। तो अब चलते हैं कहां, सुनिए इस गीत में, बताइएगा किस ओर ले जाता है ये गीत। आइए सुनते हैं ये गीत।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
0: आगरा के लिए हम ये गीत नहीं लेकर आए हैं भाई, दिल्ली वालों के लिए लेकर आए हैं। अभी हमारे श्रोता ने कहा कि अरे आप तो भूली गई और आगे निकल गई। चलिए सुनते हैं इस गीत में, और प्रीतम का संगीत है, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं, रेखा भारद्वाज विशाल ददलानी की आवाज है, फिल्म का नाम ये जवानी है दीवानी।

हमारी श्रोता ने कहा है कि हमारा भारत देश इतना विशाल और महान है, जहां अनेकों तीर्थ स्थल और दर्शनीय स्थल हैं, कि उन सबके दर्शन करने के लिए एक जन्म तो कम ही पड़ेगा, मालूम नहीं कितने जन्म लेने होंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि काम करते वक्त ये प्रोग्राम सुनते हैं आज, क्योंकि मेरे राज्य का जो गाना है वह बहुत प्रसिद्ध है। मैं बरेली यूपी से हूँ और वह जो गाना मुझे खाने की बताने की जरूरत नहीं है, इतना प्रसिद्ध है। आपने खाने लिखा है लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए ताकि हमें भी पढ़ने में दिक्कत न हो। और आपने लिख भी दिया है कि मेरा साया फिल्म का जो गीत आपने सुनवाया था वहीं से हैं आप।

और वैसे तो मैं महाराष्ट्र मुंबई में जन्मी पली बड़ी हूँ और मुझे मुंबई शहर बहुत प्यारा लगता है और गांव तो अपना है ही। और वहीं एक श्रोता लिखती है कि मैं विदेश में भी कई जगह घूमी हूँ और आजकल मैं अपनी बेटी के घर बर्लिन में हूँ और जर्मनी के कई शहर में भी घूमी हूँ। क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म पाप और पुण्य में जोधपुर का नाम आता है जो मावे की कचौरी और मिर्ची बड़े के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहीं एक श्रोता लिखती है जब मैंने पूछा था कि कहीं आपका झुमका तो नहीं गिरा और उन्होंने लिखा है कि नहीं मेरा झुमका तो सही सलामत है। अरे स्त्रियों को महिलाओं को नारियों को अपने झुमके की बहुत चिंता रहती है कि कहीं गिर तो नहीं गया है ना। और वहीं एक शोधा लिखती है कि मैं बरेली से हूँ और मेरा बरेली में झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में ये गीत बहुत मशहूर है। वहीं एक शोधा लिखा है कि मेरा शहर बड़ौदा जिसे गुजरात की सांस्कृतिक नगरी और कला नगरी भी कहा जाता है अपने समृद्ध इतिहास भव्य वास्तुकला और लाजवाब खान पान के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आपने बहुत बड़े तरीके से अपनी बात कही है लेकिन हमने अपने आपके शहर का जिक्र कर दिया है। और अब हम आपसे जानना चाह रहे थे कि आपने कहा कि जो गीत अभी हमने सुनवाया उसमें दिल्ली का जिक्र था, ये बताइए मुझे कि दिल्ली से जुड़ी और हिंदी फिल्मों के नाम कौन कौन से हैं, है ना? जैसे दिल्ली 6 दिल्ली 6 फिल्म है, ऐसे बहुत सारी फिल्में बनी हैं जो दिल्ली से जुड़ी हैं, तो उन हिंदी फिल्मों के नाम हमें बताइए। और तब तक हम सैर करते हैं लखनऊ की। नौशाद साहब की धुन, शकील बदायूनी के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज और ये फिल्म है पालकी। कभी आप गए लखनऊ?

तो कैसी लगी आपको लखनऊ की सैर? बताइएगा, हालांकि वक्त बहुत कम है और इतनी टिप्पणियाँ, इतने विचार हमें मिले हैं कि लगता है कैसे सबको पढ़ें। बहुत मन करता है पढ़ने का, लेकिन समय सीमा को हम लांग नहीं सकते। एक श्रोता लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्य पद्य मई इबारत की इबादत से ये बात सामने आती है कि आज हम लोग

0: अपने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही नहीं बल्कि मानसिक मनोरंजन हेतु भी देशाटन पर गीतों के माध्यम से सुरीला सफर करने वाले हैं और इस दृष्टिकोण से कार्यक्रम का यह वास्तविक नाम आज भली भांति चरितार्थ होगा, जिसके फलस्वरूप हम शहरों में ही नहीं अभी तो पहाड़ की भी सैर कर लेंगे। बिल्कुल, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं शादी के बाद कानपुर आई। साउथ के बहुत से शहर जैसे बेंगलोर, मद्रास, मैसूर, ऊटी, कोडई कैनाल आदि बहुत से शहर इन्होंने देखे हैं। क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंबई ही देखने की और विविध भारती में आने की बहुत ख्वाहिश बाकी है। और भी आपने लिखा है कि दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, बेंगलुरु, पुणे देख चुका हूँ, कोलकाता में 8 साल रह भी चुका हूँ। वही एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे इंदौर शहर का नाम भले ही फिल्म में कम आता हो पर यहाँ जो आता है वो यहीं का हो जाता है। क्या बात है। एक श्रोता ने कहा कि मैं तो बहुत छोटे शहर पोरबंदर में रहती हूँ पर इसका नाम बहुत बड़ी हस्ती से जुड़ा है। जी हाँ, समुद्र के किनारे बसा ये ऐतिहासिक शहर महात्मा गांधी का जन्म स्थान है और यही एक कारण काफी है लोगों को यहाँ आने के लिए। दूसरा, शहर से समुद्र काफी नजदीक होने के कारण कभी भी बीच का आप आनंद ले सकते हैं, लुत्फ ले सकते हैं। खाने में यहाँ की खाजली फेमस है जिसका स्वाद खाजा से मिलता जुलता है। बहुत सुंदर, आपने तो खाने की याद दिला दी हमें। तो अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं जहां हम आने वाले हैं। कहां? अपने शहर मुंबई, आमची मुंबई, है ना। तो ओपी नैयर का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम CID।
1: दिल

जी हाँ, बॉम्बे मेरी जान, ये है मुंबई मेरी जान। तो आप मुंबई आए होंगे और अपने अनुभव किसी अन्य कार्यक्रम में साझा कीजिएगा और हम उसका जिक्र इस कार्यक्रम में ज़रूर करेंगे। फिलहाल अब बहुत हो गया, खूब घूम लिए, है ना, क्योंकि अब वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि आपके साथ इस सुरीले सफ़र को और लंबा ले चलें। तो चलिए यहीं तक आज का ये सफ़र। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights service as the main purpose of life, says Seva Paramo Dharma should remain the guiding principle. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs meeting of Forum for India-Pacific Islands Cooperation Foreign Ministers on the sidelines of 81st United Nations General Assembly in New York. Government says India is manufacturing nearly 99.2% of country's total domestic demand for mobile phones. Red alert issued for very heavy rainfall over West Bengal, Telangana, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh and Odisha today. And India storms into men's Kabaddi semi-finals after beating Chinese Taipei in final Group A fixture at Asian Games in Japan. Prime Minister Narendra Modi today said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said that in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi. The Prime Minister said Seva Paramo Dharma, service is the highest duty, should remain the guiding principle.
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: Mr. Modi said service is the biggest driving force. He said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery. The Prime Minister said it is only owing to a spirit of service that 4 crore poor have received permanent houses.
1: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते हो तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
0: The Prime Minister said we are people dedicated to

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया। कहा, सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा, भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स्ड निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम आखिरी ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सेवा हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम छोर तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है।
1: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए। एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
0: श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सेवा की भावना देश की नीतियों में शामिल होती है तो ऐसी योजनाएं सामने आती हैं जिनसे 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति, चुनाव और शासन व्यवस्था का अपना महत्व है, लेकिन देश के निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया।

0: लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी सात धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
1: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत

0: ये विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का तेजी से निपटान करना और शासन में सुधार करना है। ये अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है।
1: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इसके तहत उच्च शिक्षा में विषय के चयन में विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता, बहुविषयक अध्ययन, कौशल विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश भर में लागू करने की दिशा में ओडिशा भी लगातार आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थानों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का ध्यान विद्यार्थियों को पारंपरिक डिग्री के साथ साथ रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं, स्थानीय आवश्यकताओं और तकनीकी शिक्षा को भी नई शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ शोध और नवाचार के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन और उच्च शिक्षा में इसके प्रभाव को लेकर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहते हैं,
2: 2024 में नई सरकार गठन होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने संरचनात्मक और शैक्षणिक सुधार के लिए हमेशा प्राथमिकता दिया है। कौशल विकास और उद्योग संपर्क के लिए AEDP, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, नास्कम, फ्यूचर स्किल, कोर्सेरा जैसे कार्यक्रम को अपनाए हैं। इंटर्नशिप बहुत अच्छी तरीके से उड़ीसा में हो रहा है।
1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन केवल पाठ्यक्रम में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और अवसरों से सशक्त बनाना है। ओडिशा में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू करते हुए उच्च शिक्षा को बेहतर और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। भुवनेश्वर से दीपक कुमार बेहरा के साथ मैं इतिश्री सिंह राठौर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
4: बैठक में FIPIC शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा की गई और भारत तथा प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया गया। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2023 में घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना के तहत हुई प्रगति भी शामिल है। नेताओं ने नवीनीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्यवाही, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में समाओ के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तथा फिजी, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह और तुवालु के विदेश मंत्री शामिल हुए। तोंगा के वित्त मंत्री ने भी बैठक में भाग लिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के न्याय विभाग के सचिव और अटॉर्नी जनरल, वानुअतु के स्वास्थ्य मंत्री, नाउरू के उप विदेश मंत्री तथा प्रशांत द्वीप मंच के महासचिव भी बैठक में उपस्थित थे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने

0: के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। नई दिल्ली में आज 13वें वार्षिक पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के उद्घाटन सत्र में श्री कृष्णन ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 32 से 33 करोड़ मोबाइल फोन विनिर्मित होते हैं।
1: हम देश में अपनी कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% खुद तैयार करते हैं। भारत में होने वाला मूल्यवर्धन जो लगभग 7-8 साल पहले करीब 10 से 15% था, अब वो बढ़कर लगभग 22 से 23% हो गया है। हमारा लक्ष्य 35 से 40% के बीच मूल्यवर्धन हासिल करना है। इस उद्योग को देश में ही बनाए रखने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है।
0: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दक्षिणी तट को पार कर गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कई स्थानों पर जल भराव और बाढ़ की स्थिति बन गई है।
3: कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा के तट को पार करने के बाद गहरा डिप्रेशन जमीन के अंदर की ओर बढ़ गया है और धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। उड़ीसा में इसका असर अभी भी महसूस किया जा रहा है। आज कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरी, कलाहंडी, नुआपड़ा, बलांगीर और बरगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश और कल व परसों बहुत भारी बारिश के साथ साथ आंधी, तूफान, बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि भूस्खलन के खतरे के कारण 157 का कलिंगा घाट वाला हिस्सा बंद कर दिया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब एशियाई खेलों की आज की अपडेट के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबिना देवी नाओरेम ने वुशू में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शिया यो से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने 6:13.25 का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए के मुकाबले

0: में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में भी प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक भी पक्का हो गया है। अब पदक तालिका में भारत के कुल पदक की संख्या 15 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया। कहा, सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा, भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। पहला गीत एन दत्ता के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ, युगल स्वर आशा भोंसले और महेंद्र कपूर के, फिल्म का नाम धूल का फूल।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में ये था मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, स्वर मोहम्मद रफी का था और फिल्म का नाम था मेरे सनम।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: फिल्म उजाला का गीत सुनिए, गायिका लता मंगेशकर हैं, शब्दकार हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी के बोल सुनिए, स्वर मोहम्मद रफी का, फिल्म का नाम लव इन टोक्यो।

0: सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज के द्वार।
0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: कुमार और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था जाल। इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और तर्ज सचिन देव बर्मन की थी।
1: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
2: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
1: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
3: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे की आखिरी पेशकश, नौशाद साहब का संगीत, शकील बदायूनी की बोल, आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम दिल दिया दर्द लिया।

0: गाया अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म का नाम था दिल दिया दर्द लिया।
1: उम्दा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो बुन सारे अपन नरब दसा पड़ विचार।
2: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
1: दुबई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाह में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
2: आ रहे हैं विविध भारती पर।
3: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
2: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: और अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को, सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है आरती। तो आरती, तुमको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सखी सहेली के मंच पर हो तो बहुत बहुत सभी का और तुम्हारा भी स्वागत करते हैं।
2: बिल्कुल। और मंजरी जी, आपको और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और आपने स्वागत किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: क्या बात है, और बताओ कैसे?
2: बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। और अब आज गणेश चतुर्थी का दिन है तो बस उसकी तैयारियां चल रही थी और अब प्रोग्राम कर रहे हैं आप यहाँ के।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि इतने दिन से सब लोग ने भक्ति भाव से गणपति जी की पूजा करी है तो धीरे धीरे उनका विदाई का दिन भी करीब आ रहे हैं। तो मतलब ऐसी बात ही है दिल की गहराइयों से निकली हुई कि मन उदास सा हो जाता है।
2: बिल्कुल, जब कोई जाता है ना, जो दिल के एकदम करीब हो जाता है वो जब जाता है ना तो थोड़ा सा दिल दुखता तो है ना।
1: बिल्कुल दुखता है,
2: लेकिन फिर हमें ये भी तो आशा रहती है ना कि अब अगले वर्ष वो जल्दी से आएंगे।
1: बिल्कुल, वो कहीं गए नहीं होते हैं, हमारे पास ही रहते हैं, हम उन्हें रोज याद करते हैं उन्हें। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हम किसी अपने को याद कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो अपने सखी सहेली के विषय लेकर आए हैं उन पर बात कर लेते हैं। हाँ। कि जो हमारे विषय है कि उपयोगी टिप्स, यानी घर में जो हमारा एक फ्रिज होता है,
2: सबसे समझ लो उसे कहते हैं स्टोरेज रूम कह सकते हैं।
1: हाँ, खाद्य पदार्थों का हाँ। स्टोरेज रूम होता है, तो उसमें सामान रखने की भी एक कला होती। तो आप सब हमारी बहनें या भाई लोग भी जो भी हैं, अपने फ्रिज में आप कैसे सामान को रखती हैं उसकी छोटी छोटी से बातें संदेश में लिख कर भेज सकते हैं। तो
2: अच्छा, बिल्कुल लिख के भेजिए कि आप एकदम ठूंस देते हैं जल्दी से, सब्जी वगैरह लेकर आए, कुछ भी लाए, ठूंस दिया और जल्दी से उसको कस के दरवाजे को बंद कर दिया, ऐसा करते हैं या अच्छे तरीके से उसको लगा के रखते हैं। ये आप हमें बताइए आप कैसे रखते हैं। और साथ ही आज हम बात करेंगे समुद्र के बारे में। सोचो, एक अंतरिक्ष है, एक समुद्र है, मतलब दोनों अथाह है, जिनका कोई

0: नहीं। और साथ ही इतनी रहस्यमयी दुनिया है ना ये, चाहे अंतरिक्ष हो चाहे समुद्र हो, पता नहीं कब से, शायद हम शुरू से ही इसके बारे में अनुसंधान कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो समुद्र है बहुत गहराई में जो है उसकी, तो वो हमें भी नहीं पता चल पाया है अभी भी, हम ये सब चौंक जाते हैं।
1: इतनी अद्भुत है, मतलब अद्भुत दुनिया ही है
0: बिल्कुल,
1: और उसमें समुद्र की जो रोचक दुनिया है वो भी बड़ी अद्भुत है। कई सारी चीजें उसमें अंदर छुपी होती है और बहुत गहरा होता है। जैसे हम ही लोग इंसान ही है तो हर इंसान का मन भी बहुत गहरा होता है, वो कब क्या सोच ले कुछ पता नहीं चलता है।
0: कहते हैं ना जो इंसान ने वो जो सारे तत्व हैं पृथ्वी के उससे मिलकर बनाए, चाहे वो अंतरिक्ष हो या समुद्र की गहराई हो जो उसके मन में छुपी होती हो,
1: है ना। तो इस पर बातें करेंगे और मुझे कुछ कहना है कि भाई इसमें आप बताएं कि कब किससे रूठे, ताजा रूठे कि 2 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले, कि आज सुबह सुबह रूठे,
0: आरती मंजरी से रूठ गई या मंजरी आरती से रूठ गई,
1: तो इस तरह के कुछ अपनी यादें ताजा करेंगे। और कहानी पद्मश्री की है तो उसमें बात करने हम लोग करने वाले हैं हम लोग उषा बारले का, जो पंडवानी लोक गायिका है, तो इनके बारे में भी बात करेंगे। और फिलहाल तो हम लोग जैसे मन की बात कर रहे थे कि मन गहरा होता है, तो कभी कभी कोई मन को लूटने की भी बात करने लगता है
0: और ना? जब कोई गीत छिड़ जाता है ना तो मन खुश हो जाता है।
1: चलो तो गीत सुन लेते हैं।

0: तो आरती देखो कितना प्यारा सा ये गीत था, है ना। तो ऐसे ही जब हम लोग कहीं समुद्र की सैर के लिए जाते हैं या समुद्र के आसपास जाते हैं तो वहाँ की जो एक हवा आती है दूर से आती हुई, एक शीतल
1: ठंडी हवा
0: होती है, ठंडी हवा होती है, कुछ समुद्री हवा का अलग एक अलग सी एक सुगंध होती है, तो वो देख करके बड़ा अच्छा लगता है। और पानी देख कर तो वैसे भी लगता है कि बस अपने पैर डाल लो उसमें, आगे लहरों के संग थोड़ा सा मस्ती कर लो, है ना। तो हमारे साथी ने एक संदेश में लिख कर भेजा है, तो पहले संदेश उनका ले लेते हैं। लिखते हैं कि लहरों का एक सुहाना संग, अतः नीला विशाल रूप, क्षितिज जहाँ आकर झुकता है, खिलती जहाँ सुनहरी धूप, रेत पर आकर रुक जाती है, गीत सुनाती चंचल धार, गहराई में छिपे रहस्य सिखाती समता और प्यार। बहुत सुंदर सी लाइनें आपने भी लिखकर भेजी हैं। और पता है दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें जितना जानो उतने ही गहरे होते जाते हैं। और सच पूछो तो हमने जब से अंतरिक्ष को खोजना, उसे जानना शुरू किया, तब से या शायद उससे पहले भी हम जमीन पर सबसे बड़े रहस्य की खोज में लगे हुए हैं। वो रहस्य है अथाह समुद्र, जो आज भी एक पूरी तरह खोजा नहीं जा सका आती।
1: बिल्कुल, और जो समुद्र हमें ऊपर से शांत और सुंदर दिखाई देता है, उसके नीचे एक पूरी की पूरी अद्भुत दुनिया बसी हुई है। क्योंकि नीचे बहुत कुछ है, नीचे पेड़ पौधे, बड़े बड़े वो अलग तरीके के पौधे हैं जो सिर्फ पानी में उगते हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, पहाड़ हैं, ज्वालामुखी हैं, सब कुछ है इसके नीचे। और हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है, और इस विशाल जलराशि का बड़ा भाग महासागरों में है। यानी अगर धरती को एक बड़ा सा घर माने तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा पानी का ही है।
0: बिल्कुल, और समुद्र के अंदर कितने सारे रत्न भी छुपे हुए हैं, तो वो सब चीज़ें भी हमें मिल जाती हैं। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि इंसान ने चांद तक पहुँच कर वहाँ कदम रख दिया, लेकिन समुद्र की गहराइयों में, जैसा तुमने पहले भी कहा था, आज भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं।
1: हाँ।
0: समुद्र के अंदर छोटी छोटी मछलियों से लेकर विशाल काय व्हेल तक अनगिनत और लाखों तरह के जीव जंतु शैवाल वगैरह पाए जाते हैं, जो ऐसे लगेंगे पेड़ पौधे हैं लेकिन नहीं, जब उनके पास जाओगे तो वो ऐसे फैलते हैं और आपको पकड़ने कोशिश करते हैं। तो भाई ऐसे समुद्री यात्रा ऐसी आसान नहीं है, बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: और यहाँ कोई अपने रंग बदलकर दुश्मन से बचता है, ऐसे जीव हैं जो, तो कोई अंधेरे में चमकता है, जेलीफिश वगैरह जो रहती हैं, और कोई इतनी गहराई में रहता है जहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुँचती है, और बहुत ज़्यादा जो गहराई होती है वहाँ पे तो घना अंधेरा ही रहता है, रोशनी भी नहीं पहुँच पाती है। तो समुद्र के कुछ जीवों में बायोल्यूमिनेंसिस यानी कि अपने शरीर से प्रकाश पैदा करने की क्षमता होती है, जो प्रकाश अपने आप अपना रोशनी कर देते हैं अपने चारों तरफ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और ज़रा सोच कर देखो ना आरती, कि चारों तरफ अंधेरा और अचानक कोई समुद्री जीव नीली हरी रोशनी से चमक उठे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे समुद्र के अंदर चारों तरफ मतलब ऐसा लगेगा समुद्र के अंदर आसमान और तारे वहां पर उतर आए, जैसे अंतरिक्ष का एक हिस्सा समुद्र की गहराई में भी बसा हो। इतना ही नहीं, जरा सोचिए, क्या कभी किसी ने समुद्र के अंदर रंग बिरंगे जंगल की कल्पना की है? समुद्र में मौजूद प्रवाल भित्तियां यानी कोरल्स रीफ्स कुछ ऐसी ही दिखाई देती हैं।
1: बिल्कुल, और जो महत्वपूर्ण आवास है इनके, और लाल, पीले, नारंगी और कई दूसरे रंगों से सजे हुए ये क्षेत्र जो हैं वो अनेक समुद्री जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास बने हुए हैं। और इनके आसपास छोटी बड़ी मछलियां तैरती दिखाई देती हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि पानी के अंदर कोई रंगीन शहर बसा हुआ पूरा, जो सिर्फ पानी के जीव रहते हैं जहाँ पर। और समुद्र की गहराइयों में कोई बहुत सी ऐसी गुफाएं हैं, सुरंगें हैं, जिनमें से बहुतों को तो हमने खोज लिया, लेकिन अभी बहुत सी ऐसी हैं जिनको हमने खोजा भी नहीं, अभी खोज भी नहीं पाए उनको।
0: और देखो हमारे एक साथी भी लिख रहे हैं संदेश में कि मैं देश विदेश के कई समुद्रों की सैर कर चुकी हूँ, बोट, क्रूज और स्टीमर आदि से कई जगह, गोवा, मद्रास, अमेरिका, इजिप्ट, थाईलैंड आदि जगह बहुत घूमी हूँ। इजिप्ट में तो एक सप्ताह तक स्टीमर पर ही रही, जहाँ स्टीमर रुकता था वहाँ की जगह पर उतर कर घूमती थी। कितनी सुंदर सी अपनी यादें इन्होंने ताज़ा करी हैं। और एक लिखते हैं कि प्राकृतिक भूगोल के जलमंडल विषय बहुत रोचक है, उष्ण और शीतल सामुद्रिक धाराएं, महादेशीय छज्जा, अंतरीप खाड़ी, सागर, महासागर, उच्च ज्वार, निम्न ज्वार, ज्वारभाटा आदि अनेक अनुसंधान के विषय बाकी हैं, इन्होंने लिखा। बहुत अच्छी सी जानकारी हमारे साथियों ने दी है।
1: और हम बात कर रहे हैं तो समुद्र की जो गुफाएं हैं वो समुद्री लहरों, भूकंपों और ज्वालामुखी के कारण ही बनती हैं वो, क्योंकि ऐसा नहीं कि ऊपर ही विस्फोट होते हैं, अंदर भी होते रहते हैं। और समुद्र में हजारों तरह की सुरंगें भी हैं, लेकिन ये खूबसूरत दुनिया आज समुद्री तापमान में बदलाव और प्रदूषण जैसी समस्याओं से प्रभावित ही हो रही है। समुद्र केवल घूमने फिरने और

0: छुट्टियां मनाने की जगह नहीं है, समुद्र पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है पूरी तरीके से और
1: बिल्कुल
0: जल चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और समुद्री जीवों के साथ साथ इंसानों के जीवन से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है।
1: क्योंकि देखो ना, मौसम से लेकर खाना व्यापार तक समुद्र का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है और जहाजों के बिना दुनिया में बहुत सी वस्तुओं का आयात या निर्यात नहीं किया जा सकता है। जहाज तेल का हो चाहे गैस, गेहूँ, चावल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार और कपड़े जैसे वस्तुओं का परिवहन करते हैं। इसीलिए समुद्र को साफ रखना केवल समुद्र की चिंता नहीं बल्कि हमारे अपने भविष्य की चिंता भी। अगर समुद्र गंदा होता जाएगा तो जो जहाज चल रहे हैं उनको उनके मार्ग में रुकावट आएगी।
0: बिल्कुल,
1: पहली
0: और
1: बात तो।
0: सबसे बड़ी चीज़ें जो समुद्री जीव जंतु हैं, समुद्री जो प्रवाल हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगर समुद्र के अंदर के जीव जंतु जब खत्म होने लगेंगे ना तो पूरे पूरे जो पृथ्वी का जो चक्र चलता है ना,
1: वो
0: जीवन चक्र प्रभावित होगा पूरी तरीके
1: से। सही बात है, तो इसलिए उसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है। और आज समुद्र के सामने प्लास्टिक प्रदूषण, समुद्र के बढ़ते तापमान और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियां भी मौजूद है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, कचरा नदियों और समुद्रों में ना फेंकें, समुद्र तटों को गंदा ना करें और सबसे जरूरी, प्रकृति को केवल संसाधन नहीं बल्कि अपना साथी समझना पड़ेगा। समुद्र हमें सिखाता है कि प्रकृति जितनी दिखाई देती है उससे कहीं अधिक विशाल, जटिल और अद्भुत है।
0: बिल्कुल, और कभी शांत, कभी उग्र और कभी रहस्यमय समुद्र जो है वो प्रकृति के हर रूप को अपने भीतर समेटे हुए है और यही कारण है कि समुद्र को देखते ही हमें केवल पानी का विस्तार नहीं दिखाई देता बल्कि प्रकृति की विराटता, जीवन की विविधता और उस अनदेखी दुनिया का एहसास भी होता है जिसे जानने की जो हमारी प्रक्रिया है, जो यात्रा है, वो भी चल रही है।
1: तो चलो इसी के साथ एक गीत का भी आनंद ले लिया जाए।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: तो आती देखो हमारे साथी क्या लिखते बताओ।
2: हाँ, तो हमारे साथी जो लिखते हैं कि समुद्र जीवन पृथ्वी के महासागरों और खारे पानी में रहने वाले पौधे जानवर और सूक्ष्म जीव हैं। पानी में तैरने वाले सूक्ष्म पौधे जो खाद्य जाल का आधार हैं। जेलीफिश हो गई, ऑक्टोपस है, केकड़ा है, प्रवाल है, बहुत सारे जानवर हैं जिन्होंने लिख के दिए। और साथ ही एक हमारे साथी जो कहते हैं कि समुद्र हमारे ग्रह का दिल है। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जिसमें अधिकांश जो भाग है वो विशाल महासागरों का है। समुद्र केवल पानी का एक भंडार नहीं है, बल्कि रहस्यमय जीवन तो अत्यंत आवश्यक दुनिया है। और आज हमने अपने विशाल महासागरों के बारे में जो तलाश किया है, तो केवल 5-10% हिस्से को ही हम तलाश कर पाए हैं। और ये बताता है कि समुद्र की गहराई में न जाने कितने रहस्य आज भी दफन है।
1: बिल्कुल, और हमारे साथी ने और भी जानकारी दी है। लिखते हैं कि समुद्र में विशालकाय ब्लू व्हेल, जो इस धरती का सबसे बड़ा जीव है, से लेकर सूक्ष्म प्लैंकटन तक इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगी मछलियाँ, जेलीफिश, ऑक्टोपस और शार्क जैसी प्रजातियाँ इसे एक काल्पनिक दुनिया जैसा रूप देती हैं।
2: और साथ ही लिखते हैं कि समुद्र के गहरे हिस्सों जैसे मारियाना ट्रेंच, जो लगभग 11 किलोमीटर गहरा है, वहाँ पर सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती। वहाँ का तापमान 0 के करीब होता है और पानी का दबाव बहुत अधिक होता है। इसके बावजूद वहाँ ऐसे बायोल्यूमिनेंट्स जो जीव होते हैं वो रहते हैं, जो अपने शरीर से रोशनी पैदा करते हैं। मतलब जहाँ पर पानी क्या सूरज की किरणें तक नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर वो जीव अपने आप जगमगाते हैं।
1: बिल्कुल, और एक हमारे साथी लिखते हैं कि भाई समुद्र की भी एक रोचक दुनिया है, जिसमें तमाम रहस्य छिपे हुए हैं, जिनमें बहुत सी बातें हम जानते हैं और बहुत सी बातों से अनजान भी हैं। पृथ्वी का 71% हिस्सा समुद्र ही है, जिसमें तरह तरह के जीवों और वनस्पतियों का भंडार है। हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन मिलती है, इसका 60-80% तक समुद्र ही देता है। समुद्र के अंदर भी एक बड़ी पर्वत श्रृंखला है, जिसे मिड ओशियन रिट्स कहा जाता है, जो बाहर से नहीं दिखती। इसी तरह समुद्र की गहराई का रहस्य आज तक बना हुआ है। प्रशांत महासागर में एक ऐसी जगह है जिसे मारियाना ट्रेंच कहते हैं, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज़्यादा गहरी, और समुद्र अद्भुत जीवों की शरण स्थली भी रहा है, जो इतने विशालकाय हैं बड़े बड़े जहाज़ों को भी रोक लेते हैं। समुद्र से हमें लाभ तो बहुत है, किंतु मानव सभ्यता की विकास यात्रा ने उसे कचरे का एक गोदाम बनाने की ठानी है। ये दुखद है, आने वाले दिनों में भारत समुद्र में प्लास्टिक का कचरा एक भरता हुआ समुद्र में, लिखा है इन्होंने कि भरता समुद्र में प्लास्टिक का कचरा एक बहुत बड़ी समस्या बनने जा रहा है। इससे समुद्री जीवों को भी नुकसान पहुंच रहा है और हमें भी ये एक दिन बर्बादी की गर्त में पहुंचा देगा, इन्होंने लिखा है ऐसा। तो ये चीज का ध्यान रखने वाला है कि हमें अपने समुद्र को साफ भी रखना है।
2: बिल्कुल, और एक साथी हैं जो लिखते हैं कि समुद्र जो कोरल रीफ है, उसके बारे में इन्होंने बताया है कि क्या है ये। तो इन्हें समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जैसी जगह है जहाँ लाखों समुद्री जीवों को आश्रय देती हैं और पानी के नीचे एक बेहद खूबसूरत और रंगीन इकोसिस्टम का निर्माण करती हैं। धरती के लिए महत्व जिसका क्या है वो बताते हैं कि हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन मिलती है, उसका 50% से अधिक हिस्सा समुद्र में रहने वाले पौधों जो वहाँ पे होते हैं उसके द्वारा तैयार किया जाता है। समुद्र के वैश्विक तापमान और मौसम को नियंत्रित करने में भी मुख्य भूमिका को निभाता है जो समुद्र है। और समुद्र की जो रोचक दुनिया है वो इतनी सुंदर है और रहस्यमयी है कि हमारे अस्तित्व के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये हमें याद दिलाती है कि अगर हम पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखना है हमें, तो हमें महासागरों का सम्मान करना होगा और उन्हें प्रदूषण से मुक्त रखना होगा। समुद्र की सुरक्षा ही मानवता की सुरक्षा है।
1: बिल्कुल सही कहा है। चलो इसी के साथ एक गीत सुन लेते हैं।

0: उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो भुनसारे अपन नरबदा सपड़ विचार।
1: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
0: दुबई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाह में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
1: आ रहे हैं विविध भारती पर।
2: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो देखो आरती, अब समय हो चला है अंतराल का, तो मिलते हैं अंतराल के बाद, फिर हम लोग बातें करेंगे अपनी जो हमारी सखी विशेष हैं उनकी बातें करेंगे और

0: अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है आरती, और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कहानी पद्मश्री उषा बारले जी के बारे में, जो पंडवानी लोक गायिका हैं। तो कहते हैं लोक कला केवल मनोरंजन नहीं होती, बल्कि वो तो किसी मिट्टी की अमिट याद होती है, किसी समाज की पहचान होती है, और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं की जीवित आवाज़ होती है। ऐसी ही कलाकार हैं उषा बारले, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा पंडवानी गायिका गायकी को देश की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के संगीत प्रेमियों तक पहुँचाया।
1: और 2 मई 1968 में उषा बारले जी का जन्म भिलाई छत्तीसगढ़ में हुआ। उनके पिता का नाम खाम सिंह जांगड़े और माता का नाम धनमत बाई था। बचपन से ही लोक संगीत के प्रति उनका गहरा आकर्षण था। महज 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने पंडवानी सीखना शुरू कर दिया था।
0: और सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खेल कूद और खिलौनों की दुनिया में खोए रहते हैं आरती, उस उम्र में एक छोटी सी बच्ची महाभारत की कथाओं और लोक संगीत की दुनिया में अपना रास्ता खोज रही थी। उनकी यही बाल रुचि आगे चलकर उनके जीवन की पहचान बन गई।
1: बिल्कुल। अब जरूरी है ये भी बताना कि पंडवानी गायकी जो होती है वो आखिर है क्या। तो पंडवानी का अर्थ है पांडवों की वाणी या पांडवों की कथा। ये छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है, जिसमें महाभारत की कथाओं को लोक भाषा, संगीत, अभिनय और संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।
0: और इसमें कलाकार केवल गाता नहीं है, बल्कि कथा के पात्रों और भावनाओं को अपनी आवाज और हाव भाव से जीवंत कर देता है। और इसी कला को उषा बारले ने अपनी आवाज से एक नई ऊर्जा और पहचान दे दी। जब किसी भी कलाकार की प्रशंसा होती है तो उसकी उस ऊंचाई तक पहुँचने की यात्रा में गुरु का स्थान बेहद महत्वपूर्ण होता है आरती।
1: बिल्कुल। और उषा बारले ने प्रारंभिक जो प्रशिक्षण था उसके बाद महान पंडवानी कलाकार तीजन बाई से भी शिक्षा प्राप्त की थी। उनके मार्गदर्शन ने उषा बारले की कला को और निखारा। पंडवानी की साधना आसान नहीं थी, इसमें केवल सुर और ताल ही नहीं बल्कि उसमें कथा की समझ भी होनी चाहिए, अभिनय होना चाहिए, संवाद, भाव और मंच पर तत्काल प्रस्तुति की क्षमता भी बहुत आवश्यक होती है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और उषा बारले ने वर्षों के मेहनत से इन सभी पक्षों को अपनी कला का हिस्सा बनाया। उषा बारले के जीवन में कठिन दौर भी आए, जब गृहस्थी चलाने के लिए वो फल बेचा करती थी, लेकिन परिस्थितियां उनकी कला के रास्ते में स्थायी बाधा नहीं बन सकी। उन्होंने अपनी लोक कला को छोड़ा नहीं, बल्कि समय के साथ वही कला उनकी पहचान बनती चली गई।
1: बिल्कुल। पंडवानी के अलावा अनेक लोक विद्याओं में भी वो पारंगत हैं, और धीरे धीरे उषा बारले की आवाज बड़े मंचों तक पहुंचने लगी। उन्होंने भारत के कई शहरों में पंडवानी और पंथी की प्रस्तुतियां दी। इतना ही नहीं, उनकी कला की गूंज विदेशों तक पहुंची, यानी जिस लोक कला की जड़ें छत्तीसगढ़ की मिट्टी में थी उसकी आवाज अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच चुकी थी।
0: उषा बारले की विशेषता केवल पंडवानी गायन तक सीमित नहीं रही, उन्होंने अपनी कला के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक जागरूकता से जुड़े संदेश भी लोगों तक पहुंचाए। उन्होंने कई गंभीर बीमारियों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने में भी अपनी लोक कलाओं का इस्तेमाल किया।
1: बिल्कुल। उषा बारले आकाशवाणी और दूरदर्शन

0: केंद्र रायपुर की ए ग्रेड कलाकार भी रही हैं। उन्होंने आकाशवाणी की विभिन्न चैनल्स पर पंडवानी और पंथी की प्रस्तुतियां भी दी हैं। वर्षों की साधना और लोक कला के प्रति समर्पण के लिए उन्हें कई सम्मान मिले और वर्ष 2023 में राष्ट्रपति द्वारा उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया।
1: कितने गर्व की बात है कि उन्होंने अपनी कला को आगे बढ़ाया।
0: बिल्कुल।
1: तो इस जब हम इनकी कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो समझ में आता है कि हमारे अंदर जो भी कला है तो हम उसको आगे बढ़ने के लिए शिक्षा लें, बाकायदा गुरु के पास जाएं और सीखें। और मेहनत, अनुशासन बहुत जरूरी, लगन होना चाहिए, नियमित अभ्यास होना चाहिए। तो आप छोटे से ही बच्चा अगर शुरुआत कर दे, छोटे से ही बच्चे को आप सिखाना शुरू कर दे, तो आगे चल करके बहुत अच्छा आगे जा सकता है।
0: बिल्कुल, आपके अंदर कोई हुनर है तो उसको निखारेंगे तो आपको उसकी उसकी बारे उसकी उसकी फायदा भी उठाने को मिलेगा फिर।
1: तो चलो सुनते हैं।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
3: पैदा हुआ हूँ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: तो आरती भाई, ये याद रखना बड़ा मुश्किल भी है और आसान भी है। बताओ तुम कब किससे रूठी? हमारे साथी ने भी बहुत सारे लिखे हैं संदेश, तुमने जवाब नहीं दिया, हंस के टाल दिया। चलो अच्छा, तुम्हारा

0: बताने का मन नहीं है,
1: नहीं बताने की नहीं है, मैं बस अपने साथियों के जो कमेंट उन्होंने भेजे ना उसको पढ़ पढ़ के मैं मन ही मन हंस रही थी कि उन्होंने अपनी अपनी बातें लिखी हुई हैं, ऐसे मन अनुभव लिखे हुए हैं।
0: तो हमारे साथी देखो एक लिखते हैं कि रूठना भी रिश्तों का हिस्सा है, लेकिन बात इतनी ना बढ़े कि अपनापन ही दूर हो जाए। कभी कभी हम अपनों से रूठ जाते हैं, छोटी सी बात दिल पर लग जाती है, लेकिन शायद रूठने से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि किससे रूठना है और कब मान जाना है। अपने वही तो होते हैं जिनसे हम नाराज भी हो सकते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हंसकर बात भी कर लेते हैं। रिश्तों में रूठना रहे मगर इतना नहीं कि मन में दूरियां बस जाएं। कभी अपनी बात कह दीजिए, कभी सामने वाले की सुन लीजिए, क्योंकि रिश्ते जीतने के लिए नहीं निभाने के लिए होते हैं। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है कि रूठने की क्या जरूरत है, रूठे हैं तो भी मना भी लीजिए।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना ये रूठना मनाना तभी अच्छा लगता है, ये छोटी मोटी जब हंसी की नोकझोंक हो। जैसे कि एक हमारे साथी लिखते हैं कि धर्म पत्नी अगर ना रूठे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मुझमें एक काबिलियत है कि मैं कोई ना कोई मनाने वाला फिल्मी गीत सुर में गाकर सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी को मना ही लेता हूँ, और वो मान जाने के बाद मुझे अदरक इलायची वाली चाय जरूर पिलाती हैं। मतलब ये है? चाय पीने के लिए गाने का
0: मना लेते हैं। कितनी अच्छी सी बात इन्होंने लिखकर भेजी। और एक लिखते हैं कि भाई कब किससे रूठे, ये बड़ा रोचक मुद्दा है। पहले मैं अपनी कविता सुनाना चाहूंगा। तू गंगा सरीखी पावन है, जन जन की मन भावन है, तू हिंदी की आन बान शान है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, तू देश प्रेमियों का सम्मान है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, तू भारतेंदु की पूजा है, तेरा जैसा नहीं दूजा है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, हम वेद भारती से रूठ जाते जब आप हमारे मनपसंद गाने नहीं चलाते हो, दादी नानी के ज़माने के गाने बजाने बजाइए, हमारे गाने नहीं बजाते इसलिए हम वेद भारती से रूठ जाते हैं। भाई वेद भारती रूठने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत सारे दिन भर प्रोग्राम चलते रहते हैं, उसमें देखिए आप सुनेंगे तो तरह तरह के गाने बजते हैं,
1: नए भी बजते हैं, पुराने भी बजते हैं,
0: सब बजते हैं। हाँ। और आप उनको सुनिए, उनका आनंद लीजिए, अब ऐसे रूठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना आरती?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये लिखते हैं, आगे लिखते हैं कि कभी कभी तो हम माँ से रूठ जाते हैं, तभी माँ कहती है ऐसे रूठने से काम नहीं होता, रूठने से तनाव आता है, हंसी ठिठोलियाँ करते रहना चाहिए। भाई बिल्कुल हंसी ठिठोली कीजिए, लेकिन हमारे वेद भारती से जुड़े रहिए और रूठिए मत, गाने आप आनंद लेते रहिए।
1: बिल्कुल। और साथ ही हमारे एक साथी लिखते हैं कि रूठना और मनाना इंसानी फितरत का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। जब हम किसी से रूठते हैं तो असल में हम उससे नफरत नहीं कर रहे होते बल्कि अपने हक और प्यार का इजहार कर रहे होते हैं। लेकिन जिंदगी के इस सफर में ये समझना बेहद ज़रूरी है कि हम कब किससे और कितना रूठना चाहिए। हमें गलत इंसान से या गलत वक्त पर रूठा जाए तो रिश्ते सुधरने की बजाय बिखर जाते हैं।
0: बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है, इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। और आगे लिखते हैं कि हम हर राह चलते इंसान से नहीं रूठ सकते, रूठा सिर्फ उसी से जाता है जिससे हमें प्यार पाने की उम्मीद होती है। माता पिता और परिवार, इनसे रूठने में एक अलग ही सुकून है क्योंकि हमें मालूम होता है कि वो हमें मना ही लेंगे। यहाँ रूठना प्यार को बढ़ाता है और जीवनसाथी या पार्टनर प्रेम संबंधों में रूठना मनाना एक टॉनिक की तरह काम करता है। ये दिखाता है कि आप उनके करीब हैं। सच्चा दोस्तों से रूठना केवल एक अधिकार है जो दोस्ती को और गहरा करता है। बहुत सुंदर सी बात लिखकर भेज रहे हैं।
1: और साथ ही एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि रूठना रिश्तों की वो डोर है जिसे बहुत संभाल कर खींचना पड़ता है। ज़्यादा ढील दी तो रिश्ता बेअसर हो जाएगा और ज़्यादा ज़ोर से खींचा तो डोर टूट जाएगी। इसलिए केवल उनसे रूठिए जो आपके मौन का दर्द समझते हों और आपकी खामोशी को पढ़ते ही आपको गले लगाने के लिए दौड़ पड़े।
0: और एक साथी लिखते हैं कि भाई बचपन में मैं अपनी माँ से रूठ जाती थी तो माँ बड़े ही प्यार से मना लिया करती थी, और अब तो रूठना ही भूल गई हूँ, बस मनाने का काम ही कर रही हूँ बस। तो ऐसे रूठना तो चलता रहता है ज़िंदगी में, देखो हर दिन कभी हम अपनों से रूठ जाते हैं, कभी मतलब किसी का फ़ोन नहीं आया तो रूठ गए, किसी ने मैसेज नहीं किया तो रूठ गए,
1: किसी ने हमें कुछ मिठाई नहीं खिलाई तो हम रूठ गए,
0: है ना।
1: एक हमारे साथी हैं मंजरी जो लिखते हैं कि कब किससे रूठें, किसी से रूठने का कोई ना कोई बहाना चाहिए, मनाने के लिए गाना गाना चाहिए। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे हों सनम तो फिर क्या है, हमको मनाना आता है, रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो बना लेंगे, रोता है तो हंसा लेंगे, यूं रूठो ना हसीना। इन्होंने सारे फिल्मों की रूठो वाली जो लाइन थी वो लिख के भेज दिए हैं।
0: जब इन्होंने गाने भेज ही दिए हैं तो हम क्यों ना इनको एक गाना ही सुना
1: देते हैं।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार ये तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती हमारे साथी क्या लिखते हैं?
3: हाँ, हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि किससे रूठें, रिश्तों में नाराज़गी की समझ होनी चाहिए और साथ ही रिश्तों में नाराज़गी की समझ ये कि रूठना और मनाना मानवीय रिश्तों के सबसे खूबसूरत और संवेदनशील पहलुओं में से एक है। नाराज़गी इस बात का प्रमाण होती है कि हम उस रिश्ते में पूरी तरह से निवेशित हैं, यानी कि उसमें हम डूबे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जीवन के इस भागदौड़ में हमें कब किससे और कितना रूठना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे या हर बात पर रूठना रिश्तों की नींव को कमज़ोर कर सकता है, जबकि सही समय पर व्यक्त गई नाराजगी रिश्ते को और मजबूत बना सकती है। तो हम किससे रूठते हैं? हम कभी किसी अजनबी से नहीं रूठते। रूठने का अधिकार हम सिर्फ उन्हें देते हैं जिन्हें हम अपने दिल के सबसे करीब मानते हैं, जैसे वो माता पिता हैं, जीवन साथी है, भाई बहन है या कोई बेहद करीबी दोस्त। तो रूठने के पीछे एक छिपी हुई उम्मीद होती है कि सामने वाला हमें प्यार से मनाएगा, और ये एक तरीके का मूक संवाद है। तो इन्होंने बहुत बहुत कुछ लिखा है इस बारे में, तो ये एक समझ लीजिए उसका जिस्ट है, उसका एक निचोड़ है।
2: क्या बात है। और हमारे साथी लिखते हैं, अपनों से तब रूठ

0: होती है जब सामने वाला आपकी खामोशी या आपकी कीमत समझे, लेकिन बेवजह या छोटी छोटी सी बातों पर किसी से नहीं रूठना चाहिए। किसी अपने से अनबन होने पर उन्हें थोड़ा शांत होने का समय दें। गुस्सा कम होने पर प्यार से अपनी बात रखें। रिश्तों में अहंकार ना आने दें, क्योंकि मनाना भी प्यार का एक हिस्सा है। और भी आजकल डिजिटल दुनिया में रूठना कोई मायने नहीं रखता है। लोगों से मिलना जुलना जो कम हो गया है तो क्या पता चलेगा।
1: बिल्कुल। और साथ ही एक हमारे और साथी हैं जो लिखते हैं कि ये सोचने से पहले कि किससे रूठें, ये ज़रूर सोच लीजिए कि कहीं हमारी नाराज़गी के कारण कोई अपना हमसे हमेशा के लिए दूर तो नहीं हो जाएगा। रिश्तों में जीत रूठने की नहीं बल्कि साथ निभाने की होती है। ज़िंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं कौन सा रिश्ता कब याद बन जाए और कौन सा अपना कब दूर चला जाए। इसलिए जहाँ प्रेम है वहाँ अहंकार को थोड़ा पीछे रखिए, जहाँ अपनापन है वहाँ छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करना सीखना चाहिए।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि भाई विचार, जीवन, रिश्तों और हमारी भावनाओं की गहराइयों को छूता है। रूठना एक ऐसी भावना है जो केवल वहीं पैदा होती है जहाँ कोई गहरा रिश्ता या हक होता है। हम हर किसी से नहीं रूठते और ना ही कोई हमें मना सकता है। रूठने में एक मासूमियत और प्यार की मांग होती है। जब हमारा कोई बहुत करीबी हमारी बात नहीं समझ पाता या हमारी भावनाओं को नज़रअंदाज करता है तब रूठना स्वाभाविक है। रूठना प्रेम की एक अनकही भाषा है। ये तभी तक सुंदर है जब तक रिश्तों की दूरियां ना बढ़ाएं बल्कि मनाने के बाद प्यार को और भी गहरा दें। तो इसी के साथ एक गीत सुन लेते हैं, तेरी मेरी प्रेम कहानी।

0: तो अब हम आ जाते हैं कि फ्रिज में हम सामान कैसे रखें। तो मंजरी एक हमारे साथी जो लिख के भेज रही हैं कि मैंने तो छोटे छोटे डिब्बे रखे हुए हैं और मिर्च अदरक जैसे सामान होते हैं उसमें ही स्टोर करके फ्रिज में रखती हूँ। डाइनिंग टेबल का मैट जो पुराना हो जाता है उसे फ्रिज के रैक पर बिछा देती हूँ ताकि उसमें कुछ भी गिरे तो आसानी से साफ किया जा सके। वैसे बना बनाया खाना मैं फ्रिज में रखना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि फ्रिज का रखा हुआ खाना मुझे पसंद नहीं है। बाय चांस कभी रखना हो तो अच्छी तरह पैक करके रखती हूँ और हर 2 से 3 दिन में चेक करती रहती हूँ कि कुछ खराब तो नहीं हो रहा है या किसी तरह का कोई स्मेल तो नहीं आ रहा है।
1: बिल्कुल। और फ्रिज में सामान रखते समय बचा हुआ भोजन बंद डब्बों में रखना चाहिए, सब्जियों को धोकर सुखाकर रखना चाहिए, दूध दही से ढककर रखना चाहिए, पनीर को खुले बर्तन में पानी में रखना चाहिए। हमारी साथी ने लिखती है इस तरह की बातें। और सब्जियों को भी अलग ड्रॉअर में रखें, फल पत्तेदार सब्जियां पेपर टॉवल में लपेटें, दूध और डेयरी प्रोडक्ट को मिडिल शेल्फ पर रखें और फ्रिज को ज़्यादा नहीं भरना चाहिए। ऐसी बातें लिख रहे हैं हमारे साथी। और लिखते हैं कि भाई जो भी बचा हुआ सब्जी दूध बचा हुआ खाना और कई तरह की चीज़ें रखते हैं तो फ्रिज में सामान रखने का मकसद ही है कि खाने पीने को की चीज़ों को लंबे समय तक स्टोर करना। और गर्मी में चीज़ें बाहर रखने से खराब जाती जबकि फ्रिज में कई दिनों तक चीज़ों को स्टोर किया जा सकता है। फल और सब्जियों को अलग अलग रखें, फ्रिज में फल और सब्जियों को एक साथ रखने से वे जल्दी खराब जाते हैं और कई फल जो हैं वो कई तरह की गैसेस छोड़ते हैं तो सब्जियां जल्दी खराब होने लगती हैं, इसलिए इनको अलग अलग शेल्फ में रखना चाहिए।
0: ठीक है। तो एक हमारे साथी तो जो लिखती हैं कि फ्रिज में सामान कैसे रखें, ये बहुत संजीदा मुद्दा है। तो फ्रिज तो होना चाहिए, इसमें दूध दही रख सकते हैं। हमारी माँ तो उसमें सब्जियाँ ठूस ठूस कर रख देती हैं, कभी कभी मिठाई की पेटी भी उसमें रख देती हैं। नानी मौसी को कुछ निकालना हो तो फ्रिज से ही निकालना होता है, कभी कभी तो फ्रिज में से पानी बाहर निकल आता है, इससे मम्मी गुस्सा हो जाती हैं और बहन को डांटने लगती हैं। तो उस हिसाब से आप रखिए, एक एक सेल्फ में थोड़ा थोड़ा सामान रखिए और उसको चेक करते रहिए और सफाई करते रहिए।
1: जी।

0: तो देखो बात करते करते समय बिल्कुल समाप्त पर हो गया है,
1: दूर
0: तो,
1: पास हाँ, सारे श्रोता रहते ही हैं,
0: तो सभी से लेते हैं विदा, सभी को मंजरी वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठ।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए हम अपने श्रोताओं से करेंगे बातें। देश के कोने कोने से हेलो फरमाइश कार्यक्रम में श्रोताओं के कॉल्स आते हैं और इस तरह से हम अपने श्रोताओं से जुड़ते हैं, उनके बारे में, उनके इलाके के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और विविध भारती के बारे में उनकी क्या राय है इसकी भी पड़ताल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: संत सीताराम नगर भोपाल से बोल रहा हूँ सर।
0: जी क्या नाम है आपका?
1: सर मैं बाबूलाल सेन बोल रहा हूँ सर।
0: बाबूलाल जी क्या करते हैं भोपाल में?
1: जी सैलून की दुकान है सर।
0: इस साल भोपाल में बारिश किस तरह की हुई है?
1: बारिश तो बहुत अच्छी हुई साहब, बढ़िया एकदम टनाटन और अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, ना बाढ़ को प्रकोप हुआ ज्यादा, कुछ भी नहीं है, नाले तूफान ज्यादा उफान पे भी नहीं आया।
0: अच्छा, और भदभदा के गेट कितनी बार खुले इस बार?
1: दो तीन बार खुले सर।
0: मतलब बारिश बहुत अच्छी हुई?
1: जी जी, लेवल से पानी हुआ है, गेट तो अंदाज से खुले सर।
0: और आप कहाँ कहाँ पिकनिक मनाने गए इस बारिश में?
1: इस बारिश में कहीं भी नहीं गए सर।
0: अच्छा, काम में बिजी रहे?
1: जी जी।
0: अच्छा बताइए, कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: मूवी है तुमसे अच्छा कौन है,
0: गाने की बोल
1: आप है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो।
0: क्या बात है, चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश, कौन कहाँ से बोल रहे हैं
1: जी? यूनुस खान जी, उत्तर प्रदेश जिला शामली से गुलजार बात कर रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं गुलजार साहब?
1: जी मैं बहुत अच्छा हूँ जी, आप कैसे हैं यूनुस खान सर?
0: बस बढ़िया हैं, आप लोगों से बातें कर रहे हैं। बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आज मैं गाना सुनना चाहूंगा ना जैके पार फिल्म का, आप गाने के बोल रहे थे कौन दिशा में लेके चला रहे बटुआ।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की, रविंद्र जैन का संगीत, उन्हीं का गाना है।
1: हाँ जी।
0: और ये फिल्म कितनी बार देखी है आपने?
1: ये फिल्म मैंने 10 बार देखी है।
0: अच्छा, और गुंजा और चंदन की प्रेम कहानी बहुत अच्छी लगती है आपको?
1: हाँ जी, गुंजा का रोल बहुत अच्छा लगता है, गुंजा और चंदन का रोल। जब आखिरी माह आ जाती है ना, आखिरी माह का गुंजा का निकाह चंदन से हो जाता है, गुंजा की शादी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फरमाइश पर, आपको सुनवाती है नदिया की पार फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: गिराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर जी।
0: कैसे हैं परमार जी?
1: बहुत अच्छे हैं सर जी। पहली बार आपसे ही बात हुई थी, आज पीछे आपसे बात करने का मौका मिला, मेरा बड़ा सौभाग्य है सर जी।
0: अरे वाह, हमें भी अच्छा लग रहा है। कब हुई थी पिछली बार बात हमारी?
1: सर 1.5 साल करीब हो गए सर।
0: अरे बाप रे, इतना ज्यादा वक्त हो गया।
1: जी जी।
0: अच्छा बताइए, सीहोर के क्या हाल चाल है, कितनी बारिश हो रही है?
1: जी सर, हमारे इधर तो अच्छी बारिश हो चुकी है, 33 इंच बारिश हुई है, पर के 41 हुई थी पिछले साल, और अभी मौसम धूप खिली हुई है सर। बरसात का मौसम होता है लेकिन बरसात अभी गिरी नहीं है सर हमारे इधर।
0: पूरे देश में सीहोर अपने शानदार गेहूं के लिए जाना जाता है, कौन कौन सी गेहूं की किस्में होती है वहाँ पर?
1: जी सर, हमारे इधर है ना 1544 लोकबन और 8713, और जो सरबती गेहूं रहते हैं ना सर, उसमें पूरे भारत में सीहोर मंडी का गेहूं और हमारे क्षेत्र का गेहूं सर।
0: बहुत ज्यादा तादाद में उधर गेहूं होता है?
1: जी हाँ सर, बहुत ज्यादा तादाद में गेहूं होता है, और खाने की किस्म बहुत जोरदार रहती है हमारे क्षेत्र में सर।
0: अच्छा
1: जी,
0: मतलब जरा विस्तार से बताएं।
1: सर जो लोकबंद गेहूं है या 1544 है, इनकी रोटी बहुत अच्छी आती है सर, और जो सरबती गेहूं जिसमें पूरे भारत में हमारे क्षेत्र का नाम चलता है, उसकी रोटी बहुत मुलायम रहती है सर, सुबह से शाम तक कड़क नहीं होती।
0: अच्छा क्या बात है, आपने देखिए कितने बारीकी से हमें ये फर्क बताया है। कितनी मेहनत गेहूं के खेतों में सीहोर वाले लोग करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत का काम है खेतों में काम करना, है ना?
1: जी हाँ सर, मेहनत का तो काम है, हम भी किसान है सर, किसानी करते हैं
0: जी। गेहूं के अलावा और क्या क्या होता है आपके खेतों में?
1: जी सर, अभी हमने बरसात की फसल में मक्का और सोयाबीन लगाए हैं सर जी, और 1 महीने बाद हमारी फसल आ जाएगी सर जी।
0: अच्छा, सोयाबीन मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है, क्या जमीन पर इसका कुछ असर पड़ता है सोयाबीन उगाने का?
1: नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, जमीन में ज्यादा कमजोर जमीन नहीं होती सोयाबीन से सर। मक्का का ज्यादातर लगातार बोएंगे तो कमजोर जमीन होती, बाकी सोयाबीन से जमीन कमजोर नहीं होती सर।
0: तो आप अदला बदली करके फसलें उगाते रहते हैं?
1: जी हाँ सर, हम इधर से इधर पलटी कर देते हैं, तो फसल उसमें अच्छी भी आती है और पैदावार भी बढ़ती है सर।
0: और खाद का इस्तेमाल कितना होता है, उर्वरक का इस्तेमाल?
1: जी सर, हमारे पास कुछ मवेशियाँ भी हैं सर, तो हम पहले तो गोबर का खाद इस्तेमाल करते हैं, जब हमको कम पड़ता है तो हम रासायनिक खाद का भी इस्तेमाल करते हैं जो सोसाइटी से हमें मिलता है सर।
0: और रेडियो आपके जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, खासतौर पर विविध भारती?
1: जी सर, विविध भारती तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ सर जी, मेरी 8 साल उम्र थी जब से मैं सुन रहा हूँ।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए आज किस गाने की फरमाइश है?
1: सर आप सुना दीजिए, फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है, और गाने के बोल हैं मत कर इतना गुरूर सूरत पे ए हसीना, ये वाला किस सुनना है सर जी?
0: आपने कहा और हमने सुनाया आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी, मैं सुशील कुमार बोल रहा सर।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: गांव श्यामपुर, जिला यमुनानगर, तहसील बिलासपुर।
0: अच्छा अच्छा, क्या हालचाल है आपके, बताइए।
1: ठीक है सर, बहुत बढ़िया जी। आज पहली बार मेरी कॉल लगी है सर।
0: अच्छा, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आज पहली बार आपकी कॉल लगी है।
1: हाँ जी।
0: अब बताइए कि विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मेरे को सारे प्रोग्राम बढ़िया लगते हैं जी।
0: अच्छा, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मेरे को एक गीत की फरमाइश है जी, वो है जी एक प्यार का नगमा है जी।
0: क्या बात है, शोर फिल्म का ये गाना सुनना चाहते हैं। आपकी फरमाइश पूरी करते हैं, आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: यूनुस खान सर को प्यार भरी नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: सर सतीश शर्मा बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से, आपका पुराना श्रोता।
0: जी सतीश जी कैसे हैं आप?
1: बस सर, पहले भी आपसे काफी बार बात हुई है।
0: अच्छा बताइए, आज किस गाने की फरमाइश लेकर आए हैं आप?
1: सर गाना है आज नागिन फिल्म से।
0: कौन सी वाली नागिन?
1: ये सर सुनील दत्त वाली।
0: अच्छा,
1: उसमें सर मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है।
0: क्या बात है, ये जो नागिन फिल्म है, इस फिल्म को देखने में लोग डरते थे और सीटों के नीचे नजर डाला करते थे कि कहीं सांप तो नहीं आ गया।
1: हाँ जी सर, जब इसकी बीन वगैरह बजती थी ना इसमें,
0: हाँ,
1: तो डर जाते थे हम।
0: कौन सी टॉकीज में देखी थी ये फिल्म?
1: टॉकीज में तो सर मैंने टीवी में ही देखी है ये।
0: अच्छा अच्छा, विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे लगते हैं?
1: विविध भारती का सर एक तो 12 बजे आता है जिसमें आप गाने सुनाते हैं सदाबहार नगमे में, और 1 बजे से आता है आपका, वो भी सुनता हूँ। और हेलो फरमाइश तो काफी समय से मैं कोशिश कर रहा था, बहुत समय बाद कॉल लगी है।
0: देखिए पूरे देश के श्रोता लगातार कॉल करते हैं तो ये होता है कि बहुत मुश्किल से कॉल लगता है।
1: और सर आप तो हमारे फेवरेट आरजे हैं,
0: बहुत बहुत
1: बात करने के लिए तो बहुत दिल से कोशिश कर रहा था मैं। काफी समय पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी, जैसे 2-3 बार हो चुकी है आपसे पहले, शायद आपको याद हो।
0: जी जी जी, तो बताइए कि इस समय विविध भारती के इन दिनों में सुने कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा यादगार लगे हैं?
1: एक तो आपका उजाले उनकी याद हो के आता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है, और सखी सहेली वगैरह ये भी सुनते हैं हम, और दोपहर में 1 बजे से आता है जो आप शब्द नहीं लेते हैं हमें, उसमें भी कई बार मैं भाग लेता हूँ।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपको सुनवाते हैं नागिन फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम सुराना, जिला रतलाम से बोल रहा हूँ, शेख हैदर खान।
0: हाँ जी, कैसे हैं हैदर जी आप?
1: बस बढ़िया है, खैरियत में है सर एकदम।
0: बिल्कुल दुआएं, बताइए।
1: फिल्म का नाम है धरती।
0: अच्छा,
1: ये रफी साहब की आवाज में गीत है। खुदा भी जब जमी पर आसमां से देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा।
0: बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है भाई आपने जी। बताइए कि कैसे हैं आप और कैसा है आपका शहर?
1: सर रतलाम से 12 किलोमीटर दूर मेरा गांव है और हम तो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं सर।
0: जी जी।
1: तो अभी सोयाबीन की फसल मतलब लगभग कटने वाली है, जिसके बाद गेहूं और लहसुन वगैरह की खेती करेंगे सर, मटर वगैरह की।
0: जी जी जी।
1: और सर आकाशवाणी से मैं 1980 से जुड़ा हुआ हूँ।
0: बहुत खुशी की बात है। और लगातार विविध भारती सुनते हैं आप?
1: विविध भारती तो सर मतलब मेरे पास रेडियो है, दो रेडियो रहते हैं, मेरे खेत पे भी रहता है, घर पे भी चलता ही रहता है।
0: अच्छा, बहुत ही बढ़िया। मुझे ये बताइए कि नए गानों की बजाय पुराने गाने लोगों को क्यों पसंद आते हैं?
1: सर नए गानों में जो म्यूजिक है वो बिल्कुल मतलब थोड़ा अलग ढंग का है, और पहले के जो गीतकार थे, शायर थे, गायक कलाकार थे, उनके क्या कहना है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए पूरी करते हैं इस बातचीत को और आपको सुनवाते हैं धरती फिल्म का ये गाना आपके लिए।

0: हेलो फरमाइश
1: यूनुस भाई, ठीक हो आप? सर
0: जी, आप कौन बोल रहे हैं?
1: बिलाल अहमद कश्मीर से बोल रहा हूँ।
0: बिलाल अहमद साहब, कश्मीर में कहाँ हैं आप?
1: हम डिस्ट्रिक्ट बड़गांव है, गांव है गोंडीपना।
0: अच्छा, उस इलाके की क्या खासियत है?
1: यहाँ सर ये सेबू की दरख्त है।
0: अच्छा,
1: बहुत
0: और वादी कश्मीर में विविध भारती किस तरह सुनाई देती है और कितना ज्यादा लोग इसे पसंद करते हैं?
1: सर हम बहुत पसंद करते हैं, सुबह से शाम तक हम आपके प्रोग्राम सुनते हैं।
0: अच्छा, मुझे ये बताएं कि कश्मीर से बाहर के लोग जब कश्मीर घूमने आते हैं तो वो गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, इन सब जगहों पर जाते हैं। कश्मीर के लोग कहाँ घूमने जाते हैं?
1: कश्मीर के लोग बाहर भी जाते हैं, बाहर कंट्री में बहुत जगहों पर जाते हैं।
0: नहीं, मेरा मकसद था कश्मीर के लोग कश्मीर में कहाँ घूमने जाते हैं?
1: यहाँ भी जाते हैं, बहुत जगहों पर जाते हैं।
0: अच्छा, अभी आपके गांव में किस तरह का मौसम है?
1: अभी तो मौसम अच्छा है, अभी मौसम सर्मा आने वाला है तो उसमें थोड़ा बहुत मुश्किल होते हैं, तो अभी तो ठीक मौसम है अभी।
0: जी, वैसे इन दिनों में टूरिस्ट किस तरह से आ रहे हैं, कितनी तादाद है?
1: बहुत टूरिस्ट अभी भी आते हैं, दौद पत्री है यहाँ हमारा वो इलाका है, वहाँ में नजदीक है इस गांव से, बहुत टूरिस्ट आते हैं, सुबह से शाम तक आते हैं, अभी गुलमर्ग भी आते हैं, सोनमर्ग, वैरनाग।
0: जी, मौसम की पहली बर्फबारी हो गई हमने सुना है?
1: ना, अभी बर्फबारी नहीं हुई, थोड़ा मौसम आलूदा रहते हैं लेकिन बहुत धूप है कल से।
0: जी जी जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: आज हम यूनुस भाई वो गाना है ना, दिल दिया है जान दिया ए वतन तेरे लिए,
0: कर्मा फिल्म का ये गाना है, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, सुभाष घई की ये फिल्म थी। आपकी नजर वादी कश्मीर में ये गाना किया जा रहा है।

0: हेलो फरमाइश।
1: गोपाल बोल रहा हूँ मैं, ग्राम ककवासा से।
0: अच्छा, ये ककवासा कहाँ पड़ा भाई?
1: ये ककवासा आपने जी है ना, ये भोपाल के पास में है जी, मान लीजिए।
0: अच्छा, कौन सी वाली रोड पर?
1: जी अपना है ना वो जामनेर वाली जी रोड गए ना, यहाँ पर ही है जी, पास में पड़ता है अपना गाँव।
0: अच्छा, तो बताइए आपके गाँव की क्या हालत है?
1: गाँव की हालत बढ़िया है, बारिश हुई थी अभी 2-3 दिन बाद, अभी तो क्योंकि फसल भी आने वाली है, मक्का की फसल लगा रखी है।
0: तो बारिश तो 1 महीना लेट चल रही है हमने सुनो।
1: हाँ, लेट ही चल रही है अभी।
0: अच्छा, बाकी गांव के हालचाल कहाँ है?
1: गांव के हालचाल तो बढ़िया है जी, मान लीजिए अभी फसल कटेगी, नवरात्रि भी आने वाली है।
0: हाँ, तो तैयारियां चल रही?
1: तैयारी करेंगे, अभी तो नहीं चल रही है जी, मान लीजिए।
0: अच्छा
1: सर जी, पहली बार बात हो रही है, यूनुस खान जी बोल रहे हैं ना?
0: हाँ, यूनुस खान बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें भी। अच्छा बताइए, किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
1: सिर्फ तुम फिल्म का सुनना है, वो पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए, मैं क्या करूं जी वाला, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में।
0: क्या बात है, आपको तो सब याद है, बहुत रेडियो सुनते हैं आप?
1: हाँ सुनते हैं, हम तो पूरे कार्यक्रम जो बहुत सालों से सुनता है, पहले आता था वो सुपर हिट आता था सदाबहार नगमे, मन चाहे गीत भी आते थे पहले 1:30 बजे से, वो बहुत सालों का रेडियो आता था, तो वो रेडियो पे सुनते थे पहले तो।
0: और अभी?
1: अभी मोबाइल ऐप पे चल रहा है अभी जी, मान लीजिए।
0: क्या बात है, मोबाइल ऐप पे बहुत ही अच्छा रहता है, एक बटन दबाओ और रेडियो चालू हो गया।
1: जी सर जी, विविध भारती अपरा तो चलता ही रहता है जी, मान लीजिए सभी कार्यक्रम आपके चलते ही रहते हैं।
0: बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण हाजी बोल रहा हूँ सर।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: एकदम बहुत बढ़िया है सर, आप सुनाओ, आप कैसे हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। बताइए कि आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: याराना फिल्म का गीत है सर, तेरे जैसा यार कहाँ, ये गीत सुना है सर आज।
0: अपने किस दोस्त की नजर कर रहे हैं?
1: मेरे तो दोस्त वैसे तो बहुत है, सब छोटा लोग मेरे दोस्ती है सर। किसका
0: अच्छा,
1: नाम ले?
0: ऐसा सबसे पुराना दोस्त कौन है आपका, बचपन का दोस्त?
1: बचपन का दोस्त तो अभी दवाखाने में एडमिट है सर, एक्सीडेंट हो गया उनका।
0: अरे अरे अरे, तो आपको तो बहुत फिक्र होगी उनकी।
1: सर अभी उनको ही फोन लगा रहा था, लेकिन हेलो फरमाइश में फोन लगा, बहुत सालों के बाद फोन लगा मेरा।
0: बहुत साल मतलब कितने साल हो गए?
1: मैं कम से कम 1995 से रेडियो सुन रहा
0: जी,
1: तब से फोन लगा रहा, लेकिन लगा भी नहीं, आज तक नहीं फोन लगा मैंने।
0: आज पहली बार फोन लगाई, ये तो बहुत खुशी की बात है फिर।
1: हाँ सर, बहुत खुशी की बात, इतनी खुशी हो गई कि मैंने फिल्म का नाम भी नहीं बता सकता था, लेकिन वैसे भी याद आ गया इसलिए बोल दिया।
0: क्या बढ़िया बात है, अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपका जो दोस्त बीमार है, जिसका एक्सीडेंट हो गया है, हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सुनिए याराना फिल्म का ये गाना।

0: हेलो, फरमाइश।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा है सर जी, मनोज नामदेव।
0: मनोज जी कैसे हैं आप?
1: बस सर जी बहुत बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है भगवान कृपा से, मैं बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: अच्छा, अब बताइए आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: फिल्म का नाम रहेगा विजयपथ, तो उसमें गाना है राहों में उनसे मुलाकात।
0: वाह, ये तो अजय देवगन का गाना है।
1: बिल्कुल सर।
0: और तब्बू का गाना है।
1: हाँ सर।
0: कुछ याद आता है ये फिल्म कब कहाँ देखी थी?
1: सर जी मैंने सबसे पहले फिल्म टॉकीज में देखी थी 2018 में।
0: अरे बाप रे, ये सब भी याद है आपको?
1: हाँ सर बिल्कुल। और एक साल से सर मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि सर आपसे मेरी बात हो, आज जाके मेरी उम्मीद पूरी हुई है सर।
0: बिल्कुल बात हुई और हमें भी बहुत अच्छा लगा। पूरी करते हैं बातचीत, आपको सुनवाते हैं विजयपथ फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है
1: जी? संतोष कुमार राव बात कर रहा था सर, उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा, बताइए बताइए, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा सर, आपके प्रोग्राम से लगातार जुड़ाव रखते हैं, मनचाहे प्रोग्राम से इतनी शानदार और मनमोहक प्रस्तुतियां देते हैं सर, बेहद ही लाजवाब प्रोग्राम होता है मनचाहे गीत, और विविध भारती के कार्यक्रम जितने भी आते हैं सर, बहुत ही प्यारी प्रस्तुतियों के साथ आपका प्रसारण आता है सर।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। और उमरिया में किस चीज़ की खदाने हैं?
1: सर यहाँ पे कोयला खदाने हैं सर यहाँ पे, और बहुत ही प्यारा सा मौसम है इस समय, और कोयला की उत्खनन हमेशा यहाँ पे जारी रहती है सर।
0: अच्छा, वहाँ विविध भारती किस तरह सुनाई देता है?
1: डीटीएच के माध्यम से प्रसारण आता है, न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के माध्यम से प्रसारण आता है, FM बैंड 102 MHz पर आकाशवाणी शेड्यूल के माध्यम से प्रसारण आता है सर। बहुत ही अच्छी उन्नति तकनीकों के साथ आपका प्रसारण स्पष्ट रूप से पहुँच पाता है सर।
0: अच्छा, और बहुत ही प्यारा सुंदर प्राकृतिक सुषमा से भरपूर इलाका है आपका।
1: जी बिल्कुल सर, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है सर, हरियालियाँ चारों तरफ है, और आपका प्रसारण बहुत ही सुमधुर आवाज के साथ पहुँचता है, और पूरे परिवार का आनंद उठाते हैं हम लोग राष्ट्रीय सेवा विविध भारती देश की सुरीली धड़कन के माध्यम से।
0: वाह, आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: आज की 2 मूवी का गाना है चाहूं मैं आना।
0: अच्छा लगा आपसे बात करके। पूरी करते हैं आपकी फरमाइश और आपको उमरिया में सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल सोमवार को रिकॉर्ड करते हैं दिन में 11 बजे से। दो टेलीफोन नंबर है हमारे 0222867 0288 यानी 0222867 0288 और 0224002466 यानी 0224002462। जिन श्रोताओं के कॉल्स आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं उनसे हम विनम्र निवेदन ये करेंगे कि वो कृपया हमें आगामी 2 माह तक फोन न करें ताकि हम अपने नए श्रोताओं को मौका दे सकें। चलने से पहले आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थीं किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी और मैं आपका दोस्त यूनुस खान। इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
4: FM बैंड 103.1 मेगा

0: क्वार्टर्स पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। इस समय संध्या के 5 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत, लेकिन उससे पहले सुनिए जरूरी संदेश।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को सीमा गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है सखियों आपका आपके अपने कार्यक्रम महिला जगत में। हमेशा की तरह हम उपस्थित हैं नई चर्चा, जानकारी और गीत संगीत के साथ। नारी को सुरक्षा नहीं सम्मान चाहिए, अपने सपनों को जीने का आसमान चाहिए। कानून हो मजबूत, समाज में जागरूकता हो, हर कदम पर उसके साथ इंसानियत हो। डर के साए में नहीं विश्वास के साथ चले नारी, तभी सशक्त होगी हर बेटी, हर बहन, हर नारी। जी हाँ सखियों, महिला सुरक्षा केवल एक कानूनी विषय नहीं बल्कि हमारी समाज की संवेदनशीलता और सोच का आईना है। आज जब महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं, तब ये आवश्यक हो जाता है कि उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी हो, कानूनों का संरक्षण मिले और समाज उनकी सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे। महिला सुरक्षा के तीन महत्वपूर्ण आधार हैं, कानून, जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी। तो आइए सखियों, आज चर्चा करते हैं इसी विषय पर, महिला सुरक्षा, कानून, जागरूकता और चुनौतियाँ। सखियों, महिला सुरक्षा केवल महिलाओं की चिंता नहीं बल्कि एक सुरक्षित और सभ्य समाज की पहचान है। महिलाएं आज शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, राजनीति, प्रशासन, विज्ञान और हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। लेकिन महिलाओं की वास्तविक स्वतंत्रता तभी संभव है जब उन्हें घर, कार्यस्थल, सड़क, सार्वजनिक स्थान और डिजिटल दुनिया हर जगह सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर दे। सखियों, महिला सुरक्षा का अर्थ केवल अपराध होने के बाद न्याय दिलाना नहीं है बल्कि ऐसा वातावरण बनाना है जहां महिला बिना भय के अपनी बात कह सके, अपने निर्णय ले सके और अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। सखियों, भारत में महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए अनेक कानूनी प्रावधान हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराधों, पीछा करने, छेड़छाड़ तथा अन्य अपराध

मर्दों के संबंध में प्रावधान है। इसके साथ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013, दहेज निषेध अधिनियम 1961 तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 जैसे कानून महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण।

यदि किसी महिला को ये पता ही नहीं कि उसके साथ होने वाला व्यवहार अपराध की श्रेणी में आता है या शिकायत कहाँ और कैसे करनी है, तो कानून की शक्ति सीमित हो जाती है। इसलिए महिला सुरक्षा की पहली सीढ़ी है जागरूकता। प्रत्येक महिला और बालिका को ये समझना चाहिए कि उसकी गरिमा, निजता, सहमति और सम्मान महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार की हिंसा, धमकी, पीछा करना, अश्लील व्यवहार, ऑनलाइन उत्पीड़न या कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार को सहन करने वाली सामान्य बात मानना आवश्यक नहीं है। सखियों, परिवार और विद्यालय भी इस जागरूकता की शुरुआत के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। बच्चों को बचपन से ही गुड टच, बैड टच, व्यक्तिगत सीमाएं, सम्मान, सुरक्षित असुरक्षित व्यवहार के बारे में उम्र के अनुरूप समझाया जाना चाहिए। बेटियों को केवल सावधान रहने की शिक्षा देना पर्याप्त नहीं है, बेटों को भी ये सिखाया जाना उतना ही जरूरी है कि सम्मान, सहमति और समानता किसी भी रिश्ते की बुनियाद है। सखियों, आज महिला सुरक्षा का एक बड़ा हिस्सा साइबर सुरक्षा से जुड़ गया है। सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल, निजी तस्वीरों का दुरुपयोग, साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन धमकी, अश्लील संदेश और तस्वीरें और निजी जानकारी का दुरुपयोग जैसी समस्याएं महिलाओं को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए महिलाओं को डिजिटल सुरक्षा के प्रति भी सजग रहना चाहिए। अपनी निजी जानकारी सोच समझकर साझा करना, मजबूत पासवर्ड, संदिग्ध लिंक से बचना तथा उत्पीड़न होने पर स्क्रीनशॉट और अन्य डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखना उपयोगी कदम है। किसी घटना को छिपाने की बजाय समय पर परिवार, विश्वसनीय व्यक्ति या संबंधित प्राधिकरण से सहायता लेना अधिक महत्वपूर्ण है। सखियों, महिला सुरक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल कानूनों की कमी नहीं, बल्कि कानून के प्रभावी क्रियान्वयन, सामाजिक मानसिकता और जागरूकता से जुड़ी है। कई बार पीड़िता को ही दोष देने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। उसके कपड़ों, व्यवहार, समय या बाहर जाने को घटना का कारण बताया जाता है। ऐसी सोच अपराधी के व्यवहार से ध्यान हटाकर पीड़िता पर डाल देती है। दूसरी चुनौती है चुप्पी। सखियों, परिवार की प्रतिष्ठा, सामाजिक दबाव, आर्थिक निर्भरता या बदनामी के डर से कई महिलाएं अपने साथ हुई हिंसा या उत्पीड़न की बात ही नहीं कर पाती। विशेष रूप से घरेलू हिंसा के मामलों में आर्थिक और भावनात्मक निर्भरता स्थिति को और जटिल बना सकती है। तीसरी चुनौती है कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में कई बार महिलाओं तक कानूनी जानकारी और सहायता सेवाओं की पहुंच सीमित होती है। इसलिए केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, कानूनी साक्षरता को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना भी जरूरी है। सखियों, महिला सुरक्षा को केवल महिलाओं की जिम्मेदारी मानना सही नहीं है। सड़क पर किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार होते देखकर चुप रह जाना, किसी पीड़िता की बात पर विश्वास न करना या उत्पीड़न को मजाक मान लेना समस्या को बढ़ाता है। सखियों, हमें ऐसा समाज

बनाना होगा जहां महिलाओं को सुरक्षा मांगने की आवश्यकता कम और सम्मान पाने का अधिकार अधिक महसूस हो। इसलिए सखियों, बेटी को डरना मत सिखाइए, उसे अधिकारों से परिचित कराइए और बेटों को सिर्फ सफल होना ही नहीं, सम्मान करना भी सिखाइए। महिला सुरक्षा की लड़ाई केवल कानून की लड़ाई नहीं है, ये सोच, संस्कार, शिक्षा, जागरूकता और जिम्मेदारी की भी लड़ाई है। कानून महिला को अधिकार देता है, जागरूकता उसे उन अधिकारों का इस्तेमाल करना सिखाती है और संवेदनशील समाज उसे सुरक्षित वातावरण देता है। इसलिए कहते हैं, सुरक्षित नारी, सशक्त नारी, सशक्त नारी, सशक्त समाज, और सशक्त समाज ही विकसित राष्ट्र की पहचान है। तो इसी के साथ वक्त हो चला है गीत संगीत का, तो आइए लिए चलते हैं आपको गीत संगीत की ओर और सुनवा देते हैं प्यारा सा गीत।

तो अभी हमारी सखियों ने सुना ये गीत, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। नीला है आकाश, नीला है सागर, दोनों में छिपा है जीवन का सागर। लहरों की हर एक कहानी कहती है, प्रकृति को बचाना हमारी जिम्मेदारी रहती है। सखियों, समुद्र केवल पानी का अथाह विस्तार नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी के जीवन, पर्यावरण, व्यापार और मानव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण आधार है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में समुद्र की भूमिका भले ही प्रत्यक्ष दिखाई ना दे, लेकिन भोजन से लेकर व्यापार तक, जलवायु से लेकर जैव विविधता तक, समुद्र हमारे जीवन को अनेक स्तरों पर प्रभावित करता है। इसी समुद्री संसार के महत्व, इसकी सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र से जुड़े लोगों के योगदान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। तो आइए सखियों, आज विश्व समुद्री दिवस के अवसर पर हम जानते हैं कि समुद्र हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उनके सामने कौन सी चुनौतियां हैं और समुद्रों को सुरक्षित रखने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। सखियों, विश्व समुद्री दिवस हर वर्ष सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है, जो कि आज है। ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा समुद्री सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण, नाविकों के योगदान और विश्व व्यापार में समुद्री परिवहन के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। सखियों, दुनिया के अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का परिवहन समुद्र के रास्ते होता है। खाद्यान्न, ईंधन, कच्चा माल, मशीनरी और अनेक आवश्यक वस्तुएं जहाजों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश तक पहुंचती है। इसलिए समुद्री परिवहन वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। समुद्र जलवायु को संतुलित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बड़ी मात्रा में ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं तथा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र असंख्य जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करता है। मछलियाँ, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री घास और अनेक सूक्ष्म जीव समुद्री जैव विविधता का हिस्सा हैं। सखियों, आज जिस वैश्विक दुनिया में हम रहते हैं, उसमें समुद्री मार्गों का महत्व बहुत अधिक है। बड़े बड़े मालवाहक जहाज हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके देशों के बीच व्यापार को संभव बनाते हैं। बंदरगाहों के आसपास अनेक प्रकार के रोजगार और आर्थिक गतिविधियां विकसित होती हैं। सखियों, आज समुद्रों के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है प्लास्टिक प्रदूषण। नदियों और तटीय क्षेत्रों से बहकर बड़ी मात्रा में प्लास्टिक समुद्र तक पहुंचता है। इससे समुद्री जीवों को नुकसान होता है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। इसके अलावा तेल रिसाव, रासायनिक प्रदूषण, जहाजों से निकलने वाला कचरा, अत्यधिक मछली पकड़ना और समुद्र के बढ़ते तापमान जैसी समस्याएं भी चिंता का विषय हैं। सखियों, समुद्र को बचाना केवल समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। हम अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक का कम उपयोग करके, कचरे को सही तरीके से निस्तारित करके और जल स्रोतों को प्रदूषण होने से बचाकर समुद्रों की रक्षा में योगदान दे सकते हैं। जब हम किसी जहाज को समुद्र में चलते देखते हैं, तो अक्सर उसके पीछे काम करने वाले लोगों को भूल जाते हैं। वास्तव में नाविक समुद्री व्यापार की रीढ़ हैं। वे महीनों तक अपने परिवार से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और वैश्विक

आपूर्ति व्यवस्था को चलाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसलिए समुद्री दिवस हमें ये संदेश देता है कि समुद्र की सुरक्षा के साथ साथ समुद्र पर काम करने वाले लोगों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। सखियों, भारत की समुद्री विरासत बहुत पुरानी है। भारत की लंबी समुद्री तटरेखा, अनेक प्रमुख बंदरगाह और हिंद महासागर में इसकी महत्वपूर्ण भौगोलिक

समुद्री विरासत बहुत पुरानी है। भारत की लंबी समुद्री तट रेखा, अनेक प्रमुख बंदरगाह और हिंद महासागर में इसकी महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति इसे समुद्री क्षेत्र के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। सखियों, विश्व समुद्री दिवस हमें याद दिलाता है कि समुद्र केवल समुद्री जीवों का घर या व्यापार का मार्ग नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के जीवन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि समुद्र स्वस्थ रहेंगे तो समुद्री जैव विविधता सुरक्षित रहेगी, जलवायु संतुलन में मदद मिलेगी, तटीय समुदायों की आजीविका सुरक्षित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को भी स्वच्छ एवं समृद्ध समुद्री संसार मिल सकेगा। सखियों, समुद्र की लहरों में जीवन की कहानी है, इसकी गहराई में प्रकृति की निशानी है। इसे स्वच्छ रखना केवल हमारा काम नहीं, आने वाली पीढ़ियों की भी जिम्मेदारी है। समुद्र बचेंगे तो जीवन बचेगा, समुद्र स्वस्थ होंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ एक बार फिर लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनवा देते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो अभी हमारी सखियों ने सुना ये गीत, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। सखियों, जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें स्वीकार करना कठिन होता है, लेकिन उन्हें समझ लेने के बाद जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। तो आइए आज जानें जीवन के कुछ कड़वे नियम लेकिन सच्चे नियम। सखियों, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो आज अपना है जरूरी नहीं कल भी अपना रहे, और जो आज दूर है जरूरी नहीं कि हमेशा दूर रहे। हर व्यक्ति को खुश रखना संभव नहीं है। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, किसी न किसी की नजर में आप गलत होंगे। इसलिए दूसरों की स्वीकृति से ज्यादा जरूरी है कि आपका अंतर्मन आपको सही माने। सखियों, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो लोग आज आपकी उपेक्षा कर रहे हैं, हो सकता है कल आपकी जरूरत महसूस करें, लेकिन तब तक परिस्थितियां बदल चुकी होंगी। इसलिए सम्मान तब दीजिए जब व्यक्ति आपके सामने हो। बाद का पछतावा किसी काम का नहीं। रिश्तों में केवल प्यार काफी नहीं होता, विश्वास, सम्मान और समझ भी जरूरी है। कभी कभी बहुत करीबी रिश्ते भी दूरी में बदल जाते हैं, और कभी कभी अजनबी व्यक्ति जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। सखियों, पैसा जीवन की हर समस्या का हल नहीं होता, लेकिन पैसों की कमी कई समस्याओं को बढ़ा सकती है। इसलिए भावनाओं के साथ साथ आर्थिक समझदारी भी जीवन का जरूरी हिस्सा है। एक और कड़वा सच ये सखियों, आपकी जगह कोई और पूरी तरह नहीं भर सकता, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में दुनिया रुकती भी नहीं है। इसलिए अपने को महत्व दीजिए, लेकिन अहंकार को नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, समय लौट कर नहीं आता। हम पैसा फिर कमा सकते हैं, खोई हुई वस्तु फिर खरीद सकते हैं, लेकिन बीता हुआ बचपन, बीता हुआ समय और कुछ छूटे हुए अवसर वापस नहीं ला सकते। तो सखियों, जीवन के ये कड़वे नियम हमें निराश करने के लिए नहीं, बल्कि समझदार, आत्मनिर्भर और संतुलित बनाने के लिए हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो दीजिए अनुमति अपनी सखी सीमा को फिर मिलने के वादे के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।

0: कहाँ, ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अभी आप सुन रहे थे महिला जगत। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम युववाणी।

दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी प्यारी दोस्त आरजे वंशिका और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट रेडियो शो युववाणी में। तो दोस्तों प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक छोटा सा प्यारा सा आपको गाना सुना देती हूं।

तो दोस्तों, कहते हैं ना कि जिसे सब आता है वो शायद बहुत कुछ जानता हो, लेकिन जिसे सबसे सीखना आता है वो जिंदगी को समझता है। और एक बात और, हम अक्सर अमीर उस इंसान को समझते हैं जिसके पास बड़ा घर हो, महंगी गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, लेकिन क्या सच में अमीरी इतनी ही होती है? अगर ऐसा होता तो दुनिया के हर अमीर इंसान के चेहरे पर हमेशा सुकून होता। लेकिन जिंदगी हमें कुछ और सिखाती है। जिसके पास कम होकर भी काफी है, वही असल में सबसे अमीर है। आज की बात बस दो छोटी सी पंक्तियों के इर्द गिर्द है। बुद्धिमान वो है जो सभी से सीखना चाहता है, और अमीर वो है जो सदैव संतुष्ट है। अच्छा तो दोस्तों, बुद्धिमानी आखिर है क्या? हम बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ो, डिग्री लो, ज्ञान हासिल करो, बुद्धिमान बनो। लेकिन क्या सिर्फ किताबें पढ़ लेना बुद्धिमान होने की निशानी है? नहीं, क्योंकि किताब आपको बता सकती है कि बारिश क्यों होती है, लेकिन सड़क किनारे छाता बेचने वाला इंसान आपको बता सकता है कि बारिश में जिंदगी कैसे चलती है। एक प्रोफेसर आपको सिद्धांत समझा सकता है, और एक मजदूर आपको मेहनत का मतलब समझा सकता है। एक बच्चा आपको सिखा सकता है कि छोटी सी चीज में खुश कैसे हुआ जाता है, और एक बुजुर्ग आपको बता सकता है कि जिंदगी में कौन सी चीजें सच में मायने रखती हैं। दोस्तों, यही तो असली बुद्धिमानी है। कभी गौर कीजिएगा, पेड़ जब फल से भर जाता है ना, तो उसकी डालियां नीचे झुक जाती हैं, और इंसान जब उसके अंदर ज्ञान बढ़ता है तो उसका व्यवहार भी विनम्र होना चाहिए। एक शायरी आपको इस पे सुना देती हूँ कि इल्म बढ़ा तो सिर झुकाना सीख लिया, इल्म बढ़ा तो सिर झुकाना सीख लिया, हर शख्स से कुछ ना कुछ पाना सीख लिया। कौन छोटा कौन बड़ा, कौन छोटा कौन बड़ा, ये सोच छोड़ दी जिंदगी ने, जिसे मिलाया उससे सीखना सीख लिया। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आप किसी दुकान पर जाते हैं, वहाँ एक बुजुर्ग दुकानदार बैठा है। आप उससे बस सामान लेने गए थे, लेकिन बातचीत में पता चला कि उसने 30 साल उसी दुकान पर मेहनत की है। सोचो आप कि उसने कितने उतार चढ़ाव देखे होंगे, कितने लोग आए होंगे, कितने चले गए होंगे। अगर हम सिर्फ ये सोचकर उससे बात ही ना करें कि ये तो बस दुकानदार है, तो शायद हम उसके अनुभव से मिलने वाली एक बड़ी सीख खो देंगे। इसलिए सीखने वाले के लिए पूरी दुनिया एक किताब है। किसी से धैर्य सीखिए, किसी से मेहनत, किसी से हंसना सीखिए, किसी से मुश्किलों में खड़े रहना, और कभी कभी तो किसी की गलती देखकर भी सीखिए, क्योंकि हर गलती हमें अपनी जिंदगी में एक गलती। तो चलो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अमीर कौन। अमीर वो है जो हमेशा सेटिस्फाई है। अब यहाँ एक सवाल बनता है, क्या इसका मतलब है कि हमें बड़े सपने देखने ही नहीं चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। सपने देखिए, मेहनत भी कीजिए, आगे बढ़िए, नई चीज़ें हासिल भी कीजिए, लेकिन जो आपके पास आज है उसकी कीमत समझना मत भूलिए। क्योंकि ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी तब शुरू होती है जब हमारा और चाहिए इतना बड़ा हो जाता है कि हमारा जो है वो भी कम लगने लगता है।

फोन नया चाहिए, कपड़े नए चाहिए, गाड़ी भी नई चाहिए और दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी छोटी लगने लगती है। सोशल मीडिया खोलते ही कोई घूम रहा है, कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, कोई विदेश जा रहा है, कोई सफलता की फ़ोटो डाल रहा है और हम सोचने लगते हैं मेरी ज़िंदगी में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन भाई, दूसरे की हाईलाइट रील्स देखकर अपनी पूरी ज़िंदगी को जज करना भी तो गलत है ना। किसी की फ़ोटो में खुशी देखकर ये मत मानिए कि उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं, क्योंकि कैमरा चेहरा दिखाता है, कहानी नहीं। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी बात है कि संतुष्टि का मतलब हार मान लेना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, संतुष्टि होने का मतलब ये नहीं कि जो मिल गया ठीक है, अब कुछ करना ही नहीं। नहीं, संतुष्टि का मतलब है आज जो है उसके लिए आभार यानी ग्रेटफुल, और कल जो चाहिए उसके लिए कोशिश और मेहनत यानी दिल से सेटिस्फेक्शन और कदमों से हार्डवर्क। यही बैलेंस जिंदगी को और खूबसूरत बनाता है। आप बड़ा घर चाहते हैं, चाहिए, लेकिन छोटे घर की यादों को छोटा मत समझिए। आप बड़ी नौकरी चाहते हैं, बिल्कुल चाहिए, लेकिन आज जो छोटा अवसर मिला है उसे बेकार मत समझिए। आप सफलता चाहते हैं, बिल्कुल, लेकिन सफलता की दौड़ में अपना सुकून मत हारिए। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक आदमी बहुत परेशान था। उसके पास घर था, परिवार था, खाना था, काम था, फिर भी वो हर समय कहता मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। बुजुर्ग ने पूछा, तुम परेशान क्यों हो? उसने कहा, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तुम्हारे पास आंखें हैं? हाँ। चल सकते हो? हाँ। अपने लोगों से बात कर सकते हो? हाँ। सुबह उठकर नई शुरुआत कर सकते हो? हाँ। फिर बुजुर्ग बोले, तो तुम गरीब कैसे हो? तुम्हारे पास वो चीजें हैं जिनकी कीमत अक्सर इंसान उन्हें खोने के बाद समझता है। कितनी सच्ची बात है ना दोस्तों, हम अक्सर उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है और उस चीज की कद्र करना भूल जाते हैं जो हमारे पास पहले से है। दोस्तों, असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, असली अमीरी है सुबह उठकर मन में शांति होना, घर में किसी अपने का होना, किसी के चेहरे पर आपकी वजह से मुस्कान आ जाना, मुश्किल वक्त में भी उम्मीद बची रहना और रात को सोते समय ये महसूस होना कि आज मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। यकीन मानिए, अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जिसे पैसा खरीद ही नहीं सकता। तो आइए इसी पे एक और शायरी सुना देती हूँ। दौलत से हर चीज़ खरीदी नहीं जाती, कि दौलत से हर चीज़ खरीदी नहीं जाती, हर खुशी बाजार में मिल नहीं पाती। सुकून चाहिए तो दिल से पूछ लेना, सुकून चाहिए तो दिल से पूछ लेना, हर अमीरी पैसों से बड़ी नहीं होती, हर अमीरी पैसों से बड़ी नहीं होती। अब ज़रा इन दोनों बातों को साथ में रख के देखिए। बुद्धिमान इंसान कहता है मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, और संतुष्ट इंसान कहता है मेरे पास जो है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। पहली सोच हमें अहंकार से बचाती है और दूसरी सोच हमें लालच से बचाती है। एक हमें सिखाती है कि मैं सब नहीं जानता, दूसरी सिखाती है मेरे पास सब कुछ नहीं है लेकिन जो है वो भी कम नहीं। और शायद ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए हमें बस इन दो बातों की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज का एक छोटा सा संकल्प, आज से एक छोटा सा काम कीजिए कि जब भी किसी इंसान से मिलो, खुद से पूछिए मैं इस इंसान से क्या सीख सकता हूँ, और जब भी आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ कम है, एक पल रुककर खुद से पूछिए कि मेरे पास ऐसा क्या है जिसके लिए किसी और की आंखें तरस रही होंगी। शायद जवाब आपको अंदर से बदल दे, क्योंकि ज़िंदगी हमें हमेशा और ज़्यादा देने के पीछे नहीं भागती। कभी कभी वो बस इतना चाहती है कि हमें जो मिला है उसे देखना सीख जाएं। और जाते जाते बस इतना याद रखिए, बुद्धिमान बनने के लिए हर सवाल का जवाब जानना ज़रूरी नहीं। कभी कभी बुद्धिमानी ये स्वीकार करने में है कि मुझे नहीं पता लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ। और अमीर बनने के लिए हर चीज़ का मालिक होना ज़रूरी नहीं। कभी कभी अमीरी ये महसूस करने में है कि मेरे पास जो है वो मेरे लिए काफ़ी है। तो बस मैं कुछ दो लाइनों से आज की बात को ख़त्म करना चाहूँगी कि सीखने की चाह रहे तो उम्र छोटी नहीं होती, सीखने की चाह रहे तो उम्र छोटी नहीं होती, संतोष रहे तो ज़िंदगी कभी खाली नहीं होती। जो हर किसी से कुछ सीखता चला जाए, जो हर किसी से कुछ सीखता चला जाए और जो मिला उसमें मुस्कुराता चला जाए, वही इंसान ज़िंदगी को सच में जीता है, वही सबसे समझदार और वही सबसे अमीर होता है। तो दोस्तों, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो आपके पास है उसकी कद्र करते रहिए। तो आइए इसी के साथ एक छोटा सा म्यूजिक ब्रेक।

0: हाँ तो दोस्तों, मुझे पता है आप बहुत देर से वेट कर रहे होंगे आज के बिंदास बोल प्रोग्राम का, क्योंकि आज है थर्सडे और ये प्रोग्राम हम आज के दिन ही आप लोगों के लिए लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिंदास बोल प्रोग्राम। तो दोस्तों, हमारे आज के बिंदास बोल का जो टॉपिक रहने वाला है वो बड़ा ही खतरनाक सा और मज़ेदार सा रहने वाला है कि अगर हमारी जिंदगी में कंप्यूटर की तरह कंट्रोल प्लस जेड का ऑप्शन होता तो बताइए सबसे पहले आप क्या अंडू करते हैं। तो ये जानने के लिए हम कुछ रैंडम लोगों को पकड़ेंगे और उनसे इस पे सवाल करेंगे और इस पे उनका मजेदार सा जवाब सुनेंगे। हाँ तो दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ कि ना मेरे सामने कुछ तीन चार लड़कों का ग्रुप खड़ा है, चलो उनके पास जाकर इस जबरदस्त से सवाल पर कुछ बातें करते हैं। हेलो एवरीवन।
1: हेलो हेलो।
0: अच्छा, मैं एक बार आपसे आपका नाम पूछना चाहूंगी।
1: ज्योति।
2: सविता।
3: खुशबू।
1: वैसे आप कौन हो?
0: देखियो, मैं आरजे वंशी का हूँ, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के युवाणी प्रोग्राम से मैं हूँ। और अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आप सबसे पूछना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि उस पे हम लोग आपसे थोड़ा सा जवाब लें, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: जी, बिल्कुल।
0: चलो, आज का सवाल थोड़ा सा खतरनाक है। सवाल ये है कि अगर हमारी जिंदगी में भी कंप्यूटर की तरह कंट्रोल प्लस जेड का ऑप्शन होता तो बताइए सबसे पहले आप क्या अंडू या क्या डिलीट करते। खुशबू, तुम बताओ, तुम्हारी जिंदगी में सबसे पहले क्या अंडू होता?
4: मैं तो सबसे पहले वो मैसेज अंडू करती जो मैंने रात को 2 बजे किसी को भेजा था।
2: किसको भेजा था
4: ये तो कंट्रोल प्लस जेड के बाद ही बताऊंगी।
1: भाई, मैसेज अंडू करने से पहले दिमाग में जो चल रहा है उसका भी तो कंट्रोल प्लस जेड चाहिए।

बिल्कुल, क्योंकि कई बार हमारी उंगलियों से ज्यादा तेज हमारा दिमाग भागता है, एक छोटी सी गलती और फिर हम कहते हैं काश ये मैंने किया ही नहीं होता। लेकिन दोस्तों आज जरा सोचिए, अगर जिंदगी में सच में कंट्रोल प्लस जेड होता तो क्या हम अपनी सारी गलतियां मिटा देते?

0: अच्छा चलो एक रैपिड फायर करते हैं, तैयार हैं आप?
1: जी बिल्कुल।
0: हाँ, एक ऐसी चीज बताओ जिसे जिंदगी से अंडू कर सकते तो कर देते। हाँ भाई सविता आप बताओ।
1: मैं वो सारे मूवमेंट अंडू करती जब मैंने पढ़ाई छोड़कर कहा था कि बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देखती हूँ और फिर आंख खुली तो 3 घंटे निकल चुके थे।
2: 3 घंटे मेरे साथ तो इंस्टाग्राम खोलते ही लगता है, अरे ये रील तो मेरे लिए ही बनी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर अचानक माँ की आवाज आती है, फोन रख और कुछ काम कर।
0: और हम कहते हैं हाँ माँ बस एक आखिरी रील है।
1: वो आखिरी रील इतनी लेजेंडरी होती है कि उसके बाद 27 रील्स और आती है।
0: हाँ, सही बात है बिल्कुल। लेकिन यही तो जिंदगी है दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं काश मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता, काश मैंने उस इंसान पर भरोसा नहीं किया होता, काश मैंने उस समय मेहनत की होती, काश मैंने डर की वजह से अपना सपना नहीं छोड़ा होता। लेकिन एक सवाल है, क्या हमारी गलतियां सच में हमारी दुश्मन है?
3: मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर मैंने हर गलती अंडो कर दी होती तो शायद मैं आज इतना कुछ सीख नहीं पाती।
2: मतलब मेरी सारी गलतियां एजुकेशनल थी?
1: हाँ भाई बिल्कुल। तुम तो चलते फिरते प्रैक्टिकल सिलेबस हो,
2: तो फिर मेरी डिग्री कहाँ है?
0: अरे डिग्री नहीं भाई, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट।

0: अच्छा चलो एक इमेजिनेशन करते हैं, है ना। मान लो अभी अचानक आसमान से एक बड़ा सा कीबोर्ड नीचे आता है और उस पर लिखा है Ctrl+Z अनडू योर लाइफ। आपके सामने आपकी जिंदगी की सारी गलतियां दिखाई दे रही हैं। आपके पास मौका है एक गलती मिटाने का, सिर्फ एक। क्या मिटाओगे सविता, आप बताओ पहले।
1: मैं तो वो दिन अंडू करूंगी जब मैंने बिना पढ़े एग्जाम दिया था।
2: तुमने बिना पढ़े एग्जाम दिया था?
1: हाँ।
2: फिर रिजल्ट?
1: रिजल्ट रिजल्ट ने मुझे पढ़ लिया।
3: मैं शायद अपनी कोई भी गलती अंडू नहीं करना चाहूंगी।
0: अरे वाह, वैसे क्यों?
3: क्योंकि

0: गलतियां बहुत दर्द देती हैं, लेकिन वही हमें समझाती हैं कि किस पे भरोसा करना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ आगे बढ़ना चाहिए और सबसे जरूरी खुद को कैसे संभालना चाहिए। हर गलती मिटाने के लिए थोड़ी होती है।
1: वाह यार वाह, क्या मतलब कमाल की बात। कभी कभी हम जिंदगी की किताब में जहाँ गलती हुई होती है वही सबसे ज्यादा पेंसिल से लिख देते हैं काश, लेकिन शायद जिंदगी हमसे कहती है काश में मत अटक, अब आगे क्या करना है वो सोच।
2: मतलब जिंदगी में कंट्रोल प्लस जेड नहीं है?
1: अरे नहीं भाई।
2: अच्छा तो कंट्रोल प्लस जेड के बदले क्या है?
0: कंट्रोल प्लस लर्निंग।
3: भाई तू माशाल्लाह हो यार, और कभी कभी कंट्रोल प्लस मूव ऑन।
1: वाह, और पता सबसे जरूरी है कंट्रोल प्लस ट्राई अगेन।
4: अब ये सवाल हम अपने लिसनर से पूछना चाहते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में कंट्रोल प्लस जेड का बटन होता तो आप क्या अंडू करते? क्या आप कोई गलत डिसीजन, कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई डर, कोई रिलेशनशिप या अपना कोई पुराना वर्जन, हमें बताइए। लेकिन एक बात ज़रूर सोचिएगा, जिस चीज़ को आप अंडू करना चाहते हैं उससे आपने क्या सीखा, क्योंकि शायद वही असली जवाब है।
5: आरजे साहब,
6: अरे रुको रुको भाई, ये साहिबा है, साहब नहीं है।
5: जी जी आरजे साहिबा, अगर जिंदगी का कीबोर्ड बनाना हो तो उसमें और कौन कौन से बटन होने चाहिए?
1: अरे वाह, बहुत अच्छा सवाल है, चलो अभी बनाते हैं।
7: एस्केप, जब रिश्तेदार पूछे बेटा शादी कब कर रहे हो।
5: म्यूट, जब कोई बिना मांगे एडवाइस दे रहा हो।
0: जब जिंदगी बहुत तेज भाग रही हो।
7: डिलीट जी बेकार की नेगेटिविटी।
5: रिफ्रेश सोमवार सुबह।
1: हाँ, और एंटर जब जिंदगी नया मौका दे।
4: शिफ्ट, जब जिंदगी बदलने की जरूरत हो। बैक स्पेस, पुरानी गलतियों से सीखने के लिए। और सबसे जरूरी कंट्रोल प्लस एस यानी सेव, अपनी छोटी छोटी खुशियां सेव करना मत भूलिए। हम अक्सर जिंदगी में पीछे देखकर कहते हैं मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन शायद सही सवाल ये नहीं है। सही सवाल है अब मैं क्या कर सकता या सकती हूँ। जो वो गया वो हिस्ट्री है, जो होने वाला है वो मिस्ट्री है, लेकिन जो अभी आपके हाथ में है वो अपॉर्चुनिटी है।
0: मतलब पास्ट को एडिट नहीं कर सकते लेकिन फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हैं,
7: और प्रेजेंट में थोड़ा हंस भी सकते हैं।
1: बिल्कुल,
5: क्योंकि बिना हंसे जिंदगी ऐसी लगती है जैसे वाईफाई है लेकिन पासवर्ड नहीं।
1: सही बात है।

0: हाँ तो दोस्तों, अगर जिंदगी में कंट्रोल प्लस जेड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में दूसरा मौका नहीं है। दूसरा मौका कई बार अगली सुबह बनकर आता है, कई बार एक नई कोशिश बनकर आता है, कई बार किसी की एक छोटी सी सलाह बनकर आता है, और कई बार हम खुद अपने लिए दूसरा मौका बन जाते हैं। इसलिए अपनी पुरानी गलतियों को देखकर खुद को दोष मत देते रहिए, उनसे सीखिए। क्यों? क्योंकि गलती वो नहीं जो जिंदगी में हो जाए, गलती तो तब है जब उससे कुछ सीखा ना जाए। बीता हुआ कल अगर बदल नहीं सकते तो आज को इतना खूबसूरत बनाऊं कि कल को देखकर काश नहीं वाह कह सको।
1: शायद जिंदगी का असली कंट्रोल प्लस जेड गलती मिटाना नहीं, गलती से सीखकर खुद को बदलना है।
2: और अगर फिर भी गलती हो जाए
1: तो

0: कंट्रोल प्लस ट्राई अगेन।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो यार मुझे आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
2: थैंक यू, हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
1: चलो मिलते हैं फिर कभी ऐसे हटके बटके। ओके बाय
0: बाय,
1: ऑल द वे। थैंक यू, इसकी बहुत जरूरत थी हमें।
3: तो दोस्तों, जिंदगी में कंट्रोल प्लस जेड भले ही नहीं है, लेकिन आप कंट्रोल प्लस एस यानी सेव करके अपनी खुशियां बचाइए, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करके अपनी अच्छी बातें अपनाइए, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करके उन्हें जिंदगी में उतारिए, और सबसे जरूरी कंट्रोल प्लस ट्राई अगेन दबाते रहिए, क्योंकि जिंदगी को परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की जरूरत है। तो आइए इसी के साथ एक छोटा सा म्यूजिक ब्रेक।

तो दोस्तों ये था हमारा आज का युववाणी प्रोग्राम। आई होप आपको आज का प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा और आपने गानों को तो बहुत एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं अगली मुलाकात में, तब तक गलतियां होती रहे, हंसी आती रहे और जिंदगी चलती रहे। तो अपनी प्यारी सी दोस्त आरजे वंशिका को दीजिए इजाजत। ओके, गुड बाय।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM बैंड 103.1 MHz पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। इस समय संध्या के 6 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भाव हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। श्री मोदी वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से

0: वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्यघर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजासुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 30 अगस्त को देश भर में आयोजित परीक्षा में कुल लगभग 2,66,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उत्तर कुंजी 1 अक्टूबर को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित होने की उम्मीद है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ अन्य तीनों देशों के विदेश मंत्री भी शामिल हुए। संयुक्त बयान में कहा गया कि सुरक्षा परिषद ने स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। घरेलू शेयर बाजार में आज 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,248 अंक गिरकर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 384 अंक की गिरावट से 23,063 पर दर्ज हुआ। जापान एशियाई खेलों में आज अनंत जीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी के मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। रोशिबिना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। एथलेटिक्स में जय कुमार, अंशा बाबू, मानू टीएस और रशदीप कौर की मिक्स टीम ने 4x400 के फाइनल में और अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। स्क्वाश में अभय सिंह और वीर चोटरानी पुरुष सिंगल्स, तन्वी खन्ना और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स, जोशना चिनप्पा और विलावन सेंथिल कुमार मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। टेबल टेनिस में मानुष शाह पुरुष सिंगल्स, श्रीजा अकुला और सिंड्रेला दास महिला सिंगल्स और दिया चिताले तथा यशस्विनी घोरपड़े महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गए हैं। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदकों के साथ 14वें स्थान पर है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। गोवा और महाराष्ट्र सहित रायलसीमा में अगले 3 दिन तूफान की भी आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल और माहे और मराठवाड़ा में भी तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर संध्या के 6:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रसारण की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर में 6:10 पर और संध्या 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। सायं 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से आप सुनेंगे। 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाणी, जिसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर से किया जाएगा। 8:15 पर लोक संगीत आप सुनेंगे। 8:45 पर समाचार संध्या। 9:00 समाचार अंग्रेजी में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे। पर आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। रात्रि 10:00 जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 के 20वें संस्करण पर डेली हाईलाइट कैप्सूल। 10:20 से आप पुनः सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। 11:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से और 11:05 पर हमारी आज की सभा समाप्त होगी। कल सुबह हमारी सभा आरंभ होगी 5:53 पर। सुबह 6:00 हिंदी में समाचार, 6:05 पर वंदनवार, 6:35 पर रामचरित मानस गान आप सुनेंगे, 6:45 पर वक्त रहेगा संगीत सरिता का। सुबह 7:00 हमारी श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार अलवर। 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 8:00 समाचार प्रभात। 8:15 पर सुगम संगीत। 8:30 पर एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे। 9:00 हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से आप सुनेंगे। कल सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला। 9:45 से विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। दोपहर 1:00 हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 1:10 पर हमारे श्रोता कल सुनेंगे पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी एपिसोड 35 पॉडकास्ट श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय संगीत में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित अलका याग्निक से बातचीत। 1:20 से आप सुनेंगे विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रम। 2:00 समाचार अंग्रेजी में। 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे और 2:30 से आप सुनेंगे विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई से।

कल संध्या के हमारे मुख्य मुख्य प्रसारण इस प्रकार होंगे। संध्या 5 बजे कार्यक्रम महिला जगत, जिसमें कल चर्चा का विषय रहेगा मजाक को मजाक ही रहने दे। साथ ही जानकारी दी जाएगी ई सुश्रुत क्लिनिक। 5:30 पर युववाणी, 6 बजे हिंदी में समाचार, 6:10 पर और संध्या 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। संध्या 6:30 पर हमारे श्रोता सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे। संध्या 7 बजे वक्त रहेगा कार्यक्रम ग्राम भारती का, जिसमें कल चर्चा का विषय होगा सरसों में वैज्ञानिक विधि अपनाएं अधिक उत्पादन पाएं। 8:15 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। 8:45 पर समाचार संध्या। 9 बजे समाचार अंग्रेजी में। 9:15 से विविध भारती सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई से आप सुनेंगे। कल रात्रि 10 बजे हमारे श्रोता सुनेंगे जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 के 20वें संस्करण पर डेली हाईलाइट कैप्सूल। 10:20 से विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर हमारी कल की सभा समाप्त होगी।

में आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

आनंद इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसे स्वर दिया था मुकेश ने। गीत रचना थी योगेश की और संगीत से सवारा था सलील चौधरी ने।

फिल्म संगीत का अगला नगमा सुनिए, फिल्म कयामत से कयामत तक। स्वर दिया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने, गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सवारा है आनंद मिलन ने।

अनजान के बोलों को किशोर कुमार के स्वर में अभी आपने सुना। फिल्म थी मुकद्दर का सिकंदर, तर्ज बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओं, फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से। फिल्म संगीत का अगला नगमा हमने लिया है फिल्म खामोशी से, जिसे स्वर दिया है किशोर कुमार ने।

खामोशी फिल्म का नगमा भी आपने सुना। इसके साथ ही फिल्म संगीत यही संपन्न होता है। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।

अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को परम धर्म और कर्तव्य बताया। कहा, सेवा भावना ही देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति बन सकती है। राज्य में होने वाले पंचायत चुनावों की आरक्षण लॉटरी प्रक्रिया पूरी। आज वार्ड पंचों और सरपंचों की लॉटरी निकाली गई। आरजीएचएस में प्री ऑथोराइजेशन व्यवस्था लागू करने से क्लेम में 47% की कमी आई। और प्रदेश में मॉनसून की विदाई का दौर शुरू होने के साथ ही गर्मी के तेवर तीखे। कई स्थानों पर दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। समाचारों के साथ मैं शिप्रा यादव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन का मुख्य

0: उद्देश्य सेवा है और हर व्यक्ति में सेवा भावना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सेवा परम धर्म है, सेवा सबसे बड़ा कर्तव्य है और यही भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति बन सकती है।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि जब सेवा की भावना देश की नीतियों में शामिल होती है तो जनहितकारी योजनाएं सामने आती हैं और इन्हीं कल्याणकारी योजनाओं से 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है। सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। प्रधानमंत्री ने यात्रा के प्रतिभागियों से विविधता में एकता के अनुभव को देश के हर कोने तक पहुंचाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी बीकानेर से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्र प्रथम की भावना से काम किया जा रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि अनुशासन, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी जनमानस को जोड़ती है। प्रदेश में युवा, महिला, किसान और मजदूर सभी का सशक्तिकरण किया जा रहा है। प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर आज वार्ड पंच और सरपंच की लॉटरी निकाली गई। उपखंड मुख्यालयों पर लॉटरी प्रक्रिया पूरी की गई। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के साथ ही संभावित प्रत्याशी सक्रिय हो गए हैं और दावेदारी को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। वहीं आरक्षण लॉटरी के अनुसार अब कई नए चेहरे भी चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। इस बीच जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में महापौर पद के चुनाव के लिए कल मतदान होगा। सुकेत नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए भी कल वोट डाले जाएंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक वोट डाले जाएंगे। रिटर्निंग अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में उम्मीद जताई कि पंचायत चुनावों में भी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी आज जयपुर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों में पार्टी मजबूती से उतरने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल जयपुर दौरे पर रहेंगे। वे सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वच्छता सेवा कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री नवीन दादिया गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आयोजित निकाय जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे दादिया से ही पंचायत चुनाव अभियान के प्रचार रथों को रवाना करेंगे। उनका बिड़ला सभागार में युवाओं से संवाद का भी कार्यक्रम है। प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर कल से आंगन मिलन सेवा का आयोजन किया जाएगा। महिला और बाल विकास विभाग की शासन सचिव श्रीमती पूनम ने बताया कि विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत ये 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। उन्होंने बताया कि जनसेवा, सामाजिक सरोकार और पोषण स्वास्थ्य योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये आयोजन होगा। श्रीमती पूनम ने सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और संस्था प्रधानों से जनभागीदारी की अपील की है। इस बीच विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत आज विभिन्न स्थानों पर रंगोलियां सजाई गईं। सेवा के रंग राष्ट्र के संग इस गतिविधि का आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR News और Facebook AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं।

0: मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और आरजीएचएस में पारदर्शिता बढ़ाने और गैर जरूरी जांचों पर रोक लगाने के लिए लागू की गई प्री ऑथराइजेशन व्यवस्था से दावों में 47% की कमी दर्ज की गई है। 15 जुलाई से लागू इस सिस्टम के तहत 2000 से ज्यादा जांचों के लिए प्री ऑथराइजेशन अनिवार्य किया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि प्रिस्क्रिप्शन जांच और दावों से जुड़ी गतिविधियों की लगातार डिजिटल मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि गड़बड़ियां सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोटा के 2 अस्पतालों का TMS ब्लॉक किया गया है। इसके अलावा 3 डॉक्टरों की ID ब्लॉक की गई है। राजसमंद जिले के रेल मगरा इलाके में आज एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 11 व्यक्ति घायल हो गए। इन्हें जिला RK अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेल मगरा थानाधिकारी प्रवीण सिंह जुगतावत ने बताया कि दुर्घटना ट्रैक्टर के पलटने से हुई। ट्रैक्टर सवार ये लोग तुर्किया खेड़ा गांव के रहने वाले थे और सांसेरा के माताजी तालाब से गणेश विसर्जन कर लौट रहे थे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने ईश्वर से हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को शक्ति प्रदान करने की कामना की है, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की है। गौरतलब है कि कल रात दिल्ली से महोबा जा रही एक निजी स्लीपर बस में यमुना एक्सप्रेसवे पर आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस दर्दनाक हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से झुलस गए थे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। उधर जोधपुर के बासनिक औद्योगिक क्षेत्र में कल एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। घटना की सूचना मिलने के बाद कई दमकलें मौके पर पहुंची। इस दौरान फैक्ट्री में रखे केमिकल के ड्रमों में विस्फोट होने से 13 दमकल कर्मी झुलस गए। इनमें से 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। इन्हें जयपुर रेफर किया गया है। मोटे अनाज यानी श्री अन्न पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ये मधुमेह और हृदय रोगों सहित कई बीमारियों में फायदेमंद साबित हो रहे हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर पुनीत सक्सेना ने आकाशवाणी को बताया कि श्री अन्न में फाइबर, प्रोटीन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये ग्लूटेन फ्री हैं और गेहूं और चावल की तुलना में अधिक पौष्टिक हैं।
1: मिलेट, जिसको कि हम मोटा अनाज या श्री अन्न भी कहते हैं, और इसमें हम मोटा मोटा बात करते हैं बाजरा की, ज्वार की, रागी की, कोटो है। रिफाइंड सीरियल्स के मुकाबले इनमें न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है एवं ये ग्लूटेन फ्री होते हैं और इनमें मिनरल्स की अधिकता की वजह से डायबिटीज, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, सीलिक डिजीज जिसमें कि ग्लूटेन से एलर्जी होती है, उनमें मिलेट्स बहुत फायदेमंद होते हैं।
0: प्रदेश में मॉनसून की विदाई का दौर शुरू होने के साथ ही गर्मी के तेवर फिर तीखे हो गए हैं। कई स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कई शहरों में दिन का पारा सामान्य से करीब 5 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। जैसलमेर में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया। वहीं बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, नागौर और पिलानी में भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिम हिस्सों में मॉनसून की वापसी शुरू हो चुकी है। हालांकि प्रदेश से मॉनसून की पूरी तरह विदाई नहीं हुई है। विभाग ने अगले 3-4 दिन मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। इसके बाद 27 से 29 सितंबर के बीच भरतपुर और जयपुर संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। प्रदेश में GST विभाग की ओर से कर चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 5 प्रतिष्ठानों पर सर्वे और जांच की कार्रवाई की गई। इसमें 22 करोड़ रुपए से अधिक की संभावित कर देयता सामने आई है। पिछले सप्ताह ये कार्रवाई भिवाड़ी, सरदार शहर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों

0: की गई।
1: नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट पर ये नतीजे जारी किए। वर्ष 2026-27 के प्रवेश सत्र के विभिन्न एमडी, एमएस, डीएनबी, डॉक्टर एनबी और पीजी मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 30 अगस्त को देशभर में ये परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में कुल 2,65,960 उम्मीदवार शामिल हुए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को परम धर्म और कर्तव्य बताया। कहा, सेवा भावना ही देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति बन सकती है। राज्य में होने वाले पंचायत चुनावों की आरक्षण लॉटरी प्रक्रिया पूरी। आज वार्ड पंचों और सरपंचों की लॉटरी निकाली गई। आरजीएचएस में प्री ऑथराइजेशन व्यवस्था लागू करने से क्लेम में 47% की कमी आई और प्रदेश में मॉनसून की विदाई का दौर शुरू होने के साथ ही गर्मी के तेवर तीखे। कई स्थानों पर दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जोधपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसे लिखकर भेजा है रामेश्वर बेड़ा ने। जिले में नगरीय निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। नगर निगम जोधपुर के 100 वार्डों के चुनाव में भाजपा को 45, कांग्रेस को 44 सीटें मिली। एक सीट पर आरएलपी और शेष पर निर्दलीय विजयी हुए। कल महापौर पद के लिए चुनाव होगा। भाजपा की ओर से प्रश्न चंद मेहता जबकि कांग्रेस की ओर से राजेंद्र सोलंकी महापौर पद के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। इसके अलावा जिले में पंचायत चुनाव की कवायद भी तेज हो गई है। कल और आज विभिन्न पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को साफ सफाई रखने का संदेश दिया जा रहा है। जोधपुर में स्वास्थ्य कर्मियों, रेल कर्मियों और शहरवासियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया, सामूहिक स्वच्छता प्रतिज्ञा ली, श्रमदान करने, गंदगी नहीं करने, दूसरों को गंदगी करने से रोकने और गीले सूखे कचरे के उचित निस्तारण का संकल्प लिया गया। वहीं स्वच्छता जागरूकता रैली भी निकाली गई। जोधपुर मंडल में स्वच्छ रेलगाड़ी अभियान चलाया गया। इस दौरान रेलगाड़ियों और स्टेशन परिसरों की गहन सफाई की गई। साथ ही यात्रियों से कचरा डस्टबिन में डालने और परिसर को स्वच्छ रखने की अपील की गई। भारत और जापान की वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास वीर गार्जियन 2026 जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर हाल ही में आयोजित हुआ। 9 से 22 सितंबर तक चले इस युद्धाभ्यास में तेजस, सुखोई 30, एमकेआई, राफेल और जापान के F-2A विमान शामिल हुए। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के जनरल ताकेहिरो मोरिता ने तेजस विमान में एक साथ उड़ान भरी। जनरल मोरिता ने इसे भारत की तकनीकी क्षमता और मेक इन इंडिया का प्रतीक कहा। आईआईटी जोधपुर कम संसाधनों में चलने वाला स्मार्ट हेल्थ असिस्टेंट विकसित कर रहा है। AI आधारित सिस्टम मेडिकल रिकॉर्ड और सेंसर डेटा का विश्लेषण कर जटिल मेडिकल शब्दों और आंकड़ों को आसान भाषा में समझाएगा। लगातार सेंसर जानकारी से स्वास्थ्य स्थिति समझने में मदद मिलेगी। सीमित कंप्यूटिंग क्षमता वाले स्थानों पर भी इसका इस्तेमाल संभव होगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बीते दिनों डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज सभागार में चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने हाई रिस्क प्रेगनेंसी मॉनिटरिंग, एंटीनेटल केयर और कंगारू केयर को मजबूत करने के निर्देश दिए। उम्मेद चिकित्सालय में ऑपरेशन थिएटर प्रोटोकॉल, उपचार मॉनिटरिंग और मरीज सुरक्षा पर जोर दिया। साथ ही बिलाड़ा, भोपालगढ़, धवा, पीपाड़ शहर, ओसियां और बालेसर के सैटेलाइट अस्पतालों में मानव संसाधन मजबूत करने को कहा। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए जोधपुर गोरखपुर जोधपुर साप्ताहिक स्पेशल रेल सेवा शुरू होगी। ये रेलगाड़ी जोधपुर से 1 अक्टूबर से 26 नवंबर तक हर गुरुवार शाम 4:15 बजे रवाना होगी, जो अगले दिन रात 8:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। ट्रेन मेड़ता रोड, डिगाना, डीडवाना, चूरू, रेवाड़ी, दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, गोंडा और बस्ती सहित निर्धारित स्टेशनों पर रुकेगी। इसमें 20 डिब्बे होंगे। रायकाबाग,

0: जैसलमेर के 291 किलोमीटर रेल खंड की पटरी के नवीनीकरण का काम किया जाएगा। इस पर करीब 713 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे रेल पथ की मजबूती, विश्वसनीयता और परिचालन क्षमता बढ़ेगी। वहीं जोधपुर जयपुर दिल्ली के बीच चल रही मंडोर एक्सप्रेस का मौजूदा रैक अमृत भारत के नए रैक से बदला जाएगा। इस नए रैक में एसी, नॉन एसी कोच और आधुनिक सुविधाएं होंगी। नया रैक अगले महीने जोधपुर आने की संभावना है। जोधपुर में जल्द ही सड़क सुरक्षा के लिए एआई ट्रैफिक निगरानी प्रणाली का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। इस दौरान कैमरों और एएनपीआर तकनीक से यातायात का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को पकड़ा जाएगा, साथ ही ऑनलाइन चालान भेजा जाएगा। जिले में हिंदी दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी कड़ी में जोधपुर रेल मंडल कार्यालय में हिंदी दिवस मनाया गया। इसमें रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। हिंदी पखवाड़ा के तहत हिंदी को लेकर जिले भर में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। इसी के साथ जोधपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा न सब मोटो धर्म और कर्तव्य बतायो, कहो सेवा भावना ही देश री बरकत री सब मोटी प्रेरक ताकत बन सके है। राज्य में पंचायत चुनाव सारू आरक्षण लॉटरी रो काम पूरो भयो। आज वार्ड पंच और सरपंच ओहदा सारू लॉटरी निकाली ची। आरजीएचएस माए प्री ऑथोराइजेशन व्यवस्था लागू करणो, दावा माए 47% री कमी आई। और प्रदेश माए चौमासारी बिरखा करीब करीब बंद हुए वनसा गई, गर्मी रो असर बध्यो। कई थोड़ा दिन री बगत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस ने पार कीनो। समाचारन सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि जिंदगी रो खास मकसद सेवा है और हर एक जना माए सेवा भावना भेवनी चाहिए। वे आज गुजरात रा बड़नगर वाराणसी ताई यात्रा कर रहा सेवा यात्रियां सागे वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जरिए बातचीत कर रहा है। श्री मोदी कहो कि सेवा परम धर्म है, सब मोटो कर्तव्य है और आ भावना देश री बरकत री सीख देवन वाली सब मोटी ताकत बन सके है।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: श्री मोदी कहो कि जब सेवारी भावना देश री नीतियां माए शामिल वह है तो जनता रा भलारी योजना वा सामी आवे है और आई कल्याणकारी योजना वा 25 करोड़ लोगों ने गरीबी रा कुचक्रों बाहर निकलबा माए मदद मिली है। सेवा यात्री प्रधानमंत्री सामी विचार बताता था का कहो कि इन रतेत पौधा रोपी चिया और स्वच्छता अभियान चलाई चिया। प्रधानमंत्री यात्रा माए शामिल होने वालाओं विविधता में एकता रा अनुभव देश रा हर कोणा ताई पोगावन री अरज कीनी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्माई बीकानेरू इन कार्यक्रम माए वर्चुअल तरीकाउ जुड़िया। वे कहो के अनुशासन, दया और सामाजिक जिम्मेदारी जनता ने जोड़े है। प्रदेश माए फेवन वाला पंचायत चुनाव सारू आज उपखंड मुख्यालय माथे वार्ड पंच और सरपंच ओहदा सारू लॉटरी निकाली ची। आरक्षण री स्थिति साफ फेवन सा गई, संभावित उम्मीदवारा री हलचल बढ़ गई है और दावेदारा री नवी रणनीति बनाई जा रही है। इस बीच जयपुर जोधपुर और कोटा नगर निगम में महापौर ओहदारा चुनाव सारू काल वोट पड़ेला। सुकेत नगर पालिका रा अध्यक्ष ओहदा सारू ही काल वोट डालिया चावेला। वोट समारोह 10 दोपहर 5-2 बजे ताई दिया जा सकेला। चुनाव अधिकारी आशीष कुमार बतायो कि वोट पड़बारो काम पूरो होया पाछे तुरंत ही वोटा री गिनती करी जावेला। भारतीय जनता पार्टी रा

0: प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आज जयपुर में खबरनवी से सागे बातचीत रे दौरान पंचायत चुनाव में आई पार्टी ने बहुमत मिलन री उम्मीद जताई। दूजी कानी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासराई आज जयपुर में खबरनवी से सागे बातचीत करता थका कहो के पंचायत चुनाव में हमारी पार्टी मजबूती उतरेला। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन रो काल जयपुर रा दौरा रो कार्यक्रम है। वह सेवा संकल्प अभियान रा तहत स्वच्छता सेवा कार्यक्रम में शामिल भेला। श्री नबीन जयपुर के नदादिया गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय री जयंती रे मौके रख्या जावन वाला जलसा में शामिल भेला। वह दादिया हुई पंचायत चुनाव सारू पार्टी रा अभियान री शुरुआत रा तौरू प्रचार रथ रवाना करेला। श्री नबीन रा जयपुर रा बिड़ला सभागार माए नौजवाना सागे बातचीत रो ये कार्यक्रम है। प्रदेश रा सगड़ा आंगनबाड़ी केंद्र माए काल आंगन मिलन सेवा शुरू करी चावेला। महिला और बाल विकास विभाग रे शासन सचिव बतायो के 3 दिन रा इन कार्यक्रम माए जन सेवा सामाजिक सरोकार पोषण और स्वास्थ्य जुड़ी योजनावां री जानकारी जनता ताई पुगावन री कोशिश करी जावेला। वे जनता वारा नुमाइंदा और संस्था प्रधानाओं ई कार्यक्रम में भागीदारी करन री अरज कीनी। ई बीच विकसित भारत जन सेवा अभियान रा तहत आज न्यारी न्यारी ठोड़ा रंगोलियां सजाई ची। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS रा काम माए साफ कोई बधावण और गैर जरूरी जांचा माथे रोक लगावण सारू लागू करी ची। प्री ऑथोराइजेशन व्यवस्थाओं दावा माए 47% री कमी दर्ज करी ची है। 15 जुलाई लागू करी ची ई व्यवस्था रा तहत 2032 जांचा सारू पहली मंजूरी लेवण जरूरी करी चियो है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग रे प्रमुख शासन सचिव आ जानकारी तीनी। वे बतायो के डॉक्टर री पर्ची जांच और दावा माथे लगातार डिजिटल तरीकों निगरानी रखी जा रही है। वे बतायो के कोटारा 2 अस्पतालां रो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम TMS ब्लॉक करी चियो है, जबकि 3 डॉक्टरां री ID ब्लॉक करती रीची है। राजसमंद जिला रा रेल मगरा हलका माए आज ट्रैक्टर पलट जावण 4 जना री मौत फेंकी और 11 जना जख्मी फेंक्या। जख्मी लोगों ने जिला अस्पताल माए भर्ती कराई चिया है। रेल मगरा रा थाना अधिकारी प्रवीण सिंह जुगतावत बतायो के ट्रैक्टर माए सवार ए लोग तुर्किया खेड़ा गांव रा रहवासी हा, जो सांसेरा रा माताजी तलाव गणेश विसर्जन कर पाछा आ रहा हा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ग्रेटर नोएडा माए एक बस माए लाई लाग जावण रा वाकया माथे गहरो शोक जतायो है। वह हादसा माए जान गमावण वाला रा परिवारां ने ओ दुख सहन करण री ताकत और जख्मी लोगां रे बेगा ठीक वेवण री कामना कीनी। ध्यान जोग है कि काल रात दिल्ली महोबा जा रही एक गैर सरकारी स्लीपर बस माए यमुना एक्सप्रेस वे माथे लाई लाग जावण 9 जना री मौत वेकी ही और कई मुसाफिर जख्मी फेंक्या हा। इन हादसा रे कारण मरण वाला रा परिवार वाला ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष 2-2 लाख रुपया और जख्मी लोगों ने 50-50 हजार रुपया री मदद देवण रो ऐलान करी चियो है। दूजी कानी जोधपुर रा बासनी औद्योगिक हलका माए काल एक केमिकल फैक्ट्री माए लागी लाई रे कारण वठे रखियोड़ा केमिकल रा ड्रम माए धमाको वेवणु दमकल वाला 13 जना झुलस गया। घना जख्मी 6 जना ने जयपुर रेफर करी चिया है। मोटा अनाज यानी श्री अन्न पोषक सामग्री भरपूर फै है। ए शुगर और दिल री बीमारियां समेत भांत भांत री बीमारियां रा इलाज माए फायदेमंद साबित फै है। जयपुर रा सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज रा वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर पुनीत सक्सेना आकाशवाणी सागे बातचीत रे दौरान बतायो कि श्री अन्न माए फाइबर प्रोटीन मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स वह है।
1: मिलेट्स जिसको कि हम मोटा अनाज या श्री अन्न भी कहते हैं, और इसमें हम मोटा मोटा बात करते हैं बाजरा की, ज्वार

0: की रागी की फोटो है। रिफाइंड सीरियल्स के मुकाबले इनमें न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है एवं ये ग्लूटेन फ्री होते हैं और इनमें मिनरल्स की अधिकता की वजह से डायबिटीज, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, सीलिएक डिजीज जिसमें कि ग्लूटेन से एलर्जी होती है, उनमें मिलेट्स बहुत फायदेमंद होते हैं।
1: रबी मौसम प्रदेश में चौमासारी बिरखा लगभग बंद हुए जावन सा गई, पारो ओजू चढ़वा लाग्यो है। राज्यरा आतुनी हल्का में दिन रे बगत तापमान सामान्य करीब 5 डिग्री सेल्सियस ऊंचो चाल रियो है। जैसलमेर में पारो 42 डिग्री सेल्सियस न पार कर क्यो। बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, नागौर और पिलानी में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस ऊंचो ना पीछियो। मौसम विभाग रे मुजब आवता 3-4 दिन मौसम सूखो रेवन रा आसार है। इपाछे 27-29 सितंबर बीच भरतपुर और जयपुर संभाग सागे शेखावाटी हल्का माए कठे कठे हल्क्यू मझला दर्जारी बिरखा रा आसार है। नीट पीजी परीक्षा 2026 रा नतीजा रो राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड री आधिकारिक वेबसाइट मा था ऐलान करती हो चियो है। साल 2026-27 रा प्रवेश सत्र माए एमडी, एमएस, डीएनबी और पीजी मेडिकल डिप्लोमा कोर्स माए दाखिला सारू 30 अगस्त न देश भर माए आ परीक्षा ली रीची ही जी माए 265,960 उम्मीदवार शामिल हुआ हा। प्रदेश में जीएसटी चोरी के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान रा तहत 5 कारोबारी ठिकाना माथे सर्वे और जांच री कार्रवाई करी ची। इस दौरान 22 करोड़ रुपयों बत्ती रकम रो संभावित टैक्स बनियो। आ कार्रवाई भिवाड़ी, सरदार शहर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जिला माई करी ची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। आ हर महीना प्रसारित करया जावन वाला इन कार्यक्रम रे 138वीं कड़ी फैला। इन सारो आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे काल ताई राय दे सको हो। नंबर ओ जो सुन ले राव सा 1800117800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माय खास समाचार एक और फेर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा ने सबू मोटो धर्म और कर्तव्य बतायो। कहो सेवा भावना ही देश री बरकत री सबू मोटी प्रेरक ताकत बन सके है। राज्य माय पंचायत चुनाव सारू आरक्षण लॉटरी रो काम पूरो फियो। आज वार्ड पंच और सरपंच ओहदा सारू लॉटरी निकाली ची। RGHS माई प्री ऑथोराइजेशन व्यवस्था लागू करनू दावा माई 47% री कमी आई। और प्रदेश माई चौमासारी बिरखा करीब करीब बंद हुए वंसा गई, गर्मी रो असर बढ़ियो। कई थोड़ा दिन री बगत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस ने पार कीनो। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। संध्या के 7 बजे हैं। अब आप सुनेंगे किसानवाणी आकाशवाणी जयपुर से।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाला सगला श्रोतावा ने आशा धाबाई का घना घना राम राम, और अनीता जी आपने भी मारा घना घना राम राम सा।
7: आशा जी आपने भी घना घना राम राम, और भी श्रोता किसान वाणी सुन रहे वहाँ सभी ने अनीता को घनो घनो राम राम सा।
6: रामा श्यामा के साथ ही देखो थोड़ी सी बात आज का किसान वाणी कार्यक्रम में आप यही करेला कि आपनो यही उद्देश्य छे कि आप जो भी बातचीत करा उनको सीधो सीधो फायदो अपना काश्तकार भाइयों ने मिले। और अबार समय की मांग यही कहवे छे कि आपने टाइम पर सारो काम करना चाहिए और ई हिसाब से योजना बनार करना चाहिए कि अपनी मेहनत भी कम लागे और आपने फायदो भी ज्यादा मिले।
7: एक
6: ताई जरूरी छे कि अपना काश्तकार भाया अपना किसान भाई कृषि में जो कृषि यंत्रों को महत्वपूर्ण योगदान हुए छे ना उनका बारे में भी जानकारी राखे, उनका महत्व ने भी समझे और या भी समझे कि की तरह से ये यंत्र आपका काम ने सरल बना देवे छे, मेहनत और लागत ने कम कर देवे छे।
7: जी सा, क्योंकि देखो सा आज बढ़ती कृषि लागत, मजदूरों की कमी और टेम पर खेती का काम पूरा करबा की जरूरत ने देखता हुआ कृषि यंत्रों को महत्व लगातार बढ़तो जा रहे छे। नैरा नैरा कामा ने जो ये कृषि यंत्र छे वो बहुत आसान बनाओ छे, यहाँ की मदद से जो भी खेती बाड़ी का काम छे, जुताई बुआई निराई गुड़ाई खाद दवाई को छिड़कबो कटाई मंडाई जैसा सारा काम यहाँ से समय पर और कम टाइम में करा जा सके छे। कृषि यंत्रों को सबसे बड़ो लाभ यो छे कि किसान टाइम मारे और कम मेहनत में दोनों की ही बचत कर सके छे।
6: बिल्कुल, और एक मोटो फायदो या भी छे कि इके मायने लागत कम आवे छे और लंबा समय को जो काम छे वो कम मजदूरी कम खर्च में आसानी से करे जा सके छे। मौसम का अनुकूल रहता हुआ बुआई और कटाई आपा कर सका छे, क्योंकि ई काम ने अगर आपा मजदूरा लगार हाथा से करा छा तो समय ज्यादा लागे छे और मौसम परिवर्तित हो जावे छे तो फिर फसल ने नुकसान होबा की संभावना ज्यादा रहे छे। कई बार आपा अशा यंत्रा को प्रयोगी कौन करा और खेत में अवशेष पड़ा रह जावे छे जिससे कि अपनी जमीन भी नुकसान पहुंचे छे। तो कुल मिलार बात यही छे कि समय ने बचावा के लिए, श्रम ने कम करवा के लिए काश्तकार भाया कृषि यंत्रा का महत्व का बारे में जानकारी रखे, टेक्नोलॉजी से कदम मिलावे और यंत्रा का उपयोग न समझता हुआ आपने खेती बाड़ी में जरूर से जरूर काम में लेवे।
7: जी, क्योंकि देखो सा समय पर बुआई और कटाई होबा से फसल की गुणवत्ता और उत्पादन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़े छे। इसलिए कृषि यंत्र केवल खेती ने आसान बनाबा को ही साधन को ने बल्कि समय की बचत लागत ने नियंत्रित करवा और जो कृषि का आधुनिक और दक्ष बनाबा में महत्वपूर्ण भूमिका निभावे छे वहाँ के लिए ये यंत्र बहुत ही कारगर साबित हो सके छे।
6: अनीता जी अब आपनी बाता ने देवा थोड़ो सो विराम और कार्यक्रम में सुनावा एक रेडियो रिपोर्ट केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर पर आधारित। रेडियो रिपोर्ट में भेंट करता राजेंद्र डारा, प्रस्तुतकर्ता बीएस यादव और संयोजक महेंद्र मीणा।
7: तो आओ सा सुना या रेडियो रिपोर्ट।
8: नमस्कार किसान भाइयों, आज के समय में तकनीकी आधारित कृषि विधियां अपनाकर कैसे हम अपनी आय को दोगुनी कर सकते हैं, यही जानने आकाशवाणी जयपुर की टीम पहुंची टोंक जिले के अविका नगर स्थित केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान के प्रांगण में। वहां पहुंचते ही हमने सबसे पहले बात की टेक्निकल असिस्टेंट व सेक्टर इंचार्ज श्री सुरेंद्र सिंह राजपूत।

0: से जिन्होंने हमें दुम्बा प्रजाति की भेड़ के संदर्भ में जानकारी दी।
1: ये जो सेक्टर आप जो देख रहे हैं ये दुम्बा का है, ये मिडिल ईस्ट की जो है अफगानिस्तान, लीबिया, टर्की, पाकिस्तान तक एनिमल मिलता है दुम्बा ब्रीड का जो ये देख रहे हैं आप जो। और इस एनिमल का क्या है कि हम 2013 से हमारे पास है जो फील्ड में कुछ फार्मर्स उनको भी दिया है, और हमारे पास में भी अभी करीबन 150 करीब ये दुम्बा के जानवर है। अपने जो नॉर्मल ब्रीड वाले जो जानवर है उससे सेम मिलता जुलता है ये, और इसका जो शारीरिक बार है वो अपने जो नॉर्मल जो भेड़े हैं जितनी भी ब्रीड की, जैसे मगरा है, पोंगल है, नाली है, सोनाड़ी है, मालपुरा, तो जो देसी ब्रीड की जो भेड़ है उससे 2 गुना से 2.5 गुना इसका वजन है। तो अगर जैसे मान लो आपको कम जगह में स्टाल फीड पे जानवर को रखना है, अगर ग्रेजिंग है, तो ये देखो दोनों हर एक चीज का अलग अलग कंसेप्ट होता है। जो दुम्बा है इसको स्टाल फीड पे रखोगे आप तो अच्छा इससे ग्रोथ और आपको पैसा मिलेगा, और अगर जैसे अपने पास में चरागाह क्षेत्र है और वैसी स्थिति में अगर अपन दुम्बा को इसको चढ़ने के लिए भेजोगे तो इसका क्या जो फेट है वो इतना जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ेगा, बढ़ता है लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा, ये स्टाल फीड एनिमल है। और रही बात तो इनका जो मेजर वैक्सीनेशन वगैरह वो करते हैं, उसके बाद में दुम्बा में ऐसी कोई बीमारी नहीं है। जो अपने नॉर्मल जो भेड़े अपने राजस्थान में और आसपास के जो क्षेत्रों में जो भी पाई जाती है जैसे वो रेरी उस तरह से ये रहती है। जैसे एक जानवर है इसका जो वजन है 12 महीने के अंदर 80 किलो से लेकर के 98 किलो तक 100 किलो तक हो जाता है। अपने देसी भेड़ उसका जानवर का वजन होता है 25 किलो से लेकर के 40 किलो तक, अलग अलग ब्रीड का अलग। जैसे मालपुरा है तो उसका 30 किलो 35 किलो के करीब एवरेज होता है, पाटनवाड़ी उसका भी 35 किलो के आसपास 12 महीने में एवरेज रहता है, तो इसका वजन ज़्यादा गेन करती है, तो एवरेज डेली गेन वो इसका ज़्यादा रहता है। खाना अपने जो नॉर्मल भेड़ जो चारा है, जैसे अपने फसल जो है वो दलहनी फसलों का जो वेस्टेज होता है, जैसे चने का भूसा है, अपने मूंग का है, और जिस गुआर का भूसा है, तो इस टाइप के जो है वो उसका आप दोगे प्लेस तो इसको खा लेगी। एक घास होती है तो वो आप जैसे बंजर जगह है या ऐसे जहाँ पे फसल नहीं हो रही है, समतल नहीं है, जहाँ एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे थे, उस जगह पे उस घास को लगा दो। उसका अंजन मतलब घास होती है, सेंक्रस इलेरिकस उसका बोटनिकल नेम है, तो वो घास उसको आप लगा सकते हो, तो उसका आप स्टोरेज करके रखो। जब हरा चारा सूखा चारा नहीं है तो उसकी कुट्टी करके वो आप इनको डाल सकते हो। यहाँ से ले जाए तो हमारा उपलब्ध कराने का देखो ऐसा है कि एक हमारा फार्म पीओटी एंड एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, उस एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में फार्मर को डायरेक्टर साहब के नाम से एप्लीकेशन देनी होती है, एक आधार कार्ड की कॉपी लगानी होती है, और एक आपके वहाँ जो भी जनप्रतिनिधि है उस जनप्रतिनिधि का सर्टिफिकेट देना होता है। तो उस सर्टिफिकेट में आपको लिखवाना है कि आपका नाम, पिताजी का नाम, वार्ड नंबर इसके रहने वाले पशुपालक है, और मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मोस्टली क्या होता है कि जैसे कोई यूनिट वगैरह खोल रहा तो उसको मेल और फीमेल जोड़ा ही देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास में ऑल ओवर इंडिया से डिमांड आती है, तो अभी हम 2024 तक के आसपास के जो फार्मर्स के एप्लीकेशन उनको जानवर दे चुके हैं, उसके बाद में जो एप्लीकेशन आई वो सब पेंडिंग पड़ी है, यानी कि लगभग 200 के आसपास एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग पड़ी है। तो हमारा क्या होता है कि एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, जैसे कोई आवेदन करेगा एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में वहाँ जाएगी, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के जो हेड साहब वो उनको डायरी डिस्पैच रजिस्टर्ड करके आपने बकरी मांगी है तो उसमें ब्रीडिंग डिपार्टमेंट में भेजेंगे, दुम्बा मांगा तो फिजियोलॉजी में मार्क करेंगे उसको, और या डायरेक्टर साहब के पास मेल आया तो वो भी सेम कौन सी चीज मांगी वो एक्सटेंशन को भेज देंगे, फिर एक्सटेंशन वाले संबंधित डिपार्टमेंट को उस एप्लीकेशन को भेज दे। तो हमारा एक्सटेंशन डिपार्टमेंट उसके अंदर सबका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिसने पहले आवेदन किया पहले उसको देते हैं, हमारे लिए सारे किसान बराबर होते हैं। प्रजनन का यह इनकी जो गर्भावधि है वो तो 5 महीने की होती है, इसकी मेच्योरिटी वो 12 महीने में आ जाती है, तो 12 महीने के बाद में ही ब्रीडिंग होती है। नॉर्मल जो भेड़ उसमें भी 12 महीने की मेच्योरिटी की जो है वो 8 महीने 9 महीने पे आ जाती है, लेकिन ब्रीडिंग का जो है वो 12 महीने पे करवाते हैं। मिनिमम बच्चे इसमें 5% के आसपास तो ट्विंस आता है और बाकी सिंगल आते हैं 95%। वूल का ये कि वूल का तो जो अपने जो साल में 2 क्लिप हम लेते हैं तो 6-6 महीने के अंतराल में लेते हैं, किसान क्या कि 3-4 बार लेता है, तो किसान वूल को अपने जानवर को जैसे अपन कटिंग करा करके अपन उस हिसाब से रखते हैं, तो किसान जानवर को क्योंकि उसकी तरफ से वूल का जो पैसा है उसको कम मिल पाता है, क्योंकि उसको इसका पता ही नहीं कि वूल से भी अपन को पैसा मिलेगा, इससे कोई अपन कुछ ऐसी चीज बनाए। तो हमारा जो एक डिपार्टमेंट है वूल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, तो वो इसके लिए कुछ महिलाओं को, किसानों को, और उनको प्रशिक्षण देते हैं कि वो वूल से धागा बनाए, ये करे वो करे, तो वो वाला जो उनका पार्ट वो बताते हैं वूल टेक्नोलॉजी वाले। बाकी वूल जो है एक बार में क्लिप में 800 से 900 ग्राम वूल निकलती है, 2 क्लिप से 2 किलो वूल निकलती है। और

0: 200 रुपए किलो करीब वूल जाती है, 2 किलो वूल एक साल में मिली तो 400 रुपए की हो गई। ये तो हो गया जब आप मार्केट में सीधा बेच रहे हो। अब बाकी क्या करना है, अगर आपको स्मार्ट किसान बनना है तो क्या उसको आपको टेक्नोलॉजी के साथ में जाना है, उस वूल का आपको प्रोडक्ट बनाना। आप जो जब अगर आपके किसानों को अगर टाइम मिले तो आप एक बार हमारा जो वूल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट उसमें जाना, उसमें कुछ प्रोडक्ट है वूल से किस तरह से बनाते हैं, वो कुछ प्रशिक्षण है, वो 15 दिन का हफ्ते का वो चलता है, वो लेकर के वो उससे कुछ वो बना सकते हैं। तो वो आइटम है वो 400 रुपए की वूल के अंदर आप 2000 के आइटम बना के बेच दो। कोई किसान प्रशिक्षण लेने के लिए आएगा तो हमारा जो HRD डिपार्टमेंट है उसे आपको CSWRI की वेबसाइट है, उस वेबसाइट को आप देखो तो उसके ऊपर हमारा मानव संसाधन इकाई है तो उसका आपको कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल वगैरह वो उसी पे डालते हैं, वेबसाइट पे डालते हैं, उससे आप देख करके पता लगा सकते हो कब कौन सा प्रशिक्षण चल रहा है। पालने के लिए तो ऐसा है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में दुम्बा पाल रहे हैं, सब जगह पाल रहे हैं, गुजरात में भी गए हैं, बंगाल में भी गए हैं, हैदराबाद में गए हैं, दिल्ली में गए हैं, इंदौर वगैरह, नीमच, सब जगह जा रहे हैं, सब जगह पाल रहे हैं। जो भेड़ है वो देख कुछ जो है एडोप्टेबिलिटी का वो होता है कि आप जिस क्लाइमेट में, जैसे अपन यहाँ आए और अपन हिमाचल जाएंगे तो थोड़े दिन अपन को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। बाकी क्या है, वातावरण के प्रति एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो या कुछ भी हो तो उसमें एडोप्शन आ जाता है, तो वो उसमें अनुकूलन हो जाता है शरीर। तो ये हमने जो देखा इस क्लाइमेट में फुल्ली एडोप्टेबल है। बस इसमें ये है कि जो एरिया जिसमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी ज़्यादा है वहाँ पे क्या होता है कि ये फैटी एनिमल है तो इसमें थोड़ा मच्छर और मक्खी अगर ज़्यादा हो रहे हैं और आर्द्रता ज़्यादा रह रही है तो उस कंडीशन में थोड़े वुंड पड़ जाएंगे, तो जो फेट है इसकी जो पूछ जो देख रहे हो आप, इस पूछ पे अगर कीड़े वगैरह पड़ गए तो थोड़ा सा हीलिंग में टाइम लगेगा, बस और कुछ भी फर्क नहीं है। बाकी नॉर्मल जो भेड़ है वैसा ही है। इसमें क्या होता है कि जब भी एनिमल है ना वो ब्रीडिंग में काम में आ रहा है, जो फीमेल है वो लैक्टेशन में रहती है। जैसे मान लीजिए कोई भेड़ है 12 महीने की है, जो 12 महीने तक तो ठीक है, 12 महीने के बाद में उसकी आपने मेटिंग करा दी तो वो क्या होगा, वो 5 महीने तक उसके फीटस अंदर रहता है, तो उसको पोषण एक तो खुद का करना है और एक बच्चे का करना। 5 महीने बाद में बच्चा दे दिया, उसकी उम्र होगी 18 महीने, फिर 3 महीने तक बच्चा दूध पिएगा। जब एनिमल दूध दे रहा है तो उस समय भी क्या उसको प्रोडक्शन के लिए न्यूट्रिएंट्स ज्यादा आवश्यकता है, उतने अगर मिल रहे हैं और उससे ज्यादा मिल रहे हैं तब तो वो बराबर मेंटेन रहेगा। लेकिन क्या हो, लैक्टेशन के अंदर जानवर आप कितना भी खिलाओ, आप गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, जब तक वो बच्चा दूध पी रहा है तो जानवर का वजन कम होगा। जैसे ही उसका बच्चा उससे अलग करोगे फिर जानवर का वजन बढ़ने लगेगा, यानी वो 2 महीने 3 महीने अगर आपने 6 महीने तक उसको खाली रख दिया तो उसका वजन उस टाइम अच्छा होगा। गाय भैंस के अंदर देखना आप, उसकी कोल्हे वगैरह वो ऐसे होकर के बिल्कुल यूं हो जाता है, तो सेम भेड़ में भी ये होता है। तो अब क्या हम इनको क्या 2 साल में 3 बच्चे लेते हैं, यानी कि हम इनको खाली नहीं छोड़ते। जैसे बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद में 3 महीने तक बच्चा दूध पिएगा तो हम इसको 2.5 महीने पे बच्चे को अलग कर दिए, 2.5 महीने पे उसको मिल्क रिप्लेसर हमारे न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट वो बनाता है, तो इनके ये जो जितनी भेड़े इनके जो बच्चे थे उनको हमने उनको मतलब उसको मिल्क रिप्लेसर पे ले लिया, उनकी वो भी उनका भी क्या ग्रोथ प्रभावित नहीं हो तो वो भी किया। तो अब उसके बाद में इनकी मेटिंग करवा दी तो जानवर को फ्री टाइम मिला ही नहीं, तो कंटिन्यू दो डबल डबल पोषण दे रहा हो तो आपके ऊपर 2 जगह की जिम्मेदारी होगी, तो आदमी इधर भी दौड़ेगा उधर भी दौड़ेगा, तो फीमेल का वजन इसलिए हमेशा मेल की अपेक्षा कम रहता है, तो थोड़ा वो रहता है क्योंकि मेल का तो केवल ब्रीडिंग का जब काम है तो उसी टाइम काम में आना है। और फिर क्या है, ब्रीडर जब होता है तो उसको घर का जो मुखिया होता है उसको खाना दाना भी उसी हिसाब से मिलता है, तो ब्रीडिंग का अलग से, अभी हमने इनको गुड़ खरीद करके गुड़ भी खिलाया, तेल भी खिलाया है, तो इनको एक्स्ट्रा केयर भी करते हैं हम। तो ब्रीडर थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपको अच्छी जर्म प्लाजम चाहिए, अच्छी प्रोजनी चाहिए, तो उसके लिए आपको ब्रीडर तो मस्ट है कि वो सबसे अच्छा हो, हष्ट पुष्ट हो, तो उसकी थोड़ी सी स्पेशल केयर करनी पड़ेगी।
1: किसान भाइयों, खेती और पशुपालन अगर तकनीकी आधारित विधियों को काम में लेकर किया जाए तो कृषि उत्पादन का बढ़ना और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाकर हम अपनी आय में कई गुना वृद्धि कर सकते हैं। इसी क्रम में भेड़ से प्राप्त ऊन के प्रसंस्करण विधियों पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान के वस्त्र विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने हमें बताया।
2: जहाँ पे मेरे सेक्शन में जो काम है कि भेड़ से जो ऊन प्राप्त होती है, ऊन को जब फैक्ट्री में जाकर कैसे प्रसंस्कृत करके उसमें कई सारे प्रोसेस हैं, जैसे ऊन की धुलाई करना, फिर उससे धागा बनाना और फिर उसके बाद उससे कंबल या कपड़ा बनाना, उसकी रंगाई करना, उसकी फिनिशिंग करना ताकि उसमें कीड़ा ना लगे, और उसको प्रेस करके बेचने हेतु कैसे तैयार किया जाए, ये सारी चीज़ें हम जो है ना यहाँ पे विजिटर्स को भी बताते हैं और हम अपने संस्थान की ऊन को इन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके दिखा

0: पाते भी हैं कि इस तरह से कोई कोई अगर सीखना चाहे तो उसके जानकारी में रहे कि क्या क्या प्रोसेस कैसे होता है, अदरवाइज इस तरह का प्रोसेस देखने को नहीं मिलता। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वहाँ लोगों को कि उनके प्रोडक्शन में लॉस होता है तो वो अंदर जाने नहीं देते। तो ये सरकारी संस्थान है तो यहाँ पे विजिटर्स भी आते हैं, स्कूल के बच्चे भी आते हैं, उनको हमें बताना होता है कि कपड़ा कैसे बनता है, ताकि उनको ये ध्यान में रहे कि कपड़ा पहनते तो हैं लेकिन बनता कैसे है, कहाँ से आता है और कहाँ से आने के बाद उसके साथ क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं ताकि वो हमारे पहनने लायक बने। थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल विजिट के द्वारा वो ये सब चीजों का अवलोकन स्वयं अपनी आंखों से करते हैं तो उनकी स्मृति में बैठता है, वो ताज जिंदगी उनके साथ रहेगा, ऐसा ये प्रयास है। तो रिसर्च के साथ साथ हम ये जाना पब्लिक सर्विस के ये पब्लिक के डोमेन में ये चीजें उपलब्ध कराते हैं जो कि इंडस्ट्री में नहीं हो पाती हैं। हम उनकी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर शोध कार्य करते हैं। मुख्यतः अभी पिछले 5-10 साल से ये पाया गया है कि मोटी ऊन जो है किसान की वो किसी उपयोग में नहीं आती, तो मोटी ऊन का कैसे सदुपयोग किया जाए, तो पिछले 10 वर्षों से हमने काफी शोध कार्य किए हैं और उनमें कई सारी टेक्नोलॉजी डेवलप की हैं जिनसे मोटी ऊन का उपयोग करके जो विक्रय हेतु उपयुक्त उत्पाद बनाए जा सकते हैं ताकि किसान के पैदा की हुई ऊन का उसको सही से मूल्य प्राप्त हो सके और वो अपनी आजीविका सुदृढ़ कर सके। साथ में ही इसके कंप्लीट वैल्यू चेन में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कपड़ा बनाने वाले या फिनिशिंग करने वाले या उसके उत्पाद को बना करके बेचने वाले, उनका जो लाभ का मार्जिन है वो कैसे बढ़ सके, प्रोडक्ट को इतना अट्रैक्टिव बनाए, शुद्ध मटेरियल हो प्लस मार्केट में बिकने लायक हो, जिसकी मार्केट में डिमांड हो, ऐसा प्रोडक्ट बना करके हम लोगों को दिखाते हैं। हमसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जुड़े हुए हैं जो हमारे द्वारा डेवलप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके उसको प्रोडक्शन यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं और अपनी आजीविका या स्टार्टअप के थ्रू लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं और आगे भी जो है ना उसको अपने काम को बढ़ा रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं। इसमें
1: पशुपालन में खरगोश पालन के संदर्भ में उपयोगी जानकारी देते हुए संस्थान के खरगोश पालन इकाई में सेवा दे रहे वरिष्ठ तकनीशियन श्री कृष्ण कांत मीणा।
2: देखिए यहाँ मतलब खरगोश के प्रबंधन मैनेजमेंट और खरगोश का मतलब आवास से संबंधित चारे से संबंधित सारी व्यवस्था को हम देखते हैं। यहाँ पे खरगोशों का मतलब ब्रॉयलर रैबिट की 6 नस्ल हैं, सोवियत चिंचिला, ग्रे जायंट, व्हाइट जायंट, न्यूजीलैंड व्हाइट, ब्लैक ब्राउन और डच। इन 6 नस्लों को सुबह से लेके इनकी डेली दिनचर्या जैसे चारा खाना पीना इनका और इनको मेडिसिन देना या स्लाटर भेजना किसी जानवर को, किसानों को जानवर बेचना सेल, और कोई जानवर बीमारी से ग्रसित हो गया तो उसका इलाज करना और मर गया हो तो उसको पीएम के लिए भेजना, ये सब चीजें चलता है। किसानों की रिस्क खूब है इसमें, किसान इसका मतलब बिजनेस करते हैं, जैसे भेड़ बकरियों का बिजनेस करते हैं वैसे खरगोशों का बिजनेस करते हैं। किसानों को हम 4 पे 1, 4 मादा और 1 मेल देते हैं जो किसान अपना बिजनेस शुरुआत कर देता है वहाँ से। और जो बड़े बड़े फार्म हाउस वाले हैं वो किसानों से टच में रहते हैं तो उनके पास जो माल तैयार होता है तो उनके पास से उठा लेते हैं। खरगोश का मीट और स्किन दोनों यूज आता है, मीट तो खाने में और स्किन के भी प्रोडक्ट बनते हैं। लेने का प्रोसेस यही है, 3 महीने तक का जानवर हम सेल करते नहीं है और 3 महीने बाद में जैसे 3 से 6 महीने यानी 84 दिन से और 168 दिन तक का वो 500 रुपए का पर जानवर जोड़ा हो गया 1000 का, और 168 से अपर वो मतलब यानी 700 रुपए का पर जानवर यानी जोड़ा 1400 का हो गया। रैबिट का प्रोडक्शन देखिए ये 1 महीने में भी आ जाता है और 2 से लेकर 12-13 तक बच्चा दे देता है और एक ही मादा 1 साल में 4 या 5 बार बच्चे दे देती है, तो यानी एक मादा से औसत 35-40 बच्चे अपन को आ जाते हैं। ये एक मादा का प्रोडक्शन है 1 ईयर का, 3 महीने बाद उन बच्चों को अपन सेल आउट कर सकते हैं, 6 महीने बाद उनसे भी बच्चे ले सकते हैं, यानी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा फास्ट है इसका, क्योंकि भेड़ बकरियों से साल में 2 बार बच्चे ले सकते हैं या 4 या 5 बार बच्चे ले सकते हैं। 1 महीने मादा गर्भ में रखेगी, 1 महीने उनको दूध पिलाएगी और 2-4-5 दिन बाद में उसको वापस मिला देते हैं मादा को, 2-2.5 महीने में हमको 1 क्रॉप मिल जाती है, इसलिए 1 साल में 4 या 5 बार अपन को बच्चे मिल जाए। इसकी उम्र 4 से 5 साल होती है। जो हमारी जो ब्रॉयलर नस्ल है ये 6 की 6, ये राजस्थान में अच्छे से रह लेती है, सिर्फ मई और जून के महीने में 2 महीने परेशानी आती है थोड़ी, जब टेम्परेचर 40 से ऊपर पहुंचता है तो हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, उस समय थोड़ा यानी कूलर या फिर जैसे हम जो शेड के चारों तरफ ये जाली है इस पे जैसे पानी पूड़ा या फिर घास की टाटी टाइप में लगा देते हैं और ये नली लग रही है इस पे ड्रिपिंग चालू रहती है, तो यानी बाहर से आने वाली लू अंदर जाके ठंडी हो जाए, और डक्ट कूलिंग चालू कर देते हैं, कई शेडों में हमने फोगर भी लगा रखे हैं और मौसम में कोई परेशानी नहीं है। वैसे हम तो किसानों को यही राय देना चाहेंगे भाई अधिक से अधिक रैबिट पालो, क्योंकि एक मतलब सस्ता और सुलभ व्यवसाय है, मतलब व्यवसाय स्टार्ट करने से पहले ज्यादा खर्चे की भी आवश्यकता नहीं है, ज्यादा जगह की भी आवश्यकता नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा

0: अच्छा बिजनेस है, क्योंकि भेड़ बकरियां इनके लिए ग्रेजिंग में भी जाना पड़ता है। कोई फार्मर ऐसा है यानी बुड्ढा है, मान लीजिए पेड़ों में नहीं चढ़ सकता ग्रेजिंग में, या जंगल में नहीं ले जा सकता जानवरों को, तो इसको तो मतलब घर पे भी वो पाल सकता है। ज्यादा जगह की आवश्यकता घर के पिछवाड़े में या कहीं पे जो अपना स्पेस है वहाँ पे इसको रख सकता है।
1: केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से किसान स्वयं को कुशल एवं कृषि ज्ञान से परिपूर्ण करने हेतु निरंतर ट्रेनिंग में भाग लेने आते हैं। ऐसे ही एक युवा प्रगतिशील किसान से हमने उनके विचार जाने।
2: मैं धर्मराज मीणा।

0: क्षेत्रों से किसान स्वयं को कुशल एवं कृषि ज्ञान से परिपूर्ण करने हेतु निरंतर ट्रेनिंग में भाग लेने आते हैं। ऐसे ही एक युवा प्रगतिशील किसान से हमने उनके विचार जाने।
1: मैं धर्मराज मीणा, गांव बिड़ोली, तहसील नेवाई, NLM का प्रोजेक्ट लगाया था और 2024-25 में प्रोजेक्ट स्टार्टिंग किया। आज 100+ जानवर है मेरे पास और अच्छा चल रहा है। आज तो किसानों के साथ में आया था मैं, तो 15 दिन का ट्रेनिंग ले रहा हूँ। ट्रेनिंग के बाद में काफी तकनीकों का पता चलता है, कौन सी दवाई, कौन सा टीका किस टाइम पे लगता है, वो चीजों का पता चलता है। पहले तो जैसे साधारण तरीके से करते थे तो उसमें इतना एवज नहीं था, आज उससे कर रहे हैं तो वही चीज दुगने पे आ गया, मतलब आय दुगनी हो गई। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप भी इसमें आइए, मैं भी एक MBA आदमी हूँ, मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ, तो आप भी आके इसमें एक अच्छा व्यवसाय के रूप में काम कर सकते हो।
0: इस प्रकार हमने केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान से जुड़े विभिन्न हितधारकों से बात कर ये जाना कि किस प्रकार एक प्रगतिशील किसान तकनीकी और सही ज्ञान से पशुपालन को न केवल अपने अपितु अपने पूरे परिवार के लिए लाभ का धंधा बना सकता है और अपने उत्पादन के साथ साथ आय में भी बढ़ोतरी कर सकता है। किसान भाइयों, आपको बता दें, हमारी इस OB यात्रा में शामिल थे महेंद्र कुमार मीणा, BS यादव और राजेंद्र सिंह दारा।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: उतना बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सब ही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: अभी आप सुनिया केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर पर रेडियो रिपोर्ट। और अब कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और सुना एक लोकगीत।

0: अनीता जी, उम्मीद छे गीत आपने भी पसंद आयो होलो, काश्तकार भाई ने भी पसंद आयो होलो। और अब ई गीत की साथ ही स्टूडियो की इशारो कर रही छे कि आज को जी को कार्यक्रम छे किसान वाणी, उनको टाइम पूरो होतो जा रहे छे। तो श्रोतावा दिराओ आज्ञा आशा ने
1: और अनीता ने चालार करा
0: राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.5 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 7:30 हुए हैं। सुनिए फिल्म संगीत।

कुर्बानी। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसे स्वर दिया था किशोर कुमार, अनवर और अजीज नज़र ने। गीत के बोल लिखे थे फारूक कैसर ने और संगीत से सवारा था कल्याण जी, आनंद जी ने।

लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के युगल स्वर में ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म थी क्रांति, गीत रचना थी संतोष आनंद की और धुन बनाई

थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से। फिल्म संगीत का अगला नगमा हमने लिया है फिल्म गुमराह से, जिसे स्वर दिया है महेंद्र कपूर ने, गीत रचना है साहिर लुधियानवी की और तर्ज बनाई है रवि ने।

तेरे घर के सामने, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे स्वर दिया था मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत से सवारा था SD बर्मन ने और गीत रचना थी हसरत जयपुरी की।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में मुकेश के स्वर में ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म थी तीसरी कसम। गीत के बोल लिखे थे शैलेंद्र ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से। फिल्म संगीत का अगला नगमा हमने लिया है फिल्म रेशमा और शेरा से, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर ने।

मैं तुलसी तेरे आंगन की। इस फिल्म का नगमा आप सुनेंगे, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर ने, गीत रचना आनंद बख्शी की, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

हसरत जयपुरी के भूलों को लता मंगेशकर के स्वर में अभी आपने सुना। फिल्म थी अनाड़ी। संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन ने।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वर में ये गीत अभी आपने सुना, जिसे हमने फिल्म मिस मैरी से लिया था। गीत के बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई थी हेमंत कुमार ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे लोक संगीत। लोक संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मेवाती लोकगीत, जिसके कलाकार हैं मोहम्मद इकबाल दूदिया एवं उनके साथी।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: हरी तू पिया मत मारे,

के नहीं पावा गो मोहे मारा सो। अरे आप पिसे गो आप पकाए गो आप पिसे गो। मोहे मारा सू तू

0: था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल, और यहां से आप सुन रहे हैं लोक संगीत। लोक संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद इकबाल दूधिया एवं उनके साथियों के स्वर में गाए हुए लोकगीत।

अरे करे नौकरी रहे अकेलो अपनी ड्यूटी दे तो होई गोरी मेरो बनम गयो परदेस बहन जा कैसे रे तो होई गोरी मेरो ब्याह गयो परदेस बहन।

मोए बलम की याद सतावे अरे मोए पिया की याद सतावे जाने कैसे रे तो हुई गो

हरिहर हरि केसर तो होई गो केसर तो होई गोरी मेरो पिया गयो परदेश बहन जन केसर तो होई गोरी मेरो बलम गयो परदेश बहन जन केसर तो होई गोरी मेरो पिया

हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। सेंसेक्स 1248 अंक गिरकर 73581 पर हुआ बंद। जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशिबिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स्ड स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को

0: अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: श्री मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित होनी चाहिए।
0: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात मिशन कर्मयोगी की।
2: मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय मूल्यों पर आधारित और वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाली भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों की क्षमता और कौशल को मजबूत करना तथा सिविल सेवाओं को अधिक नागरिक केंद्रित बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत सिविल सेवाओं को नियम आधारित व्यवस्था से भूमिका आधारित व्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सही व्यक्ति को सही समय पर सही जिम्मेदारी देना है। मिशन कर्मयोगी के तहत iGOT प्लेटफॉर्म पर 1,70,00,000 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों, कार्यों और व्यवहार संबंधी क्षमताओं से जुड़े 6,500 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े 200 से अधिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना है।
0: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे।
2: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान ने कहा कि मिशन कर्मयोगी की स्थापना विकसित भारत 2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से और उच्च गुणवत्ता के साथ हासिल करने की दृष्टि से की गई है।
3: विकसित भारत का जो एक आशावादी हमारे लक्ष्य है, उनको समय से प्राप्त करना, गुणवत्ता के साथ प्राप्त करना और सबसे अहम बात जो हमारे नागरिक है उनको गुणवत्ता युक्त सर्विसेज किस तरह से हमारे लोक सेवक प्रदान करें।
2: केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए iGOT प्लेटफॉर्म पर हर वर्ष निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना जरूरी है। इन पाठ्यक्रमों को उनकी वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटाया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों

0: को अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की।
1: A good book opens a window of ideas, history and experience. It invites us to think, not only to think, to question. Not only to question, to understand and sometimes to look at familiar subjects from a new perspective.
0: प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजासुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है।
2: The character of war,
3: युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल रही है और हमें भी खुद को इसके अनुरूप ढालना होगा। इसके लिए हमारी औद्योगिक व्यवस्था, खरीद प्रक्रिया और कार्य प्रणाली में भी तेजी से बदलाव जरूरी है, ताकि हम बदलती युद्ध परिस्थितियों के साथ कदम मिला सकें।
2: With the changing character of war.
0: भारत ने मजबूत व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को पारस्परिक रूप से लाभकारी बनाने के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक और आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श में भाग लिया। इस दौरान आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की चल रही समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर निर्वाचन आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों के लिए आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम निर्वाचन आयोग को किसी भी समय, जब वो उचित समझे, एसआईआर आयोजित करने का स्पष्ट अधिकार देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। एक रिपोर्ट।
4: गहरे डिप्रेशन ने कोरापुट, गजपति, मलकनगिरी, गंजाम, नवरंगपुर और रायगढ़ जिलों को प्रभावित किया है, जिससे 37 ब्लॉक, 127 ग्राम पंचायतें और 273 ग्राम प्रभावित हुए हैं। 20 वाड़े वाले 5 शहरी इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि 8,082 लोगों को जोखिम वाले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सरकार ने 2400 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम चालू कर दिए हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स NDRF और फायर सर्विस के टीमों को तैनात किया गया है और राहत सामग्री का इंतजाम किया गया है। मौसम विभाग ने कल व परसों भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी तेज बारिश की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,248 अंक लुढ़ककर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 384 अंक फिसलकर 23,063 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: आर्थिक विशेषज्ञ उद्यन रे ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने सहित कई कारणों से शेयर बाजार में गिरावट आई है।
6: आज स्टॉक मार्केट में जो हमने गिरावट देखा है, उसके कुछ प्रमुख कारण ऐसे हैं। सबसे पहले जो कच्चे तेल के दाम फिर बढ़े, दूसरा है बॉन्ड्स की जो यील्ड्स हैं, उसमें बढ़ोतरी की वजह से एक नर्वसनेस आई। पर सबसे महत्वपूर्ण जो घटना आज हुई है वो IRDA, जो रेगुलेटरी बॉडी है।

0: सेवा क्षेत्र में, उन्होंने एक डिस्कशन पेपर निकाला है जिसमें वितरण में जो कमीशन होते हैं उसमें कटौती के बारे में बात की है।
1: और अब जापान एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रश्मिना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
3: अच्छा लगा, ये मेरा थर्ड एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
2: निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने स्केट मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में परवीन ने 65 किलो के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। स्क्वाश और टेबल टेनिस के अलग अलग वर्ग में खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया है। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशिबिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9.
5: The headlines. Prime Minister Narendra Modi says spirit of service is the greatest driving force for country's progress. Highlights government innovative schemes bringing 25 crore citizens out of poverty. Government cuts basic customs duty on crude edible oils to ease domestic prices. In Odisha, heavy rain continues under influence of deep depression in its southern parts and adjoining north coastal Andhra Pradesh. Sensex plunges 1,248 points to settle at 73,581. And at Asian Games in Japan, India won silver medals in mixed relay race and wushu. Seema Kumari bags historic bronze in 10,000 meter race. Double sculls rowing and mixed skeet shooting teams also won bronze. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognised for their last mile delivery.
6: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। बेस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते हो तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उन सब विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
5: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The Prime Minister said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India.
6: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की

0: बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: Prime Minister Modi said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said seva parmo dharma, service as the highest duty should remain the guiding principle.
0: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: During the interaction, Seva Yatri shared their experiences with the Prime Minister. Defence Minister Rajnath Singh has said that it is essential to keep ground reality and national interest in mind for a good security policy. He was addressing an event organised by a media house in New Delhi. The Defence Minister said that a holistic approach must be adopted to address the challenges related to national security. The minister acknowledged that without diplomacy, military preparations can lead to confrontation and the security dilemma. The government has reduced the basic customs duty on major imported crude edible oils with a view to moderating domestic edible oil prices. This provides relief to consumers and mitigate inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the basic customs duty on crude sunflower oil has been slashed to nil, while on soybean oil and palm oil has been reduced from 10% to 5%. The ministry said the government has simultaneously reduced the applicable basic customs duty on the refined edible oils while maintaining an import duty differential of 19.25% between crude and refined edible oils. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the Mission Karma Yogi.
2: Mission Karma Yogi was launched in September 2020, envisioning a future-ready civil service rooted in India ethos with a global perspective. Mission Karma Yogi is aimed at strengthening the capacity and skills of government officials and making civil services more citizen-centric. The iGOT platform under Mission Karma Yogi has over 1.70 crore registered users and it hosts over 6,500 courses across domain, functional and behavioral competencies. It also includes more than 200 courses on AI and emerging technologies designed to equip government officials with essential digital knowledge and skills. Addressing an event, Prime Minister Narendra Modi said that the objective of Mission Karma Yogi is to make the government officials citizen-centric.
0: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। इस ट्रेनिंग कोर्स को अपडेट करते रहने की जरूरत है। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे। टेक्नोलॉजी हर किसी तक सही और सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचाकर सबको आगे बढ़ने का समान अवसर दे रही है।
2: टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज, चेयरपर्सन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एस राधा चौहान सेड दैट मिशन कर्मयोगी वाज एस्टेब्लिश्ड विद द विजन ऑफ अचीविंग द एस्पिरेशनल गोल्स ऑफ विकसित भारत 2047 इन अ टाइमली एंड हाई क्वालिटी मैनर।
3: विकसित भारत का जो एक बहुत एस्पिरेशनल हमारे लक्ष्य हैं।
4: The ambitious goal of Viksit Bharat is to achieve our objectives on time and with quality. Most importantly, our public servants must ensure the delivery of quality services to citizens. This applies not only to the government of India, but also to every state and every level of administration. From grassroots workers to senior secretaries and policymakers, capacity

0: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध।

इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। दीजिए इजाजत।

0: धरती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कूदे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर 1939 में हुआ है, आज के शहर बेंगलुरु में। उनका परिवार अफगानिस्तान के गजनी शहर से आके हिंदुस्तान में बसा हुआ है। ये परिवार पठान वंश से ताल्लुक रखता है। उनकी शुरुआती पढ़ाई बेंगलुरु में हुई और वो जब मुंबई घूमने आए तो यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री से काफी मुतासर हुए और उन्हें भाग्यवश फिल्म दीदी में सेकंड लीड रोल करने का मौका मिला। फिरोज खान ने शुरुआत में कई छोटी मोटी फिल्मों में किरदार किए। एक अंग्रेजी फिल्म टार्जन कम्स टू इंडिया, इसमें भी उन्होंने काम किया था, जिसमें उनकी नायिका थी सिमी ग्रेवाल। 1965 में उन्हें फणी मजूमदार साहब ने ऊंचे लोग इस फिल्म में हीरो का रोल दिया। इस फिल्म में दादा मुनी और जानी राजकुमार थे। इनके होते हुए भी फिरोज खान ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। ये फिल्म हिट हुई और इस फिल्म का चित्रगुप्त साहब का संगीत भी बड़ा ही सुमधुर बन पड़ा है। इसका जादू आज भी चाहने वालों के सर चढ़ के बोलता है।

दोस्तों, इस फिल्म के हिट होने के बाद भी फिरोज खान ने छोटे बजट की फिल्मों में काम करना जारी रखा। सैमसन, चार दरवेश, एक सपेरा एक लुटेरा ऐसी ही कुछ फिल्में थीं।

1965 में रामानंद सागर की सागर आर्ट के बैनर तले फिल्म आई आरजू। इसमें भी फिरोज खान ने सेकंड लीड रोल किया था और इस फिल्म ने भी सफलता के झंडे गाड़े और फिर एक बार फिरोज खान ने अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लिया था। 1969 में बीआर फिल्म्स का बड़ा शाहकार पर्दे पर आया आदमी और इंसान। सायरा बानो, धर्मेंद्र, मुमताज और फिरोज खान की इसमें मुख्य भूमिकाएं थी।

1966 में आई थी फिल्म मैं वही हूँ। इस फिल्म का जो रफ़ी साहब का गाया हुआ गाना है, जो फिरोज खान पर फिल्माया गया है, बड़ा ही हसीन बन पड़ा है।

रियाज ने, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर इसमें मुख्य भूमिकाओं में थे। फिरोज खान ने भी इस फिल्म में शेखर का बड़ा ही अहम रोल किया था। उन पर फिल्माया गया ये गाना भी आज तक सुनने वालों की पसंद में शामिल है। उनके साथ पर्दे पर थी शर्मिला टैगोर। गीत इंदिवर का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का और आवाज मुकेश की।

सन 1971 में आई थी फिल्म उपासना। संजय खान अर्थात अब्बास अली खान, जो कि उनके भाई हैं, और मुमताज की इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थी। इस फिल्म का मुकेश का गाया, उन्हीं पर फिल्माया गया ये गाना भी आज तक उतना ही पॉपुलर है। उनके साथ नजर आती हैं मुमताज।

0: दोस्तों, फिल्मी दुनिया का एक अलिखित नियम है, जिस रोल में शुरुआती फिल्म में आप नजर आते हैं वैसे ही रोल आपको मिलते चले जाते हैं। फिरोज खान के साथ भी ऐसा ही हुआ, पर फिरोज खान ने अपने को लीड रोल में लाने के लिए कड़ी मशक्कत मेहनत की और एक दिन उनकी ये मेहनत रंग लाई। सफर, शंकर शंभू, प्यासी शाम, गीता मेरा नाम और खूटे सिक्के जैसी छोटी बड़ी फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी के रंग भरे और अपनी किस्मत का सिक्का चमकाया। इस दौरान अपने छोटे भाई संजय खान के साथ भी उन्होंने 3 फिल्में की, उपासना, मेला और नागिन। 1972 में फिरोज खान ने अपना एक बैनर बनवाया, FK इंटरनेशनल। इसी के बैनर तले फिल्म बनाई अपराध। अपनी मन मर्जी से इस फिल्म की कहानी, लोकेशन का चुनाव उन्होंने किया और बड़ी ही उम्दा फिल्म बनाई जिसके गाने आज भी हिट।
1: हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने हैं।
2: हमारे
1: हाँ।

दोनों एक जगह, हाँ देखी न दोनों एक जगह।

0: मगर
1: औरत का दिल जाने नहीं, आप हमें पहचाने नहीं।
0: छोड़ो छोड़ो हम भी सयाने हैं, हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने।
2: इस दौरान वो और बैनरों में भी नजर आए। रविकांत नगाइश द्वारा निर्देशित फिल्म काला सोना में भी उन्होंने बड़ा ही उम्दा रोल निभाया है। 1975 में फिरोज खान ने एक जबरदस्त शाहकार दिया धर्मात्मा। ये पहली ऐसी फिल्म है जो अफगानिस्तान में शूट हुई। इस शानदार फिल्म ने उन्हें बतौर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, अदाकार जबरदस्त सफलता।

दोस्तों, फिरोज खान सही मायनों में एक अजीम फनकार थे। रोल चाहे कोई भी हो, उसमें वो जान फूंकते थे। वो एक स्टाइलिश अदाकार थे। काउबॉय वाले किरदार उन्होंने ही हिंदी सिनेमा को दिए हैं। कई फिल्मों का उन्होंने निर्माण किया, जैसे कि धर्मात्मा, जांबाज, यलगार, कुर्बानी, दयावान जैसी फिल्में उन्होंने अपने प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाई। प्रियमगन, जानशीन ऐसी भी कुछ फिल्में उन्होंने बनाई हैं। वो एक उच्च कोटि के निर्माता निर्देशक साबित हुए हैं। लगभग 5 दशकों तक का उनका फिल्मी सफर रहा है।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के स्टाइलिश अभिनेता फिरोज खान पर। आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आन मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप रात्रि के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 के 20वें संस्करण पर डेली हाईलाइट कैप्सूल आकाशवाणी दिल्ली से।

0: superb 10,000 meter run from Seema Kumari ensured a bronze for India after 16 years in this event. The day started with rowers Sattam Singh and Salman Khan claiming a bronze medal in the men's double sculls event. A.S. Naruka and Parinaz Dhalewal added a skeet shooting bronze medal in the afternoon, while Roshabina Devi claimed a silver in Wushu after losing the final to Zhang Xiao of China in the women's 60kg Sanda event. Let's now take a detailed look at athletics, where India got two medals today. Prerna Sharma has more.
1: Bharatiya athletes dikhane lage rang, ek ke baad ek medal, aur ab athletics mein gold ka intezaar. Indian athletics ka medal account ab khul chuka hai, aur track and field se lagatar achhi khabre saamne aa rahi hain. Silver aur bronze dono medal Bharat ki jholi mein aa chuke hain. Ab intezaar hai us sunhere pal ka, jab podium par gold ke saath Bharatiya tiranga sabse upar lehraye. Shuruaat karte hain mixed 4x400 मीटर रिले से, जहां इंडिया ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया. पूर्व महाराजू विशाल थेनारसु, विद्या रामराज और मनु टीएस के क्वार्टरेट ने 3:14.46 का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया. इस रेस का सबसे खास पल आया आखिरी लेग में, जहां विद्या रामराज ने शानदार दौड़ लगाते हुए इंडिया को सिल्वर तक पहुंचाया. बहरीन के गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता, और इंडिया ने हांगझाओ 2023 में जीता सिल्वर इस बार भी बरकरार रखा. अब बात उस मेडल की जिसने एशियन गेम्स 2026 में इंडियन एथलेटिक्स का खाता खोला. महिलाओं की 10,000 मीटर रेस में सीमा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. उन्होंने 32:50.05 का समय दर्ज किया. ये एशियन गेम्स 2026 में एथलेटिक्स का इंडिया का पहला मेडल है. साथ ही महिलाओं की 10,000 मीटर में यह 2010 के बाद इंडिया का पहला एशियन गेम्स मेडल भी है. 2010 में प्रीजा श्रीधरन ने गोल्ड और कविता राउत ने सिल्वर जीता था. 16 साल बाद इस इवेंट में एक बार फिर इंडिया ने पोडियम पर जगह बनाई है. अब रुक करते हैं मेंस 100 मीटर की ओर, जहां भारत

0: के अनिमेश कुजूर और गुरविंदर सिंह ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अनिमेश कुजूर ने अपनी हीट में 10.36 सेकंड्स का समय निकालते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। उनसे आगे थाईलैंड के पूरीपोल बूनसन और चाइना के जेन केली रहे। तीसरे स्थान पर रहने के बावजूद अनिमेश ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया। वहीं हीट चार में गुरविंदर सिंह ने 10.38 सेकंड्स का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। यानी अब मेंस 100 मीटर में भारत की उम्मीदें दोनों स्प्रिंटर्स पर टिकी हैं। अब बात करेंगे ट्रिपल जंप की, जहां भारत की आशा इलांगो ने आखिरी अटेम्प्ट तक पोडियम के लिए पूरा जोर लगाया। अपने सिक्स और फाइनल अटेम्प्ट में आशा ने 13.59 मीटर की जंप लगाई और फोर्थ पोजीशन पर कंपटीशन खत्म किया। यानी पोडियम से उनका मामूली अंतर रह गया। इसी इवेंट में भारत की एक और एथलीट निहारिका वशिष्ठ ने हिस्सा लिया और वो 10th पोजीशन पर रहीं। अब रुक करते हैं हेप्टाथलॉन का, जहां भारतीय एथलीट्स का प्रदर्शन पहले दिन थोड़ा निराशाजनक रहा, लेकिन अभी उम्मीदें बाकी हैं। आज पहले दिन 4 इवेंट्स पूरे हो चुके हैं और अगर हम भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो सबसे पहले बात करते हैं अनामिका की। अनामिका ने 100 मीटर बाधा दौड़ 14.80 सेकंड में पूरी कर 868 पॉइंट्स, हाई जंप में 1.74 मीटर की कूद लगाकर 903 पॉइंट्स, शॉर्ट पुट में 11.15 मीटर के थ्रो के साथ 605 पॉइंट्स और 200 मीटर दौड़ 25.96 सेकंड में पूरी कर 801 पॉइंट्स हासिल किए। इन चारों इवेंट्स को मिलाकर उनका कुल स्कोर 3177 पॉइंट्स बना, जिसके बाद वे 7वें स्थान पर रहीं। वहीं दूसरी ओर पूजा ने 100 मीटर बाधा दौड़ 14.61 सेकंड में पूरी कर 894 पॉइंट्स, हाई जंप में 1.71 मीटर की छलांग लगाकर 867 पॉइंट्स, शॉर्ट पुट में 11.44 मीटर थ्रो के साथ 624 पॉइंट्स और 200 मीटर दौड़ 26.27 सेकंड में पूरी कर 774 पॉइंट्स हासिल किए। पूजा का कुल जोड़ 3159 पॉइंट्स रहा और वे 9वें स्थान पर बनी हुई हैं। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। कल दूसरे दिन बाकी 3 आखिरी इवेंट्स खेले जाएंगे, लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो और 800 मीटर दौड़। इन तीनों इवेंट्स का खेल पूरा होने के बाद ही सभी खिलाड़ियों के कुल अंक जोड़े जाएंगे और पहला, दूसरा और तीसरा स्थान यानी पोडियम फिनिश तय होगा। भारतीय फैंस की नजरें कल अनामिका और पूजा की जोरदार वापसी पर होंगी। तो एथलेटिक्स में भारतीय एथलीट्स का प्रदर्शन लगातार सुर्खियों में है। सिल्वर और ब्रॉन्ज के साथ भारत ने पोडियम पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है, जबकि कई भारतीय एथलीट्स क्वालिफिकेशन और स्ट्रॉन्ग फिनिशेस के जरिए अगले मुकाबले की ओर बढ़ रहे हैं।
1: Now time to get you all the updates from shooting. Shabab Anwar has more.
2: भारतीय निशानेबाज अनंतजीत सिंह नारोका और परिनाज धालीवाल की जोड़ी ने भारत को निशानेबाजी का 8वां पदक दिलाया। ये भारतीय जोड़ी शॉटगन के स्किड मिक्स्ड स्पर्धा के फाइनल में 48 में से 44 निशाने लगाकर तीसरे स्थान पर रही और कांस्य पदक जीता। वैसे तो भारत और दक्षिण कोरिया का स्कोर बराबर रहा था, लेकिन टाई ब्रेकर के बाद भारत को ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ा। ये मौजूदा एशियन गेम्स में शूटिंग में भारत का 8वां मेडल है। इसमें 4 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। इससे पहले भारतीय निशानेबाजों ने 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन में निराश किया। कमलजीत ने 580 अंकों के साथ 9वां स्थान प्राप्त किया, जबकि आकाश भारद्वाज भी फाइनल में जगह नहीं बना सके।
1: It was a good day for Indian rowing, where history was made. Here's more. Indian double sculls rowers Sattam Singh and Salman Khan won the bronze medal at the Aichi Nagoya Asian Games 2026 on Thursday. In the first 1000 meter, India was seen trying to catch up to Uzbekistan and China in the lead. With 500 meters to go in the race, the pair momentarily went past the Uzbeks, but it was not to be. Sattam and Salman could eventually register a finish time of 6:13 and 25 seconds. China won gold and Uzbekistan ended up with silver. Earlier, Balraj Pawar missed out on a bronze medal in the men's singles sculls final. In the 2000 meter race, Balraj held on to second place with 500 meters to go before being overtaken. Balraj finished fourth with a timing of 6:54 and 80 seconds. Arvind Singh, Kulwinder Singh, Navdeep Singh and Jaakar Khan finished fifth in the men's quadruple sculls final, while Ujjwal Kumar Singh and Rohit finished fourth in the lightweight men's double sculls final. And despite striving hard, there was disappointment for Gurbani Kaur, Alina Anto, Tendeliti Habujam and Poonam finished last in the women's four final. There was an outstanding performance from the Wushu Arena today, and Sakshi Manwal has more.
3: Wushu icon Rushabana Devi added another historic chapter to her Asian Games journey, taking home the silver medal in the women's Sanda 60 kg category after a hard-fought battle against China.

0: China's Zhao Zhang. Roshibana gave it her all in the summit clash, but the Chinese contender edged ahead to claim the gold. With this effort, Roshibana Devi has become a three-time Asian Games medalist, adding to her 2018 bronze and 2022 silver, and continues her reign as India's most decorated wushu athlete on the continental stage.
1: India had their first test in hockey today when they faced South Korea. Let's find out what happened. India completed its third consecutive win in the group stages of the Asian Games 2026 men's hockey tournament with an 8-2 win over South Korea. Dilpreet Singh and Abhishek completed a brace each as India extended its lead atop the group A standings. Sukhjeet Singh, Harmanpreet Singh, Rajinder Singh and Shilanan Lakra were the other scorers for Craig Fulton's side. Kim Jiao and Kim Yongbok found the back of the net for the South Koreans. Our boxers were in action at Aichi Nagoya. Shabab Anwar has more.
2: Mukkebazi mein aaj ka din Bharat ke liye mila jula raha aur kuch had tak dil todne wala bhi. Sakshi Chaudhary mukkebazi ke mahilaon ke 51 kilogram bhar varg mein round of 16 mein haar kar bahar ho gayi hain. Unhe Kazakhstan ki mukkebaz Alua Balikobokova ne 3-2 se hara diya. Sakshi ne rashtramandal khelon mein swarn padak jeeta tha aur round of 32 mein Olympic kaanse padak vijeta Aira Velegos ko hara kar round of 16 में पहुंची थी, लेकिन इसके बाद उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उधर एक और महिला भारतीय बॉक्सर परवीन हुड्डा एशियन गेम्स के राउंड ऑफ 16 में मुकाबला खेले बगैर जीत गईं। कजाकिस्तान की मालिका नाजिमोवा ने उन्हें वॉकओवर दे दिया। अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना उज्बेकिस्तान की नब्बखोर खामिदोवा से होगा। मुक्केबाजी के पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में आज दिल तोड़ने वाला एक ऐसा पल भी देखने को मिला जब भारत का एक मुक्केबाज सुमित कुंडू को जीत के करीब होने के बावजूद मुकाबला छोड़ना पड़ा। सुमित मुकाबले में पूरा नियंत्रण बनाए हुए थे, तभी उनके घुटने में चोट लग गई। इसके बाद वो रिंग पर गिर पड़े। सुमित के लिए आगे खेलना संभव नहीं था और चोट के कारण उन्हें मुकाबला छोड़ना पड़ा। और इराक के अली कासिम को वॉकओवर के द्वारा अगले दौर यानी के क्वार्टर फाइनल में जगह मिल गई।
1: They were successful for India in squash as well. Sakshi Manwal tells us why.
0: In men's single round of 16, Abhay Singh defeated Ravindu Luxury of Sri Lanka 11-3, 11-5, 11-6, thereby sealing the match in his name in clean games, making it 3-0 to secure a victory for himself. Veer Chautrani faced a tougher battle against Malaysia's Sanjay Jiwa. The final score of the match was 3-2 in favour of India's Veer Chautrani, the scoreline being 11-9, 8-11, 11-6, 15-11, 11-6. Anahat Singh began her women's singles campaign with a convincing 3-0 win over Singapore's Au Yuang Wai In. She took the game 11-4, 11-5, 11-7 in her favour to advance to the quarterfinals. Tanvi Khanna pulled off a comeback win over Singapore's Au Yuang Wai Yan in the women's singles round of 16. After dropping the opening game 5-11, Tanvi responded by winning the next three 11-4, 11-5 and 13-11 to seal a 3-1 victory. The Indian held her nerves in a tense fourth game to book her place in the quarterfinals. Tanvi Khanna will now face Anahat Singh in the quarterfinals. Joshna Chinnappa and B. Senthil Kumar secured a hard-fought 2-0 victory over fellow Indian Suraj Chand and Shamina Riaz to advance to the mixed doubles quarterfinals. The final scoreline stood like 11-7, 11-10. The second game proved to be a thriller with Suraj and Shamina fighting back from 7-9 down to level the score at 9-9 and earn a game point. However, Joshna's experience held firm during the pressure points, allowing her and Senthil Kumar to close out the match in their favour.
1: The Indian contingent was in action in Kabaddi. Prerna Sharma has more.
3: Asian Games में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने एक बार फिर अपने अभियान को जीत की लय में आगे बढ़ाते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीनी ताइपे के खिलाफ 37-21 की जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में सभी चार मुकाबले जीतकर ग्रुप स्टेज का समापन किया। यानी अब खिताब की राह में भारत के सामने सिर्फ दो मुकाबले और हैं। अब कल सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का मुकाबला थाईलैंड से होगा। दूसरी तरफ अगर महिला कबड्डी की बात करें तो मेजबान जापान के खिलाफ भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50-25 की बड़ी जीत दर्ज की। आखिरी रेड में बोनस पॉइंट्स के साथ भारत ने अपनी एशियन गेम्स अभियान का ग्रुप स्टेज खत्म किया। इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में लगातार तीसरी जीत हासिल की और टॉप पर रहकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना नेपाल से होगा।
1: There was more good news for India from the table tennis arena. Let's hear from Sakshi Manwal.
0: India have

0: marched into the third round in women's doubles table tennis with Diya Chitale and Yashaswini Ghodpade securing a straightforward 3-0 win with the scoreline reading 11-2, 11-2, 11-4. In women's doubles round 2, another Indian women's doubles team showed its class with a 3-0 win over Mongolia. Shreeja Akula and Cinderella Das began their women's doubles campaign in style, cruising to a comfortable 3-0 victory with the scoreline reading 11-5, 11-4, 12-10 over bowler Erdene Buttbook and Sanja. In men's single round 1, Indian paddler Manush Shah started his men's singles campaign with a win over Malaysia's Wong Kui Shen. Manush prevailed over Wong with a clean 4-0 scoreline that read 11-9, 14-12, 11-7, 11-4.
1: It was a tough day for the Indian fencing contingent. Prerna Sharma has the details.
2: Mahila Vyaktigat Saber Fencing Spardha mein Bharat ki CA Bhavani Devi aur Shreya Gupta ne round of 16 tak ka safar tay kiya. Dono khiladiyon ne pool stage se knockout stage mein jagah banayi, lekin round of 16 mein mili haar ke saath is spardha mein Bharat ka abhiyan samapt ho gaya. Bharat ki pehli Olympic fencer CA Bhavani Devi ne pool 4 mein 5 mukable khele. दो जीत के साथ वह पूल चार में चौथे स्थान पर रही और नॉकआउट स्टेज में पहुंची। इसके बाद राउंड ऑफ 32 में भवानी ने मुकाबले में 15-8 से जीत दर्ज की और राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। राउंड ऑफ 16 में उनके सामने चीन की राओ शुएई थी, जो 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता है। राओ ने मुकाबले में शुरुआती बढ़त हासिल की और अंततः 15-5 से जीत दर्ज की। इसके साथ भवानी देवी का एशियन गेम्स 2026 में महिला व्यक्तिगत सेबर फेंसिंग अभियान समाप्त हुआ। दूसरी ओर श्रेया गुप्ता ने पूल 2 में तीसरा स्थान हासिल कर सीधे राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया। पूल स्टेज में उन्होंने 3 मुकाबले जीते, जबकि 2 में उन्हें हार मिली। तीसरे स्थान के कारण उन्हें राउंड ऑफ 32 में मुकाबला नहीं खेलना पड़ा। राउंड ऑफ 16 में श्रेया का सामना दक्षिण कोरिया की जॉन हा यंग से हुआ। पेरिस ओलंपिक 2026 की रजत पदक विजेता जॉन ने श्रेया को 15-6 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
1: The Indian contingent strived hard to make an impact in swimming. Sakshi Manwal tells us the results.
0: India's Benedictine Beniston finished 5th in the Heat 5 of men's 50-meter butterfly event, failing to qualify for the final directly but was placed in reserves. He finished 12th overall. In men's 4x100-meter freestyle relay heats, Benedictine Beniston, Anish Sunil, Akash Mani and Gitesh Shah were eliminated in the heats after finishing last in their 6-team race. They recorded a time of 3 minutes 23.51 seconds, leaving them 12th overall out of 13 teams.
1: It was a tough day for India in canoe. Sakshi Manwal has more.
0: India faced a disappointing day in canoe sprint with all 4 entries missing out on medals at the Miyoshi Lake canoe course. Raju Rawat and Film Gyaneshwar Singh finished 9th and last in the men's canoe double 500-meter finals, choking 1 minute 56.121 seconds. The Indian pair finished 15.380 seconds behind gold medalists China's Wu Shengyu and Ji Bowen. India's men kayak 4 finished 7th in the 500-meter finals with the quartet of Nayocha Singh, Lighton Jim, Varinder Singh, Oinam Arun Singh and Harshvardhan Singh Shaktawat clocking 1 minute 28.982 seconds. In the women's kayak double 500-meter game, Sonia Devi and Parvati Geeta failed to make the final after finishing last in their semi-final in 2 minutes 1.020 seconds. Megha Pradeep also missed out in the women's canoe single 200-meter final after finishing 4th in her 5-boat semi-final in 51.093 seconds. Megha finished 1.666 seconds behind the winner.
1: Let's now hear from the latest from what happened in the esports arena with Prerna Sharma.
2: Esports एक ऐसा खेल जो मैदान पर नहीं बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर खेला जाता है। भारत के लिए esports से अच्छी खबर आई है। भारत के डेब्यूटेंट परितोष ने ग्रुप बी में 2 जीत और 2 हार के साथ तीसरा स्थान हासिल करते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब परितोष पोयो पोयो चैंपियंस के क्वार्टर फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने esports में भारत की चुनौती को अगले चरण तक पहुँचाया है।
1: 5 medals have come on a terrific Thursday for the Indian contingent. Here's the latest from the medals tally.
2: और इसी के साथ एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए एक और रोमांचक दिन समाप्त होता है, जहां एथलेटिक्स, वुशु, शूटिंग और रोइंग में 5 नए पदक, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जुड़ गए। अगर मेडल टैली की बात करें तो टॉप 3 देशों में चाइना 80 गोल्ड, 30 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज के साथ कुल 130 मेडल जीतकर पहले स्थान पर है। जापान 20

ये इंतजार की रात फिर मुख्तसर होगी, चांद निकलेगा, ये नरगिसी निगाहें शाद होंगी। वक्त रुखसत है इस प्यार से देखा न करो, फिर आएंगे वादे पे एतबार करो।

आज के छह गीत कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

0: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजे है। अब सुनिए हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव